0: मशहूर हो जाए।
1: तो दोस्तों, बातों का सिलसिला जारी है। आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में, क्योंकि महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करनी बेहद जरूरी है। 50% की आबादी यानी आधी आबादी महिलाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम सब लगाते हैं, लेकिन क्या वाकई ये बेटियां सुरक्षित हैं? इनके क्या अधिकार हैं? और अगर जरूरत पड़ती है तो क्या फरीदाबाद पुलिस या फिर हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इनके लिए कुछ खास सहूलियत लेकर आई है, चाहे वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हों या फिर कोई ऐप? ऐसी कुछ बातें जानने की कोशिश करें हम महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई स्वयं उनसे, जो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में 24 घंटे कार्यरत हैं, SHO महिला सेल NIT फरीदाबाद इंस्पेक्टर माया जी से।
2: माया जी, अब मैं जानना चाहूंगी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात। जैसे आपने कही कि बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सब कुछ जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, कोई भी जानकारी जो है बाहर नहीं शेयर की जाएगी, लेकिन परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना भी जरूरी है।
3: बिल्कुल।
2: सो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो कैसे खुद को सेफ रख सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां परिवार को पता ही नहीं होता कि बच्चा कहां जा रहा है।
3: देखिए, जब भी कोई महिला या लड़की या फिर, तो सबसे पहले हमें यही सुनने को मिलता है कि घर में मत बताना। ये बिल्कुल आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हमारे सामने दिक्कत आती है। लेकिन हम बिल्कुल उनको काउंसलिंग करके तैयार करते हैं कि नहीं, माँ बाप को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है और हम खड़े हैं आपके साथ। तो हम ऐसे में बच्चे का कहीं पर भी मतलब नाम जो है प्रकाशित नहीं करते हैं, ना ही किसी सोशल मीडिया पर नाम डालते हैं, और ना ही किसी पड़ोस में। जब भी हम विजिट करते हैं उसके घर पर, तो हम बिल्कुल सिविल कपड़ों में हम जाते हैं, हम यूनिफॉर्म में भी नहीं जाते हैं। तो उसकी जो मतलब मान सम्मान का जो है, लड़की का पूरा ध्यान रख के हम काम करते हैं। और माँ बाप को लेकिन हम जरूर बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताएंगे
2: जी।
3: क्योंकि वही सबसे पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, और उनको गवाह के रूप में भी हम जो है रखते हैं कि उनके बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई है, और हम काउंसलिंग करके माँ बाप को रेडी कर लेते हैं। और जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल डर रहता है कि माँ बाप को या रिश्तेदारी में ये बात नहीं पता लगनी चाहिए, तो हम उनको समझाते हैं कि आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। और जैसे वो जब थाने में आते हैं तो वो बिल्कुल डरे हुए आते हैं, और फिर जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, फिर वो अपनी लड़ाई लड़ने को पूरा तैयार रहते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कहीं भी जाएं, अपने पेरेंट्स को एकदम सच बता के जाएं, क्योंकि जब आप सच नहीं बताते हैं तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और पुलिस उस दिशा में खोज करने की कोशिश करती है, ढूंढने की, उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, अगर आप ही झूठ बोलेंगे अपने पेरेंट्स से या पुलिस से, तो वहां पर केस पहले ही कमजोर पड़ जाता है। माया जी, लीगल राइट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि लीगल राइट्स, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि महिलाओं को अपने हक पता ही नहीं होते हैं, इसलिए वो सालों तक अपराध को झेलती आई हैं।
3: बिल्कुल। देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस जिनके साथ होता है, वो बिल्कुल अपना मतलब खर्चे की जो, जैसे कुछ एक महिलाएं ऐसा ही होती हैं कि नहीं, मुझे रहना तो साथ ही है लेकिन ये मुझे खर्चा नहीं देता है। तो ऐसे में जो फरीदाबाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं हेमा जी, तो उनके पास जाकर हम सलाह देते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को आप साथ लें, उनके माध्यम से आप अपना खर्चे का दावा डालें कोर्ट में। तो ये सुविधाएं उनके लिए हैं। और एक कुछ एक जैसे होता है कि काफ़ी दिनों से अपने घर पर महिला रह रही है और वो अपने ससुराल में जाना चाहती है, तो हम ऐसे में भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को उनके साथ मतलब खड़े रहने के लिए उनको हिदायत देते हैं कि भाई आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन दें। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि एक अलग महिला अधिकारी हैं, लेकिन वो पुलिस के साथ जुड़कर काम करती हैं, तो वो लीगली मतलब उनकी हर पहलू पर मदद करती हैं। और अगर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई या दहेज के लिए कुछ होता है, तो हम 498 में मुकदमा दर्ज करते हैं। पहले हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से हम जो है मतलब दोनों पक्षों में सुलहनामा करवाने की कोशिश करते हैं। नहीं होता है तो हम 498 IPC के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी ठीक होता है, जो भी साक्ष्य सबूत सामने आते हैं, उसी प्रकार से हम काम करते हैं
2: जी।
3: और कई बार क्या डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार बच्चों की कस्टडी को लेकर बड़ा एक मुद्दा सामने आता है
2: फैमिलीज में,
3: तो उसमें देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि आए दिन यही होता है कि बच्चा मैं रखना चाहता हूँ या, तो उसमें पुलिस का कोई भी हम डिसीजन हम उनको नहीं देते हैं, लेकिन हम वही प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से उनकी एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगवाते हैं ताकि, क्योंकि इस पे कोर्ट ही जो है डिसीजन ले सकता है, तो हम ये सारी चीजें उनको बताते हैं। और जो महिला विरुद्ध अपराध है जैसे रेप केसेस से संबंधित है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है तो ये सारी जानकारी हम महिलाओं को देते हैं।
2: जी जी, और अब मैं यही आपसे जानना चाहूंगी चलते चलते कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आप लोगों में अवेयरनेस के लिए करते हैं, खासतौर पर से जैसे आपने बताया पॉक्सो को लेकर बच्चों को आप अवेयर करते हैं, गुड टच बैड टच स्कूल में आप प्रोग्राम्स कराते हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए किस तरीके की कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ आप बढ़ते हैं?
3: देखिए महिलाओं को, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल में जाके समझा दिया जाता है लेकिन महिलाओं को हम जैसे जो गांव के सरपंच हैं हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप एक बड़ा मतलब अपने गांव की सभी औरतों को एक जगह इकट्ठा करें, तो हम गांव-गांव में जाकर या फिर सोसाइटी में जाकर रिहायशी एरियों में जाकर जो है औरतों को अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि रात में जब पुलिस के पास मतलब मेरे पास जब कॉल आता है तो वो ज्यादातर महिलाओं का ही आता है कि मेरा पति मुझे पीट रहा है, तो फिर उस टाइम मुझे लगता है कि इनको क्यों ना अवेयर ही किया जाए, तो क्योंकि 112 की जो गाड़ियां हैं वो भी ऑन रोड रहती हैं, तो हम रिहायशी एरियों में जाकर महिलाओं को बिल्कुल अवेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और वो कब पुलिस से कैसे और किस नंबर पे कॉल करके, जैसे 112 के बारे में हम बताते हैं, 112 की गाड़ियों के बारे में हम बताते हैं, और उनको हम ये भी बताते हैं कि अगर आप रास्ते में कहीं रात को लेट हो गए हैं और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, आपका फोन भी नहीं है आपके पास, तो आप अकेले चलने से अच्छा ये है कि किसी दुकान पे खड़े होके या जो भी आसपास में है उनसे एक मतलब फोन लेकर 112 पे कॉल करें, तो 112 की गाड़ी जो है वो उनके घर तक उनको छोड़ कर आएगी। तो ये सभी जानकारियां पुलिस डोर टू डोर जाकर उनको देती है और कुछ एक महिला इसका फायदा भी बहुत उठा रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब अवेयर नहीं हो रहे हैं लोग, अवेयर भी होते हैं, तो मतलब हम इस तरह के सम्मेलन करके औरतों से मिलके एक हमने red.com टीम बनाई हुई है, red.com टीम के द्वारा हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि आपको फरीदाबाद में आपको अपने एरिया में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है
2: जी।
3: उसमें उस महिला का नाम हम उसमें फिल नहीं करवाते हैं लेकिन हमें उनके आंसर से वो जगह हम हॉटस्पॉट के रूप में मान लेते हैं और उसको हम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, तो वहां पर जो red.com टीम है वो इसमें बड़ा ही हमें मदद दे रही है कि इसमें पुलिस की लड़कियां होती हैं और वो झुग्गी एरिए में मतलब कॉलोनियों में और ये सेक्टर में मतलब जाके जरूर हर एक से ये फॉर्म फिल करवा के हमें जानकारी देती है, तो वहां पर हम गश्त अपनी बढ़ा देते हैं, कोई राइडर खड़ी कर देते हैं
2: ताकि वो एरिया सेफ हो जाए,
3: ताकि वो एरिया सेफ हो जाए, और हॉटस्पॉट का जो है आए दिन हमारे जो अधिकारी हैं वो हमसे रिपोर्ट लेते रहते हैं कि कितने हॉटस्पॉट आपने सेफ किए हैं और कितने हॉटस्पॉट को आपने चुना है
2: जी।
3: तो ये सब एक माध्यम मतलब थाने में बैठकर ही नहीं किया जाता, ये डोर टू डोर जाके किया जाता है,
2: मतलब एक चार दीवारी में बैठ के नहीं बल्कि सड़कों पर निकल कर डोर टू डोर जाकर घरों में मिलकर ये चीजें जो है वो
3: मैं एक बात और बताना चाहूंगी, देखिए पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है आप लोगों को जगाने में, आप लोगों की सेफ्टी को लेकर, लेकिन हमें इसमें आपका साथ चाहिए, हमें खासकर मतलब जब तक आप लोग हमारी बतलाई हुई बात को अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे, आप उन पे अमल नहीं करेंगे और आप हमारे बताए हुए दिशा निर्देशों पे नहीं चलेंगे तो पुलिस का भी प्रयास कहीं ना कहीं विफल फिर हो ही जाता
2: है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज मैं चाहूंगी माया जी आप चलते चलते बताएं, आपने 112 की बात करी तो एक ऐप है जो हर नागरिक के लिए है, उस ऐप के बारे में हमें जरूर बताइए जो सेफ्टी को लेकर स्पेशली बनाई गई है।
3: देखिए 112 इंडियन ऐप, जो 112 इंडियन ऐप है वो सभी के लिए है, उस पर कोई भी कॉल कर सकता है जरूरतमंद, मतलब अगर किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद करना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ कॉल करूँ, तो वो 112 पे कॉल करे। 112 इंडियन ऐप जो है हर लड़की हर लड़के हर आदमी औरत के फोन में होना चाहिए क्योंकि ये पूरे भारत में चलता है और ये हर जगह पर चलता है। जाता है, चाहे वो ट्रेन में है, चाहे आप एयरपोर्ट में है, मतलब कहीं पर भी है। तो 112 इंडियन ऐप पूरे इंडिया में है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो 112 इंडियन ऐप आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, उसको फिल करें, साइन अप करें और अपना नंबर जो है उस हेडक्वार्टर में रजिस्टर्ड करवाएं। और जब आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो हेडक्वार्टर से भी आपके पास कॉल आएगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ
2: जी।
3: तो उस पे सिर्फ आपने फर्स्ट कॉल पे यही बोलना है कि मैंने आज अपना नंबर रजिस्टर्ड किया है।
2: okay.
3: तो 112 इंडियन ऐप अगर किसी के भी मोबाइल में होता है तो आप ये समझिए कि उसके पास उसके साथ हर वक्त पुलिस जुड़ी हुई है, हर वक्त डॉक्टर जुड़ा हुआ है, हर वक्त ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई है जहां पर वो उनकी मदद कर सकते हैं, जिस भी संस्था से उसको मदद चाहिए होती है।
2: जी जी, यानी अगर 112 यानी 112 इंडियन ऐप प्ले स्टोर iOS स्टोर पर आपने जाना है और ये डाउनलोड करनी है, ये ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपसे आपकी जानकारी पूछी जाएगी, आपका नाम, आपका फोन नंबर, फीमेल या मेल और आपकी लोकेशन वगैरह, ये बेसिक जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। जब आप ये सारी जानकारियां उसमें ऐड कर देंगे तो आपका नंबर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, OTP एक आएगा वो आपको उसमें फिल करना है जो कि ऑटोमेटिक आपके फोन पर आ जाएगा। बस उसके बाद आपका जैसे ही नंबर रजिस्टर होता है आप इमरजेंसी सिचुएशन में इस ऐप का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, पुलिस आपकी मदद के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। सो इस ऐप को आप अपने निजी सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी देख सकते हैं जो आपको सुरक्षा मुहैया कराते हैं। माया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि हम महिला दिवस सिर्फ नाम के लिए नहीं मनाएंगे और जितनी भी महिलाएं हमको देख रही हैं, सुन रही हैं, वो कभी भी जरूरत पड़ेगी तो पुलिस का सहारा अवश्य लेंगी और अपने आप को सुरक्षित महसूस कराएंगी। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू।
2: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं सुरक्षा संवाद में। हम धन्यवाद करना चाहेंगे फरीदाबाद पुलिस का और साथ ही उन सभी लिसनर्स का जो हमें देखते हैं और हमारे व्यूअर्स जो हमें यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमें कमेंट करके अपनी बातें भी बता रहे हैं। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो 8010781078 पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी ऐप रेडियो मानव रचना 107.8 प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पॉडकास्ट को आप कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी के साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुरक्षित रहिए।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक लंबे समय से मैं आपको लेकर जाती हूं और आप लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में याद दिलाती हूं, उन सभी अनसंग हीरोज से मिलवाती हूं जो आज भी मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं, और उन सभी लोगों की मानवता की इन गाथाओं को और इन किस्सों को आप तक पहुंचाती हूं। दरअसल इस प्रोग्राम का जो ध्येय है या कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हम सब इंसान हैं और हम अपनी इंसानियत या ह्यूमैनिटी को ना भूलें, और इसीलिए मानवता की राह पर हर रोज हम चल सकते हैं कोई एक नेक कार्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नेक कार्य को डेली कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपना पैशन बना लिया है। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, एक फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। रीत फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और रीत फाउंडेशन दरअसल क्या कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके उनके अधिकारों तक की सारी कहानी आज हमें बताने वाली हैं एडवोकेट रितु कपूर, और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि आपने बताया कि हमें कुछ ना कुछ मानवता की तरफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है आपने, जिसकी वजह से लोगों में भी एक जागरूकता आएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ हमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करते रहना चाहिए।
0: देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मानवता करने के लिए आपको कोई भी सोचे समझे प्लान की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आपके पास समय है, अपने आसपास देखिए, और अगर आपको लगता है कोई भी इंसान उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सो इसीलिए यह खास कार्यक्रम, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाती हूँ जो लोगों के लिए सही मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रितु जी, रीत फाउंडेशन, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, और दरअसल देखा जाए तो एडवोकेट्स इतने बिजी होते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने काम से उन्हें शायद किसी के भले करने का समय नहीं होता, बट आप एक बहुत ही खूबसूरत सी फाउंडेशन चलाती हैं। सो इसके पीछे की कहानी, इसे आपने स्टार्ट कैसे किया और आज रीत फाउंडेशन कहाँ है?
1: ज़रूर, मैं रीत फाउंडेशन के बारे में ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। जैसे कि सब अपने अपने लिसनर्स को आपने बताया ही कि पेशे से मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हूँ, और उसमें हम जब मैं शुरुआती अपने काम में लोगों से मिलने लगी जो महिलाएं बहुत ही वेल एजुकेटेड, यहाँ तक कि जब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने केसेस देखे हैं आईएफएस ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे इंटरनेशनली भी अपॉइंटेड रही हैं अपने उस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और आईबी स्कूल्स की सीनियर टीचर्स, इंटरनेशनल स्कूल के सीनियर टीचर्स, एंड एमएनसीज में डायरेक्टर लेवल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब मैं उन जैसी महिलाओं से मिली इस दौरान, इस पेशे के दौरान, और जब मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि इतनी वेल एजुकेटेड लेडीज़ जो हैं और इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, बट स्टिल उनके पास लीगल राइट्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इतने सालों से ये घरेलू हिंसा सहती रही। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास अगर घरेलू हिंसा नहीं तो बहुत अलग तरीके की इमोशनल और मेंटल हरासमेंट से वो गुजर रही थी, लेकिन क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था उनके पास लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ एप्रीहेंशंस थी, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे। सबसे पहला तो जो हमारे समाज में एक ये चीज़ चली आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला। दूसरा एप्रीहेंशन उनका ये होता था कि मैं घर में रहकर अपने ही लोगों से कैसे झगड़ा कर सकती हूँ, कैसे केस डाल सकती हूँ। तीसरा, मैं फाइनेंशियली क्या करूंगी, जो लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं उनको ये लगता है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो ये सारे जो फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल रही है, आर्थिक सहायता जो कही जाती है हिंदी में, कि मेरे जो पति या मेरे जो घर के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, ये मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे पति ये सारी चीज़ें रोक देंगे, जो मेरे बच्चों की फ़ीस है, तो उस इन सब वजहों की वजह से वो अपने ना तो आवाज़ उठाती हैं और ना ही उन्हें लीगल राइट्स ये पता है। तो जब मुझे ये उन सब लेडीज से मेरा मिलना हुआ और मैंने उन्हें सब राइट्स उनके बताए, तो बहुत सारी महिलाओं की हमेशा ही यही एक उन्होंने हम मुझसे शेयर किया कि हमें पता ही नहीं था कि हम घर में रहते हुए भी राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डिवोर्स. क्योंकि क्या हो रहा है भावना जी, हमारे समाज में जैसे पिक्चरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो उसके वजह से लोगों को सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पता है, डिवोर्स, तलाक. अगर मेरे पास कोई भी महिला आती थी तो वो यही बोलते थे, मैम मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मैम बहुत झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और अदरवाइज नहीं तो ये हरासमेंट बहुत सालों से चल रहा है, तो मुझे आपसे मिलना है और मुझे डिवोर्स चाहिए. तो मैं हमेशा आज की डेट में भी मैं हमेशा हर महिला को ये बोलती हूँ कि ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक एक ही टर्म पता है, आपको बाकी लीगल राइट्स अपने पता नहीं है, तो आप एक बार मेरे पास आए, कंसल्टेशन करें, और उसके दौरान मैं आपको आपके सारे लीगल राइट्स बताऊंगी. मैं बताऊंगी कि आप इस शादी में रहकर भी सेफ रह सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डिवोर्स ही डालना है, तलाक ही डालना है. तो जब उन लेडीज का रिस्पॉन्स मुझे मिला और ये लगा कि हाँ ये बहुत एक मददगार एक चीज़ हो रही है लोगों के लिए, और उनको नहीं पता उनके लीगल राइट्स, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस समय मैंने 2021 में ये सरीद फाउंडेशन के बारे में सोचा और इससे हमने स्टार्ट किया. और रीड फाउंडेशन में हमने बहुत सारी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताए, जिससे वो जितने भी हम मदद कर पाए और जितने भी हम उनको सशक्त कर पाए हैं. आज की डेट में 15,000 से 20,000 हमने गुरुग्राम में महिलाओं के साथ काम किया है और उन्हें उनके कानूनी अधिकार बताए हैं. इसमें जब मैंने ये रीत फाउंडेशन स्टार्ट की तो एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, शक्ति प्रोजेक्ट
2: जी.
1: शक्ति प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था, हमारे IPS ऑफिसर हैं मैम राजश्री मैम, ऑनरेबल राजश्री मैम जी ने हमारा जब गुरुग्राम में ही ये लॉन्च हुआ, और उस दौरान भी हमने ये सेशंस किए तो महिलाओं को उनके सारे कानूनी अधिकार बताए गए, और ऐसे ही हमने 5 से 10 सेशंस लगातार इसमें किए. और उसके बाद हमने लॉन्च किया दुर्गा प्रोजेक्ट. दुर्गा प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसे सेशंस किए जहाँ जहाँ बहुत सारे, मैं DLSA के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, DLSA होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ से भी हमें बोला जाता है, इधर कहीं गांव में कहीं कहीं हमें कहा जाता है कि मैम वहाँ पर भी एक सेशन ले लीजिए, एक महिलाओं को जाकर एक जागरूकता का एक वो चला सेशन आप ले आए तो अच्छा है, महिलाओं को थोड़ा पता चलेगा. तो हमें रीत फाउंडेशन के अंतर्गत हमने जितने हम कवर कर सकते थे हमने वो कवर किया है. और अभी रिसेंटली जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं गुरुग्राम के, श्री विकास अरोड़ा जी, उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के साथ, हमने रीत फाउंडेशन के साथ मिलकर एक डिजिटल सहेली, ये गुरुग्राम पुलिस का ही इनिशिएटिव है, उन्होंने ही किया, रीत फाउंडेशन ने उनके साथ उनकी मदद की इसमें लॉन्च में. और ये डिजिटल सहेली बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी
2: जी,
1: और बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही मददगार होगा ये सब महिलाओं के लिए, जितने भी लिसनर्स हैं आपके. और उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम हम इसी में ही शुरू कर रहे हैं रीत फाउंडेशन में, सामूहिक कन्यादान. तो उसमें जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं जिनके साथ उनकी पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है उनकी शादी करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये एक अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है. तो इस तरह से हमारी कोशिश पूरी है कि हम रीत फाउंडेशन के थ्रू और महिलाओं को, जितनी भी महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं कानूनी तौर पे और वैसे भी, तो हम अपनी तरफ से एक कोशिश है.
0: देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, बट मैं रीत फाउंडेशन के लिए कह सकती हूँ महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और शायद महिलाओं से. ये एक बहुत खूबसूरत सी फाउंडेशन है जो महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रही है. अब ये किस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में और कैसे जान सकते हैं, बस एक प्यारे से गाने का इंतजार, छोटा सा गाना सुना रही हूँ, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ. Feel good, feel alive.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये जो कदम है आज बढ़ा रहे हैं हम रीत फाउंडेशन के साथ, और मानवता की जो कदम है ना ये महिलाओं के लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रीत फाउंडेशन स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। ऋतु जी, आपने कहा कि हम महिलाओं के लिए ढेर सारे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे दुर्गा प्रोजेक्ट है या फिर डिजिटल सहेली वाला प्रोजेक्ट है, या फिर कहना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो किस तरीके से अपने अधिकारों के, अपने राइट्स को वो प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये आप सिखाते हैं। सो किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स लेते हैं आप?
1: इसकी शुरुआत, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके आंसर से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। एज अ एडवोकेट मैंने 1 महीने की शादी से लेकर मैंने 36 साल की शादी तक के केसेस हैंडल किए हैं।
0: जी।
1: तो जहाँ 1 महीने की शादी थी, उस जो बिटियाँ थी जब मेरे से मिली और पेरेंट्स के साथ आई वो, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, I was very impressed, मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलकर कि 1 महीने के बाद कोई पेरेंट्स अपनी बिटिया को ये स्टैंड ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम, क्योंकि ये इस दौर से, इस डोमेस्टिक वायलेंस से और बहुत सारी हरासमेंट्स थी उनकी उसमें मैरिटल स्टेटस में, तो जब उन्होंने उनका साथ दिया पेरेंट्स ने, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। कि नहीं तो हमारे समाज में ये होता है कि नहीं अभी तो ये शुरुआत है, अरे ऐसे तो हर लड़की के साथ होता है। बहुत सारी मेरी ही क्लाइंट्स आकर हमें ये बोलती हैं कि मैम मेरी तो मम्मी ही मेरा साथ नहीं देते हैं, या मेरी बड़ी बहन मेरा साथ नहीं देती है, मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि अरे ये तो हर महिला के साथ होता है, हर औरत को इससे गुजरना पड़ता है, मुझे भी तुम्हारे पापा ने एक दो बार हाथ उठाया है तो क्या हो गया, और बड़ी बहन के ऊपर भी हाथ उठाया है। सब लड़कियों का ऐसे ही घर बनता है, देखना कुछ सालों के बाद सारी की सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ऐसा बोलकर इन सारी महिलाओं को, उसके दौरान उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती हैं, और वो जिंदगी इसी तरह से गुजरती जाती है। ऐसे ही जो मैं अपने केस के बारे में बता रही हूँ, जो 1 महीने की शादी के बाद जो लड़की आ गई वापस और उसने ये कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन, सर्टेन रीजन्स, और पेरेंट्स ने जब साथ दिया, तो जो उनके परिवार के लोग थे, और जैसे कि मामा, चाचा, ताया, बहुत सारे और रिश्तेदार, वो खड़े हो जाते हैं ये कहकर कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये आज आपकी लड़की वापस आ गई है और आप ये कर रहे हो, हमारी भी बेटियां वापस आ जाएंगी, आप इसको वापस भेजो। तो बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि मदर ने आकर ये मुझे बताया कि मैम जब मेरे खुद के सगे भाइयों ने मुझे ऐसा कहा, जो कि मामा थे लड़की के, कि तुम इनको वापस भेजो, हमें नहीं पता, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने रिश्ता मुझसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, आप मुझसे बात करनी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीते जी वहां मरने के लिए नहीं भेजूंगी।
0: एग्जैक्टली,
1: मैं नहीं भेजूंगी, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, आप लोगों को जो करना होगा करना। तो मेरे लिए एक बहुत, मैं हमेशा उस फैमिली को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में ये, और आज वो मेरी, वही मेरी क्लाइंट जो है वो सेकेंड टाइम शी इज मैरिड, एंड मैरिड टू अ नॉन मैरिड गाय। ही वाज अनमैरिड एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट मैरिड, तो इसकी सेकेंड मैरिज थी और उसकी फर्स्ट मैरिज थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और yes. मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी सुनकर कि चलो सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में। तो यही इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जब ये सारे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हम देखते थे बहुत अलग अलग तरीके के, कि कुछ में बहुत हिम्मत है और कुछ बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कुछ माँ बाप साथ छोड़ देते थे और उनकी बेटियों को बोलते थे कि नहीं अगर तुमने ये स्टेप उठाया या तुम एडवोकेट के पास गई तो हम तुमसे बात करनी छोड़ देंगे, वापस जाओ, और कई लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनको ये था कि अगर पेरेंट्स आएंगे वो केस के लिए फीस देंगे तभी मैं फीस दे पाऊंगी और मैं केस कर पाऊंगी। तो वहां पर भी हमारी रीत फाउंडेशन ने उनको बहुत साथ दिया। एक महिला थी जिनकी छोटी सी बिटिया, बहुत ही छोटी फीडिंग मदर थी वो, और बहुत ही छोटी 6-7 महीने की बेटी को फादर जबरदस्ती छीन के ले गया था। वो फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं थी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे वो कपल, और उन्होंने मेरे पास आए भेजा किसी की रेफरेंस से आए कि मैम ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया है, प्लीज़ इनकी बिटिया को वापस दिलवाया जाए। तो हमने बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला। मैं उसके बारे में आप बहुत डिटेल में बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस के अभी इस एग्जांपल के बाद। और उनका जब हमने केस डाला तो हमने जस्ट आपके सामने ये बात रखी कि छोटी सी बच्ची है और ये फीडिंग मदर हैं, और तो अगले ही दिन बिटिया को मतलब नोटिस, उनको जो दूसरी पार्टी थी नोटिस करवाया गया, बिटिया को बुलवाया गया और माँ को बिटिया हैंड ओवर की गई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जहाँ पर भी हम किसी की मदद कर पाए और जहाँ पर भी हमें लगा कि हाँ रीत फाउंडेशन के थ्रू हम ये वाली मदद किसी की कर सकते हैं, जहाँ वो फाइनेंशियली अपनी आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि वो किसी लॉयर को अफोर्ड कर सके, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रावधान हैं, ऐसे पैनल एडवोकेट्स हैं हमारे DLSA में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, वो वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है रीत फाउंडेशन के थ्रू, जहाँ पर हम इस तरह की महिलाओं को हम मदद दे सकें।
0: तो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, किस प्रकार के इनिशिएटिव्स और किस प्रकार की महिलाओं की मदद की जाती है रीत फाउंडेशन में, ये तो आपने जान लिया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जाते हैं, और अगर कोई भी ऐसी महिला है जो आती है और रीत फाउंडेशन को वो अगर कोशिश करती है एड्रेस करने की कि भाई मुझे मेरी मदद कर दीजिए, तो ऐसे में ये फाउंडेशन सबसे पहले आगे आती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा जी के साथ, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीथ फाउंडेशन की। वैसे तो अगर मैं इनके नाम के आगे जितनी भी उपलब्धियां इनके पास है वो गिनाने लगूंगी तो ये जो एक घंटा है यूं ही खत्म हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक ऐसी महिला है जो सशक्तिकरण फैलाने की कोशिश कर रही है। ऋतु जी, अब बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और उसमें एक बहुत अभिन्न हिस्सा निभाता है ये डोमेस्टिक वायलेंस। हर महिला कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। जिन महिलाओं की शादी हो गई है उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि घर में जो डेली बेसिस पर उन्हें ताने दिए जा रहे हैं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वी आर बॉर्न विद दिस। अच्छा, ताना वो इट्स ओके, ये तो हर महिला को शादी हुई है तो उसके साथ प्लस वन आपको दो चार ताने तो मिलेंगे ही। आज खाने में नमक अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, इतने साल बाद तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है, ये सब ताने हैं। और बिसाइड्स दैट, शायद महिलाओं के परिवार को लेकर जो बातें कही जाती हैं या फिर वहां से आने वाले लोगों के बारे में जो कहा जाता है, ये सब बड़ी कॉमन चीजें हैं घरों में। बट शायद पुरुषों को ये नहीं पता है कि अब महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो रीथ फाउंडेशन इसमें कैसे मदद करती है?
1: जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, उसमें एक इतना अच्छा ये एक्ट आया था 2005 में, ये स्पेशल एक्ट आया था। और मैं हमेशा जितनी भी मेरी क्लाइंट्स, मेरे सेशंस, मैं हमेशा इसमें ये उनको जागरूक करना चाहती हूँ। और मैं हर आपके सब लिसनर्स को भी ये बात कहूँगी कि ज़रूर इस एक्ट के बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है ये महिलाओं के लिए। क्योंकि और चीज़ें हैं, पहले से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले प्रावधान नहीं थे, प्रावधान पहले भी थे, मेंटेनेंस के हैं, इंटरिम रिलीफ के हैं, कस्टडी के हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा कॉम्पैक्ट एक्ट है और ऐसा वो है जहां आपको सबसे पहला सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 को मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ क्योंकि वो रेजिडेंस से करता है, मैं 18 के बारे में बताती हूँ। सेक्शन 18 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन बहुत अलग अलग तरीके की होती है। प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गनमैन घूमना शुरू हो जाएगा, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा एक प्रोटेक्शन कोर्ट से मिल रही है हमें, तो कोर्ट की प्रोटेक्शन तो यही होती है कि हाँ कोई पुलिसमैन हमारे साथ आ जाएगा और हमारे घर के बाहर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे वो मेरे वर्क प्लेस पे आ जाता है, मेरा हस्बैंड आकर वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करता है, सो आई वॉन्ट यूर ऑनर टू प्लीज रिस्ट्रेन हिम टू डू दैट, उसे रोका जाए इस चीज से। और मुझे ये प्रोटेक्शन चाहिए कि वो घर में बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा में मेरे साथ, यही जो आपने कहा तानेबाजी, गाली गलौज, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो मेरे साथ ना की जाए। पहली ये प्रोटेक्शन, दूसरी मेरे वर्क प्लेस पे ना करें, तीसरा कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनमें आकर बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस कन्वे किया जा रहा है कि मैं इस तरह की महिला हूँ, ये देखो ये ऐसे करती है, या किसी वजह से हम आज की डेट में सेपरेट रह रहे हैं, मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ क्योंकि घर में बहुत घरेलू हिंसा थी, तो इसको ये रिस्ट्रेन किया जाए, इसे रोका जाए कि ये मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे वर्क प्लेस, मेरे रिलेटिव्स, इनमें ऐसी कोई भी मेरे बारे में बात ना करें जहां पर मेरी इंसल्ट हो, जहां पर मेरा कहीं पर भी कुछ भी गलत हो मेरे साथ। अब ये हो गई प्रोटेक्शन की बात। उसके बाद आते हैं कि जो महिलाओं को रेजिडेंस का बहुत डर होता है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा डर ये होता है कि मैम अगर हमने ये केस डाला तो मैं रहूंगी कहाँ, मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे मैम, मैं इसी घर में रह के, सास ससुर हैं मेरे और मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हो रही है तो मैं कैसे इस

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रीत फाउंडेशन के साथ। एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा हमारे साथ बैठी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं। ऋतु जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ढेर सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, बहुत सारी महिलाओं को अब लगने लगा है कि वो तो इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी और उन्हें पता ही नहीं था उनके लिए इतनी सारी चीजें हैं, इतना प्रावधान भी है। अगर कोई रीत फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपसे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहता है, या इस फाउंडेशन के जरिए किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ चाहता है, सो वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, किन नंबर्स पर वो जा सकते हैं, और अगर उन्हें अपनी ही राइट्स के बारे में जानना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं?
1: रीत फाउंडेशन इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, एंड नहीं तो डायरेक्ट वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता सकती हूँ, 7042615753, सो दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी। और अगर उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरीके से अगर वॉलंटियरली जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी, और अगर किसी भी प्रकार की उन्हें मदद चाहिए तो कभी भी वो हमें फ्री, they are free to call us anytime।
0: So भाई, अगर महिलाओं को ये लग रहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार हो रहा है, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी डिवोर्स पर जाकर ही रुके। कई बार सिर्फ एक छोटी सी सलाह से भी आपका जीवन सुधर सकता है। सो इन सारी चीजों के लिए आपके पास है रीत फाउंडेशन, जो न सिर्फ आपको ये सारी सलाह देंगी लेकिन साथ के साथ आपके लिए मदद का हाथ भी बढ़ाने वाली है। तो भाई, रीत फाउंडेशन अलग अलग किस्म के काम करती हैं। डिजिटल सहेली के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। जिस प्रकार आपने कहा कि गुरुग्राम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पुलिस के साथ मिलकर अब वो डिजिटल सहेली लॉन्च किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड्स महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या नंबर है और क्या है ये डिजिटल सहेली?
1: जरूर, उसके बारे में मैं भी जरूर बताना चाहूंगी। रिसेंटली हमारे कमिश्नर साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने इसका लॉन्च किया है, डिजिटल सहेली। सो वुमेन्स डे पे उन्होंने एक तरह से सब महिलाओं को, गुरुग्राम की महिलाओं को उन्होंने ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से इसमें रिस्पांस आना शुरू हो गया है। ये डिजिटल सहेली एक ऐसी चैट बॉट है, ये चैट बॉट है व्हाट्सएप पे, एक नंबर है जिस नंबर को मैं बताना चाहूंगी, 5x9 81002। इस नंबर को कोई भी अगर महिला सेव करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है किसी भी प्रकार के उनके साथ कोई भी साइबर हरासमेंट हो रही है, जैसे कि कोई मॉफ्ड पिक्चर्स हैं उनकी, कोई उन्हें गलत पिक्चर्स उनकी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे, कई बार वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी ऐसी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाद में जाकर वो ब्लैकमेल होते हैं, तो उनके लिए भी अगर उन्हें कहीं पर भी लगता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं, हम पुलिस के पास जाएं, हम किसको बताएं, तो वो डायरेक्टली इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके और वो रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि ये ऐसे में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मेरी गलत पिक्चर्स वहाँ पर डाल दी गई हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आई हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारी पिक्चर्स डालकर गलत साइट्स पे और हमारे नंबर्स डाल दिए जाते हैं, आउट ऑफ रिवेंज भी ऐसा लोग करते हैं। तो अगर ऐसा भी उनके साथ हो रहा है तो गुरुग्राम पुलिस ने ये फैसिलिटी उनको दी है और मल्टीपल अकाउंट्स खोल लेते हैं, गलत अकाउंट्स खोल के उनकी तरफ से चैट करते हैं और जानबूझ के उनके उनको डिमीन करने का एक तरीका है उनका लिए। तो अगर ऐसा उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो वहाँ पर इस चैटबॉट में जैसे ही इन्फॉर्म करेंगी तो विद इन 24 आवर्स वो मटीरियल डिलीट कर दिया जाएगा, विद इन 24 आवर्स, ये प्रॉमिस है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है कि सब तरफ से, ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स भी आ रही हैं और बाहर से भी एक दो इंटरनेशनल लोगों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, तो आई रियली वॉन्ट कि सब लिसनर्स इसको ध्यान से सुने, ये नंबर सेव करें 5 times 9 8 1 0 0 2। और अगर कुछ किसी भी महिला के साथ, उनके सर्कल में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ज़रूर उन्हें बताएं और ये मदद करें।
0: सो भाई देखिए, बहुत ज़रूरी है महिलाओं को, कि हम हमेशा ये कहते हैं, अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर डालते हैं, संभल कर डालिए, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स पर जाइए, उसे लॉक करिए, क्योंकि कहीं कोई इसका मिसयूज़ ना करे। सो अगर उसके मिसयूज़ से बचना चाहते हैं, तो आपके पास डिजिटल सहेली है, खुदा ना खास्ता कोई कॉन्शियसली आपकी पिक्चर्स को चुरा लेता है, उन्हें मॉर्फ करता है, उन्हें किसी साइट पर डाल देता है या अदरवाइज कहीं इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की जा सकती हैं और डिजिटल सहेली की सहायता से आप इसे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने एक लंबे सी डगर तक गए हैं रीत फाउंडेशन के साथ। रीत फाउंडेशन महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रही है, ना सिर्फ उन्हें उनके राइट्स के बारे में बता रही है, लेकिन साथ के साथ देखा जाए तो रीत फाउंडेशन ढेर सारा काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। रितु जी आज हमारे साथ हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए। मुझे बताइए, जाते जाते आप उन सभी को क्या खास मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लव इज नथिंग व्हेन गिवन टू अ रॉन्ग पर्सन, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ लव इज समटाइम इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट to walk away.
0: Yes.
1: So if you feel that you are being harassed and you are not being respected over there, तो देन इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की असलियत सामने आने के बावजूद भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसे प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो प्यार नहीं है। और उस दौरान, इस पूरी जर्नी में हम उस इंसान को नहीं खो रहे, हम अपने आप को खो रहे हैं। तो प्लीज़ ये इस गलत फहमी में ना रहें, जो बच्चे या जो भी महिलाएं हैं, कि ये शायद प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। और इस उसमें से निकलें और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव उसमें रहें, एक पीसफुल लाइफ जिएं, आवाज़ उठाएँ और जिसकी भी मदद कर सकें मदद करें।
0: बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, उन्होंने ना अपना सरनेम बना लिया है सैक्रिफाइस, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बना है, बट आइडली आपका जीवन जीने के लिए बना है। आपको भी जिंदगी के उतने ही साल मिले हैं जितने पुरुषों को मिले हैं, सो जरूरी नहीं है कि सारा सैक्रिफाइस आप ही करें। आप अपने जीवन को खुशी से जिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो अधिकार आपके लिए न सिर्फ समाज ने, सरकार ने बनाए हैं, कानून ने बनाए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका जीवन खूबसूरती से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं कोई उतार चढ़ाव आ रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो आपके पास बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आपको थामने के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड ऐसा हाथ है रीत फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हमने ढेर सारी बातें सुनी, लेकिन समय की थोड़ी सी किल्लत है भाई, एक ही घंटे का समय होता है और उसमें आपको गाने सुनाते हुए ये पूरी रीत फाउंडेशन की कहानी सुनानी थी। सो अगर आप रीत फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो जाइए सोशल मीडिया के, इतने सारे हैंडल्स हैं, कॉन्टैक्ट करिए, जाइए, जानिए वो किस प्रकार के काम करते हैं और जुड़ जाइए एडवोकेट रितु कपूर शर्मा के साथ। तहे दिल से धन्यवाद रितु जी, आज आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाला, लेकिन इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे सभी लिसनर्स को दी है। आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज भी को आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनका जीवन कितना वैल्यूएबल है।
1: थैंक यू सो मच भावना जी यहाँ हमें बुलाने के लिए, और आई होप कि इस प्रोग्राम के जरिए हम और बहुत सारी महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल,
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छम छम, एक गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। सैटरडे को 5 बजते ही आरजे भावना आपके पास आ जाती है और आपके पास लेकर आती है सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी कहानी। और आज की कहानी है मोनिका मनचंदा जी की। देखिए भाई, आपको पता है एक लंबे समय से मैं इस कार्यक्रम को लेकर आ रही हूँ। सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूँ और खास तौर पर महिलाओं की, तो वो मेरे दिल के बड़ी करीब है। और आज मोनिका मनचंदा जी से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं उनके जीवन के बारे में। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक बॉडी फैसिलिटेटर हैं, इसी के साथ साथ साउंड हीलर हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ आइस बाथ गाइड भी हैं। आइस बाथ गाइड आजकल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ है, बट मैंने नोटिस किया है कि इससे भी आप अपने न्यूरो सिस्टम को रिचार्ज कर सकते हैं। सो आइस में जब आप अंदर जाते हैं और ठंडे ठंडे पानी से आपकी पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है ये बताएंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना जी।
0: मोनिका जी, पहला सवाल, इस कार्यक्रम का पहला सवाल हमेशा एक स्टैंडर्ड सवाल रहा है, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये हर महिला के लिए अलग होती है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हाउ डू यू परसीव एम्पावरमेंट, आपको क्या लगता है व्हाट इज एम्पावरमेंट?
1: देखिए, मेरे लिए एम्पावरमेंट वो है जहाँ पर वुमेन अपने बारे में ऐसी डिसीजंस ले सकती हैं जहाँ पे उन्हें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने लिए कुछ करती हैं। अपने लिए थोड़ा सा ही, चाहे छोटी से छोटी डिसीजन हो, चाहे घर पे अपनी पसंद की चीज बनाना हो या अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो उन्हें लगता है कि यस, ये सिर्फ मेरा डिसीजन है और इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, और ये मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट।
0: वाकई मतलब अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो अपने जीवन को एक बार अपने तरीके से जीने का मौका तो पाए। क्योंकि होता क्या है कि आइडियली जब एक महिला पैदा होती है, महिला तो नहीं, एक बच्ची पैदा होती है, और उसके महिला बनने तक या फिर उसके मरने तक उसके पूरे जीवन के डिसीजंस हैं ना, वो कहीं कोई और ले रहा होता है। कभी उनके पापा ले रहे होते हैं, कभी उसके भाई ले रहा होता है, कभी उसके पति ले रहे होते हैं, कभी उसके ससुर ले रहे होते हैं। सो उन, और फिर एक जिंदगी का पड़ाव तब आता है जब शायद कोई उनका बेटा या बेटी उनके जिंदगी के डिसीजन ले रहे होते हैं। बट वेन इज द टाइम ऑफ वुमेन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने जिंदगी के डिसीजन ले। सो एम्पावरमेंट वहीं शुरू हो जाती है जहां महिला अपने डिसीजन खुद ले पाए। सो जरूरी ये है कि महिलाओं को मौका मिले कि वो अपने जीवन को अपने नजरिए से जी जरूर पाए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। आज के एपिसोड में मोनिका जी हमारे साथ हैं, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं। भाई इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं, बट मुझे ये कहना चाहिए कि इन ऑल ये एक सशक्त महिला हैं। मोनिका जी, चैलेंजेस की बात करते हैं। महिला, और मैं हमेशा ये कहती हूँ, उनका सरनेम है चैलेंज, उसके बाद जो ओरिजिनल आपको सरनेम मिलता है ना, वो थर्ड लेवल पर आता है, बट पहले लेवल पर चैलेंज आते हैं। सो बचपन से पैदा होने से एक चैलेंज है। पहले तो कन्या भ्रूण हत्या इतनी होती थी कि पैदा होना चैलेंज था, फिर धीरे धीरे अलग अलग चैलेंजेस। सो सदी बदली, इरा बदले और चैलेंजेस भी बदले। अगर मैं आज के जमाने की बात करूँ, सो क्या लगता है किस प्रकार के चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं?
1: देखिए, आज की बात करूँ ना तो आज भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पैटर्न्स चलते आ रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने बारे में सोच ही नहीं रही हैं।
0: एक्चुअली
1: आज भी उनके लिए उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके आसपास के लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। इम्प्रूवमेंट है, जैसे जैसे सदी बदल रही है महिलाएं भी और एम्पावर्ड हो रही हैं, बट अगर मैं बात करूं 80% अभी भी महिलाएं वही हैं जो कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर हो, चाहे अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बट अगर मैं अगर हम बात करते हैं ना कि आज ये डिसीजन मुझे अपने लिए लेना है, तो आपके माइंड में 10 चीज़ें और आ जाती है कि मेरा ये कौन सोचेगा, मेरे हस्बैंड कैसे सोचेंगे, या बच्चों के लिए क्या कैसे करेंगे, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ वो सबसे एंड का क्वेश्चन आता हूँ।
0: यस,
1: सो इसके लिए आज भी महिलाएं अपने बारे में कम और आसपास अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रही हैं।
0: वाकई, सो अगर मैं बात करूँ चैलेंज की, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके पीछे देखिए बहुत सारी चीजें छुपी हैं। अगर आप देखें कि आज आपने एक डिसीजन लिया अपने लिए, अपने बारे में सोचते हुए कि मुझे एक्स वाई जेड करना है, बट आप वो एक्स वाई जेड करने के लिए सबसे पहले उसकी में जरूरत होगी पैसों की, वो पैसे कहाँ से आएंगे, सो आपने उन पैसों को कहाँ से कॉम्प्रोमाइज करके अपनी इच्छा के लिए लगाया, और फिर आपने ये जो फीलिंग आपके साथ आ जाती है कि अगर मैं ये पैसा, ये समय या फिर ये फैसिलिटी अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके एवेज में कोई और है जिसको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो मेरे ही परिवार का सदस्य है या मेरा ही बच्चा है या मेरे ही पति हैं या मेरे ही भाई बहन हैं, तो ये जो गिल्ट है ना, ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा सताता है। मान लीजिए कि एक महिला है जो कि घर से कहीं जाना चाहती है, और अगर उसके पास एक्सेस टू कार है या एक्सेस टू व्हीकल है, तो कैन यू बिलीव कि सबसे पहले वो ये सोचेगी कि आज अगर मैं अपने लिए इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी ज़रूरत पीछे घर वालों को होगी। सो शी वुड बी द लास्ट पर्सन टू थिंक कि कोई भी फैसिलिटी को मैं सबसे पहले अवेल करूँ देन माई फैमिली मेम्बर्स। ये भी एक चैलेंज है कि महिलाएं अपने आप को कब तक यूं ही प्रायोरिटी लिस्ट में कम रखती रहेंगी। सो कब आएगा वो समय जब महिलाएं अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगी, बताइएगा मुझे, जरूर बताइएगा मैसेज करके 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत सी मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका जी, अब एक सवाल आपके जीवन से। आप एक सशक्त महिला हैं, बट आप सशक्त तब हैं जब आपने कुछ सशक्तिकरण के डिसीजंस लिए थे। अगर मैं आपके जीवन के कुछ ऐसे डिसीजंस के बारे में जानना चाहूं जो आपने लिए और आज आप रिग्रेट नहीं करती हैं, एंड टुडे यू लुक बैक एंड यू सी एंड यू फील व्हाट एन एम्पावरिंग डिसीजन, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया, अदरवाइज आज मैं रिग्रेट कर रही होती।
1: भावना जी, आज अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूं तो मुझे सबसे बढ़िया डिसीजन अपना लगता है कि मेरी शादी के बाद, डॉटर होने के बाद, मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है।
0: वाओ,
1: अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई का हमेशा से शौक था, लर्न करने का शौक था। बट शादी होने के बाद कई बार होता है ना कि अब क्या करना है। बट जब मेरी डॉटर पैदा हुई, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे आगे और पढ़ना है। और मैंने अपना कॉलेज दोबारा किया, अपनी पढ़ाई दोबारा की, अपना प्रोफेशन को और बेटर बनाया। और जो आज मैं देखती हूँ, अपनी लाइफ को देखती हूँ और अपने बच्चे को देखती हूँ, जब मेरी डॉटर मुझे कहती है मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू, उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था। एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ये डिसीजन को लेके मेरी डॉटर में भी वही हिम्मत आएगी कि वो भी रुकेगी नहीं। वो किसी भी एज में, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं होती जब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे एम्पावरिंग डिसीजन था, जहाँ पे मैंने अपने साथ साथ अपनी डॉटर को या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी एम्पावर किया है कि आप कभी भी किसी भी मोड़ पे, किसी भी पड़ाव में अपनी लाइफ के स्टार्ट कर सकते हैं।
0: ओह स्वीट। मोनिका जी, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि बेटी होने के बावजूद घर पर छोटा बच्चा है, आप अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे, आप वापस कॉलेज ज्वाइन करेंगी, क्या इस डिसीजन में आपको किसी ने सपोर्ट किया?
1: देखिए, इस चीज में मैं जरूर ये चीज बोलूंगी कि कुछ चैलेंजेस थे, क्योंकि डॉटर बहुत छोटी थी और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को ये देखना था कि मैं घर पे किस तरीके से ये बात भी लेकर आऊं कि मेरी डॉटर हुई है और मुझे कॉलेज करना है।
0: yes.
1: तो बहुत पेशेंस के, बहुत सोचने के बाद मैंने जब ये एक ऑफर, एक प्रपोजल रखा अपनी फैमिली के आगे, तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और अगर मैं बात करूं, हम महिलाओं की बात करते हैं ना, कि हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि, उन्हें मालूम था कि मुझे पढ़ने का शौक है। एंड शी वॉज द वन जो उन्होंने बोला कि आप जाओ और पढ़ो। और डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके सपोर्ट से ही मैं आगे कर पाई। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर महिलाएं भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो भी आप में बहुत हिम्मत आ जाती है और आप लाइफ में कुछ कर पाते हैं।
0: देखिए, ये सवाल ना अक्सर मैं महिलाओं से पूछती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी होंगी, बहुत सारी बची हुई महिलाएं अपने जीवन के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी। वी का मतलब ही यही है, जब महिलाएं एक साथ आए और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम सही मायने में सशक्तिकरण को पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं, साउंड हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और एक बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं। चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं की और साथ के साथ उनकी एक आदत की, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक वेलनेस कोच हैं। तो मोनिका जी से हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं अक्सर इस सशक्तिकरण की जर्नी में अपनी अच्छी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती हैं। सो उस अच्छी हेल्थ के लिए किस प्रकार से वो अपने आप को तैयार कर सकती हैं और कैसे इम्बाइब कर सकती हैं एक अच्छी सेहत को।
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में सिर्फ हमारा खाना ही नहीं आता है, हेल्थ में हमारे इमोशंस भी आते हैं। अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले महिलाओं को ये देखना चाहिए कि वो कुछ टाइम, चाहे आधा घंटा ही अपने लिए रोज की मरा में निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो जो भी वो चाहती हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कुछ भी जो उनका खुद का मन करे, वो उन्हें जरूर अपनाना चाहिए ताकि उनकी इमोशनल हेल्थ जो रहती है, फिजिकल हेल्थ तो देखिए हमारी हम खाने के साथ ठीक कर सकते हैं, बट इमोशनल हेल्थ जो होती है उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को और बाकी लोगों को भी खुश नहीं कर पाते हैं।
0: वाकई ये वाकई अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं को अच्छी सेहत के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है और उसका एकमात्र कारण है कि अगर महिला खुश होगी तो वो अपने पूरे परिवार को खुश रख सकती है। अब नॉट दैट कि एक पुरुष खुश नहीं होगा तो वो अपने पूरे परिवार को बिना खुश हुए भी खुश रख सकता है, बट परेशानी ये है कि महिला केयर ज्यादा करती है, महिला के पास जिम्मेदारियां ज्यादा है और इसीलिए एक महिला का गुड हेल्थ या फिर कहना चाहिए वेलबींग जो है वो शायद उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां मैं बात कर रही हूँ प्रायोरिटी की, तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं की प्रायोरिटी उनकी अच्छी सेहत कभी भी नहीं होती है। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि घर का जो काम है ना वो सुचारू रूप से हो जाए, उसके बाद हम अपने बारे में सोच लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो एक यस लिखकर भेज दीजिए मुझे 8010781078 पर। और इसे आप कैसे बदल सकते हैं, इसके टिप्स बस कुछ ही पलों में लेकर आ रही हूँ। मोनिका जी बताने वाली है कि आप अपने आप को अपनी प्रायोरिटी कैसे बना सकती हैं। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम। और हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ के साथ ब्रेथ वर्क फैसिलिटेटर हैं, आइस बाथ गाइड भी हैं। सो आजकल अलग अलग पद्धतियों से आप अपने लिए एक अच्छी सेहत और वेलबींग क्रिएट कर सकते हैं। मोनिका जी, अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए कुछ टिप्स की, सो क्या कहना चाहेंगी, व्हाट शुड दे डू इन देयर लाइफ? क्योंकि ना एक बड़ा मुझे लगता है एक सबसे अहम सवाल जो है, लोग आजकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे या किसी हीलर के पास जाएंगे तो पता नहीं वो हमें क्या एडवाइस करेंगे जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर नहीं पाएंगे। सो क्या कुछ टिप्स हैं जो आप यहाँ आज इस प्रोग्राम में देना चाहेंगे?
1: देखिए भावना जी, सबसे पहले तो मैं ये टिप देना चाहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको घर का खाना, नॉर्मल खाना दे सकते हैं, आपके प्लान को, आपके खाने पीने को आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने लिए, जैसे महिलाओं के माइंड में होता है ना, जैसे आपने बोला कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस अपने घर वालों को देती है, तो वहाँ पे ही जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, आप खाने की बात करते हैं, आप हेल्थ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये काम रहता है कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग ही आपका खाना पीना बने, जहाँ पे आप पे भी वो प्रेशर ना आए और वो आपके इमोशंस भी खराब ना कर दे कि आप खाना बना रहे हो और आपको ये हो रहा है ओहो मैं अपने लिए क्यों बना रही हूँ। तो ये जो गिल्ट आता है ना, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब आप जाते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि आपको ऐसी कोई चीज़ दे दें जो कि आप कर ही ना पाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप अपने हीलर्स के पास जाएं। कई बार इमोशनली हम ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, कई बार हमारे इमोशंस और हमारा खान पान बहुत कनेक्टेड होता है। कहते हैं ना कि हम लोग कभी खुश होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम उदास होते हैं तो भी हम खाना खाते हैं। तो जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारा खाना, हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पर जाएंगे, आप किसी हीलर पे जाएंगे या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और आपकी चीज़ें जो भी आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं उस पे और एक ऐड ऑन हो जाएगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, बट आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा और वहाँ पे ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी फैमिली की हेल्थ भी और बेहतर होने लग जाएगी।
0: मैं पर्सनली सभी को एडवाइस करूंगी कि एक बार जिंदगी में अपनी डाइट बनवाने के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जरूर जाइए। एक सबसे अच्छी चीज जरूर होगी और वो महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके रोजमर्रा का मेन्यू जो है ना काफी आसान हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि इतनी सारी चीज़ों में से आपको चूज क्या करना है, नहीं तो भाई अगर देखा जाए तो इतनी सब्जियां, इतनी दालें, इतने सारे तरीके के खाने, और आजकल के ज़माने में तो हम कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जी रहे हैं जहां हमारे पास हर राज्य का खाना है, तो जब इतना इलेबोरेट कुकिंग होती है ना तो महिलाओं पर बड़ा प्रेशर होता है। आज इडली बना लीजिए तो कल आपने पोहा बनाना है, परसों आप सोच रहे हैं कि आप राजमा चावल बनाएं तो कल आप कढ़ी चावल बनाएंगे। सो एटलीस्ट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से आपकी कुछ लिस्ट तो कम हो जाएगी और आपको पता लगेगा जो आप चूज कर रहे हैं वो कितना हेल्दी है, कितना न्यूट्रिशियस है, और फिर आप बड़े अच्छे से अपनी आने वाली जेनरेशन को, अपने परिवार के सदस्यों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खिला पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातें की मोनिका जी से। इनफैक्ट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस ये खुद भी फेस करती हैं। मतलब अगर हमें ऐसा लगता है ना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं उनकी जिंदगी तो बहुत ही आसान हो जाती होगी, सो ऐसा नहीं है। पर लाइफ के इन उतार चढ़ाव से निकलकर इन्होंने जीवन में एम्पावरमेंट को हमेशा चुना। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे आप?
1: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और शायद कुछ बातें ऐसी करें जिससे इंस्पायर होके बाकी महिलाएं भी थोड़ी एम्पावर्ड रहें। तो मेरी सिर्फ टिप यही है कि अपने लिए कुछ टाइम निकालें पूरे दिन में, चाहे आप 10 मिनट ही निकाल रहे हैं अपने लिए, बट अपने लिए ज़रूर निकालें। और अपनी हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे तो आप बाकी सबको भी खुश रख सकते हैं।
0: सो इमेजिन करिए कि पूरे दिन में amongst all the 24 hours that you get, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना अपने लिए देने के लिए पर्सनल 10 मिनट भी नहीं होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप खाना खा रहे हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है, बट ऑफकोर्स आप सो रहे हैं तो पर्सनल टाइम है, या आप अपने ऑफिस में हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है। ये सारा समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो समय जब आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो समय जब आपको पता है कि इस समय में मुझे कुछ नहीं करना है और वो आप अपने लिए फोकस करते हुए दे रहे हैं, उस समय को हम रियल मी टाइम कहते हैं। और उस मी टाइम में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि महिलाओं को ना अपने इमोशंस को चूज करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में ना बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। अ गुड डे, अ बैड डे, अ गुड हेयर डे, अ गुड बैड हेयर डे, प्रॉबेबली अ गुड ड्रेस डे और अ बैड ड्रेस डे, सो मेनी थिंग्स। और कई कई बार तो बहुत ही बुरा खाना बनता है, सो उसकी भी आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। सो आप देखिए, जब आप एक परफेक्ट जीवन जीना चाहती हैं औरों के लिए, अपने लिए, और वो पॉसिबल नहीं होता है, सो ऐसे में अगर आपके पास समय मिलता है अपने लिए, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और उन 10, 15, 20 या आधे घंटे में असेस करिए कि आप अगले दिन को और भी खूबसूरत कैसे बना सकती हैं। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। एक गाना सुनाते हुए आपसे इजाजत ले रही हूँ, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं आने वाली हूँ आपके पास लेकर एक और खूबसूरत सी सशक्तिकरण की कहानी। लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: मार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम साथी। आप सभी को पता है साथी खास कार्यक्रम जिसमें मैं आप ही की मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर आती हूँ, और इसके लिए हर बार मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ, और उस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ होती है मेरी साथी एक्सपर्ट। और आज की मेरी साथी और एक्सपर्ट है डॉक्टर खुशबू। तो करेंगे हम इनसे ढेर सारी बात, लेकिन आज का टॉपिक बता देती हूँ भाई। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो नौकरी करने जाते हैं, और जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आप भागते हुए जाते हैं क्योंकि आपको अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाता है कि आपके आने का समय है और जाने का समय बिल्कुल भी नहीं है। काम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आपको जाना नहीं है, और यहाँ पर कई बार आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम इस डिबेट की बात करें जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि आइडियली सही मायने में मेंटल हेल्थ के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आपके कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, तो आज इस पर बात कर लेते हैं कि एक इंसान को कितनी देर तक बांध कर रखना चाहिए हर रोज के हिसाब से, और उन 24 घंटों में से वो कितना समय अपने काम को दे और बाकी कितना समय वो अपनी जिंदगी को दे, जिससे कि वो ना सिर्फ मेंटली फिट रहे लेकिन वो हेल्दी भी रहे। सो आज इस पर ढेर सारी बात करेंगे, और उसके लिए करेंगे स्वागत डॉक्टर खुशबू का रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
3: थैंक यू सो मच।
2: सबसे पहला सवाल कि हम ये जो वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं ना, इन्हें डिफाइन कैसे किया जाए?
3: देखिए, आपने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि देयर इज नो सर्टेन डेफिनेशन फॉर वर्किंग आवर्स, राइट? आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे आजकल जो देखो वो एक अलग आवर्स का वो बता रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वर्किंग आवर्स की कोई लिमिटेशन होनी भी नहीं चाहिए
2: जी।
3: क्योंकि आप किसी को ऐसे बांध के, एक ह्यूमन बींग को बांध के आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते
2: जी।
3: ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए, आपको वो एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी लेवल के, मैनेजरियल लेवल, मिडिल लेवल, वो विलिंगली उस एनवायरमेंट को चूज़ करें और आके वहाँ पे काम करना चाहें
2: जी।
3: सबसे पहले हमें जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है इससे चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स एट द एंड किस एम्प्लॉयज़ को किस हद तक बर्नआउट वाले फेज में ले जाती है, वी डोंट नो
2: जी।
3: तो टाइमिंग, जैसे कि, और टाइमिंग्स के बारे में बात कही जाए तो वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है
2: जी।
3: बहुत सारी कंट्रीज हैं जो 4-day वर्किंग में बिलीव करती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी छोटे शहर हैं जो मेट्रो सिटीज में कन्वर्ट नहीं हुए हैं अभी, वो 6 days का प्रोविजन रखते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपने बिल्कुल सही कहा था कि लोगों के आने का समय तो तय है, लेकिन इंसान एम्प्लॉय जब अपने जाने के समय को चुनता है या जाता है तो जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनको लगता है कि अभी क्यों जा रहा है, इतनी जल्दी कैसे जा सकता है।
2: yes.
3: तो ये कोई पैरामीटर नहीं है। इससे आप इंसान को माना कि उस इंसान की जरूरत है काम करना, पैसे कमाना अपने जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आप उसको सिर्फ बिठा सकते हो। जैसे बोला जाता है ना कि आप उसकी आत्मा को तो वहां रोक सकते हो, शरीर को बिठा सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा, मन, दिमाग, वो आपको काम करके नहीं देगा। तो यस, मतलब कोई भी टाइम्स डिफाइन करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन आप उसके साथ ये जरूर डिफाइन करें कि आपने जो बंदे को टास्क दिया है वो टास्क आपको फुलफिल होके मिल रहा है गिवन टाइम पीरियड और नहीं, है ना। तो इसलिए टाइम 8 घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके, बहुत सारे लोग हैं जो 8-9 घंटे में भी सुबह से एक फाइल रिजोल्व नहीं कर पाते
2: जी।
3: और बहुत सारे लोग हैं जो 2 घंटे में भी अपनी 10 फाइलों को रिजोल्व कर लेते हैं। तो इंसान की सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है, एक तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना बहुत जरूरी है
2: जी।
3: उसका एक्सपर्ट एरिया जानना बहुत जरूरी है, और कभी कभी टाइमली आपको ये जानना भी जरूरी है कि वो किस फेज ऑफ माइंड में जी रहा है
2: जी।
3: उस हिसाब से आपको इन सारी चीजों को प्लान करना चाहिए, जो कि अभी भारत में तो मुझे बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को, आधे ज्यादा लोगों को यही कॉन्सेप्ट नहीं पता कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एक्ट।
2: यस, और इनफैक्ट जब मैं वर्किंग आवर्स की बात कर रही हूँ तो जब आप किसी काम को पैशनेटली कर रहे होते हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो आप देखिए कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है। कई बार हम सुबह सुबह कोई चीज करने बैठते हैं और उससे करने में इतने मगन हो जाते हैं कि जब हम उसको करके खत्म करके उठते हैं वी रियलाइज शाम हो गई है। अब ऐसे में अगर आप कहें कि कोई इंसान सुबह से शाम तक, यानी अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे शुरू कर दे और शाम के 8 बजे तक काम करता रहे, तो 12 घंटे आप किसी से प्रैक्टिकली काम नहीं करवा सकते हैं। तो हम फिजिकल लेबर की बात करें या मेंटल लेबर की बात करें, दोनों ही कंडीशन में ये डिफाइन करना जरूरी है कि हम इस इंसान से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है सही तरीका हो सकता है क्वांटम ऑफ वर्क, कि कितना काम एक इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस क्वांटम ऑफ वर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं कि अमूमन एक घंटे में या दो घंटे में या चार घंटे में एक इंसान इतना काम कर सकता है एवरेज निकालकर, और उसके बाद एक काम डिफाइन कर दीजिए। वो इंसान चाहे उसे दो घंटे में करे, चार में करे, दस में करे, तो एटलीस्ट उसे ये तो पता होगा ना कि रोज सुबह मुझे जाके इतना काम करना है। और अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस काम को कितने जल्दी करता है, कितनी क्वालिटी के साथ करता है और कितनी आसानी से करता है। और अगर वो समय ले रहा है तो फिर उसे ये पता होगा कि मैं ही काम को धीरे कर रहा हूँ। सो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर खुशबू आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों का कोई अंत नहीं है। मतलब आप देखिए, कई बार जो लेबरर्स होते हैं जो कि फिजिकल लेबर भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक जगह जब अपनी फैक्ट्री में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो उनके साथ परेशानी ये है कि काम बढ़ गया है या फिर क्वांटम ऑफ वर्क ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा। तब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बात का ख्याल ही नहीं रखती है कि भाई वर्किंग आवर्स भी डिफाइन होने चाहिए। सो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई इसको कैसे बैलेंस किया जाए और खुद एक वर्कर या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसे मैनेज करे।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो है कि हमें 8 घंटे काम करना है, लेकिन आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सोचती कि जब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर 20 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं प्रेजेंटली उसमें, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कभी ये नहीं लगता कि ये 10 ओवरलोडेड हैं, है ना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को नहीं सोचती कि 20 को हमें हायर करना है, वो सोचती है कि हम 20 के पैसों में हम 10 लोगों से, मतलब 20 को ना देना पड़े, हम 10 लोगों के पैसों में 20 का काम करवा रहे हैं, है ना। तो एक तो आप वही मेंटल हेल्थ का सामने वाले को बिल्कुल ले डूबते हैं उसकी मेंटल हेल्थ को, दूसरा आपको ये नहीं लगता, क्योंकि आए दिन मैं तो ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज ऑब्जर्व करती हूँ कि मॉर्निंग में तो इंसान आ जाता है 8 बजे 9 बजे 10 बजे, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 3 बजाना 4 बजाना या 6 बजाना चालू करती हैं, तो उस टाइम में हायर अथॉरिटीज के पास इतने ज्यादा बिग टास्क आ जाते हैं कि वो एकदम से कि अभी ये तो अभी फिनिश करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय बेचारा करना है, नौकरी है, परिवार चलाना है, लेकिन आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ठीक है अगर आज मैंने इसे ये काम कराया तो इसके बदले इसको मैं या तो 2 घंटे का मॉनिटरी गेन दूं, या तो मैं इसको कंपनसेटरी ऑफ दूं, या फिर इसके कोई जो भी हम अगर अच्छी है किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जो आपके ट्रिप्स होते हैं या अनदर प्रेजेस या अप्रिसिएशन होते हैं वो इस बेसिस पे किए जाए। नहीं तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि ये तो आपका धर्म कर्म और सब कुछ है, आप इस फैमिली का हिस्सा है, तब आप एक फैमिली बना देते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन कहीं ना कहीं आपने तो बोल दिया 2 अच्छे वर्ड्स, लेकिन आपके जो 2 अच्छे वर्ड्स हैं वो पहले ही एम्प्लॉय के मेंटल पीस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं
2: जी।
3: तो ये बात बिल्कुल सही है, और आधी से ज्यादा क्या 80% ऑर्गेनाइजेशन इसी फंडे पे चल रही हैं। इवन आजकल तो आप देखिए लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और वो सरकारी नौकरी जो होती है वो 1 या 2 से ज्यादा निकलती नहीं है पोस्ट, है ना। और तो जब ऑब्वियसली जब हमारी सरकारी नौकरी, एक व्यक्ति के सरकारी नौकरी के पैसों में जब हम 3 लोगों से काम ले सकते हैं, तो फिर अभी वो चीज़ तो है ही नहीं इसके। इसलिए हमें ये करना है इसमें कि सबसे पहले तो जैसे कि पहले ही मैम ने बोला कि क्वांटम ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली कि मुझे नहीं पता मैं 8 घंटे में एक ही फाइल चला पाती हूँ और सामने वाला बंदा 2 घंटे में अपनी फाइल्स को करके जाता है। तो आजकल क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस बंदे ने 2 घंटे में फाइल कर ली उसी को और 10 फाइल दे देते हैं, क्योंकि अब ये करेगा क्या बेचारा 4 बजे तक बैठना है इसे। बट तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, और एक ना एक दिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करेगा और टॉर्चर होने के लिए वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो स्पेशली इन प्राइवेट सेटअप आपको रोजाना की जिंदगी में देखने को मिल जाएगा। इंसान एक से परेशान होता है, दूसरे में जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि दूसरे में वही टॉर्चर चल रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई HR डिपार्टमेंट नाम की चीज है उस जगह पे, तो उनको यही आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें वर्क रिलेटेड टास्क देने चाहिए रादर देन द टाइमिंग रिलेटेड टास्क, है ना। अगर मुझे पता है कि 8 घंटे में मुझे एक ही काम करना है, तो मैं तो 8 घंटे में क्या उसे आराम से पूरे दिन में करूंगी। देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि दिस इज द 1 टास्क एंड यू हैव टू डू इट विद इन 1 आवर और 2 आवर, देन दे कैन डू इट अकॉर्डिंगली। और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट इंक्रीज होगा और एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा, और उसके साथ यू कैन फोकस ऑन द एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग साइमल्टेनियसली।
2: भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के जब हेड्स ये कह देते हैं कि 90 घंटे काम कर लीजिए, या फिर वो ये कहते हैं संडे की छुट्टी देने की जरूरत क्या है, इंसान रोज आए और रोज काम करे। सो क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिंदगी की डेफिनेशन क्या है, क्या जिंदगी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि आप अपने घर को चलाने के लिए जहां नौकरी कर रहे हैं और जहां से आप वेतन पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पूरे हफ्ते के सातों दिन रेस्ट ही नहीं करेंगे, आप कोई और रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप रिलैक्स नहीं करेंगे, पर आप सिर्फ यही काम करते रहेंगे। सोचने वाली बात है। पर अब डॉक्टर खुशबू, इस पे एक अहम सवाल उठता है, इस प्रकार की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां 6 दिन तो काम किया जाता ही है, आप मिनिमम 8.5 घंटे काम करते हैं, सो ऐसे में आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार हैं या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इसलिए घट रही है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वही काम आप डेली कर रहे हैं और आप एक लंबे समय के लिए कर रहे हैं। सो ऐसे में आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती है। और आज के जमाने में जहां हम डेफिनेटली कह रहे हैं प्राइवेट जॉब्स हैं, प्राइवेट का मतलब यही है कि वहां गारंटी कुछ नहीं है, अगले ही दिन आपको सैक कर दिया जाए या फिर ये कहा जाए कि ये ज्यादा आवाज उठाते हैं या फिर ये ज्यादा कानून बता रहे हैं, सो कोई ना कोई कारण बताकर आपको वहां से हटा दिया जाता है। सो इस डर के कारण बहुत सारे एम्प्लॉइज शायद कुछ कह नहीं पाते या फिर वो कभी इस बात को उठा नहीं पाते, और जब तक एक संगठन नहीं बनता है या फिर एक कमिटी या ग्रुप नहीं बन पाता है तब तक लोग आगे भी नहीं आ पाते। तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बचाया जाए जो इम्पैक्ट वो आपकी मेंटल हेल्थ पर करता है।
3: आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आजकल अभी मैं पिछले दो तीन दिन से कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जो एक हमारे यहाँ जनरेशन बन रही है ना, अल्फा बीटा मिलेनियल्स एंड जेंजी, तो द वर्क प्लेस दे आर नॉट रेडी टू हायरिंग द जेंजी पॉपुलेशन। Why? What is the reason? मतलब किसी ने सोचने की कोशिश की क्यों? क्योंकि जब हम भी अपने एम्प्लॉयज के साथ काम करते हैं तो नाउ वी कैन सी द डिफरेंस इन बिटवीन द जेंजी एंड द मिलेनियल्स, राइट? बिकॉज उन लोगों में ये चीज की समझ आ रही है, अवेयरनेस आ रही है कि दे आर रेडी टू रेज देयर वॉइस कि भैया ये हमारे संग गलत है और हमारे फंडामेंटल चीजें क्या हैं, हम क्या करेंगे और इसी टाइम पीरियड में करेंगे। तो इसीलिए आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जेंजीज को लेना प्रेफर नहीं कर रही है। अभी पिछले 2-3 दिन से, इवन आज मॉर्निंग में भी मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, क्योंकि मिलेनियल्स क्या है, दे आर मोर सबमिसिव एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू लाइक Oblige the higher authorities.
2: Yes.
3: In terms of, I'm not saying कि मतलब उनको आता नहीं है जवाब देना, वो आता है, but जो मिलेनियल पॉपुलेशन है उसमें जो एक एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें वो दिन पे दिन, और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि जेंजीज रॉन्ग है, नहीं है। और जबकि मैं चाहती हूँ कि ये चीजें होना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ आपकी चीजें शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं, आपकी अपनी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए। अदरवाइज एक्सप्लॉइट करने के लिए तो बाहर बहुत लोग बैठे हुए हैं।
2: Yes.
3: और आपको हमेशा रेडी रहना है आपके मेंटल हरेसमेंट के लिए, ऑलवेज रेडी। तो आप यही कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले सेट योर बाउंड्रीज एंड ऑलवेज रेडी, नहीं ऑलवेज तो नहीं कहूंगी, बट आपको पता होना चाहिए कब हाँ और कब ना कहना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ है, आप ट्रॉमा में होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, कोई सर्टेन पैरामीटर नहीं है उसको नापने का, लेकिन जब आपकी बॉडी में से जो बर्नआउट होते हैं, जो सिम्टम्स दिखते हैं, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। और आपने अभी अभी रिसेंटली देखा है कि इस वजह से कितने यंग एम्प्लॉयज सुसाइड कर रहे हैं।
2: Yes.
3: कितने यंग एम्प्लॉयज हैं जो सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज नौकरी छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ EMIs एंड बच्चों की एजुकेशन है, बूढ़े माँ बाप की दवाई है, वट एवर द रीजन, बट क्या है, तो आप इन सबसे एक टाइम पे इतना एग्जॉस्टेड और बर्नआउट हो जाता है, ठीक है, रस्ट आउट आप कर नहीं सकते, बर्नआउट हो गया, बर्नआउट हो जाता है, आप बिना बताए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है, जैसे आजकल मैं जितने अपने फेलो कोलीग से बात करती हूँ, दे ऑलवेज कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, एवरीबडी इज सेइंग द सेम लाइन, और लोग एक दूसरे से पूछते हैं अच्छा बताओ सैटरडे संडे क्या कर रहे हो
2: जी?
3: हम तो पूरी नींद करेंगे अपनी।
2: Yes.
3: हमें सोना है, सोने दो। तो कैन यू इमेजिन अगर लाइक एवरीबडी इज मेंशनिंग लाइक कि इफ यू आर डिप्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ स्लीप, तो डेफिनेटली इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी,
2: बिल्कुल
3: राइट, योर मेंटल हेल्थ, योर पीस, इट विल इंक्रीज द इरिटेशन, इट विल इंक्रीज द फ्रस्ट्रेशन एंड अग्रेशन एज वेल। तो वही सारी चीजें, एक बेसिक नीड की बात कर रही हूँ जो कि नींद, जो कि मेरा हक है
2: जी,
3: बट मैं नहीं सो पाती क्योंकि मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ और 2 घंटे का सुबह ट्रैवल करती हूँ, 2 घंटे का शाम को ट्रैवल करती हूँ। तो आजकल मैं लोगों से ये भी सुनती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए कि हम तो भाई एक वीक ऑफ ले लेंगे, है ना? पहले के लोग जो थे, अगर आप देखो कंपैरिजन करो, तो वो लोग विदाउट एनी सिक, वो मतलब सिक लीव सीएल, और उसके अलावा कोई छुट्टी लेना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि सैलरी डिडक्ट हो जाएगी. बट आज अब मतलब मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ कि लोग किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट कर रहे हैं. लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो हफ्ते का एक ऑफ ले लेंगे राधर देन कि हम एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएं और वहां पे हम 10-15-20,000-25,000 का खर्चा बनाए. उससे अच्छा है कि हम अपनी 2-3,000 रुपए की सैलरी कटा के एक छुट्टी लेके रिलैक्स करके फिर से वापस आएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंटल हेल्थ कर सकते हो, दूसरा अपने से प्रिवेंट कर सकते हो. दूसरा ये है कि आप अपने लिए छोटे छोटे स्मॉल सेलिब्रेशंस हैं जो आप ऑफिस में एक दूसरे के संग, फेलो कलीग्स के संग सेलिब्रेट कर सकते हो. माना कि ये सारे टास्क एचआर को करने चाहिए, बट स्टिल अगर एचआर नहीं भी, क्योंकि एचआर के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने लार्ज स्केल पे ये सारी चीज़ें इतना ईजिली सिस्टमैटिकली अरेंज कर पाना, तो यू कैन सेलिब्रेट योर स्मॉल अचीवमेंट्स विद योर फेलो कलीग्स, योर फ्रेंड्स. एंड आप जैसे कि माना कि हायर अथॉरिटीज को ये भी बुरा लगता है कि आप चाय और स्नैक्स के लिए जा रहे हो, बट डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ एक्शंस व्हेन यू आर नॉट रेडी टू डू वर्क और आपको अपना वेंट आउट करना है, तो ये स्मॉल टी ब्रेक्स एंड स्मॉल कॉफी ब्रेक्स इज वेरी गुड टू वेंट आउट योर नेगेटिव थिंग्स एंड अगेन यू आर रेडी फॉर योर वर्क. सो ये छोटे छोटे टास्क हैं जिसको आप कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो. माना आप एचआर या ग्रीवियंसेस सेल में जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट देयर इज वन पर्सन जिसके संग आप ये सारी चीजें शेयर करके उसको रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि रिड्यूस नहीं किया तो वो बर्नआउट होगा. बर्नआउट होगा तो आप अपनी जान खो के उसके साथ साथ आप अपने बहुत ही लाइक जो फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा छोड़ के चले जाओगे.
2: भाई बस इसी टॉपिक पर मैं आने वाली थी कि जब एक इंसान कहीं नौकरी करता है तो उसके लिए परेशानी ये है कि वहां पर जो हो रहा है वो सिर्फ उसका पर्सनल है, क्योंकि नौकरी आपने चूज की है, पैसा आपको कमाना जरूरी है, चाहे वो महिला है या पुरुष है. आज के जमाने में एक घर को चलाने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अब आप ये कहेंगे जी घर को चलाने के लिए तो आप बहुत बेसिक चीजों के साथ जी सकते हैं, लेकिन जब आप घर चला रहे हैं तो उसमें आपको जीना भी है और जीने के लिए बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरी करनी है. सो उसमें घर आता है, गाड़ी आती है, वेकेशन आता है, कपड़े आते हैं, ज्वेलरी आती है, लाइफस्टाइल आता है, सब कुछ आता है, तो उसे आप कैसे मेंटेन करें. अब आप अपने आप को इन सब चीज़ों से डिप्राइव नहीं करेंगे तो आप नौकरी पर जाएंगे, नौकरी पर जाकर आप कमाएंगे. और ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि हर इंसान ही स्टार्टअप खोल ले या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन जाए और वो सबको एम्प्लॉय करने लग जाए. सो जब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना ज़रूरी है. लेकिन होता क्या है, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जाकर कहाँ आता है, परिवार पर. आप मान लीजिए कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो मेरे साथ भी होता है कि हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में ना स्लीपलेसनेस है. इनफैक्ट मैं कई बार आश्चर्यचकित होती हूँ जब मैं बुजुर्गों से मिलती हूँ और वो ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, और हम ये कहते हैं हमारी नींद पूरी नहीं होती. हमें ऐसा लगता है कि हम रात को कितने भी बजे सो जाएं, सुबह जब उठना होता है ऑफिस जाने के लिए तो हमें बहुत थकान महसूस होती है. एक दिन हमें ऐसा मिले जब शायद 12 बजे तक कोई हमें ना उठाए या 1 बजे तक हमें कोई ना उठाए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. नेचर्स कॉल, जिम्मेदारियां, आपके घर में मेड हैं, बाकी सारी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, वो सब लोग भी तो होते हैं और कहीं ना कहीं आपको इन सबको देखना भी है. तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि आप अपने आप में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. कई बार नींद पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कई बार आप अपने काम पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये आता है आपके परिवार पर. तो चलिए अब आ जाते हैं परिवार पर. देखिए हम सब कुछ कर रहे हैं एक परिवार के लिए, लेकिन इसका सारा इम्पैक्ट पड़ता है एक परिवार पर. डॉक्टर खुशबू, आप इस बात को बिल्कुल मानेंगी कि जब एक इंसान स्लीपलेस महसूस करता है, चाहे वो माता है या पिता है, तो वो घर पर चिड़चिड़ा सा हो ही जाता है. आपसे काम नहीं किया जाएगा क्योंकि आप इतना थक कर आए हैं. तो आप मान लीजिए कि आपको बहुत ही सेंसिटिव या फिर कॉन्सेंट्रेशन वाला काम करना है. मान लीजिए आप बच्चों के पेपर चेक कर रहे हैं, या फिर आप किसी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, रात को ही एक ऑपरेशन करके आए हैं, अगले दिन फिर सुबह आपको पहुंचना है और कहीं ना कहीं आप ये एक्स्ट्रा टाइम में सो नहीं पाए हैं. सो इमेजिन करिए, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपसे चूक हो सकती है, पर वो चूक अलाउड नहीं है क्योंकि वो काम है. तो आपका सारा जो इम्पैक्ट है ना वो आ जाता है परिवार पर. सो जब आप घर आते हैं तो आप थके थके रहते हैं, आप डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, परिवार के लोगों से आप ठीक से बात नहीं करते हैं. अब परिवार के लोग ये सोचते हैं अरे भाई ये थके हुए इन्हें सो जाने दो. और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप शादियों को अवॉइड करते हैं, आप गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं, आप पार्टीज को अवॉइड करते हैं. इनफैक्ट जो फैमिली डिनर्स होते हैं जहां की पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा है, आप उसको भी अवॉइड करते हैं. आप ये चाहते हैं बस मुझे सो जाने दो. तो कहीं ना कहीं सो जाने दो, या फिर एक्स्ट्रा काम करना है, आज मीटिंग आ गई, आज मेरी कॉन्फ्रेंस है, आज सेमिनार है, इन सब चीज़ों में परिवार बहुत सफ़र करता है. और फिर हम ये बात करते हैं कि आजकल परिवारों में वो प्यार नहीं है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वर्किंग आवर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक परिवार के बिल्कुल बिखर जाने का।
3: बिल्कुल सही। आजकल आप बताइए मुझे कि आजकल जैसे कि ये भी कुछ दिनों से आर्टिकल में आ रहा है कि भारत में दिन पे दिन डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं।
2: Exactly.
3: भारत में दिन पे दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। भारत में आते हर दिन हर जनरेशन ये क्यों बोलती है कि हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में जनरेशन गैप क्यों है, वो मेरी बात नहीं समझते हैं। जैसे कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत बच्चों से बात करती हूँ जब भी, तो यूजी के अगर मैं अंडर ग्रेजुएट बच्चों को देखूँ तो वो बच्चे आज सब यही कहते हैं कि मैम नहीं, हमारी मम्मी नहीं समझती, हमारे पापा नहीं समझते। बट क्यों नहीं समझते, मतलब ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता। बच्चे अपनी बोल रहे होते हैं, माँ बाप अपनी बोल रहे होते हैं काउंसलिंग सेशंस में, तो लेकिन ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि क्यों हो रहा है ये सब।
2: जी
3: बिकॉज आजकल आप देखिए मेट्रो सिटीज में अगर दोनों पेरेंट नहीं कमाएंगे तो सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अगर वो दोनों कमाने की तरफ रुख कर लेते हैं तो बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, जो उसके लिए आपका एक मदर फादर वाला जो एक कनेक्शन जो बॉन्ड है, वो उसका उसकी नैनी के संग बिल्ड हो रहा है, वो उसका उसके क्रश में बिल्ड हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? तो अगर उसे अपनी कोई प्रॉब्लम भी है तो बच्चा आजकल नैनी के पास पहले जाता है rather than the parents.
2: Exactly.
3: ठीक है, जहाँ वाइफ को कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, कुछ वो अपने हस्बैंड के संग शेयर करना चाहती है, फिर रात को डिनर टेबल पे जब वो दोनों मिलते हैं तो अगर वो कुछ बताना शुरू करती है, यार प्लीज अभी ये सब बातें मत करो, अभी मेरा माइंड जो है उस पोजीशन में नहीं है कि मैं तुम्हें समझ पाऊँ, ठीक है, वो समझना इतना पीछे छूट जाता है कि वो कंधा वो किसी और को बना लेता है इंसान, हस्बैंड या वाइफ जो भी स्पाउस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कितने सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे जब फादर रात को आते हैं तब तक बच्चे सो चुके होते हैं और जब फादर मॉर्निंग में उठते हैं तब तक बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं।
2: बिल्कुल,
3: मतलब वीकेंड पे सिर्फ उन लोगों का इंट्रैक्शन होता है एक फादर और एक बच्चे का। और ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ओनली फॉर फादर, देयर आर लॉट्स ऑफ मदर्स एज वेल, कि उनका इंट्रैक्शन ही इतनी मुश्किल से हो पाता है। तो आप सोचिए कि वो उसको किस तरीके से उसके होम असाइनमेंट्स में हेल्प करेंगी, किस तरीके से उसके लिए प्ले टाइम निकालेंगी, किस तरीके से उसके आउटडोर गेम्स को पूरा करेंगी। तो फिर आप बात करते हो कनेक्शन की और घूम फिर के बात, अगर ये मैंने पेरेंट्स को डिफॉल्टर ठहरा दिया डेफिनेटली, बट लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो अपनी अलग तरीके की ड्यूटीज़ में बंधे हुए हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, उसके लिए वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम ये समझ लें, क्योंकि आप मुझे बताइए, एक अगर मैं 30,000 अर्न करती हूँ और एक महीने बाद मैं 40,000 दूसरी नौकरी से अर्न कर लेती हूँ तो कोई बहुत खास बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ मेरे दिमाग का डिफरेंस है 10,000 रुपए। बट इस 10,000 रुपए के चक्कर में मैं अपनी कितनी सारी चीजों को खोती हूँ, उन सेक्रीफाइसेस को मैं नहीं देखती हूँ कि उसके बदले मैं कितनी चीजें खो रही हूँ। तो ये हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि एक तो हम किस तरीके की जॉब करें जिससे कि मैं अपने स्पाउस को, अपने इन लॉज को, इवन अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को टाइम दे पाऊँ। तो अगर आप ये सब कर पा रहे हो और उन 10,000 को खो रहे हो तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं है आपके लिए। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि यू आर रेडी टू गिव द टाइम फॉर योर फैमिली, क्योंकि वहां अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो जब आप अपने ओल्डर पीरियड में होंगे तो शायद उसका जो फल हो वो आपको वहां देखने को मिले, उन 10,000 के घाटे का फल वो आप अपने ओल्डर एज में देख पाए। तो ओवरऑल ये डिसीजन हमारा है, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ एडल्ट हमारी गलती है कि हम लोग भी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपए में जो लग्जरी बैग आप 30 में नहीं खरीद पा रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप वो 40 में भी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम है कि हम थोड़े सा आगे बढ़ गए तो हमने बहुत कुछ

0: नौकरी के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है, बट एट द एंड ये हमारी फैमिली को, मेंटल पीस को और इवन फिजिकल हेल्थ को,
1: yes.
0: सबको दिन पे दिन डिटेरियोरेट कर रही है. आप अपनी बॉडी से पूछिए, आजकल 25-30 साल का इंसान जब नीचे से बैठ के उठता है तो बोलता है मेरी कमर में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल पाने के लिए भाग रहे हैं. तो डेफिनेटली इट्स लाइक वर्किंग आवर्स इज लाइक वेरी बैड कि आप एक अनलिमिटेड तक काम करो और उसके बाद अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को परेशान करो.
1: सो कहीं ना कहीं अपने वर्किंग आवर्स खुद डिफाइन करिए और अपने परिवार के लिए समय कैसे निकालेंगे और उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट जाता जा रहा है ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब डॉक्टर खुशबू, बड़ा अहम सवाल, हम कहते हैं हर जगह ह्यूमन रिसोर्स या फिर HR, वैसे तो इस पर बहुत सारे जोक्स बने हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रोल होता है. सो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस प्रकार से अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, किस प्रकार से ये ध्यान रखा जाए कि हम उनके वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर पाएं और उन्हें ना सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी पर हम कोशिश करें कि हम थोड़ा सा असेस करें और साथ के साथ उन्हें अच्छी प्रोडक्टिविटी देने में मदद करें, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप्लाई की जा सकती हैं, इम्प्लाई की जा सकती हैं, इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी खुश होकर काम करने के लिए आए.
0: बिल्कुल ठीक का HR टर्म जो है आजकल भारत में बड़ी फैसिनेटिंग वर्ड है एक, ठीक है. हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे अच्छा सेल जो एकदम ब्यूटीफुल सा बना हुआ मिलेगा वो आपको HR डिपार्टमेंट ही मिलेगा, बड़ा अट्रैक्टिव, बहुत सारी चीजें. बट अब वो कितना अट्रैक्टिव होने के साथ साथ कितना रिसोर्सफुल भी है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए HR एक, अगर देखा जाए किताबी नॉलेज के बेसिस पे या लोगों से इंट्रैक्शन के बेसिस पे, HR डिपार्टमेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. बट अब कितने स्टेप्स वो लोग पहुंचते हैं और कितना उसमें इंप्लीमेंट कर पाते हैं बहुत ज़रूरी है. जैसे कि HR का ही काम है कि सबसे पहले तो कुछ ग्रीवेंसेस सेल बनाना
1: जी.
0: जैसे HR से जब हमें हायर करता है तो सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि एवरीथिंग शुड बी कॉन्फिडेंशियल.
1: यस.
0: बट मैंने आधी से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में देखा है HR ही वो डिपार्टमेंट होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन के इधर से उधर पहुंचाता है
1: जी.
0: तो ये मेरा कहना है कि HR डिपार्टमेंट बहुत सिंसियर और बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में लोगों की, मतलब फिजिकल हेल्थ तो छोड़ो, मेंटल हेल्थ की एक पूरी वर्कशॉप करवाना, चीजें करवाना, वो सारी उसके हाथ में. तो आपके पास ग्रीवेंसेस सेल होने चाहिए चीजों को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने डायरेक्ट हेड की अगर हमें कंप्लेन करनी है या उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी है तो हम किसको रिपोर्ट करें? नो वन इज देयर.
1: यस.
0: है ना? ठीक है, अगर फेलो कोलीग से है तो वी कैन अप्रोच आवर हेड और द सुपरवाइजर, राइट. बट अगर सुपरवाइजर से ही प्रॉब्लम चल रही है तो मैं किसके पास जाऊँ?
1: जी.
0: एटलीस्ट ठीक है, मेरी कम से कम हो सकता है कि मेरी सुनने से या वेंट आउट करने से आधी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. तो इस तरीके के कुछ हमें ऐसे रिसोर्सेज मिलने चाहिए कि एम्प्लॉयज को एटलीस्ट वेंट आउट. आजकल तो आप देखिए जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें तो ऐसे कथारसिस रूम वगैरह भी होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज जाते हैं अपना, जैसे कि पंचिंग बैग्स हैं और इस तरीके के साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जो टूल्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं. आप जाइए, थोड़ी देर वहाँ टाइम इन्वेस्ट करिए और आप काम कंपोज होके फिर से वापस अपने आ सकते हैं. इसके साथ साथ जैसे कि HR है, अप्रेजल मिलना तो खैर हमारा राइट है डेफिनेटली एज एम्प्लॉय, लेकिन उसके साथ साथ मॉनेटरी गेन के साथ साथ यहाँ पे कुछ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए एम्प्लॉयज के लिए. जैसे कि आजकल मैंने देखा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे आर प्रमोटिंग, द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रमोटिंग द हैप्पीनेस इंडेक्स लीव काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. तो ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप टाइम टू टाइम कुछ पिकनिक्स प्लान कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आप अपने एम्प्लॉयज की फैमिली गेट टुगेदर करवा सकते हैं, ठीक है. आप टाइम टू टाइम बच्चों जो मतलब एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए कुछ इवेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है. इस तरीके से आप उनको एनुअल पर्पज पे कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं
1: जी.
0: ठीक है, माना कि हर ऑर्गेनाइजेशन का इतना बजट नहीं होता, बट छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपका सैटरडे वर्किंग है तो आप सैटरडे को 2-3 घंटे का कोई एक अच्छा सा वर्कशॉप या इवेंट, वाइब्रेंट कलरफुल, ये नहीं है लेक्चर बेस्ड
1: जी,
0: इट शुड बी अ प्रैक्टिकल बेस्ड जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी चीजों को बोल सकें, रेस कर सकें, कुछ इस तरीके की चीजें जिससे कि उनको भी लगे कि यहाँ पे हम लैपटॉप और एक केबिन के अलावा भी हमारी थोड़ी बहुत लाइफ है. आप छोटी मोटी लाइक स्टॉल्स लगा के फूड फेस्टिवल काइंड ऑफ चीजें ऐसे सेलिब्रेट करिए. तो ये बहुत छोटी बातें लग रही होंगी आपको मेरी कि ये क्या बच्चों जैसी बातें कि फूड स्टॉल्स लगाना या ये करना, लेकिन जब आप अपनी उस सीट से उठते हो और उस लैपटॉप से पीछे उठ के जाते हो ना और आप इस तरीके का एक घंटा भी एनवायरमेंट, तो आप देखते हो कि वहां पे आप कैसे एक बच्चे की खुशहाली

0: वाली वाली जिंदगी जी पाते हो. चार लोगों के संग आप सेल्फी क्लिक करते हो, चीजें ट्राई करते हो, अपनी एक दूसरे के संग फीलिंग शेयर करते हो, तो आप जब वापस आते हो देन यू कैन रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज गैप प्री एंड पोस्ट
1: जी
0: थिंग्स.
1: तो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं.
0: यस, तो वो चीजें ना बहुत जरूरी है. और ऐसा नहीं कि साल में एक बार कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें अपने डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा करना है कि एचआर ने कुछ कराया. बट एचआर का ये राइट है कि उसे ये चीजें प्लान करते रहना चाहिए. आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते, बट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ एटलीस्ट यू शुड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो डेफिनेटली धीरे धीरे ही एक कल्चर बिल्ड होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्ड करना इज नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जब अच्छा होता है तो तभी वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को इंक्रीज करता है. तो ये कल्चर आपके ही हाथ में है, तो आपको ही अपना 100% इसमें देंगे तो आप लोगों से 200% की उम्मीद कर पाएंगे.
1: भाई डेफिनेटली एचआर के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन एचआर भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. और कई बार आपने देखा होगा कि एचआर के पास सिर्फ एक ही बात होती है कि भाई हम खुद एम्प्लॉई हैं. सो ये जो हैप्पी प्लेसेस है ना, इनको सिर्फ सपने में नहीं लेकिन हकीकत में कन्वर्ट किया जा सकता है. और इसके लिए छोटे छोटे कदम अपनाने की जरूरत है, कोई मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं होती है. एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और हम इंसानों की तरह समझदार हैं और हमें चीजें समझ में भी आती हैं. बस जरूरत यह है कि छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते रहें, मोनोटोनस जिंदगी ना हो, जिससे कि इंसान, मान लीजिए कि आप और कुछ नहीं तो स्लीप एक्टिविटी ही रखें कि हाँ भाई पूरे दिन में अगर आप 8 या 8.5 घंटे काम करते हैं तो जाइए 1 घंटे आप रेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड है. अगर आपका काम खत्म हो गया है तो उससे क्या होगा कि इंसान एनकरेज होगा कि यस वो भी जल्दी जा सकेगा, वो भी और काम.
0: और इवन आपका एक इंटरवल का टाइम भी फिक्स स्लॉट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कॉन्ट्रैक्ट उसकी पॉलिसीज में ये बहुत मस्ट है कि आपके पास एक सर्टेन स्लॉट होना चाहिए आपके लंच के लिए.
1: Yes.
0: ये नहीं है कि आपको जब टाइम मिले आप खा लो, तो मतलब मैंने तो 10 मिनट में ही खा लिया अपना लंच, मैं फिर से वापस बैक टू लाइक माय लैपटॉप. नो, आपका, और वो भी मेरा ये सजेशन है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन टाइम फॉर लंच होना चाहिए एंड अदर टी ब्रेक जो भी हैं आपके. क्योंकि उससे क्या होता है, जब सर्टेन टाइम होता है ना सबके लिए तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं.
1: Yes.
0: है ना, अब मेरा टाइम अलग है, मेरे फ्रेंड का टाइम अलग है, तो हम तो मिल ही नहीं पाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू सेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल. तो ये भी एक तरीके का बूस्टिंग फैक्टर है जो आपके डिप्रेशन एंजाइटी को थोड़ा सा कम कर पाता है, जब आप अपने फ्रेंड्स से पास जा पाते हो, उनके संग थोड़ा सा चाय कॉफी ये सब टाइम स्पेंड करते हो. तो लंच आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इसलिए बोलते हैं ना कि फैमिली में एटलीस्ट डिनर टाइम सबका साथ होना चाहिए. तो ये चीज बहुत जरूरी है.
1: तो जब परिवार के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं डिनर लंच टाइम से, तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन के भी रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा टाइम दे सकते हैं. सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. आज हमने बहुत सारी अच्छी बातें की, बट जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास आप बताकर जाना चाहेंगे?
0: टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली फीमेल्स हैं, तो हम तो इसको ज्यादा, मैं ये नहीं कहती कि मेल्स का डिफिकल्ट नहीं होता
1: जी,
0: क्योंकि आजकल कोई भी, मुझे नहीं लगता कि जेंडर के बेस पे हम कुछ भी कह सकते हैं, बट फॉर फीमेल्स लाइक मैं कह सकती हूँ 10-20% उनपे ज्यादा बर्डन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली किड्स एंड ऑल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और प्रोडक्टिविटी ये एक बहुत नॉर्मल हमारी बॉडी का और एक नॉर्मल फिनोमिना है कि अगर मैंने 8 बजे से काम करना चालू किया है तो आपकी बॉडी भी वो 2 बजे आपको एक अलार्म देने लग जाती है कि नाउ डन फॉर द डे.
1: यस,
0: डन. ठीक है, तो आप कभी ऐसे कभी वैसे मतलब उस चीज को करते हो, बट आप खुद नोटिस कर सकते हो जो परफॉर्मेंस आपने 10 से 12 के बीच में दी है वो परफॉर्मेंस आप 2 से 4 के बीच में नहीं दे पाते हो. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटी. इफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन यू हैव टू फिनिश इन द अर्ली मॉर्निंग, राइट? इफ नथिंग लाइक इफ सम वर्क इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो आप उसको प्रायोरिटीज में सेकंड लिस्ट पे शेयर करिए. ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है. और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, देन टेक अ ब्रेक. इट्स वेरी मैंडेटरी एंड इट्स योर राइट.
1: यस,
0: प्रिविलेज नहीं दे रहा है कोई भी आपको, तो प्लीज उसको ये मत सोचिए कि छुट्टी के लिए जो हमें पूछना पड़ता है या फिर कभी कहना पड़ता है. जैसे बहुत सारी जगह मैं सुनती हूँ कि लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है.
1: Yes.
0: है ना, किसी को कहीं वेडिंग अटेंड करनी है, किसी को फ्यूनरल अटेंड करनी है इवन, है ना, तो छुट्टी नहीं मिल रही है. तो क्योंकि काम की प्रायोरिटी क्या है और इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है उस रिलेशन की, ये सिर्फ आपको पता है. मुझे नहीं पता कि आपके लिए वो टास्क कितना इम्पोर्टेंट है उस दिन के लिए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी चीज़ों को खुद डिफाइन करें और काम को खुद ऐसा करें कि सामने वाला आपको मना ही ना कर पाए. क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज हम बार बार मैनेजमेंट और अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी वजह से और एम्प्लॉयज को भी सफर करना पड़ता है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप 4 से 5 घंटे में 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं कि नहीं. और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट आपको सैलरी देता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है. और अगर मैनेजमेंट आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके लिए यू नीड टू सेट एंड यू हैव टू टेक सम एक्शंस, है ना, या फिर अप्रोच समवन जिसको आप कर सकते हैं. और अपनी प्रायोरिटी फैमिली से पहले नौकरी नहीं है, कभी भी याद रखिए. आपके रिश्ते सबसे पहले होने चाहिए, तब जॉब होनी चाहिए. और सबसे पहली बात है कि अगर आप इन दोनों को बैलेंस कर लें तो उससे अच्छा तो लाइफ में कुछ भी नहीं है. थैंक यू
1: भाई, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कुशमीन. और इनफैक्ट ये भी याद रखना चाहिए, जहां वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सो एक अच्छी फैट सैलरी के लिए, एक अच्छे पैसे के लिए ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो करना भी जरूरी है. तो ऐसे में एम्प्लॉई को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और साथ के साथ उनके जो अधिकार हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए. तो जब इन दोनों चीजों में आप बैलेंस बना लेंगे ना, तो आप ना सिर्फ खुशी से नौकरी करेंगे, एनर्जी से नौकरी करेंगे, लेकिन ना सिर्फ आप ग्रो करेंगे

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। हर के प्रोग्राम ये मेरी लाइफ शुरू हो गया है, जहाँ आपके साथ में पूरे दो घंटे के लिए होती हूँ। जी हाँ, ये वक्त होता है 1 बजे से 3 बजे तक का, जब आपके पास होती हूँ, जहाँ आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, आपको गाने सुनाती हूँ, उसी के साथ ही आपके प्यारे प्यारे से मैसेज होते हैं। तो बस आप यूँ ही अपना प्यार अपनापन हम तक पहुँचाते रहें और मैसेज के जरिए से ढेर सारी बातें हमसे करते रहें। हमारा नंबर 8010781078। और साथ के साथ क्या हाल चाल, जी हाँ कैसे हैं आप मुझे बताइए। और इसी के साथ कोई गाना आपको इंजॉय करना है तो आप मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए। और मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, स्टूडियो में आती हूँ, बातें करती हूँ तो और अच्छी हो जाती हूँ। और ख़ासतौर पर जब आपसे बात करते करते आपको 90s के गाने सुनाती हूँ तो मैं क्या ही बताऊं कि मैं कितनी अच्छी होती हूँ। जी हाँ, क्योंकि जो 90s का दौर है ना, ये इतना खूबसूरत दौर, जब उस दौर की फिल्मों की बात करें या हम म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें या लिरिसिस्ट की बात करें या फिर मतलब हर एक एक चीज़, अगर आप फिल्म की गानों की उठा करके देखें तो हर एक एक चीज़ में बहुत ही गजब, जी हाँ वो गजब की चीज़ है। तो 90s का दौर इसलिए भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब सिंगर्स की बात करें तो अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य और विनोद राठौर और SP बाला सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति जैसे ऐसे सिंगर्स जिन्होंने अपनी आवाज से सबके दिलों में एक खास जगह बनाई। और इसी के साथ ही अगर हम कलाकारों की बात करें तो एक से बढ़कर एक कलाकार, फिर वो चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल, माधुरी दीक्षित, है ना, सभी जो कलाकार हैं जिन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ी। तो इसलिए भी 90s का जो 90 का दौर है वो खूबसूरत कहा जाता है। तो चलिए गाने आपको मैं सुनाती हूँ और आज के प्रोग्राम में भी मैं ढेर सारे प्यारे प्यारे से गाने आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और आज के प्रोग्राम में क्या है खास, यानी आप लोगों के लिए आज के प्रोग्राम में क्या है, ये भी आपको मैं जरूर बताऊंगी। तो एक गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: Dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum dirda tanum.
1: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में अब वक्त है आपको बताने का कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूं. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे हैक्स जो हमारे काम को, हमारी लाइफ को इजी बनाएंगे. जी हाँ, कुछ ऐसे ही घर में काम आने वाले आसान जो हैक्स होते हैं, जो DIY हैक्स होते हैं, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी. और इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज सैनी, जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है और प्लांट्स के बारे में बताते हैं, प्लांट्स की जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं. और इसी के साथ ही कई सारी बातें और कुछ सवाल होते हैं जो हम इनसे करते हैं. तो आज के प्रोग्राम में ये सारी बातें होने वाली हैं. तो आपका कोई प्रश्न है या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010781078. तो चलिए कुछ ऐसे ही DIY हैक्स आपके साथ में शेयर करूंगी जो कि हमारे काम को इजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं. तो आज जो मैं हैक्स लेकर आई हूँ, हो सकता है आपके वो काम आए और उसी के साथ ही आप अपने अपने काम को, अपनी जो लाइफ है उसको ईजी कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगता है. और कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि चलिए कुछ ऐसे हैक्स हमारे पास में हैं जो वाकई हमें हमारी चीज़ों को आसान बना देते हैं. तो चलिए बात होगी इस पर. रेडियो मानव रिश्ना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पे मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.
2: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
2: हाँ गुरुदेव. ना

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानवप्रश्न 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं आपको चलिए बताती हूं कुछ ऐसे हैक्स जो बड़े ही कमाल के हैं। जी हाँ, देखिए कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जो हमारा पूरा जीवन है वो बीते जा रहा है, जो हमारी लाइफ है वो इतनी जल्दी फास्ट फास्ट भाग रही है ना कि ऐसा लगता है कि कैसे हमारे इतने घंटे बीत गए, कैसे ये दिन बीत गया पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम कब हो जाए मालूम ही नहीं चलता। और जब से हम और ज़्यादा बिजी, वो एक वक्त आता है ना जैसे हम जब शादी नहीं हुई होती, शादी से पहले वाला जो टाइम होता है वो ऐसा होता है जब हमें बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को करना है। लेकिन शादी होने के बाद ये एक जिम्मेदारी जो है जो और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारे पास शादी से पहले जिम्मेदारियाँ होती हैं शादी के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, फिर ऊपर से वो बाहर का काम करना, घर संभालना है ना, और बहुत अच्छे तरीके से घर संभालना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी बर्डन पैदा करती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने पास टाइम ही नहीं होता है और हमें सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, घर भी साफ़ सुथरा रखना है, हर एक चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे हमें रखनी है। तो ऐसे में या तो हम अपना जो बचा कुचा समय होता है जो बाकी चीज़ों को देते हैं और अपने लिए समय रह जाता है, या फिर अपने आप को समय देने के लिए घर जैसा हम चाहते हैं वैसा पर्टिकुलर नहीं हो पाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि सारी चीज़ें ठीक है लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए वक्त नहीं निकलेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम सोचेंगे कि काश अगर हमने अपने लिए वक्त निकाला होता तो आज जो हम इतने बीमार हैं, आज जो हम इतने कमज़ोर हैं, आज जो हमारी स्थिति है वो काश नहीं होती। इसलिए सब अगर फ्यूचर में हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने आप को फ्यूचर में अच्छा देखना चाहते हैं तो आज ही से इसकी तैयारी शुरू कर दें। और कितना अच्छा हो ना कि जब हमारे पास वक्त भी हो और जैसा हम घर जाते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि ऐसी हमारी जॉब हो, घर आए तो सारा काम भी हो जाए और समय भी बचे, तो कितना अच्छा लगता है ना ऐसे सोच के कि समय भी बच जाए और जैसा हम चाहते हैं लाइफ में वैसा भी हो। तो इसीलिए कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो वाकई बड़े कमाल के होते हैं और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही हैक्स लेकर के आई हूँ। और किचन हैक्स पर मैं बात करूँगी क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो सबसे ज़्यादा किचन में ही टाइम लगता है। आप देखिए हर एक एक छोटी जो जगह है, हर छोटा एरिया है, हम अगर उसको गौर से देखें तो हर वो कोना, हर वो जगह सफाई मांगती है ना, और जो लोग साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनका अच्छा खासा समय जाता भी है। तो कुछ ऐसे में ऐसी चीज़ें जो आपके बड़ी काम आ सकती हैं, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। और ज़रा सिंक को देखिए जी, सिंक को मैं इसलिए कह रही हूँ देखने के लिए क्योंकि सिंक एक ऐसी जगह है जिसे जितना साफ रखा जाए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे जो झूठे बर्तन होते हैं वो उसमें जाते हैं ना, तो बर्तनों की सफाई जो है अगर वो सिंक साफ रहेगा, बर्तन अच्छे से साफ होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन रहते हैं। और वहीं अगर हमने बर्तन साफ किया और सिंक को साफ नहीं किया तो सारे बैक्टीरिया जो है उसमें जमे रहते हैं, तो इसके लिए भी एक बढ़िया सा हैक है। जी हाँ, देखिए बेकिंग सोडा और विनेगर वाला जो बड़ा कॉमन हैक है जो आपको पता होगा इसके बारे में, लेकिन ये हैक जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये आपको शायद से ना पता हो। अब कॉफ़ी तो देखिए हर किसी के किचन में होती है ना, तो बस आपको कॉफ़ी का सहारा लेना है और अपने बंद पड़े सिंक को साफ करना है या बहुत टाइम से ख़राब हो रखा हो उसे साफ करना है, और सिंक में कुछ ना कुछ जाता रहता है जिससे वो क्लॉग होने लगता है, और कॉफ़ी से अपने क्लॉग सिंक को आप साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच कॉफ़ी लेनी है और एक चम्मच डिश सोप लेना है और एक गिलास गर्म पानी लेना है। और अब इसका क्या करना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले एक कटोरी में कॉफ़ी, डिश सोप और थोड़ा सा जो गर्म पानी है वो डालकर एक लिक्विड तैयार कर लें। अब इस लिक्विड को अपने बंद पड़े सिंक में आप अच्छे से डालें और कुछ आप 5 से 10 मिनट तक रहने दें और फिर गर्म पानी उसके ऊपर डाल दें। आप सिर्फ कॉफ़ी ग्राउंड्स और पानी डालकर भी सिंक को साफ कर सकते हैं और फिर देखिएगा कि आपका सिंक जो है वो कितना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगे और ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा और फिर जो है आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो कैसा लगा ये तरीका, है ना कितना ज़बरदस्त। चलिए आपको कुछ और हैक्स बताऊंगी और साथ के साथ आपको सुना रही हूँ गाने। तो एक और गाना आपको सुनाती हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ।

0: मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे ही जबरदस्त हैक्स जो आपके काम को आसान कर देते हैं। जी हाँ, तो अब ऐसा ही एक और जबरदस्त हैक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और ये हैक मैं आपको बताऊँ उससे पहले आप चलिए आप ध्यान दीजिए अपनी मिक्सी की तरफ। जी हाँ, और मैं मिक्सी की तरफ ध्यान देने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जो अगला हैक है वो मिक्सी से ही रिलेटेड है। जी हाँ, तो हमारा जो ब्लेंडर होता है वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो उसके ब्लेड वाला एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहता है कि कुछ कुछ उसमें लगा हुआ होता है, क्योंकि वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि उसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा जम जाता है जिसे हम अच्छे से साफ़ भी नहीं कर पाते। जैसे हम स्मूदी बनाते हैं तो वो कई बार उसमें रह जाती है, या कई बार हम चटनी बनाते हैं तो चटनी जो है वो ब्लेड के आसपास लगी होती है। तो जितना साफ़ करने की कोशिश करें बट वो उतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाता, और ये अक्सर प्रॉब्लम देखने में आती है, जिस वजह से हम अगर कुछ और बनाते हैं उसमें और दूध से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो या तो उसमें स्मेल आ जाती है या खराब होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो देखने को मिलती हैं, तो क्या अब इसका कोई उपाय है? जी हाँ, तो इसका उपाय बिल्कुल है, और इसी के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसकी सफाई कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपके जो मिक्सी जार है, जो ब्लेंडर है, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और फिर आप जैसे मान लीजिए आपने चटनी बनाई है, उसके बाद अगर आप उसे अच्छे से धोकर के अगर आप शेक बनाते हैं तो कोई स्मेल भी नहीं आएगी और वो ख़राब भी नहीं होगा, और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आराम से आप इसमें किसी भी तरह की चीज़ है वो बना सकते हैं। तो चलिए इसकी सफाई का आपको मैं तरीका बताती हूँ। आपको लेना है 1 चम्मच डिश सोप और 1 चम्मच नींबू का रस लेना है और 1/2 कप गर्म पानी लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने जार में डिश सोप, गर्म पानी और नींबू का रस जो 1 चम्मच लिया था वो डाल दें। इसके बाद जार का ढक्कन आप लगाएं अच्छे से और करीबन 1 मिनट तक इसे अच्छे से चलाएं। जी हाँ, अब 1 मिनट बाद आप जार को खंगाल लें, अच्छे से धो लें। अब ना आपको स्क्रब से इसे घिसना पड़ेगा, ना ही बदबू आएगी, और ना ही आपको ये दिक्कत आएगी कि मेरा जार ख़राब हो गया है भाई, इसको कैसे साफ करूं। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, बल्कि आसानी से आपका जार पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगा, उसके ब्लेड पूरे क्लीन हो जाएंगे और किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। और अगर आपका जार थोड़ा पुराना है तो आप इसे इस तरीके से धो करके और अच्छे से धोइए, धोने के बाद में आप इसे धूप में रख दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जिनके प्लास्टिक के जार होते हैं उसमें स्मेल बैठ जाती है, तो आप अगर धूप में रखोगे तो वो स्मेल भी धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये तरीका जो बहुत ही कहें कि आपके लिए आसान रहेगा, और आपको भी अगर किसी पहली चीज़ की स्मेल आपके दूसरे जो भी आप ब्लेंड कर रहे हैं उसमें आ जाती है, तो अब आपको वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप जो भी बनाएं, फिर आप चाहे उसमें शेक बनाएं या जो भी बनाएं, वो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो चलिए अब इसी बात पर इंजॉय करते हैं अगला गाना, और अगला हैक आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।
1: मैं जिंदगी

सुनो हार्दिक, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइव रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर और मैं हूँ प्रांका आपके साथ. और आपके साथ मैं किचन हैक्स पर बात कर रही हूँ और आपका समय बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. कुछ ऐसे बड़े चुनकर मैं हैक्स लेकर आती हूँ जो कि बड़ी ना कॉमन लाइफ में काम आने वाला है. आजकल होता क्या है, समय की कमी के कारण हम या तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे लें या अपने घर पर ध्यान दे लें, यानी किसी ना किसी चीज़ से अक्सर ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना. और जो महिलाएं हैं ना वो अक्सर अपनी चीज़ों को इतना अच्छे से रखना चाहती हैं कि वो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है. लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. आप अपना घर भी अच्छे से रखेंगे, आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी, आप समय भी बचा पाओगे और अपने ऊपर ध्यान भी दे पाओगे. जी हाँ, तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे ज़बरदस्त हैक्स आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ. और मैं आपको बता रही हूँ किचन हैक्स जिस पर काफ़ी सारा टाइम जाता है. जी हाँ, किचन जिसने संभाली, मतलब हैट्स ऑफ है उन्हें, क्योंकि किचन का बहुत सारा काम होता है. अब ऐसे में छोटी मोटी सी जो चीज़ें होती है ना उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता. तो अब जब समय बचेगा तो आप छोटी मोटी सी चीज़ों को देख भी पाओगे और अपना भी ध्यान रख पाओगे. तो चलिए अब आपको बताती हूँ किचन के वुडन कैबिनेट्स के बारे में. दरअसल होता क्या है कि कुछ ऐसे कैबिनेट्स या फिर घर पर कोई लकड़ी का फर्नीचर होता है जो लकड़ी से प्रॉपर बना हुआ है, हम उसे साफ करते करते अक्सर थक जाते हैं. और जैसे ही पॉलिश धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है तो वो जो फर्नीचर है वो उस तरीके से वो खूबसूरत जैसे पहले अट्रैक्टिव दिखता था, खूबसूरत दिखता था, वो वैसा नहीं रह जाता क्योंकि जो पॉलिश है उसकी वो धीरे धीरे उतरने लगती है ना, तो उस पर शाइन नहीं आती. अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम महंगे महंगे जो पॉलिश होते हैं वो लेकर के आते हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक आपके ही घर में पड़ी जो चीज़ है उससे आप अपने फर्नीचर को चमका सकते हैं? जी हाँ, हमारे घर पर ही वो चीज़ होती है और वो होता है एसेंशियल ऑयल. जी हाँ, जो कि ये वाला काम बहुत आसानी से करता है. जी हाँ, अब आप एसेंशियल ऑयल हैक की मदद से वुडन फर्नीचर को चमका सकते हैं. और इसके लिए आपको एक काम करना है, एक चम्मच लेमन या टी ट्री एसेंशियल ऑयल होता है जो आम घरों में होता, नहीं होता तो आप मंगा करके रख लीजिए, आपके भी काम आएगा. आपको ये लेना है, एक साफ कपड़ा लेना है और एक ब्लोटिंग पेपर लेना है. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वुडन जो फर्नीचर है उसके दाग आप साफ करें. इसके लिए एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें दाग पर आप लगाइए और 10 से 15 मिनट के लिए रखें और इसके बाद ब्लोटिंग पेपर से उसे साफ कर दें. अब एक बूंद ऑयल को कपड़े में लेकर पूरा फर्नीचर साफ कर दें. आप देखेंगे आपके कैबिनेट, आपके फर्नीचर, जो भी टेबल कुर्सी है वो सब जो है उसमें से दाग जा चुके हैं और वो शाइन करेंगे और आपको वही देखने में बड़ा मजा आएगा कि हुआ क्या, ऐसे काम. इतने सारे पैसे हम पॉलिश में लगाते हैं, वुडन पॉलिश में लगाते हैं ना, तो अब आप पैसे खर्च नहीं बल्कि सेव कर पाएंगे. जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी एसेंशियल ऑयल की शीशी से आप अपने फर्नीचर को आराम से साफ कर सकते हैं. तो ये हैक भी जो बड़े ही कमाल का और कई दिन तक आपका फर्नीचर ऐसे ही रहेगा, तो आप ये करके देखिएगा. तो चलिए इसी बात पर अगले हैक की तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इंजॉय करते हैं अगला गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ.

0: क्योंकि बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ होती है तो वो सिर्फ वो ही जानता है जिसको वो तकलीफ होती है। और किडनी स्टोन्स इतने कॉमन हो चुके हैं कि इसके ट्रीटमेंट को लेके
1: थर्ड नंबर पे आते हैं, जैसे कुछ हेरिडिटी डिजीज के होते हैं जैसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, या जिन लोगों में सिस्टीन यूरिया होता है तो उनमें सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं।
0: ओके।
1: और जिन लोगों में किडनी का इन्फेक्शन होता है, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको पाइलोनेफ्राइटिस होती है, तो उनको स्ट्रूवाइट स्टोन्स, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स के रिस्क होते हैं बनने की। तो लेकिन जो 60-70% जो एक कॉमन स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स ही होते हैं।
0: जी, सो डॉक्टर साहब, ये पता कैसे लगाया जाता है कि किस चीज़ की वजह से ये जो स्टोन्स हैं ये बन गए हैं? जैसे आपने कहा कि कई तरीके के होते हैं, अब डायबिटिक पेशेंट है ज़रूरी नहीं है वो पानी भी अच्छे से पी रहा है, सारा ख्याल रख रहा है, फिर भी अगर उसको स्टोन बन गए हैं सो कैसे चेक होगा? क्या ये सर्जरी के बाद जब स्टोन बाहर आते हैं तभी चेक किया जा सकता है?
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोन के कंपोजिशन को चेक करने के लिए स्टोन एनालिसिस करवाई जाती है, उससे पता चलता है कि स्टोन कौन से टाइप का है।
0: जी।
1: तो जरूरी नहीं है कि स्टोन हमें सर्जरी के बाद ही मिल पाए। कुछ लोग कभी जब अपने वॉशरूम जाते हैं तो वहां पर भी वो स्टोन पास कर देते हैं। अगर वो स्टोन वो किसी भी तरीके से या किसी भी मेथड से कलेक्ट कर लेते हैं और किसी भी अच्छी लैब में अगर वो देते हैं तो स्टोन एनालिसिस से ये आप स्टोन का कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। और ये टेस्ट कोई महंगा भी नहीं होता, 500-700 रुपीस में ये हो भी जाता है, और इससे आपको अपने स्टोन का टाइप भी पता चल सकता है।
0: जी, यानी आप स्टोन को चेक करा के ये पता लगा सकते हैं कि किस वजह से, किस चीज से ये बन रहा है, तो उस चीज को आप अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो बार बार स्टोन ना बने।
1: करेक्ट।
0: डॉक्टर साहब, स्टोन के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को राइट या लेफ्ट में पेन होता है और अक्सर ये पेन थोड़ा बैक की तरफ जाता है तो उन्हें लगता है कि स्टोन है। कई बार लोगों को नहीं समझ आता जिनको पहली बार दर्द होता है, तो इसके थोड़े सिम्टम्स क्या हैं?
1: देखिए दीक्षा जी, जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन सडन भी हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कई महीनों कई सालों से स्टोन होता है फिर भी उनको कोई सिम्टम नहीं होता। अगर किडनी स्टोन अगर किडनी तक ही रहता है तो उसके जो सिम्टम्स है, या तो बहुत डल एकिंग पेन होगा या कभी खाने का मन नहीं करेगा, तो बस यही सिम्टम्स होते हैं।
0: ओके।
1: लेकिन जब स्टोन किडनी से निकल के यूरिन पाइप में आ जाता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, तो तब उसकी प्रेजेंटेशन एक्यूट होती है।
0: ओके।
1: तब पेशेंट को अचानक से बहुत सडन सीवियर कॉलिकी पेन होता है, उसमें साथ उल्टी आ सकती है, कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है, फीवर आ जाता है, या कभी कभी किडनी में जो उसका KFT होता है वो भी डिरेंज हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है।
0: ओके। और ये सिर्फ स्टोन की वजह से?
1: ये सब स्टोन की वजह से होता है, क्योंकि स्टोन ने यूरिन पैसेज को ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से किडनी में सूजन हो जाती है और पेन होता है।
0: जी जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सर्जरी या वैसे भी निकाला जा सकता है, ड्रिप के थ्रू भी बहुत सारे रोग निकल आते हैं?
1: देखिए, जो आप ड्रिप के थ्रू कह रहे हैं उसको पहले हम हाइड्रोथेरेपी बोलते थे।
0: ओके।
1: अब ये चीज ऑब्सोलीट हो गई है। जो किडनी स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट या यूरेटरी स्टोन्स का ट्रीटमेंट उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है।
0: ओके।
1: अगर स्टोन 5 mm से कम है तो इसके 70-80% चांस होते हैं कि बॉडी में ही अपने आप निकल सकता है, अगर ठीक अमाउंट में हम वाटर लें, पानी ठीक से हाइड्रेट करें अपने आप को, या कुछ यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के थ्रू, कुछ मेडिकेशन के थ्रू ये निकल सकता है। अगर स्टोन का साइज 5-7 है तो इसके 50% चांस होते हैं निकलने के, और स्टोन अगर 7 mm से बड़ा है तो हार्डली 20% चांस होते हैं निकलने के,
0: सर्जरी करानी
1: पड़े। हाँ जी, तो आपको अगर किडनी स्टोन है तो आप लोगों की सलाह पे मत लीजिए, आप किसी भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करिए, उनके कंसल्टेशन में रहिए, उनकी एडवाइस फॉलो करिए और अपने किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट करवाइए। हर किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है।
0: जी बिल्कुल, यानी हर किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, लेकिन हर किडनी स्टोन जो है वो इतना ईजिली निकलता भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, बस आपको सही सलाह की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, किडनी के बारे में बात करें हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस किडनी स्टोन्स में किसको ज़्यादा रिस्क रहता है, महिलाओं को या पुरुषों को?
1: देखिए, अगर इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता, मेल्स एंड फीमेल, फीमेल्स का जो यूरिथ्रा होती है, यूरिन पाइप होता है, वो छोटा होता है, तो फीमेल्स में टेंडेंसीज होती है कि वो स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास कर सकती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स. लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हीं के परामर्श में अपना उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए.
0: जी डॉक्टर साहब, क्या बच्चों को भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं?
1: जी, आजकल जो लाइफ स्टाइल चल रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास बच्चे, जो 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 10 साल तक के बच्चे में किडनी स्टोन्स की इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं. और उसका रीजन है लाइफ स्टाइल. बच्चे पानी कम पीते हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स काफी ले रहे हैं. तो ये सारी चीजें, बच्चे आजकल ओबेसिटी की तरफ भी ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल टीवी ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज बच्चे कम करते हैं,
0: फाइबर भी कम है, पानी भी कम है. तो ओवरऑल मिलाकर सारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बच्चों के लिए भी तकलीफदायक
1: है.
0: यानी बच्चों को भी किडनी स्टोन्स हो रहे हैं और किडनी स्टोन्स का दर्द जो होता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होता है. तो बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है बच्चों के केस में, बुजुर्गों के केस में, या फिर क्या ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जाननी आपके लिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ये चीज़ें खाइए या फिर पीजिए तो किडनी स्टोन्स निकल जाएंगे, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं? कुछ आप भी जानते हैं, कुछ हम भी जानते हैं, लेकिन आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल 8010781078 पर. वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, बातचीत जारी रहेगी. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद.

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम बात करें किडनी स्टोन्स के बारे में। डॉक्टर मनोज अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने यूरोलॉजिस्ट, और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किडनी स्टोन्स को रोका जाए, या फिर बॉडी में बनने से ही पहले अगर हम रोक लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि किडनी स्टोन्स एक ऐसी समस्या है जो बहुत कॉमन हो चुकी है, बिल्कुल सर्दी जुकाम की तरह ये घर घर में पहुंच चुकी है। लेकिन इसको रोकना और इसको कंट्रोल करना, साथ ही इसका ट्रीटमेंट करना भी बेहद जरूरी है। क्या किडनी स्टोन्स अगर लंबे समय तक हमारी किडनी में रहते हैं तो कोई नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसे सवाल और इन सवालों के बहुत सारे जवाब। डॉक्टर मनोज, अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि किडनी स्टोन्स, कई लोग कहते हैं ना अगर किडनी में है, पड़े हुए हैं तो रहने दो, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, पर क्या ये किडनी स्टोन्स एक्चुअली में नुकसान पहुंचा सकते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में?
1: जी बिल्कुल दीक्षा जी, एक रिसर्च आई है, इसमें ये देखा गया है कि अगर किडनी स्टोन्स अगर किडनी में है तो वो धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता रहेगा और नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में उन पेशेंट्स में CKD मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं।
0: ओके,
1: तो कोई

0: इस उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रांका आपके साथ हर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम के मेरी लाइफ। और इतनी सारी बातों के बीच अब एक बार फिर से वक्त हो चला है एक ऐसे टॉपिक का जिस टॉपिक का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो टॉपिक है हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है देखकर जब लोग पर्यावरण की ओर ध्यान देते हैं, अपने घर के चारों ओर पेड़ लगाते हैं और जिनके पास ज्यादा जगह नहीं है वो अपने बालकनी को या अपने टेरिस को या किचन गार्डन है छोटा सा या कोई छोटा ऐसा गार्डन है जो आपके पास में है, आप उसको खूबसूरत बनाने के लिए हर वो चीज लगाते हैं जो दिखने में भी खूबसूरत है और हमारे हेल्थ के लिहाज से भी वो अच्छी है। तो इस पर और बहुत सारी हम आज बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में है मनोज सैनी जी जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक लिया है और जो कि आज के लिए जरूरी भी है। सब लोग मेडिसिनल प्लांट्स और पर्यावरण के प्रति बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम
2: जी बिल्कुल वाकई में एक बहुत बड़ा और एक बहुत प्यारा टॉपिक है। प्यारा इसलिए कि जिन लोगों को पेड़ पौधों से प्यार है उनके लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मनोज जी बताएंगे, लेकिन वो जो इस पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल आज की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनोज जी पिछले कुछ समय से हमें मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू बता रहे हैं, हमें वो प्लांट जो मेडिसिन का काम करते हैं और हमारे घर में होने चाहिए और बहुत बेसिक प्लांट है जिनके बारे में बात हो रही है। तो इसी चर्चा को, इसी वार्तालाप को हम एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे और बात होगी मेडिसिनल प्लांट्स की, जिसमें भाई कुछ नाम हैं प्लांट्स के जो मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या आपने लट जीरा नाम सुना है प्लांट का? अगर नहीं सुना है तो आपने चिरचिटा तो जरूर सुना ही होगा। अगर ये भी नाम नहीं सुना है तो मनोज जी आपको बताएंगे कि ये पेड़ क्या होता है, कैसा दिखता है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे कनेर की और बेर की, हम बात करेंगे बेर के कितने सारे फायदे हैं और अमरूद तो वरदान है भाई। तो इन सारे प्लांट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मनोज जी, आप सभी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, सभी जो लोग हैं वो अच्छा लगता है जब सुनकर आपकी बातों के जवाब के जरिए से वो अपनी बातें भी हमसे शेयर करते हैं। तो सर, जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रियंका जी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनकी जो भी औषधीय पेड़ हैं उनके गुणों के बारे में खुद तो जाने ही, अपने बच्चों को भी बताएं और एक जो नॉलेज होती है वो अभी शुरू से ही अगर बच्चों को देंगे तो वो ये भविष्य में हम लोग इसकी ओर और अग्रसर हो जाएंगे और हमें मालूम पड़ेगा। हम दवाइयों को अधिक एलोपैथिक दवाइयां लेने के उससे आयुर्वेद की तरफ भी हम जा सकते हैं और इनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो चर्चा में हम बताते हैं सबसे पहले लटजीरा के बारे में।
2: जी
3: लटजीरा प्रियंका जी जो है इसको चिरचिटा कहते हैं। ये कई बीमारियों में इलाज में मदद करता है, दांतों की समस्याओं के लिए, त्वचा के रोगों के लिए, पाचन तंत्र की समस्याओं और घावों के इलाज के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके क्या लाभ हैं? जैसे हम दांतों के लिए लटजीरा की जड़ से दातून करेंगे, जैसे हम नीम के दातून करते हैं उसी तरह से इसका उपयोग हम दातून करने के लिए भी कर सकते हैं। इससे पारिया और मसूरों की कमजोरी दूर होती है और मुंह की बदबू भी ठीक होती है। तो एक तो इनके दांतों के लिए फायदा ये है। त्वचा के लिए इसका ये बेनिफिट है कि इसके पत्तों को पीसकर हम फोड़े फुंसी जो होते हैं और जो भी चर्म रोग होते हैं इसमें भी लटजीरा बहुत सहायक होता है। और अगला इसका फायदा है कि पाचन तंत्र में भी लटजीरा के पत्तों का प्रियंका जी काढ़ा बनाकर ना, और ये जो अपच होती है, कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं उसके लिए ये बहुत लाभकारी होता है। इसका घावों में भी प्रयोग करते हैं। लटजीरे की जड़ को तिल के तेल में पकाकर घाव पर लगाने से दर्द कम हो जाता है और घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसका जैसे

0: सर्दी खांसी में भी बहुत हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस पीने से सर्दी और खांसी ठीक हो जाती है। तो आपने देखा कि इसके कितने जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और ये किस तरह से काम आता है। ये मोटापा कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बीजों का सेवन करने से भूख कम लगती है और वजन कम करने में भी बहुत ये मदद करता है। तो गांव में या किसान को जैसे सांपों वगैरह से भी दिक्कत होती है, तो वो सांपों के जहर के लिए भी लटजीरे का उपयोग किया जा सकता है। और एक सूजन के लिए भी लटजीरे का उपयोग करने से ना सूजन कम हो जाती है और इसके बहुत ही मेडिसिनल लाभ हैं। दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि दातून के लिए हो गया, मुंह के छालों के लिए हो गया, चर्म रोगों के लिए हो गया, सर्दी खांसी के लिए और मोटापे के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो यानी काफी सारे फायदे जो लट जीरा के हैं। अच्छा, इसका नाम जो है लट जीरा, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम कैसे पड़ा?
0: नाम का तो ये जो आयुर्वेदिक बुकों में लिखा होता है, लटजीरा एक जड़ी बूटी है और ये जो नाम तो बोटैनिकल नाम है, जैसे अपामर्गा बोलते हैं इसे।
1: अच्छा।
0: वटामर्गा। और ये जो भी है इनके नाम वगैरह बोटैनिकल इस तरह से ही इस्तेमाल करते हैं।
1: अच्छा। और आम भाषा में इसे लटजीरा या चिरचिटा कहा जाता है ना? जी जी जी। तो इस प्लांट के बारे में और इसकी जो पूरी वैल्यू है वो हमें मनोज जी ने बताई है, और अभी हम इनसे बात करेंगे कनेर प्लांट की। कनेर तो आपने देखा भी होगा और हो सकता है कि आपने आपके आसपास लगा हो, आपने घर में लगा रखा हो, लेकिन इसके फ़ायदे अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कनेर के फ़ायदे। तो उससे पहले चलिए हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांगा आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रिश्ना 107.8 एफएम पर. मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और हमारे साथ में है मनोज सैनी जी जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है और हम मेडिसिनल प्लांट के बारे में इनसे बात कर रहे हैं. जब भी हम इन प्लांट्स की यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स की हम बात करते हैं तो वो प्लांट्स जिनके बारे में हमें नॉलेज होती है हम सिर्फ उन्हीं को लगाना अपने घर में पसंद करते हैं. लेकिन बहुत कुछ है जो हमारे आस पास होता है जिनके बहुत सारे फायदे होते हैं. सोचिए अगर उनका भी ज्ञान हमें हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारी बालकनी में एक और जगह बन जाएगी उन प्लांट्स को लगाने की, या फिर हमारे किचन गार्डन में बन सकती है, या कहीं भी आप जिस एरिया पे प्लांट लगाते हैं वहां पर एक अच्छी खासी जगह बन जाएगी. तो कुछ ऐसे ही प्लांट जिनको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं या बाहर कहीं ऐसे अच्छा स्पेस आपके पास में तो आप वहां भी इसको लगा सकते हैं. फल तो देता ही है लेकिन साथ के साथ इसके फायदे भी बहुत सारे हैं. चलिए अब बात करते हैं कनेर की. सर अब कनेर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए.
1: प्रियंका जी, कनेर को ओलेंडर भी कहते हैं, बोटानिकल
0: ओलेंडर
1: जी, और भारतीय भाषा में इसको करवीर भी कहते हैं.
0: अच्छा,
1: तो एक पेड़ के कई नाम होते हैं. एक बहुत ही सुंदर और औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा होता है. ये पाइल्स, जोड़ों के दर्द, पाचन समस्याओं, त्वचा रोगों और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. तो देखिए आप इसकी कितनी मेडिसिनल वैल्यू है. लेकिन ये विषाक्त भी होता है, इसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए.
0: विषाक्त माने कड़वा?
1: विषाक्त मतलब कि इसके अंदर जहर.
0: जहर
1: जी, विषाक्त उसको कहते हैं. और कनेर के कई फायदे होते हैं. ये पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, जोड़ों के दर्द में कनेर के पत्तों का लेप या काढ़ा जोड़ों के दर्द में राहत दिलाता है. पाचन संबंधी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं. जैसे कनेर के फूल आपने देखे होंगे कब्ज में और पेट के कीड़ों को दूर करने में भी ये मदद करते हैं. इसका त्वचा रोग में भी इस्तेमाल हम करते हैं. कनेर के पत्तों का लेप बनाकर या छाल को खुजली और त्वचा रोगों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं. और जैसे आजकल हार्ट की बीमारी तो आप समझते हैं ज्यादातर बढ़ भी रही है और
0: जी.
1: हमारे खान पान और उस वजह से, तो ये उसके लिए भी स्वास्थ्य कनेर के पत्तों का काढ़ा हृदय संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. तो लोग आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों को मालूम भी है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. इसका और इसके पत्तों का बहुत फायदा होता है. इसे हम मलेरिया में, बुखार में, सिर दर्द में और अन्य बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन प्रियंका जी मेरा यही रहता है कि भाई ठीक है, एक आयुर्वेद डॉक्टर या उसको कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी मात्रा और किस तरह से लगाना और प्रॉपर डिटेल अगर होते हैं तो इसका बहुत ही फायदे होता है. और मैं साथ के साथ इसके कुछ नुकसान भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बहुत सेफ इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक पेशेवर डॉक्टर की सलाह लेनी है इसके लिए. और कनेर के पत्तों या फूलों का सेवन करने से पहले उनकी खुराक भी निश्चित करनी है. यदि आपको किसी समस्या का अनुभव होता है, आप हम इसको यूज करते हैं और तो आप एक डॉक्टर का जरूर परामर्श लें. इसके नुकसान प्रियंका जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कई भाग विषाक्त मतलब विष होता है और इसका सेवन करने से स्वास्थ्य की भी कई समस्याएं आ सकती हैं. और जैसे त्वचा पे अगर हम लगाते हैं, हमारी त्वचा में उससे एलर्जी भी हो सकती है. तो उसको पहले ट्रायल बेसिस पे लगा के थोड़ा सा देखना चाहिए. और इसका कनेर का अर्क का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये थोड़ा विषाक्त होता है, तो इसलिए सलाह डॉक्टर की भी लेनी चाहिए.
0: जी बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह तो सबसे ज्यादा जरूरी है. लेकिन कनेर के बारे में आपने कहा कि ये जहरीला होता है, तो अगर इसका इस्तेमाल करना है तो फिर कैसे कर सकता है?
1: जी मैंने जैसे बताया कि इसकी मात्रा, जैसे कि हम जोड़ों के दर्द के लिए या पाचन संबंधी, तो इसका हम लेप के लेप जो होता है इसका एक लेप तो हम लगाते ही हैं. और जैसे कि जोड़ों के दर्द के लिए और काढ़ा मैंने बताया है, काढ़ा तो आप जानते ही हैं किस तरह से वो लगा सकते हैं. और कनेर के जैसे पत्तों का लेप है और दांत खुजली वगैरह में उसका वो रहता है. और काढ़ा हृदय संबंधी उसके लिए हम काढ़ा बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
0: जी तो कनेर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी, लेकिन मैं एक बार फिर से, जैसे कि सर ने भी कहा और मैं भी आपसे कहूँगी कि आप ख़ुद के डॉक्टर ना बने। माना कि ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो उसी रूप में इस्तेमाल की जाए। कई बार होता है कि कोई दवाई है तो उसमें उसके अर्क का इस्तेमाल हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है, तो इस तरह से होता है। लेकिन हम ख़ुद ही इसका इस्तेमाल करें बजाय इसके जाने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिए और हम यूँ इस्तेमाल कर लेते, तो ये आप गलती ना कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बेर की। जी हाँ, बेर तो आप सभी को पसंद ही होंगे। एक सीज़न होता है इसका जब ये आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, और बेर खाने से इसके कई लाभ हमें मिलते हैं, फिर चाहे पेट की बात हो या स्किन की बात हो या और भी बहुत सारे फ़ायदे जो हमें अक्सर बेर से मिलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जो इसके फ़ायदे हैं वो बेर तक ही सीमित है, या इसका पूरा जो पेड़ है वही पूरा फ़ायदेमंद है? तो मनोज जी आप बताइए, आप बेर के बारे में।
1: प्रियंका जी, आपने बेर का पेड़ देखा होगा कितना घना होता है, तो सबसे पहले तो आजकल की गर्मी में कितनी छाया मिलेगी, कितना ऑक्सीजन मिलेगा, और सबसे जो एक तो आपने खाए होंगे कितने अच्छे मीठे लगते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कुछ तो बड़े बेर होते हैं, कुछ जूजू बेर होते हैं जो छोटे होते हैं, लाल, वो अरावली की पहाड़ियों में छोटे कांटेदार होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं और पाचन में भी बहुत सहायक होते हैं। और सबसे अधिक यही है कि भाई ठीक, इसको लगाने के लिए या इसको बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है, और ये घना होने के कारण बहुत छायादार होता है। कटीले तो होते हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी भी, खाने से आपका पाचन में भी बहुत फर्क लगेगा, मीठा भी होगा और आपको प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करेगा।
0: एक बात जो सबको ध्यान में रखनी है, हम जैसे कनेर की बात की जो कि थोड़ा सा जहरीला होता है, तो आप खुद के डॉक्टर ना बनिए। भले से मेडिसिनल प्लांट है लेकिन डॉक्टर की एडवाइस, एक आयुर्वेद डॉक्टर जो होता है उसकी एडवाइस बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही आप स्टेप लीजिएगा। चलिए अब सर बात कर लेते हैं अमरूद के पेड़ की। अमरूद तो देखिए फ़ायदेमंद होता ही है, इसमें विटामिन सी होता है और इसी के साथ ही हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्या इसके पत्ते भी उतने ही काम के होते हैं सर?
1: जी प्रियंका जी, अमरूद सभी जानते हैं, सभी ने देखा है, लेकिन आजकल इसकी मेडिसिनल वैल्यू तो है ही। आजकल अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक साल में ही अमरूद अपने घर में उगा सकते हैं, छोटे गमलों में भी, प्लांट्स में।
0: अच्छा, घर में उगाया जा सकता?
1: हाँ, और वो स्पेशल वराइटीज़ हैं। आजकल हिंदुस्तान में भी बहुत टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि भाई आप एक साल में सीधा फ्रूट ले सकते हैं अपने घर, बालकनी में, छत में। ये ऐसा प्लांट है जो आप घर, अपने घर के ताजे अमरूद साल में ही आप खा सकते हैं। आपने थाई अमरूद, थाई पिंक अमरूद के बारे में भी देखा होगा कितना बड़ा होता है, और वो हम सिर्फ मात्र 2 साल के अंदर हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और भारत पूसा की भी कई वैरायटी हैं जो कि बहुत जल्दी और एक बहुत, आपने देखे होंगे आजकल साइज भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं अमरूद। जो देसी अमरूद होते हैं उनके साइज थोड़े छोटे होते हैं, और एक एक किलो और उससे भी अधिक वाला मीठे भी होते हैं और पाचन में तो वो मदद करते ही करते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि हमें काफ़ी टाइम इंतजार नहीं करना। जैसे हमने देसी पेड़ लगाया तो हमें कम से कम 4-5 साल इंतजार करना पड़ता है, आजकल ग्राफ्टिंग की वजह से हम 1 साल में 2 साल में अपने घर पे भी, अगर गार्डन है तो हम गार्डन में भी उगा सकते हैं, और अगर आप गमले में या एक बड़े ड्रम में अपने छत पे रखना चाहते हैं तो अपने घर के अमरूद, थाई पिंक भी और हिसार की और पूसा की कई वेराइटीज़ हैं, वो अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर का फ्रेश अमरूद खा सकते हैं।
0: इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ के गमलों में आपने बोला कि उगा सकते हैं, बट गमले का साइज भी डिपेंड करता है।
1: हाँ जी, जैसे मैंने बताया ये ग्राफ्टिंग वैरायटी हैं, और ये छोटे गमले में भी तो हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है तो कम से कम आप 20 इंची से बड़ा, या आप एक जैसे पानी के ड्रम होते हैं बड़े वाले, अगर आपको छत पे रखने की व्यवस्था है तो उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज 20 इंची 24 इंची और ग्रो बैग में भी आप उसको लगा सकते हैं, ना उठाने की दिक्कत है, और ये ट्रस्टेड है और हमने खूब इस पे काम किया हुआ है, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमने गार्डन में लगाए हैं और कुछ प्लांट्स मेरे पास हैं भी, जो मैं शो भी कर सकता हूँ कि इस तरह से आप अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर का गार्डन भी छत पे बना सकते हैं।
0: जी, और ये किस तरह का प्लांट होता है, क्या नाम बताया था आपने?
1: थाई पिंक
0: अमरूद।
1: जी,
0: तो अगर आप ये नर्सरी में मिल जाते हैं?
1: जी हाँ, इजीली मिल जाते हैं, आजकल ग्राफ्टेड प्लांट हैं। और आजकल प्रियंका जी, मैं बताना चाहूँगा, बहुत अधिक जगह नहीं चाहिए, 100 या 200 गज का आपके घर में प्लॉट भी है तो आप बहुत सारे, बहुत अधिक पौधे लगा सकते हैं, फ्रूट वाले भी और मेडिसिनल प्लांट भी, जिससे कि आपका घर तो शोभामान रहेगा, आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और एक अपने घर के कोई भी ऐसे फ्रूट्स हैं वो अपने घर के ही आप खा सकते हैं।
0: एक अलग एक्साइटमेंट होती है घर के फ्रूट्स की, ना बात ही अपनी होती है, फिर चाहे बाहर के जैसे फ्रूट्स होते हैं वैसा ही टेस्ट हो, लेकिन वो अपनी मेहनत होती है तो ज़्यादा स्वाद भी आता है और अपने ऊपर प्राउड भी महसूस होता है, तो बहुत बढ़िया। तो आप भी ये थाई पिंक अमरूद अगर खाना चाहते हैं, वो भी घर के पके हुए, घर में लगे हुए अमरूदों का मज़ा आप लेना चाहते हैं, तो आप नर्सरी जाकर इसे आराम से ला सकते हैं। और जिस तरीके से मनोज जी ने बताया कि कितने साइज़ के गमले लेने हैं उसमें आपको ग्रो करना है, तो ये एक इसलिए भी क्योंकि हमें कई बार नहीं पता होता कि कितने गमले में उगाना, हम छोटे छोटे से पॉट्स में उगा देते हैं जिस वजह से दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी बातें की, थैंक यू सो मच
1: जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रियंका और अब मेरे यानी प्रियंका के चलने का हो गया है वक्त। तो आज का सफर यहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा और बताने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। और जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर जाकर के रेडियो मानव रचना का ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद जाइए पॉडकास्ट सेक्शन में और वहां जाकर के एंजॉय कीजिए सभी प्रोग्राम्स। जी हाँ, तो ये जो रेडियो है अब आप आई रेडियो के माध्यम से रेडियो मानव रचना को आप कहीं भी सुन सकते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप वहां पर रेडियो मानव रचना के ऐप को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बेझिझक कहीं भी जाइए और एंजॉय कीजिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है आपसे लेखक सराहपा के बारे में। पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें मैंने आपसे की थी सराहपा की जिंदगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में। दोस्तों, सराहपा के युग में दर्शन की अनेक उलझी हुई गुत्थियां देखने को मिलती हैं। उनकी बारीकियों को जानना बहुत मुश्किल है। जीवन, जगत, माया, शरीर, तंत्र मंत्र, आचार विचार, मुक्ति, गुरु, सब के बारे में अनेक आचार्यों के अलग अलग मत मिलते हैं। उन सब का अति संक्षिप्त परिचय देना भी यहाँ संभव नहीं है, इसलिए उन सब को स्थगित करते हुए दोहा कोश में कही गई सराहपा की उक्तियों का सार संक्षेप करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब बात आती है सराहपा के दर्शन की, तो उनका दर्शन क्या था उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सरहपा परमात्मा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो आत्मा में भी विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि परम तत्व ना एक है और ना दो है, ना अद्वैत है ना द्वैत है, ना विशिष्टाद्वैत है, वो अनेक भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस परम पद का ना आदि है और ना अंत है, ना इसका कोई मध्य है, ना ये उत्पन्न होता है और ना ही निर्वाण होता है, ये किसी दूसरे का नहीं है तो अपना भी नहीं है, वो तो बस है। इस तरह सरहपा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि जो समझाना चाह रहे हैं उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अभिव्यक्ति से परे हैं। सिद्धों के रहस्यवाद के मूल में उनकी परम तत्व संबंधी अवधारणा है। लेकिन दोस्तों, सरहपा से जुड़ी और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, सराफा कहते हैं कि आत्मा शून्य है और संसार भी शून्य है। शून्य और निरंजन ही परम पद है, इसमें पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। परम पद का ज्ञान प्राप्त होने पर ही आपको सिद्धि मिल सकती है। परम पद महासुख की एक अवस्था का नाम है। ये महासुख देता कौन है? इस पर सराफा ने कहा कि महामुद्रा ही महासुख दिलाती है। इसको प्राप्त करने के लिए पवित्र या अपवित्र का विचार नहीं करना चाहिए। महासुख की प्राप्ति के पश्चात चित्त का भटकना बंद हो जाता है। महामुद्रा का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कहना है लेखक सराफा का। लेकिन सराफा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सरापा कहते हैं कि चित्त एक मूल बीज है, इसलिए चित्त देवता है। मन और चित्त अलग अलग होता है। मन चंचल होता है परंतु चित्त स्थिर होता है। इसलिए सरापा कहते हैं कि चित्त से चिंता को निकाल देना चाहिए। इस चित्त को जबरदस्ती बांधना गलत है और बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ना भी गलत है। चित्त की इस सहज अवस्था को ना तो गुरु बता सकता है और ना शिष्य समझ सकता है। ये सहज अमृत के समान है, जहां इंद्रियां समाहित हो जाती हैं, विषय की इच्छा भी नष्ट हो जाती है, चित्त का अंतर भी मिट जाता है। वहां जो आनंद प्राप्त होता है वही महासुख है। इसलिए सरापा कहते हैं कि घर में रहिए, पत्नी के साथ रहिए, साधु वेश और ध्यान सब छोड़ दीजिए, बालक की तरह रहिए। बच्चा जैसा चाहता है वैसा ही करता है। अगर चित्त के विपरीत काम करोगे तो दुख जरूर मिलेगा। इसलिए नाचो गाओ और अच्छी तरह विलास करो, उसी में योग की उपलब्धि होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, सरापा कहते हैं कि घर में रहिए, पत्नी के साथ रहिए, साधु वेश और ध्यान सब छोड़ दीजिए, बालक की तरह रहिए। बच्चा जैसा चाहता है वैसा ही करता है। अगर चित्त के विपरीत कोई काम किया तो दुख जरूर मिलेगा, इसलिए नाचो गाओ और अच्छी तरह जिंदगी को गुजारो, उसी में योग की उपलब्धि होगी। दोस्तों, इस प्रकरण में सरहपा उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सहज जीवन जीना चाहिए। कठोर नियमों में मन और शरीर को बांधकर जीवन को कष्टमय नहीं बनाना चाहिए। जो चित्त को अच्छा लगे वही कीजिए। चित्त तो राजा है, राजा उसका स्वभाव स्वच्छंद है, यही मनुष्य का मुक्तिदाता है। सरहपा भोग का विरोध नहीं करते, वो कहते हैं कि निष्काम भाव से भोग करना चाहिए। इस प्रकरण में वो कहते हैं कि यदि आपने मन के विपरीत कार्य किया तो आप व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे, इसलिए भोग करें परंतु उससे मुक्त हो जाए, ये सहज साधना है। इस तरह की बात समझाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से सरहपा। सरहपा के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, सराफा का मानना है अगर आपने मन के विपरीत कोई भी काम किया तो आप व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे, इसलिए भोग करें परंतु उससे मुक्त हो जाएं। ये सहज साधना है। इस तरह सराफा अंत में जीवन की स्वाभाविक प्रकृति का उपदेश देते हैं। वो विवाह का विरोध नहीं करते। आप विवाहित रहकर सहज मार्ग अपना सकते हैं। सहज मार्ग गुरु के ज्ञान से दिखाई देता है, चित्त की अपनी प्रकृति से सहज ही प्राप्त हो जाता है और ये सब काया के भीतर विद्यमान है। दोस्तों, सराफा भारत के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध हैं। वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों की तत्कालीन व्यवस्था को अंगीकार नहीं करते थे। वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का खंडन करते थे, खंडन। साथ ही जाति भेद का भी समर्थन नहीं करते। दार्शनिक रूप में वो मनुष्य को सहज जीवन जीने के लिए प्रेरित किया करते थे और कर्मकांड का पूरी तरह से खंडन किया करते थे। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम भी आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

है, लेकिन हैरानी की बात यह है किसान भाइयों कि इसका उत्पादन अभी भी देश में बड़े पैमाने पर नहीं होता। इसी वजह से भारत को हर साल हींग के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में लगभग 1200 टन से ज्यादा शुद्ध हींग की खपत है और इसके आयात पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। भारत मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से हींग मंगाता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का होता है। ऐसे में अगर किसान भाइयों आप इसकी खेती शुरू करें तो ये एक बेहद लाभकारी व्यवसाय बन सकता है और देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिल सकती है। तो करूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा हींग की खेती के बारे में, लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है हींग के बारे में। भारत में हींग की खेती की पहल की अगर हम बात करें तो हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए लाहौल स्पीति के रिबलिंग स्थित सेंटर ऑफ एल्टीट्यूड बायोलॉजी यानी CHAB में विशेष अनुसंधान किया जा रहा है। यहां बीजों से तैयार पौधों को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाया गया है और अलग अलग स्थानों पर परीक्षण चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे और शुष्क क्षेत्रों को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। ये प्रयास देश में पहली बार हो रहा है किसान भाइयों, और इसके सफल होने पर न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। लेकिन अगर आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो मैं हींग का परिचय बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है। हींग का वैज्ञानिक नाम है फेरियोल असाफोरेटा और ये एपीएसी कुल का बहुवर्षीय पौधा है। ये मुख्य रूप से ईरान और अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसकी जड़ों से निकलने वाला दूध या पदार्थ सुखाकर हींग बनाई जाती है और भारतीय रसोई में हींग का उपयोग मसाले के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात आप जानते ही हैं, खासकर दाल और सब्जियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसके औषधीय गुणों का व्यापक जिक्र मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, हींग की खेती के लिए बीज और पौध तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी सुन लीजिए। हींग के जो बीज होते हैं ना, वो हल्के भूरे रंग के और चपटे होते हैं, लेकिन इनमें निष्क्रियता होने के कारण ये आसानी से अंकुरित नहीं होते। इसलिए बीजों को अंकुरित करने के लिए विशेष उपचार की जरूरत होती है, जैसे कि ठंडा उपचार। बीजों को आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ताकि प्राकृतिक ठंड के प्रभाव से उनकी निष्क्रियता टूट सके। इसके अलावा हींग की खेती में प्रवर्धन और प्रजनन, ये सब क्या होता है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आपको मालूम ही है कि हींग एक बहुवर्षीय पौधा है जिसमें फूल आने में लगभग 5 साल का समय लग जाता है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और एक ही पौधे में नर और मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। कीटों के माध्यम से इसका परागण होता है। मई जून के दौरान इस पर फूल आते हैं और अगस्त तक बीज तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस पौधे से बीज लिया जाए उससे हींग का रस नहीं निकालना चाहिए। अब मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ खेत में बुवाई और खेत की तैयारी के बारे में। हींग की खेती के लिए ढलानदार और अच्छी जल निकासी वाली भूमि सबसे उपयुक्त होती है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ धूप सीधी पड़ती है और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सीधे बीज बोने के लिए लगभग 1 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर पहले नर्सरी में पौधे तैयार कर लिए जाएं, तो बीज की मात्रा कम हो सकती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 से 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है 0.75 से 1 मीटर रखनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपकी ये खेती अच्छी हो सकती है और आपको इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हींग की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता के बारे में आपसे बातें करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, हींग के बारे में आज आपसे बात हो रही है तो थोड़ी जानकारियां और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हींग के लिए ठंडा और शुष्क वातावरण सबसे उपयुक्त होता है। ये पौधा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक के न्यूनतम तापमान और 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के अधिकतम तापमान को सहन कर सकता है। इसके लिए अच्छी धूप जरूरी होती है। मिट्टी की बात करें तो रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, इसके लिए सबसे बेहतर रहती है। लेकिन जल भराव की स्थिति इस फसल के लिए बेहद हानिकारक होती है। हींग की खेती के लिए सिंचाई और उसकी देखभाल की जब बात आती है तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। देखिए किसान भाइयों, हींग की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। रोपाई के बाद शुरुआती 1 महीने तक 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद जरूरत के मुताबिक ही पानी दें, क्योंकि ज्यादा पानी या जल भराव से पौधे खराब हो सकते हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई करना भी जरूरी है ताकि खरपतवार भी कंट्रोल रहे। आगे आपसे बात करूंगा हींग के उत्पादन के बारे में और उसके संग्रह के बारे में। सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

0: वाला जिया।
1: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, हींग के बारे में बात चल रही है और मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा इसका उत्पादन और संग्रह के बारे में, लेकिन उत्पादन और संग्रह की बात करूंगा बाद में। फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है हींग की खेती के लिए लागत और मुनाफा। हींग की कीमत तो गुणवत्ता के अनुसार काफी ज्यादा होती है, जो लगभग 5,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। एक पौधे से करीब 20-25 ग्राम हींग प्राप्त होती है। अगर एक हेक्टेयर में खेती की जाए तो 5 साल के बाद लगभग 9 लाख रुपए तक की आय प्राप्त की जा सकती है। हींग की खेती भारत में एक उभरता हुआ और लाभकारी विकल्प बन सकती है। सही जलवायु और तकनीक के साथ आप लोग इस फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर सरकार और अनुसंधान संस्थानों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो आने वाले समय में भारत हींग उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, हींग की बात चल रही है तो मैंने आपसे वादा किया था बताऊंगा इसके उत्पादन के बारे में और संग्रह के बारे में। हींग के पौधे से उत्पादन लेने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। फूल आने से पहले पौधे की जड़ में चीरा लगाकर दूध या राल निकाला जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक राल निकलना बंद ना हो जाए। इस राल को सुखाकर हींग बनाई जाती है और ये आंसू, मांस और पेस्ट जैसे अलग अलग रूपों में बाजार में उपलब्ध होती है। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आरजी सागर आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो वाल्मीकि 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड, फील लाइफ। ये शो बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं हम, साथ साथ आपको बताते हैं कि इंडिया में जो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं या फिर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनीज या लोगों या प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का हाथ है। तो आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है। हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो डील करती है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में। विल टॉक अबाउट इट एंड विल स्टार्ट द शो बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी, टू द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, देयर USP, एवरीथिंग। बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुंच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहां पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री वी आर एड्रेसिंग इट। द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहां पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनीज, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API, जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहां पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

la hum, jinga la la hum, jinga la la hum. वेलकम बैक, उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील।

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवस्टम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस। जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकर।

बुकिंग एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीजें कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात यह है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है। आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे फेजेस आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में, ठीक है, यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा। तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है, ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकेंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोर्ट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहां पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहां पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। इन शॉर्ट एक हमारी आज की इंडस्ट्री है। आइए बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी का नाम है बीमा प्लान। अभी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दो शब्दों का मिला करके एक शब्द बना है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, प्लान मतलब प्लान। हम सबके कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं। जस्ट किडिंग। सो बीमा प्लान इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। ये इंश्योरटेक में डील करती है और ये एक स्टार्टअप है जिसका फोकस है इंडिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एंड द फोकस इज ऑन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विच इज लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस फॉर लो एंड मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स। अब देखिए, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास अपना इंश्योरेंस नहीं है। उसके बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, और कई बार बजट नहीं होता। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केटर करते हुए लो और मिडिल इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का काम कर रही है कंपनी जिसका नाम है बीमा प्लान। जहां पर मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में फोकस करती थी ट्रेडिशनली, अगर हम स्पेशली बात करें तो अर्बन अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स या अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जो कंपनी है टारगेट करती है एक ऐसे सेगमेंट को जो बहुत लार्जली इग्नोर हुआ है लंबे टाइम तक, जैसे डेली वेज अर्नर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, स्मॉल शॉप ऑनर्स हो गए, रूरल फैमिलीज हो गई, या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस को, तो ये यहाँ पर उनको केटर करते हैं। इनका बहुत सिंपल सा कहना है कि भैया हमारा प्लान है बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मासिव, वो है कि इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना एंड एक्सेसिबल बनाना फॉर द नेक्स्ट बिलियन इंडियंस, अगले 100 करोड़ जो इंडियंस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजिटली थ्रू पार्टनरशिप्स, जहाँ पर कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जो इसको खास बनाती हैं, विच इज़ कि यहाँ पर ये लोग एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कमीशन वाला पार्ट जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो उसको एलिमिनेट करते हुए ये कंपनी डील करती है। दिस इज बीमा प्लान। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का नाम है बीमा प्लान और हमने वही भी आपको बताया कि कंपनी क्या करती है। लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो सिंपल से आइडिया के साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी जो है, जो बहुत ब्रूटल है, वो इंडिया में इन्होंने ऑब्जर्व करी। एंड दैट रियलिटी इज कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ऐसी चीजें हो जाती है हमारे परिवारों में जिसकी वजह से कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिशनल जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मार्केट को कैटर तो करते थे, बट एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ऐसा था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल टिकट्स जो हैं वहां पर नहीं एंटरटेन होती थी, मतलब छोटे इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं थे उनके पास, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट जो है वो बहुत लो था। एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया था। तो बीमा प्लान की जो कंपनी है, इस कंपनी को ये बात समझ में आई और इन्होंने इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें बहुत हद तक योगदान और बहुत सारे एलिमेंट्स का है, स्मार्टफोन्स का है, यूपीआई पेमेंट्स का है, इंटरनेट का है, डिजिटल अडॉप्शन का है। छोटे शहरों में ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। सो बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली बना है जिसको बेनिफिट इस कंपनी ने किया है। बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द कंपनी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द विजन कि इन्होंने एटलीस्ट इस एक चीज को आवाज दी। So instead of selling an annual policy of ₹50,000, ठीक है, इन्होंने क्या किया, small ticket insurance बनाया, contextual insurance बनाया, easy onboarding करी, low annual premiums रखे, ठीक है, जहां पर कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि $5 से लेकर $50 तक एनुअली लोग जो है पे करेंगे और वो इंश्योरेंस जो है बाय कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप को इन्होंने कैटर किया और एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो वहां पर एग्जिस्ट करती है उसको वहां पर आवाज देते हुए इस कंपनी ने जो है नींव रखी और लोगों की हेल्प करी। दैट इज द थिंग। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं फाउंडर की। कौन है फाउंडर, विल टॉक अबाउट इट, बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

बिना वक्त गंवाए शो को आगे लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ आपको गाने पसंद आए, आपको शो पसंद आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 नंबर है हमारा, इस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं फाउंडर की। कंपनी के फाउंडर हैं विकुल गोयल। विकुल गोयल कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली पीपल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट कोई भी इंसान जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम को स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडर हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें समझ आ चुकी होती हैं, उनके बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। एग्जीक्यूशन, बर्न रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, स्केलिंग पेन, ये सब कुछ इस कंपनी के जो फाउंडर हैं विकुल वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिकॉज बीमा प्लान के पहले इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था कार क्रू, ठीक है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था ऑटोमोबाइल सर्विसेज के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए। बाद में इसको टीवीएस ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां पर इन्हें बहुत सारी चीजों के लिए आप कह सकते हैं कि फीडबैक भी मिले, बहुत सारी इनकी लर्निंग रही, ठीक है, जहां पर ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी इन्हें मिली, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, इन्हें स्केलिंग समझ में आया, इन्हें फेलियर समझ में आए। इसके अलावा इन्होंने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के साथ काम किया है, जीएसएफ एक्सेलरेटर के साथ काम किया है। तो इन तमाम जगहों पर काम करने के बाद, अपना खुद का एक स्टार्टअप करने के बाद जिसका एक्विजिशन भी हो चुका है, उसके बाद इन्हें एक्सपोजर मिला स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का, फिनटेक ट्रेंड्स का, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालिसिस का, ग्रोथ का, कि किसी कंपनी को ग्रोथ वाली स्टेज तक कैसे लेकर के जाना होता है। एंड ही गॉट जस्ट वन पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग। अब इनके थोड़े से हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं जहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने एमबीए किया है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि आईआईटी ने टेक्निकल और एनालिटिकल ग्राउंड्स पे इन्हें स्किल्स दिए, हार्वर्ड ने उन्हें जो है बिजनेस थिंकिंग दी, वेंचर इकोसिस्टम से इन्हें इंट्रोड्यूस किया, कुछ ऐसे कॉलीग्स दिए जो सेम डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं, देन इसके अलावा खुद ने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के अपना स्टार्टअप करके या जॉब करके या सम हाउ कंपनी के साथ काम करके एक तरीके से खुद को ट्रेन किया, उसके बाद जाकर के कॉन्फिडेंस आया, इतने बड़े गैप को फिल करने का काम किया और ये कंपनी स्टार्ट करी, विच इज बीमा प्लान, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी की यूएसपी की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मेरा नाम है सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी हमारी आज की बीमा प्लान, और अब यहाँ पर बात करेंगे यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। फर्स्ट यूएसपी आती है माइक्रो इंश्योरेंस फॉर अनडिजर्व्ड इंडिया। बीमा प्लान जो है यहाँ पर डायरेक्टली किसी प्रीमियम इंश्योरेंस ब्रांड के साथ कम्पीट करने का काम नहीं कर रही है। इनका बहुत सिंपल सा फोकस है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी।

कस्टमर थोड़ा जल्दी उसको लेकर जो है रिस्पॉन्ड करता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और ये बात हमें अब समझ में आ रही है डिजिटल इंडिया, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम है, कस्टमर साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है वर्नैकुलर प्लस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिया का जो नेक्स्ट इंटरनेट वेव है दैट इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग मेट्रो यूजर्स। यहाँ पर टीयर टू टीयर थ्री ग्रोथ मैटर करती है, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये बहुत सीरियस स्ट्रेटजी है। अभी आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर जिस कंपनी का कंटेंट अगर अच्छा चल रहा है तो वो कंपनी अच्छा कर रही है। अगर किसी ब्रांड का कंटेंट अच्छा नहीं चल रहा है, कंटेंट अगर वो नहीं बना पा रही है, तो उस कंपनी के सामने कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। उसकी वजह भी है, कंटेंट इज स्टोरी, स्टोरी ब्रिंग्स ट्रस्ट, ट्रस्ट ब्रिंग्स अवेयरनेस, अवेयरनेस ब्रिंग्स मोर पीपल इन। That's how things work. उसके बाद next point आता है full stack insurance infrastructure जो उन्होंने खुद से तैयार किया है। So बीमा plan provide करता है end to end integration, policy insurance claim, customer engagement, digital onboarding, insurance APIs. So they are not just selling policies, they are building an infrastructure. These are the USPs of this company. I hope यहां तक आप समझ पाए हैं हमारे आज की कंपनी को। अब एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे ले बढ़ाएंगे। So stay tuned, feel good, feel live.

फील गुड फील लाइव, मेरा नाम सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवप्रश्न 107.8 एफएम के साथ। आइए बात करते हैं की ड्राइवर्स की। इस कंपनी के बहुत सारे की ड्राइवर्स हैं, हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि राइज ऑफ यूपीआई एंड स्मार्टफोन जब से आया है, लोगों की चॉइसेस काफी चेंज हुई हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए और लोगों की हेल्प हुई है। बेसिकली उनके पोटेंशियल कस्टमर्स उन्हें समझ में आ गए, ठीक है। यूपीआई, ई आधार, चीप इंटरनेट, इन चीजों को कैसे इनकरेज किया जा सकता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैश ऐसे नहीं कि किसी को कुछ गलत बेचा जाए, बट उसी में कुछ ऐसी चीजें जो उनकी नीड भी है और इसी इकोसिस्टम में कहीं पर इंटीग्रेट किया जाए तो कितना अमेजिंग, कितना स्मूथ हो जाता है ना। सो स्टार्टअप्स में टाइमिंग मैटर करती है। बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज द आइडिया इज बैड, बिकॉज मार्केट या तो बहुत अर्ली है या बहुत लेट आ रहे हैं। इसलिए सही टाइम पर सही चीज जो है ट्रिगर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरल सिंप्लिसिटी। इंश्योरेंस को लेकर के एक साइकोलॉजी है कि भैया बहुत मुश्किल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है बेचना, फ्रॉड होते हैं, ठीक है, इसलिए लोगों को वो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता है। प्लस इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी नहीं होते हैं, ट्रस्ट भी बहुत लो है, पेपर वर्क बहुत इरिटेटिंग है। तो यहां पर इस कंपनी ने क्या किया, प्राइसिंग अपनी अफोर्डेबल कर दी, सबको एक्सेस दे दिया, ऑनबोर्डिंग को स्मूथ बना दिया, एंड बूम, कंपनी ग्रो करने लगी। सो दीज आर द थिंग्स। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना स्मूथ है, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं क्योंकि मार्जिन बहुत थिन है, कस्टमर ट्रस्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, क्लेम का एक्सपीरियंस डिटरमिन करता है कि रिटेंशन कैसा होगा, रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, इंश्योरेंस अवेयरनेस अभी भी बहुत वीक है इंडिया में, बट स्टिल दिस कंपनी इज कोपिंग अप एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस केस स्टडी। मतलब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं और बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट बॉटम लाइन यही है कि ये कंपनी बीमा प्लान इज नॉट जस्ट सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे आर ट्राइंग टू रीडिजाइन हाउ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रीचेस ऑर्डिनरी इंडियंस। दिस इज द वन लाइनर ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट जहां पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, जहां पर ट्रस्ट लेवल लो थे, वहां पर भी एक गैप ढूंढा, उसको भी फिल किया और लोगों का ट्रस्ट गेन करके ये कंपनी मार्केट में कूद पड़ी एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो ये हमेशा होता है, आपको कुछ ना कुछ नया देखना होता है, गैप देखना होता है, दैट्स हाउ वी ग्रो। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। अगर शो अच्छा लगा है तो 8010781078 पर कोई वाइन लाइनर मैसेज छोड़ दीजिए मेरे लिए। फिलहाल चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजे सागर आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। आप लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.1।

0: फैमिली के साथ। ये शो हमारा बहुत खास होता है, वो क्या है ना कि इस शो में हम लोग बात करते हैं एक्सपर्टीज की, इस शो में हम लोग बात करते हैं स्किल्स की। मोरओवर यहाँ पर हम हर बार एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो किसी भी डोमेन से हो सकते हैं, बट हमारी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पर इस शो के थ्रू आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें हम बता सके। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सत्यम। सत्यम एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, साथ साथ उन्होंने हाल फिलहाल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। तो सत्यम से हम लोग बात करेंगे थिएटर के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ऑडिशंस के बारे में, मुंबई की कल्चर के बारे में, बहुत सारी चीजें हम सत्यम से आज जान रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे सत्यम का। सत्यम स्वागत है।
1: हेलो भैया, थैंक यू भैया मुझे बुलाने के लिए।
0: सत्यम, मैं सबसे पहले आपके डोमेन के बारे में जानना चाहूंगा, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं अपने शब्दों में, एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल क्या है।
1: ओके, सो अभी मैं 2024 में मैंने ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा था थिएटर आर्ट्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद मैंने अपना नाटक करने के लिए एक थिएटर ग्रुप खोला है जिसका नाम है रंगरेज। तो उसमें मैं नाटक लिखता भी हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ और उनमें एक्टिंग भी करता हूँ। तो ये अभी फिलहाल और नए मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो मैं रील्स भी बनाता हूँ, तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा ये अभिनय का कीड़ा, थिएटर का कीड़ा, ये उपजा कहाँ से, कैसे शुरुआत हुई इसकी?
1: स्कूल में क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं तो वो थिएटर करते थे, जब मैं 10th में था तो वो कॉलेज आ गए थे मानव रचना से ही। तो उनको देख के कि उन्होंने थिएटर शुरू किया तो साथ में मुझे लगा कि मुझे भी थिएटर करना चाहिए। और ये वो टाइम है जब यूट्यूब और नेट काफ़ी आ गया था, जियो रेवोल्यूशन जब हो रहा था, तो उस वजह से मैंने गुफ्तगु के एपिसोड देखे यूट्यूब पे, तो समझ में आया कि मंडी हाउस एक जगह होती है तो वहाँ पे जाके आप थिएटर कर सकते हो। तो बस वहीं से था, मैं 10th में था तो मुझे था कि किसी तरह मुझे पढ़ाई करके अच्छी सी मुझे डीयू में जाना ताकि मैं थिएटर कर सकूं। तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए थे और मैं डीयू जा सका, तो वहां से मैंने थिएटर शुरू कर दिया। फिर चीजें अपने आप धीरे धीरे खुलती गई।
0: बिल्कुल,
1: तो मतलब मेनली भैया को देख के। हाँ सॉरी,
0: हाँ मैं ये अब जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा ये बताइए कि थिएटर ने आपके अंदर क्या बदलाव दिए, क्या चेंजेस आपके अंदर आए थिएटर करने के बाद जो आप खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली थिएटर से होता क्या है।
1: बिल्कुल, सो सबसे पहले मैं 17 साल का था जब मैं कॉलेज गया डीयू में, आचार्य नरेंद्र करके कॉलेज है साउथ कैंपस में, वो क्या कहते हैं गोविंदपुरी में है। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ की थिएटर सोसाइटी में मैंने अपने आप को एनरोल कर लिया, किस तरह मैंने ऑडिशन दिया और मेरा हो गया था ऑडिशन। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में और देश में क्या चल रहा है, सोसाइटी के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। बहुत ही इग्नोरेंट तरीके से मैं अपनी जिंदगी चला रहा था और मेरी लगभग 17 साल की उम्र थी तो कुछ पता नहीं था मेरे को। तो जब मैं वहाँ गया और हम वहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाटक भी होते थे, पॉलिटिकल नाटक भी होते थे, नाटकों की रीडिंग्स होती थी जो सीनियर्स लोग करते थे, तो वहाँ की सीटिंग में बैठ बैठ के मुझे काफ़ी अवेयरनेस हो, मतलब काफ़ी कुछ समझ में आया दुनिया के बारे में। और कहानियाँ हम पढ़ते थे बड़े बड़े राइटर्स की, मंटो की, भीष्म साहनी की, तो उससे बहुत कुछ समझ में आया जो मेरी लाइफ नहीं है उनके बारे में जानना। तो उससे वो एक फिर जर्नी शुरू होगी मेरी इस तरफ। तो फिर मुझे लगता है उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो हाँ थिएटर, हाँ या
0: ओके तो आपको आपके सराउंडिंग के बारे में पता लगा एंड समाज में क्या चल रहा है, एक तरीके से आप एक जागरूक इंसान बन गए। इट हैज टू बी देयर, अगर कोई भी इंसान जिस समाज में जी रहा है अपने समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकली आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है? आप भले कोई मूवमेंट चलाएं ना चलाएं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू शुड नो कि आपकी आसपास क्या हो रहा है, इनजस्टिस क्या है, सोशली आप कहां पर स्टैंड करते हो, एज अ कंट्री क्या इश्यूज आपके सामने, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थिएटर जरूरी है, आप अपने बारे में जानते हो, समाज के बारे में जानते हो, दुनिया में जो चीजें हुई हैं, इनजस्टिस हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से आप रूबरू होते हो। दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। अब इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
3: सच?
2: प्यार हो गया, क्या करें?
3: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: वेलकम बैक गाइस, इस शो पर आपको मजा आ रहा है, गानों के साथ साथ साथ आपको इस शो पसंद आ रहा है। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर सत्यम, यहाँ पर रंगमंच के एक अभिनेता हैं, अपना एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, और अभी तक हमने जाना है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चेंजेस इनके अंदर थिएटर जो है वो लेकर के आए। आइए शो को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और सत्यम से बात करना चाहेंगे स्किल्स के बारे में। सत्यम, मैं सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि थिएटर में कौन कौन सी स्किल्स की हमें जरूरत होती है, क्या वो स्किल्स हैं जिन्हें हमें चाहिए और कैसे उनको अपने अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है।
1: ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हमने शुरू किया था तो या जो भी थिएटर की हिस्ट्री भी रही है, तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है आपको कम्युनिकेट करना, जो मतलब आपको एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन बेसिक नीड फॉर द थिएटर। तो वो आपने जब ऑब्जर्व किया होगा तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो सबसे बेसिक नीड है मुझे लगता है थिएटर की, वो ऑब्जर्वेशन है। आप जैसे जैसे आप आपकी लाइफ बढ़ती रहती है, आप चीज़ों को समझते रहते हो और पढ़ते हो, देखते हो, लाइफ में आप ग्रो करते हो, इवॉल्व होते हो, तो वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन भी और सटीक होती जाती है। बाकी सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा पर्सन मानना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, अपने आसपास को देखना, ऑब्जर्व करना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किल्स की भी बात करना चाहूंगा सत्यम, ऑब्जर्वेशन के अलावा कौन कौन से टूल्स एक एक्टर के पास होते हैं जो थिएटर में जाकर के पॉलिश करने होते हैं, या कोई प्रॉपर थिएटर में नहीं जा पा रहा है, अपने घर पर पॉलिश करना चाह रहा है, तो कौन कौन से वो टूल्स हैं जो हमें जिनके ऊपर काम करना चाहिए
1: एक एक्टर को?
0: हाँ, एक एक्टर को
1: मेरे ख्याल से समझ गया मैं। टूल्स जैसे चार चीजों के बारे में बात होती है एक्टिंग में, तो आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। तो उसको अगर हम बेसिक डोमेन में कवर करने की कोशिश करें तो आप अपने बॉडी को फिट रखें, योगा जो भी आपको सही लगता है, और आपको वॉइस ट्रेनिंग के लिए आप अगर कुछ म्यूजिक करते हैं, आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग लिया तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपने आप से भी कुछ नॉर्मल, आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, नॉर्मल सुर लगा सकते हैं ताकि आपकी वॉइस की क्लैरिटी सही रहे। और बाकी अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए आप हमेशा, मतलब वो हमेशा ओपन है, आप कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। और कॉस्ट्यूम, जैसे कि मैंने बात बोली थी पहले कि ऑब्जर्वेशन, तो फिजिकल अपीयरेंस हर कैरेक्टर का, मतलब हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कैसे कपड़े क्यों पहनता है, कहीं कहीं पर कपड़े फिक्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में आप धोती और कुर्ता नहीं पहन सकते, आपको वहाँ पर शर्ट और पैंट ही पहनना पड़ेगा। तो ये इसको आहार्य में आता है, ये फिजिकल अपीयरेंस में आता है। ये तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन ने, कुछ सोसाइटी ने बनाया और कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से, स्पेस के, एटमॉस्फेयर के। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन का कैसे कपड़े, कौन सा कैरेक्टर क्या कपड़े पहन रहा है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं। और सात्विक जो है वो एक्सपीरियंस से आता है, वो ट्रेनिंग से आता है, वो जो हम ट्रुथ की बात करते हैं परफॉर्मेंस में ढूंढने की, वो समय के साथ आता है, इसमें काफ़ी समय देने के बाद आता है। तो ये चार चीजें पर अगर ध्यान दें तो मतलब एक जर्नी में आप जा सकते हो।
0: बिल्कुल, काफी सारे लोग इस टाइम आपको सुन रहे हैं, हजारों लोग हैं जहां तक आपकी आवाज जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अभिनेता बनना होगा। जिसको अभिनेता बनना है उसकी शुरुआत कैसे की जाए अभिनेता बनने की, बिल्कुल बेसिक से रोड मैप क्या बना के आप देना चाहेंगे?
1: जैसे मैं कल ही इंटरव्यू देख रहा था प्रसन्ना साहब का, तो उसमें उन्होंने बहुत कमाल की बात बोली कि हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो आदमी बस देखता है कि जैसे जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं थिएटर देखने गया था, तो मैंने थिएटर देखा और फिर एक मन में एक सवाल आता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अभी आज भी का ज़माना जैसा हो गया है, इंस्टाग्राम बूम जब से किया है तब से अब लोग रील्स देख रहे हैं, तो काफ़ी कम्फर्टेबल हो गया है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, आपके फ़ोन में आपको दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप देख के ही करने लग जाएंगे, करने के लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज जो है, अब और चीजें आसान हो गई आपके लिए, तो आप बस फोन उठाएं और करें। एक्टिंग में ही एक्ट एक शब्द है, तो एक्ट करना जरूरी है, आप बस करें और चीजें वैसे ही इतनी ईजी हो गई हैं, तो बस आपको एक्शन लेना है। और देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, विजुअली बम्बार्डमेंट हो रखा है, तो बेस्ट ये है कि आप बस शुरू करें, बस एक स्टेप लें, फिर चीजें अपने आप हो जाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्यम ने अभी तक हमें बताया कि थिएटर की शुरुआत कैसे होती है, अभिनेता बनने की शुरुआत कैसे होती है, तो देखने से अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखिए, अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, अच्छी जो चीजें हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि क्या अच्छा इसमें किया गया है, किन किन नुआंसेस को उठाया गया है, बॉडी, आवाज, आहार, जो सत्यम ने भी बताया हमें कि चार भागों में इसको मेनली बांटा जाता है, तात्विक, वाचिक, आहारिक और आंकिक। उनको अलग से अगर आप डिकोड करके देख पाते हैं क्या अभिनेता क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, तो शायद थोड़ा आप अच्छे से टेक्निकल वे में उसको समझ सकते हैं। और दोस्तों इसको मैं बताना चाहूंगा, ठीक एक मैकेनिक की तरह हम इसको देख सकते हैं। जब एक गाड़ी एक मैकेनिक के पास जाती है तो वो कभी नहीं बोलता है कि ये गाड़ी खराब हो गई है, वो हमेशा एक पुर्जा देखता है। उसके लिए वो गाड़ी नहीं है, उसके लिए वो बहुत सारे पुर्जों का एक जत्था है जिसमें टायर अलग है, इंजन अलग है, स्टेयरिंग अलग है। ठीक ऐसे ही एक अभिनेता होता है। एक कैरेक्टर में अगर आप ऐसे पार्ट्स को अलग अलग देख पाते हैं कि इसका डायलेक्ट अलग है, आवाज अलग है, बॉडी पॉस्चर अलग है, बाल अलग है, सब कुछ अलग है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है, तो एक अक्यूमुलेटिव वे में एक कैरेक्टर बन के तैयार होता है। दिस इज द बेस लाइन ऑफ दैट थिंग। तो अगर कोई भी इंसान इस टाइम एक्टर बनना चाहता है और हमारी आवाज सुन पाया है हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, तो ये चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करिए, अपने आसपास के लोगों में सवाल पूछने शुरू करिए। आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद शो में हम आगे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट ऑडिशंस, विल टॉक अबाउट कंटेंट, विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 7.0 FM। फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का का और जीवन का जा भी सिखाया था। ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दया शंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझ में कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठकर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओश के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी, तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला। बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में चार चांद लगा दिए। दो दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही थी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन। जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ में साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें, तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी, और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है फसल के भंडारण की, यानी कटाई के बाद फसल का भंडारण कैसे किया जाए। तो जो बातें आपके साथ में साझा करूंगा उनको जरा ध्यान से सुनना। भाई देखिए, फसल की कटाई के बाद आप लोगों के द्वारा कुछ फसल को बीज के लिए और कुछ फसल को अपने उपयोग के लिए स्टोर कर लिया जाता है। किसान भाइयों, आपके द्वारा जो फसल अपने लिए रखी जाती है उसका भंडारण वो ड्रम या अन्य किसी बंद मुंह वाले कंटेनर में किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपभोग किया जा सके। लेकिन फसल का भंडारण करते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बीज के लिए जो भंडारण किया जाता है उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे आगे की बुवाई के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ज्यादातर किसानों द्वारा फसल का भंडारण जूट के थैलों में या फिर बोरियों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपके भंडारण से संबंधित, वो सारी बातें करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज बात हो रही है फसल के भंडारण के बारे में। भंडारण से पहले फसल को सूरज की रोशनी में सुखाना बहुत जरूरी होता है। फसल की कटाई का जो काम है ना, वो ज्यादातर मशीनों के जरिए किया जाता है, जिसकी वजह से फसल में नमी होती है। अगर इसी तरह से फसल का भंडारण किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है तो फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए फसल की कटाई के बाद कुछ दिनों के लिए फसल को सूरज की रोशनी में सूखने दें, ताकि उसमें नमी ना रहे, और इसी के साथ साथ अनाज को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। होता क्या है, फसल की कटाई के वक्त बहुत सारे जो दाने होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, या उसमें धूल मिट्टी हो सकती है, और जो कुछ तिनके हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो तिनके भी आ जाते हैं, जो कि फसल की रौनक को कम कर देते हैं। फसल को स्टोर करने से पहले उसकी अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए, ताकि फसल को फफूंद जैसी समस्याओं से बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब भी फसल को लगती हैं, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। करेंगे कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे फसल का स्टॉक कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, बात हो रही है आज फसल के भंडारण के बारे में। आपकी फसल पककर के तैयार हो जाती है और जब उसकी कटाई हो जाती है, फिर बात आती है कि इस फसल को हम कहां पर स्टोर करें। तो इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, वही बातें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। कभी भी जो फसल का भंडारण है ना, पुराने और पहले से इस्तेमाल किए गए बोरों में बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, फसल के खराब होने की और उनमें और भी ज्यादा रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसान भाइयों द्वारा पुराने बोरों का उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि फसल में कोई भी रोग ना लग पाए। और इस बात का भी ध्यान रखें, स्टॉक की गई फसल के बोरों को दीवार से बिल्कुल सटा कर ना रखें। किसान भाइयों, आप लोगों के जरिए फसल का भंडारण जिन बोरों में किया जाता है ना, उन्हें दीवार से सटाकर रखने से आपकी फसल में नमी आ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में दीवारों पर सीलन या नमी बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। नीम के पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्टॉक की गई फसल में घुन जैसे कीट लग जाते हैं, जो फसल को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन कीटों से बचने के लिए नीम से बने पाउडर का इस्तेमाल भी किसानों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे स्टॉक की गई फसल को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इन बातों का ख्याल रख करके। करूँगा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपकी फसल के स्टोर के बारे में, वो सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है भंडारण के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, फसल का स्टॉक बोरों में किया जाता है। तो नीचे फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछा दें या फिर चटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल सुरक्षित रह सके। और वो जो आपकी जगह है जहां पर आप भंडारण करेंगे, उस जगह को हम कह सकते हैं भंडार गृह। भंडार गृह को मेलाथियान के घोल से अच्छे से धो लेना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है। फसल का भंडारण करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, फसल को साफ जगह पर ही स्टोर करें। और जो आपका भंडार गृह है वो जितना साफ होगा उतनी ही आपकी फसल सुरक्षित होगी। इसलिए सफाई का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल का स्टॉक करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फसलों को सुरक्षित भंडारण के लिए बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाती हैं। इन तकनीकों की वजह से फसल में जो फफूंद लग जाती है, इस फफूंद से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को भंडारण की पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से आधी से ज्यादा फसल का नुकसान हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो किसान भाइयों। इसीलिए हर बार मैं आपसे जो बात करता हूँ आपके फायदे की करता हूँ। वैसे तो आपको बातें मालूम है, लेकिन समय बदला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाई हैं। वो सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके और आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, भंडारण के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने की हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि फसल को जितना हो सके नमी से दूर रखना, कीड़ों से दूर रखना, चूहों से दूर रखना। फसल में अगर ज्यादा नमी होती है ना, तो ये सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देती है। इसी वजह से भंडारण करना बहुत जरूरी बताया जाता है, ताकि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण किया जाता है। छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसानों के द्वारा सिर्फ अपने उपभोग के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडारण किया जाता है। फसलों का भंडारण ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता है, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस समय में ये भंडारण हमारे बहुत काम आता है। फसलों के भंडारण के लिए सही स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण करते समय ये ध्यान रहे, फसल में नमी बिल्कुल ना हो। नमी की वजह से पूरी फसल खराब हो सकती है। मैं बार बार आपको नमी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि नमी आपकी फसल के लिए एक तरह से जहर है। आपसे कुछ और भी बातें करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: देखिए किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं भंडारण के बारे में, और भंडारण का काम इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ बातें होती हैं ज़रूरी। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब भाई आपको सावधानी बरतनी है, जितनी सावधानी बरतेंगे आपकी फसल जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जिसका भंडारण करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। और जब भी आपको लगे कि इस फसल का हमें उपयोग करना है तो आप उपयोग कर सकते हैं, और बिना किसी खराबी के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, बिना किसी कीट के, यानी कि आपकी सावधानी से आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपको इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। दाम अच्छा मिलेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। अब इसी मुस्कान के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम। बहुत ही खास शो है, एजुकेशनल शो है, आपको अवेयर करता है, साथ साथ प्रोसेस के बारे में आपको बताता है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर जान रहे होते हैं। बात करेंगे एक और कंपनी की, आज बात करेंगे एक और इंडस्ट्री की, आज समझाएंगे आपको पूरा प्रोसेस, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम फिर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फाउंडर के बारे में, कंपनी के प्रोसेस के बारे में, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं, ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी है अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इसे एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी को अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लैंडिंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताए, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

0: यहाँ।
1: मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim
1: tana na dim tana na dim tana. मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पर आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। तो उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

सागर शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइफ। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर। और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब ले रहे म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री को आप अच्छे से समझ पाए हैं। फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। सो फिनटेक में डील करने वाली हमारी आज की कंपनी है कैशी। कैश प्लस ई, सिंपल। कैशी एक इंडियन फिनटेक कंपनी है, ठीक है, जो डिजिटल लैंडिंग स्पेस में ऑपरेट करती है। प्राइमरली जो ये कंपनी है वो फोकस करती है इंस्टेंट पर्सनल लोन्स के ऊपर, क्रेडिट लाइंस के ऊपर, बीएनपीएल के ऊपर, यानी कि बाय नाउ पे लेटर, ऐसी सर्विसेज जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिलती है। 2016 में कंपनी स्टार्ट हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। टारगेट ऑडियंस है यंग सैलरीड मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। कोर ऑफरिंग है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स वाया एप्लीकेशन। इन सिंपल टर्म्स कैशी जो है इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पीपल हु अर्न मनी बट स्टिल डोंट गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स। बैंक्स के क्राइटेरियाज हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो यहां पर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है प्रोसेस। हालांकि बैंक्स ने भी अपनी चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, बट स्टिल नॉट मोर सिंपल देन द स्टार्टअप्स द वे हाउ दे आर ऑपरेटिंग। तो कैशी 2016 में लॉन्च हुई। इसके जो फाउंडर हैं वी रमन कुमार, उनका एक बहुत स्पेसिफिक मिशन था, यंग इंडियंस को जो है क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट का एक्सेस मिलना चाहिए। बैंक्स जो है वो रिलाई करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री, बोले तो सिबिल स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा, जबकि मिलियंस ऑफ यंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई लोन हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक उनको बाय डिफॉल्ट भाई रिजेक्ट कर देते हैं। यहां पर आता है कैशी, जो बहुत बड़े इस गैप को फिक्स करता है और उनको लोन्स ऑफर करता है। सो या That is our today's company, कैशी, 2016 में स्टार्ट हुई। और इतना बता चुका हूं कि exactly किन लोगों को ये cater करता है। There was a huge gap at that time, back then, 2016 की मैं बात कर रहा हूं। अभी तो चीजें काफी चेंज हो गई हैं क्योंकि काफी स्टार्टअप आ गए हैं, बट उस टाइम पर था ये बहुत बड़ा गैप। और ये तो खैर हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया भी होगा, स्पेशली मिलेनियल्स, कि हम बैंक गए हैं लोन नहीं मिल रहा है, क्यों, सिविल हिस्ट्री खराब है, क्योंकि पहले कभी लोन नहीं लिया है, लाइक दिस। सो या दैट इज अ थिंग। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। कैश ही हमारी आज की कंपनी है। आइडिया क्या है इसके पीछे? सो द कोर आइडिया, बहुत ब्रूटल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट इक्वल्स टू ओनली पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री। मतलब कि अगर आपकी कोई पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री है, ये डिफाइन नहीं करती है कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए और ना ही करना चाहिए। तो कैशी ने एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो है बिल्ड किया, AI का इस्तेमाल किया, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, ठीक है। एनालाइज किया मोबाइल बिहेवियर को, सोशल डाटा को, स्पेंडिंग पैटर्न्स को। दिस लेड टू देयर प्रोप्राइटरी मॉडल, ठीक है, SLQ, सोशल लोन कोशेंट, एक नए तरीके का क्रेडिट स्कोर। इसमें क्या होगा ना कि कंपनी ने आपका सिबिल स्कोर चेक नहीं किया, बल्कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को चेक किया, आपके पैटर्न्स को चेक किया, और वहां पर ये देखा कि ये आदमी स्पेंड कितना करता है। मतलब बैंक का क्या फंडामेंटल है, बैंक को फर्क नहीं पड़ता ना कि आप कैसे स्पेंड कर रहे हो। बैंक का सिंपल है, आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, वहां से आपका सिबिल जो है वो डिसाइड किया जाता है, और उसी को फिर ध्यान में रखते हुए आपको लोन जो है डिस्पर्स किया जाता है। लेकिन यहां पर इस कंपनी ने थोड़ा सा स्क्रिप्ट को फ्लिप किया। तो यहां पर क्या हुआ कि लोन्स जो है फास्ट अप्रूव होने लगे, ठीक है, उन लोगों को ही सर्व करने लगे जिनको बैंक्स ने इग्नोर किया। जो क्रेडिट स्कोर्स ट्रेडिशनली हुआ करते थे, उनके ऊपर की डिपेंडेंसी को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। दैट्स हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन दिस सेगमेंट एंड दे आर एक्चुअली डूइंग रियली वेल, क्योंकि उस तरह के वो जो गैप हुआ करता है ट्रेडिशनली, जिस एक पैटर्न को फॉलो किया जाता था, जिन लोगों को लोन नहीं मिलता था, उनकी यहां पर बात हो रही है। तो उनकी प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। अब स्पेंड तो मैं करता हूँ, UPI से करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या, मुझे लोन नहीं मिलेगा? बैंक की माने तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं जो बोलते हैं नहीं बॉस, आपको लोन जरूर मिलेगा। सो या दिस इज द थिंग, दिस इज द प्राइम थिंग जो ये कंपनी जो है केटर कर रही है। आई होप यहां तक जितनी जानकारी आपको दी आपको समझ आई है। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। आइए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स की। सो द फाउंडर इज वी रमन कुमार, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, फॉर्मरली एक कंपनी के सीईओ रह चुके हैं जो कि NASDAQ लिस्टेड कंपनी है। बैकग्राउंड है इनका टेक प्लस फाइनेंस प्लस प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनकी वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो बिलियंस में रह चुकी है, उनको बनाया है, बेचा है, लाइक दिस ही हैज डेल्ट इन दिस डोमेन लाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एजुकेशन इनकी बहुत पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट बहुत स्ट्रांग इनकी टेक्निकल और बिजनेस एक्सपोजर स्किल्स जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एम मॉडल्स इन्होंने बिल्ड किए हैं एंड बिलियन डॉलर पे जाकर के एक कंपनी को ले जाकर के वहां से एग्जिट लिया है, तो अच्छा खासा नाम है। एंटरप्रेन्योर्स की जब बात होती है तो यहाँ पर वी रमन कुमार जी का नाम जरूर लिया जाता है। हैविंग अ गुड बैकग्राउंड इन बिल्डिंग बिजनेसेस, स्केलिंग बिजनेसेस एंड देन सेलिंग बिजनेसेस एंड देन स्टार्टिंग समथिंग न्यू, जो उनको किक देता है डेफिनेटली, ठीक है। डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, स्केलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन दिखाई दी ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, उसी लिमिटेशन को इस्तेमाल करके अपनी बहुत बड़ी USP बनाई और वहां से एक कंपनी खड़ी कर दी, कैश ई। तो इन्होंने रैंडमली कोई फिनटेक कंपनी स्टार्ट नहीं करी, इन्होंने एक ब्रोकन सिस्टम को पहले समझा, उसमें ये देखा कि मैं क्या ऐड कर सकता हूं, फिर वहां पर टेक का इस्तेमाल करके उसको रीबिल्ड किया। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, दैट्स हाउ स्टार्टअप्स वर्क। सेकंड नेम इज यशोराज त्यागी, CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। इनकी लीडरशिप में बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का एक्सपीरियंस कंबाइन कर दें, दोनों का अगर जो ये एक्सपीरियंस लेकर के आए और जो इनके मेंटर्स इनको मिला है, सारा एक्सपीरियंस आता है वर्थ 100+ years इन द सेम इंडस्ट्री। ऐसे करके एक कंबाइंड एक्सपीरियंस से इन्होंने कंपनी खड़ी करी है। हालांकि लिटरली मतलब दोनों का ऐसा नहीं है 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट दे बोथ ऑफ देम आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस। दैट्स हाउ दे वर एबल टू मेक दिस कंपनी और स्केल कर पाए। आई होप यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी और समझ आई है। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: सुनो हार्दिक, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक। मैं सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। कैशी हमारी आज की कंपनी है। आइए बात करते हैं कंपनी की यूएसपी की। यूएसपी कंपनी की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, फर्स्ट इज अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, सिविल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दी, आपके बिहेवियर को जो है वहां पर आइडेंटिफाई किया और उसी डेटा का इस्तेमाल करके यहां पर अपना एक एआई सिस्टम बना दिया जो आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा एंड देन उसके आधार पर लोन अप्रूव करेगा। इंस्टेंट लोन डिसबर्सल, फुल्ली डिजिटल, नो पेपर वर्क। फोकस करते हैं ऑन अनडिजर्व्ड सेगमेंट, फर्स्ट टाइम बोरोअर्स, यंग सैलरीड प्रोफेशनल्स, इन लोगों को जो है फोकस किया जाता है एंड दैट्स हाउ दे आर केटरिंग अ ग्रुप जो लिटरली आप बोल सकते हैं कि क्रीम है या जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। तो अगर उसको, अगर आपने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया तो वो ग्रुप आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है और वही इस कंपनी को समझ में आया और वहीं से इन्होंने काम करना शुरू किया। एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, फास्टर अप्रूवल्स हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर कैशी जो है वो लोन देता है उन लोगों को जिनको बैंक इग्नोर कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप। सिंपल सी बात है, ह्यूज पॉपुलेशन को भाई यहाँ पर पैसे तो कमा रहे थे वो लोग, लेकिन क्रेडिट एक्सेस नहीं था, लोन नहीं मिलता, सिबिल नहीं है अच्छा, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, लोन नहीं लिया कभी, तो उनको इन्होंने केटर किया। सेकंड, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस टेक की जब बात

होती है किसी भी टेक की, इंश्योर टेक, फिन टेक, मैड टेक, ब्यूटी टेक, फैशन टेक या कोई और टेक्नोलॉजी की आपको अगर इंडस्ट्री समझ में आती है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की वजह से सारा टेक ग्रो कर रहा है और उसका एक एडवांटेज हर कंपनी को मिला है, नॉट जस्ट दिस कंपनी, बट हाँ इन्होंने टाइमली मैनर में एक पर्टिकुलर ग्रुप को केटर करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। थर्ड इज AI प्लस डेटा एडवांटेज, बेटर रिस्क प्रिडिक्शन है देन ट्रेडिशनल सिस्टम, जो ट्रेडिशनली बैंक्स ऑपरेट करते हैं उनसे ज्यादा अच्छा रिस्क प्रिडिक्शन इस कंपनी के पास है। नेक्स्ट आता है कस्टमर एक्सपीरियंस फोकस, फास्ट अप्रूवल, किसी को नहीं पसंद भाई कि तुम लंबा घसीटो उसको, मैं हर बार चक्कर लगाऊं, हर बार एक नया फॉर्म भरूं तब जाके तुम पैसे दोगे, कंपनी ने फास्ट कर दिया उसको। सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, कस्टमर खुश, ग्रोथ अच्छी होगी, कंपनी खुश, फाउंडर्स खुश, सॉर्टेड। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोडक्ट एक्सपेंशन, पर्सनल लोन्स देते हैं, क्रेडिट लाइन्स देते हैं, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है ये भी ये ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं कंपनी के पास जो इसको आप कह सकते हैं कि ड्राइव करा रहे हैं, जो इसकी ग्रोथ करा रहे हैं। सो या दैट इज द थिंग जो इस कंपनी की हेल्प कर रही है। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आया। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। तो कैशी बस कोई एक लोन एप्लीकेशन नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट। शिफ्ट कौन सा? वहां से जहां पर केवल ये था कि अमीर लोगों को लोन मिल सकता है या जिनका क्रेडिट प्रूवन है उनको लोन मिल सकता है, वहां से शिफ्ट हुआ टू एनीवन हु इज डिजर्विंग कैन एक्सेस क्रेडिट यूजिंग डेटा। सिंपल इजी लोन, बहुत जल्दी से प्रोसेस हुआ, सिविल स्कोर नहीं चाहिए, आप पैसे कमा रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, डन सीन है, आपको लोन मिल जाएगा। तो कैशी ने सिर्फ लोन्स नहीं दिए, उन्होंने एक नया तरीका दिया जहां इंसान की वैल्यू उनके पास से नहीं उनकी पोटेंशियल से जज होती है। दैट्स हाउ दिस कंपनी हैज ग्रोन सो फार। सो यहां पर हमारी केस स्टडी आज की खत्म होती है। आपको शो कैसा लगा बताइए मुझे 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर वक्त है अपने शो को यहां पर हॉल्ट देने का। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग सुनते रहिए रेडियो मानव 107.2 FM। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइन।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। शो बहुत स्पेशल है, उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे, दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
3: थैंक यू
2: सो मच सागर जी। यतिन, सबसे पहले आप क्या करते हैं exactly, क्या क्या चीजें आपके डोमेन में फॉल करती हैं?
3: जी मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूं। ऑलमोस्ट 100K मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ। और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है। मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर सीनरीज बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है। एंड

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और ये सारी बातें सुनकर आई एम श्योर आपके अंदर की मानवता जाग उठी है। अब आपको लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चलिए भाई, आप मेंबर नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, कौन आपसे एसोसिएट हो सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से आप एसोसिएट करते हैं, जानूंगी अब हमारे ट्रेजरर राकेश सोनी जी से।
1: हमारे यहाँ माहेश्वरी, जैसे माहेश्वरी मंडल का गठन हुआ था 1982 में
0: जी।
1: उसके 3 साल बाद हमने ये सोचा कि समाज की सेवा कैसे हो सकती है, इसलिए इसका गठन किया गया माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का 1985 में
0: जी।
1: उसके नीचे भी हमारे माहेश्वरी मंडल में 2 संस्था और काम करती है, एक युवा संगठन और एक महिला संगठन। तो हम सब मिलके ये समाज सेवार्थ कार्य जैसे समय समय पर अंतराल में हम करते रहते हैं। हर 3 महीने में हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हमारे को समाज की सेवा का काम करना चाहिए। कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी पोलियो कैंप लगाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगवाते हैं, कभी ब्लड हार्ट चेकअप कैंप लगवाते हैं। ऐसे हम अंतराल में कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इसमें सभी हमारे माहेश्वरी समाज के वॉलंटियर है जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं और अपना जैसे समय का जो भी है जो देते हैं। और हमारे समाज में भामा साहब की कोई कमी नहीं है, उसका हमारे पास कोई भी कभी कमी का महसूस नहीं होता है, और इसीलिए हम अपना समाज की सेवा के काम करते रहते हैं।
0: मैं देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ 3 तरीके के दान होते हैं। आप श्रमदान दीजिए अगर आपके पास श्रम है तो, भाई आपकी क्षमता है और आप जाकर श्रम कर सकते हैं, यानी आप जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान हैं जो अक्सर अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। सो आपके पास एक चीज है, धन। सो आप धन का दान दे सकते हैं, उस धन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि श्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास श्रम से होने वाला जो दान है उसके लिए धन चाहिए होता है, वो नहीं होता है। और तीसरा सबसे जरूरी दान, समय का दान। आज के जमाने में मोबाइल फोन में हम घंटों खत्म कर देते हैं, अगर आप अपने 2 घंटे भी निकालते हैं और अपना समय आप जाकर किसी को मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए देते हैं ना, तो इससे अच्छा और इससे बड़ा दान हो नहीं सकता है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट न सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से अपने जितने भी कहना चाहिए माहेश्वरी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं और जितना भी इनका समाज है, वो तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन क्या हम इसमें अपना हाथ नहीं निभा सकते हैं या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, दिव्यांग कैंप्स हैं, या फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। बेनिफिशरीज लाने के तरीके से, कॉन्ट्रीब्यूशन के तरीके से, वॉलंटियर के तरीके से आप जरूर ये कर सकते हैं, और चलिए मिलकर इस दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बनाते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। हमारे साथ माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से राम कुमार राठी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं, जो ट्रेजरर हैं, और महेश घटानी जी हैं, जिनको मैं एक लंबे समय से जानती हूँ और मैंने इनके ढेर सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे कामों को खुद विटनेस भी किया है। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप तीनों आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप लेकर जाना चाहेंगे? राम कुमार राठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
1: सभी के लिए संदेश, मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हमारे समाज का मोटो भी सेवा ही संकल्प है।
2: मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना समय जरूर देना चाहिए। समय दोगे, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आप काम हाथ में लेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, सेवार्थ भाव होना चाहिए, तो समाज की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा समाज का सेवा ही संकल्प, यही हमारा समाज का ध्येय है।
3: माहेश्वरी समाज का मेन मोटो ही सेवा ही संकल्प है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे कहीं से पूरे भारतवर्ष में देखें, संख्या में बहुत कम है, लेकिन समाज बिजनेस में सबसे अग्रणी है और सेवा में भी अग्रणी है। राजस्थान में आप एक एक गाँव में देखेंगे तो धर्मशाला से लेके हॉस्पिटल से लेके पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है। उसका मेन मोटो हम लोगों का यही है, सेवा ही संकल्प। जब भगवान ने अगर हमारे को जीवन दिया है तो उस जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम मानव मात्र की कुछ सेवा कर सके। जय महेश।
0: न सिर्फ समाज का जो संकल्प या कहना चाहिए मोटो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि सेवा ही संकल्प है, लेकिन साथ के साथ आप खुद ही देखिए कि अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, हमेशा हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, सो जब आप समर्थ हैं सो कोशिश करिए कि आप समाज को और भी समर्थ बनाएं। ना कि हम खुद तो खूब अमीर हो जाएं, लेकिन आसपास का हमारा समाज जो है ना वो हमेशा आपको लगे कि उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज का ही एक हिस्सा हैं। सो आज हम चले माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, जहाँ पर हमारे साथ राम कुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश घटानी जी थे। और आज की इस मानवता की राह पर हमने माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए बस एक ही वादा, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आप ही के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की आज इस कड़ी में मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो उतनी ही खूबसूरत है, दिल से ही नहीं चेहरे से भी। और इनका नाम है शशिकला कनकानी। शशिकला कनकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स की, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन लेडीज विंग। और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एनजीओ है जिसके साथ एक लंबे टाइम से एसोसिएटेड है, और वो है मदर टेरेसा क्लब। सो बहुत सारे सोशल वर्क के काम ये करती हैं और मैं इन्हें सही मायने में दिल से सोशल एक्टिविस्ट कह सकती हूँ। लेकिन आज हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम इनके विचार, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। शशिकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी और धन्यवाद आपका, मुझे भी उतनी ही खुशी है आपसे मिलके।
0: शशिकला जी पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम का स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैंने ये सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण दरअसल एक बहुत ही पर्सनल चीज है। सशक्तिकरण के मायने हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए मात्र पैसा कमाना सशक्तिकरण हो सकता है, सो किसी के लिए एक डिसीजन लेना सशक्तिकरण हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम सशक्तिकरण हो सकता है, तो किसी के लिए एक डेजिग्नेशन सशक्तिकरण हो सकता है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है?
1: मेरे नजरिए में भावना जी महिला सशक्तिकरण होगा महिला को ना केवल उसका अधिकार देना बट उसके प्रति उसको जागरूक करना, और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटी घर का काम हो या बड़े से बड़ा एमएनसी में कोई पोस्ट संभालना हो, और समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बना सके, मेरे हिसाब से वो महिला सशक्तिकरण है।
0: वाकई देखिए भाई, मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक ही बात कहती हूँ कि महिला जब तक खुश है

और वो अपने डिसीजंस खुद ले पा रही है, तब तक वो सशक्त है। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत हो या किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठे होने की जरूरत है। सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप अपना जीवन अपने तरीके से बहुत कम पैसों में जी रहे हैं, और सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा रही हैं लेकिन अपने जीवन में जो आप चाहती हैं वो आप कर पाती हैं, क्योंकि सशक्तिकरण आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक वक्त है प्यारे से खूबसूरत से गाने का, जुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। इस गाने के बाद वापस लौट कर आएंगे, शशि गंगानी जी से बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, सो आप कहीं नहीं जाएंगे। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। अब जब मैं वी कहती हूँ ना, तो मेरा मतलब दरअसल होता है महिलाएं एक साथ आ जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। पर परेशानी सदियों से यही आती है कि पुरुष महिलाओं को ना कहीं अलग रखने की कोशिश करते हैं, और कुछ महिलाओं के अंदर इनबिल्ट एक चिप होती है जिसमें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा हैं और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। सो ये जो एक व्यवहार है महिलाओं का, इसके कारण भी सशक्तिकरण इतना डिलेड हम महसूस कर रहे हैं। शशि कंकानी जी हमारे साथ हैं, और शशि कंकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ की, एक खास एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है खास तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग की और मदर टेरेसा क्लब के साथ, तो ये लंबे समय से एसोसिएटेड भी हैं। अब अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो वर्तमान समय की महिलाओं के बारे में है। शशि जी, हम ना एक लंबा सफर तय करके आ गए हैं। एक जमाना था बच्चियों को पैदा होने का मौका नहीं मिलता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, कन्या भ्रूण हत्या बंद हुई, फिर बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब बच्चियां पढ़ पा रही हैं, यहाँ तक कि फ्री एजुकेशन भी उन्हें मिल पा रही है। फिर बच्चियों को एक और परेशानी आती थी कि वो थोड़ी सी जवान होती थी तो उनकी शादियां हो जाती थी, चाइल्डहुड मैरिज जिसकी मैं बात करती हूँ, बाल विवाह। सो वो भी खत्म हुआ, अब वो एक ऐसी पड़ाव पर हैं जहां वो अपनी शादी को शायद 18 साल की उम्र के बाद देख पाती हैं। और फिर एक पड़ाव आया जहां वो शादी के लिए कंपेल्ड नहीं होती हैं, वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाती हैं, अपने लिए वो रोजगार ढूंढ सकती हैं। हम इस यहां तक आ गए, लेकिन यहां आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की कमी है। सो अगर मैं आज के चैलेंज की बात करूं, सो क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज है आजकल की महिलाओं के साथ?
1: महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से ना, उन्हें आज भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है, और कई बार उन्हें ना परिवार, समाज और अपने आसपास के लोगों के हिसाब के साथ में समान अवसर नहीं मिलते,
0: वाकई
1: काम करने का समान अवसर नहीं दिया जाता है। एंड इसके साथ भी ना एक और है कि लोग क्या कहेंगे, वो आज भी एक कहीं ना औरतों के मन में, लेडीज के मन में, खासकर उनके मन में ये जरूर आता है। जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके आइडियाज हैं, बट क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो उन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है, और फिर हम ना वो उस धर्रे पे चलने लग जाते हैं कि ठीक है, पीछे से जो चीज होते आ रही है वो आगे भी हम करते जा रहे हैं।
0: वाकई
1: वो है एक चीज।
0: देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसकी शिकार महिलाएं तो बहुत ज्यादा हुई हैं। अरे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात की जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अक्सर महिलाओं को बहुत सारी चीजों पर रोक टोक लगाई जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन वो घर पर बैठकर सिर्फ होममेकर के टैग के साथ जीती हैं, अपनी आकांक्षाओं का गला घोटकर जीती हैं। सो ये आज भी हमारी महिलाओं के लिए वर्तमान समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं का रोल डिफाइन किया गया है ना घर की चार दीवारी, तब तक शायद बहुत सारी परेशानियां महिलाओं के साथ रहेंगी। क्या किया जा सकता है? अगर आपके पास है सजेशन तो भेज दीजिए मेरे पास 8010781078 पर। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, सुना रही हूँ आपको प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना, फील गुड फील लाइव।
2: हमसे रोशन है चांद और तारे, हम

0: क्या
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की अप

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम और उतना ही बेहतरीन सा एपिसोड। शशिकला जी एक ऐसी महिला है जो बहुत सशक्त है, बचपन से ही बहुत सारी कुरीतियों को देखने के बाद भी ये हमेशा से एम्पावर्ड रही और शायद इन्होंने एम्पावरमेंट आने वाले समय में अपनी जनरेशन्स के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स को भी दी और इसीलिए इनके न सिर्फ स्वभाव में लेकिन आप देखेंगे कि इनके हाव भाव में भी सशक्तिकरण नजर आता है। जिस तरीके से इन्होंने सोशल वर्क को अपनाया है और जिस तरीके से अपने समय का और अपनी कला का सदुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं, ये एक सबसे बड़ी कला है शशिकला जी में। शशिकला जी, अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सशक्तिकरण की आपकी यात्रा, सो अगर देखा जाए तो आपकी एक लंबी जर्नी रही है इन खूबसूरत 55 सालों की। हाँ। इसमें कई ना कई जिंदगी में आपने कोई एक ऐसा निर्णय लिया होगा जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ होगा कि मैंने बड़ा एम्पावरिंग डिसीजन लिया है, ये बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन है, और उसके बाद ये मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई रिग्रेट नहीं था या आपको लगा कि यस ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है।
1: भावना, मैं राजस्थान से हूँ
0: जी,
1: और मैं राजस्थान में क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक पढ़ी हूँ
0: जी,
1: जहाँ मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। और मैं बात कर रही हूँ वे बैक 1984
0: जी।
1: सो उस टाइम में राजस्थान में 9th स्टैंडर्ड में हम कोर्स ले लिया करते थे अपना, जो अभी 11th में लेते हैं, हम 9th में ले लिया करते थे
0: जी।
1: और मैं क्योंकि ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, गर्ल्स स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स अलाउड था
0: जी।
1: सो मैंने अपने दादी जी से कहा, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी आर्ट्स, मैं कॉमर्स करूँगी
0: जी,
1: मुझे कॉमर्स करना है और मुझे सीए कंप्लीट करनी है।
0: वाओ।
1: सो वो आप समझ सकते हो कि वो कितना अपोजिंग डिसीजन रहा
0: है मेरा। वाकई।
1: और मैंने फिर अपने प्रिंसिपल सर से बात करी, जो बॉय स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि शशि अगर तुमको करना है तो तुम 5 फ्रेंड्स को ले आओ
0: जी।
1: मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी 5 फ्रेंड से बात करी, उसमें एक मेरे प्रिंसिपल सर की बेटी भी थी
0: जी।
1: तो मैंने उससे कहा कृष्णा से कि कृष्णा हम कॉमर्स करते हैं, एंड वी वेंट 5 लड़कियां, हम मैंने बनाया ग्रुप और मैं गई और हमने लिया
0: जी।
1: और बिलीव मी मैंने स्कूल टॉप किया।
0: वाओ।
1: क्लास 9th में, एंड वी वर हम सिर्फ 5 लड़कियां थी पूरे बॉय स्कूल में, 6th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक का क्लास था
0: जी,
1: उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 5 लड़कियां थी। डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला लोगों से, मेरे दादी जी ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मुझे कहा तुम जो ले रही हो आई एम विथ यू,
0: वेरी नाइस,
1: सी टू इट कि भाई कोई इस तरह का कोई भी चीज नहीं हो, बस और कोई बात नहीं है, आई एम विथ यू। एंड आई वेंट ऑन, आई डिड माई 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम देयर, देन आई शिफ्टेड टू कोयम्बटूर। सो आई थिंक वो हमारे मेरा पहला सशक्तिकरण आप बोल सकते हो,
0: मतलब
1: आई टुक अ डिसीजन फॉर माइसेल्फ
0: एट द एज ऑफ
1: 13।
0: वाओ, इमेजिन एट द एज ऑफ 13 आप इतना एम्पावरिंग डिसीजन लें कि भाई मुझे कॉमर्स करनी है, ऑल बॉय स्कूल में जाकर मात्र 5 लड़कियां वर्सेस प्रोबेबली 250 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन यही हम कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी क्या आप अपनी चॉइसेस को रख पा रही हैं। आज भी आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशंस में हैं, क्यों, क्योंकि टीचिंग लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए सेफ होता है, आप सुबह सुबह जाएंगी दोपहर तक घर आ जाएंगी, बच्चों का भी ख्याल रहेगा और आप भी नॉर्मल काम कर सकती हैं, ये कहकर बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में पुश किया जाता है, चाहे फिर वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहती हो, कहीं और कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहती हो, लेकिन कंपेल किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए सेफ है। और यही कुछ ऐसे प्रलोभन है या कहना चाहिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पुश कर करके महिलाओं को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या आप उन महिलाओं में से हैं जो सशक्त है, जो अपने लिए डिसीजंस ले सकती हैं और अपने डिसीजंस लेने के बाद विदाउट अ रिग्रेट उन पर आप अडिग रह सकती हैं, तो आप एक सशक्त महिला हैं। एक बार अंदर झांक कर देखिए अपने दिल से, और अगर आपने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है तो इट इज टाइम कि आप एक डिसीजन जरूर लें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज मैं बैठी हूँ शशिकला कंकानी जी के साथ। शशिकला जी वैसे तो दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ के साथ, प्रेसिडेंट हैं राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग, और उसी के साथ साथ मदर टेरेसा क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। लेकिन इन सब सोशल वर्क के कामों में ये महिलाओं को सशक्तिकरण देने का भी एक बहुत खूबसूरत सा काम कर रही हैं। सो कहीं जीवन दान देने की कोशिश करती हैं, कहीं अपनी केयर देने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ के साथ महिलाओं को एक नई सोच भी देने की कोशिश कर रही हैं। शशि जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने बड़ी प्रगति की है, सो हमने बहुत सारा अगर देखें तो हमने जहाँ तक अपनी डेवलपमेंट हो सकती है महिलाओं ने की है। कुछ महिलाओं ने रिबेल करके, कुछ महिलाओं ने परिवार को मना के, जैसे कि अगर हम आपके केस में देखें सो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शायद पेरेंट्स नहीं माने तो भी उन्होंने रिबेल किया, लेकिन वो आगे बढ़ी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मतलब बहुत सारी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमारे समाज में वो इक्वालिटी नहीं है। आज भी शायद एक महिला अगर काम करके घर वापस आती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए, और कि अगर वो उसका पति ही है तो वो उसको ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रोल्स को डिफाइन कर दिया है, महिलाओं पर कुछ जिम्मेदारी ऐसी डाल दी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप इन जिम्मेदारियों के लिए ही बने हैं। और बहुत सारी चीज़ों की इक्वालिटी, एक घर में एक पुरुष है जो उतने पैसे नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है या उतना पोटेंशियल या प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसी घर में एक महिला है जो उतना प्रतिभा भी रखती है लेकिन उसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि समाज क्या कहेगा कि पुरुष घर पर बैठा है और महिला कमाने के लिए जा रही है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी हम देखते हैं समानता नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है इस समानता को लाने के लिए?
2: इस समानता को लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा हमें
1: जी,
2: हमारा जो थॉट प्रोसेस है। एंड आई थिंक लेडीज का एक बहुत अहम रोल रहेगा इस थॉट प्रोसेस को बदलने में
1: जी।
2: अगर घर की लेडी, सपोज मैं घर की लेडी हूँ, और अगर मैं ये चीज कह दूँ या इस चीज पे अपने बच्चों को ये दूँ, मेरे बेटा है बेटी है दोनों को इक्वल राइट्स है और कोई हार्म नहीं है, और अगर मेरी बहू भी आती है घर में तो मुझे ये, मतलब जो आपने बोला कि एक कप चाय नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, मेरे हिसाब से मुझे ये चीज फॉरवर्ड आके करना चाहिए। सो मुझे अगर घर की लेडी की सोच बदली हुई है तो आई थिंक वी कैन, हम वो चीज बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
1: देखिए शशि जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इसमें भी महिलाओं का हाथ है, और मैं तो ये कहती हूँ परवरिश में हाथ है।
2: यस,
1: क्योंकि परवरिश महिला का
2: रोल है, महिला का।
1: अगर हम जब एक लड़के की परवरिश कर रहे हैं और उसे उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ उसे कहें कि वो उसका बचपन,
2: छोटा सा वाक्य याद आ रहा है अपनी लाइफ का
1: जी।
2: तो मैं अपने दादाजी दादी जी के पास पढ़ी थी फ्रॉम क्लास 4 to 9
1: जी।
2: तो जब मैं क्लास 8 में थी, 13-14 ईयर्स की रही हूँ, तो उन दिनों में मेरे जैसे जितने भी राजस्थान में मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी उनकी बाई 87, 86, 87, 88 शादी हो गई
1: जी।
2: तो मेरे लिए भी किसी ने प्रपोजल भेज दिया
1: जी।
2: तो मेरे दादाजी बोले अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं, और इमीडिएटली मेरी दादी जी बोली अभी ये पढ़ रही है और ये पढ़ेगी आगे। सो मेरा दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज कि ये चीज ना घर लेडीज के हाथ में ही है।
1: yes.
2: और हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ना गॉड ऑलमाइटी का भी एक पावर दिया हुआ है।
1: हाँ.
2: जिसे हमें रियलाइज करना है और उसे अप्लाई करना है। सृजन हमारे हाथ में है। मदर्स डे पे मैंने कोट पढ़ा कि 50% ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन, द अदर 50% आर हर चिल्ड्रन।
1: यस,
2: सो बेसिकली हमें ही वो चीज करना है। और जैसे आप कहते हो वी, तो वी का मतलब है हम।
1: यस,
2: तो वुमेन एम्पावरमेंट हम अगर करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप ही आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का ना कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू अर्न, मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं एम्पावर्ड हूँ। नो, अगर मैं घर भी अच्छे से संभाल रही हूँ, मेरी मर्जी से बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, जहां मैं ये नहीं फील करती हूँ कि मेरे पे ये थोपा गया है, तो इफ आई चूज लाइक आई हैव चोजन,
1: यस
2: आई एम इक्वली, मैं अपने हस्बैंड के साथ में 92 से बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, प्रॉपरली टेक केयर करती हूँ. व्हेन ही इज एब्सेंट फॉर सपोज से वन मंथ, वन एंड अ हाफ मंथ, आई हैंडल द बिजनेस ऑल बाय माई सेल्फ, टेकिंग ऑल द डिसीजंस.
1: यस,
2: सो आई थिंक दैट इज एम्पावरमेंट
1: एक्चुअली.
2: एंड एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी हैंडलिंग माई हाउस.
1: यस, देखो यही सही सशक्तिकरण है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सशक्तिकरण का जो डेफिनेशन है ना, वो हर महिला के लिए जुदा हो सकती है. सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे हिसाब से सशक्तिकरण नहीं है, ये उसका एक स्टेप हो सकता है. लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुशी से अपने लिए ले सकते हैं, विदाउट अ प्रेशर आप जी सकते हैं. भाई मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको एक सबैटिकल लेना है, आपको लगता है जी बहुत काम कर लिया, मुझे 10 साल का ब्रेक लेना है, मुझे आराम करना है, तो आप अपने डिसीजन ले रहे हैं. अब ऐसे में कोई आकर कहे ये तो तुम्हारे करियर का पीक है, तुम कैसे इस डिसीजन को ले सकते हो, अभी तो तुम्हें कमाना चाहिए. सो यहाँ पर आपका सशक्तिकरण खत्म होता है, जहाँ आप किसी और के डिसीजन से जिंदगी जी रहे हैं. लेकिन वहीं पर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप काम करना चाहती हैं, और आपको ये कहकर घर पर रख दिया जाए कि आप इस घर की बहू हैं, इस घर में बहुत पैसा है, हमें तुम्हारे पैसे की या तुम्हारी सैलरी की जरूरत नहीं है इस घर को चलाने के लिए, सो वी डोंट वांट यू टू गो आउट एंड अर्न, ये कहते हैं सशक्तिकरण ना होना, ये आप पर थोपा जा रहा है. लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी मर्जी से, चाहे आप होम मेकर बनना चाहती हैं, आप एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहती हैं, घर बैठकर काम करना चाहती हैं, ये इसमें कोई अर्ज नहीं है, आप उतनी सशक्त महिला है. बट परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण की सही डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं, और क्या समाज हमें ये सही डेफिनेशन दे पा रहा है या नहीं, क्या हमें वो ये अधिकार दे पा रहा है. सो कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइफ.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। देखिए शशि कला जी की बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो आपने सुनी है, आई एम श्योर हम बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे। मैं तो इस बात से इंस्पायर्ड हूँ कि अगर आप एक ऐसी महिला है जिनके पास पूरे घर की अथॉरिटी है, सो प्लीज अपनी डाउन दी जनरेशंस को वो लिबरेशन दे दीजिए, वो एम्पावरमेंट दे दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है, और फिर धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी। डाउन द लाइन हर सास, हर माँ, हर बड़ी बहन, हर भाभी, हर जेठानी शायद लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लिबरेशन देगी, सपोर्ट देगी, सपोर्ट देगी देन कि हम ये सोचें कि वो उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। शशि जी, आप ना बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है सोशल सर्विस में, ढेर सारे काम, मतलब मैं अगर देखूं तो आप फ्रेंड्स ऑफ मैक से तो करीबन 2000 से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा क्लब की, मैं राजस्थान एसोसिएशन की, माहेश्वरी मंडल की बात करूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक लंबे समय से और बहुत ही समय से आप सोशल वर्क के काम करें। सो इस सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये आपके अंदर कैसे आया?
1: इसके लिए मैं श्रेय दूंगी मेरे फादर को
0: जी,
1: बिकॉज मैंने ना उनको बचपन से देखा है एज अ गिवर
0: जी,
1: तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज इनहेरिट हो गई। और मेरी दादी जी, मेरी मदर, एंड देन इट वाज सपोर्टेड, मतलब वो चीज मेरे हस्बैंड में भी है, सो इट जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट। और मेरा जो मैंने किया गिविंग, जैसे छोटी छोटी चीजें तो हम करते ही थे
0: जी,
1: कुछ भी, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग,
0: यस।
1: तो मैंने ना शुरू से ही क्लासरूम में भी, तो आई हैड सो मेनी, जिसको भी कोई जरूरत होती कभी भी, वो पूरे क्लास में सबसे पहले मेरे पास आता,
0: वेरी गुड
1: शशि, डू यू हैव दिस,
0: यस
1: आई नीड दिस। सो और आज भी वही होता है
0: जी,
1: जैसे हमारा मदर टेरेसा ग्रुप है, 50 लेडीज का ग्रुप है
0: जी,
1: बट अगर उसमें मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसमें अगर किसी को भी कोई तरह की हेल्प चाहिए, उनके दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो शशि कंकानी का,
0: यस।
1: सो दैट इज द थिंग। और जैसे मैं क्लास 11th में थी
0: जी,
1: तो मेरी क्लासमेट थी, शी वाज फाइनेंशियली वीक,
0: यस।
1: तो हम एक्सकर्शन ट्रिप पे जा रहे थे एंड शी कुडंट गो
0: जी,
1: तो मैं जब मुझे आई ओवरहर्ड, शी वाज जस्ट माय क्लासमेट, मुझे मतलब मैं उससे उसके बाद में कभी मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, जैसे मैं बाकियों से कनेक्टेड हो गई, बट उससे मैं अभी भी नहीं कनेक्टेड हूँ। तो उस वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रही थी कि यार तुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आना चाहती हूँ बट मैं नहीं आ पाऊंगी
0: जी।
1: तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट एंड देन आई वेंट टू माय क्लास टीचर
0: जी,
1: आई सेड मैम मैं ना इसका पैसा मैं भर देती हूँ, दिस इज वे बैक इन 84,
0: जस्ट इमेजिन
1: 500 रुपीस वाज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम,
0: हां या एक्चुअली।
1: तो मैंने वो दिया अपने पॉकेट मनी से निकाल के, एंड आई डिडंट टेल माय पेरेंट्स आल्सो, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस,
0: वाओ,
1: nobody knows about it. So and the happiness on her face, she was so happy and she kept asking my class teacher
0: ki kisne diya,
1: ki ma'am kisne diya mera paisa, please aap mujhe bata do, so I want to thank her,
0: yes,
1: and I said nahi aap batana mat ma'am, so till date she also doesn't know, you are the first person to,
0: wow,
1: do it.
0: Wow, to bhai dekhiye agar wo radio manav rashta 107.8 fm sun rahi hai to ab aapko pata hai kya aapki class mein shashi gankani ji ne wo 500 rupaye diye the aapko excursion par le jane ke liye, but yes यहीं से शायद बीज शुरू होता है। सो क्या आपने डाउन योर जनरेशन अपने बच्चों में भी इसे डाला है?
1: यस, माय चिल्ड्रन आल्सो हैव, जैसे मेरा बेटा है, उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पूरी की पूरी बॉम्बे में था एक्सेंचर में, सो ही यूज्ड टू गो नियर बाय, देयर वाज एन एनजीओ फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन
0: जी,
1: सो ही वुड गो देयर, वहां जाके उनको बुक्स देना, फूड देना और किताब, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मेरे दोनों बच्चे करते हैं, इवन व्हेन दे वर हियर स्कूल में थे तब भी वो जैसे झुग्गियों पे जाके और कुछ कुछ बांट के आना करते थे।
0: तो देखिए भाई, ये ना कुछ चीजें हैं जो आप सिखा सकते हो, समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, एक जीवन मिलता है, मान लीजिए कि आपका जीवन 80 साल का है, सो आप इस 80 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेंगे, किसी से प्यार लेंगे, किसी से रिश्ता लेंगे, कहीं से आप पैसा लेंगे, और उसी के साथ साथ इस समाज से आप बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपको जानेंगे, लेकिन इन सबको वापस देने का भी तो समय होता है, और वो समय होता है उन लोगों को रिकग्नाइज करने का, उन लोगों को भी रियलाइज करवाने का जिनके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और शायद इस डगर पर शशिकला कंकानी जी बहुत ही खूबसूरती से चल रही हैं और इसीलिए सही मायने में मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। ना सिर्फ आपने अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटे, कुछ कहानी हमें सुनाई, बहुत सारी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया, लेकिन जाने से पहले क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी उन सभी को?
1: मैं कहना चाहूंगी एक महिला को सशक्तिकरण के लिए किसी भी स्टैंप की जरूरत नहीं है। वो गॉड गिफ्टेड ऑलमाइटी ने उसे ऑलरेडी सशक्त करके भेजा है
0: जी,
1: क्योंकि सृजन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ लेडीज में है।
0: एग्जैक्टली,
1: तो हमें, हम दुनिया रचा सकते हैं, बना सकते हैं, तो हमें उसे बनाए रखने के लिए भी हमें किसी के स्टैंप की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे हमें पहचानना है और उसी को ग्रो करना है। आप भी ग्रो करिए, आने जैसे मदर्स हैं तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बराबर वो समझाइए कि ये दोनों काम बराबर, सब काम सब कर सकते हैं
0: जी।
1: और बहू है तो उसे भी अपनी स्पेस दीजिए, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे देरानी जिठानी हो, सबको अपनी अपनी स्पेस दीजिए। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, नॉट वो हमेशा ना बाई मॉनिटरी टर्म्स में आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
0: yes.
1: अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया, आप उसे ये याद रखिए और उसे भी वापस लौटाइए
0: जी।
1: और जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेते हो उस पर खुश होके लीजिए और उस पर खुशी खुशी स्टैंड करिए। आई थिंक दैट इज वॉट इज एम्पावरमेंट अबाउट
0: एक्चुअली। सो भाई मैं तो यही कहूंगी कि इस सशक्तिकरण की राह पर ना हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें जीवन की सीख दे जाते हैं, कुछ लोग नसीहत दे जाते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। बट सशक्तिकरण तब तक ही बहुत खूबसूरती से बनी रह सकती है जब तक आप हर इंसान को उसका फ्रीडम जरूर देते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते में हो, फिर चाहे वो आपके आसपास के लोगों में हो, उन्हें उनका फ्रीडम भी दीजिए, उन्हें उनका स्पेस दीजिए। और ध्यान रखिए कि भाई हर इंसान वैल्यूएबल है और हर इंसान बिल्कुल अलग है। सो कभी भी कंपेयर मत करिए किसी को भी, ना इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, ना इन टर्म्स ऑफ आपकी अपनी नॉलेज या किसी भी तरीके से। सो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे ना, ये लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरह। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: धन्यवाद भावना।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगले हफ्ते मेरी आपसे होगी मुलाकात। टिल देन फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक की एक कविता है जिसका शीर्षक है भारत गगन। इस कविता में वो कहते हैं, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, दुई दिवी धूती पूरी राजत भूरी भ्राजत भगन, नखत अवली प्रकाश पुर्वत दिव्य सुरपुर मगन, सुनमुन खिली मंदार महकत अमर भौनन अगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, मिलन प्रिय अभिसारी सुरतीय चलत चंचल पगन, छिटकी छूटत तार किंकिनी टूटी नुपुर गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निहरत गंधर्व निरतत उमग भरी अंग अगन, तहां हरि पद प्रेम पागी लगी श्रीधर लगन, निरखहु रैनी भारत गगन, निरखहु रैनी भारत गगन। लेकिन इस कविता के अलावा उनकी एक और कविता है जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। हिंद महिमा के बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक की एक कविता है जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। हिंद महिमा में वो कहते हैं, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद, जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद, जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद, जय मलयज मेरु मंदरा हिंद, जय शैल सुता सुरसरी हिंद, जय यमुना गोदावरी हिंद, जय जयति सदा स्वाधीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद। तो ये थी उनकी वो कविता जिसका शीर्षक है हिंद महिमा। इसके अलावा उन्होंने स्वदेश विज्ञान की बात की है। अब स्वदेश विज्ञान के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ बताना या समझाना चाहते हैं। अब उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है स्वदेश विज्ञान। इसमें वो कहते हैं, जब तक तुम प्रत्येक व्यक्ति निज सत्य सत्य ना ही जानोगे, त्यों नहीं अति पावन स्वदेश रति का महत्व पहचानोगे। जब तक इस प्यारे स्वदेश को अपना निज नहीं मानोगे, त्यों अपना निज जान सतत शुश्रूषा व्रत नहीं ठानोगे। प्रेम सहित प्रत्येक वस्तु को जब तक नहीं अपनाओगे, समता युत सर्वत्र देश में ममता मति ना जगाओगे। जब तक प्रिय स्वदेश को अपना ईष्ट देव ना बनाओगे, उसके धूली कणों में आत्मा को समूल ना मिलाओगे। पूत पवन जल भूमि व्योम पर प्रेम दृष्टि नहीं डालोगे, हो अनन्य मन प्रेम प्रतिज्ञा पालन व्रत नहीं पालोगे। तन मन धन जन प्राण देश जीवन के साथ नसानोगे, सोप युक्त विज्ञान ज्ञान का सुखद वितान ना तानोगे। तब तक क्यों कर देश तुम्हारा निज स्वदेश हो सकता है, स्वतत्व उसी का रह सकता है, रख उसको जो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, उन्होंने अपनी इस कविता यानी स्वदेश विज्ञान के माध्यम से लोगों को स्वदेश की जानकारी दी और स्वदेश के बारे में जागरूक किया। लेकिन इनका एक गीत है जो देश प्रेम के रंग में डूबा हुआ है, उस गीत के बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, श्रीधर पाठक के उस गीत की बात कर लेते हैं जो देश प्रेम के रंगों से सराबोर है। जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जग सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। प्यार देश जय देशेश, अजय अशेष सदै विशेष, जहां न संभव अग कालेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, प्रेम मूल प्रिय लोक त्रिय का, सुललित प्रकटी नटी कटी का, ज्यो निशी का राकेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। जय जय शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कलरव निरत क्लोनिन गंगा, भानु प्रताप समत्कृत अंगा, तेज पुंज तपवेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। जग में कोटि कोटि जुग जीवे, जीवन सुलभ अमीरस पीवे, सुखद वितान सुकृत का सीवे, रहे स्वतंत्र हमेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। तो ये गीत था जो देशभक्ति की बात बताता था, लेकिन इसके अलावा एक उनकी कविता है जिसका शीर्षक है बलि बलि जाऊं। अब ये बलि बलि जाऊं में क्या कहना चाहते हैं, इसको भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।
2: चांद

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक अपनी कविता जिसका शीर्षक है बली बली जाऊं, इसमें कहते हैं, भारत पे सैया मैं बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, हियरा लगाऊं, हरवा बनाऊं, घरवा सजाऊं, मेरे जियरवा का, तन का, जिगरवा का, मन का, मंदिरवा का प्यार बसैया, मैं बली बली जाऊं, भारत पे सैया मैं बली बली जाऊं, भोली भोली बतिया, सांवली सुरतिया, काली काली जुल्फों वाली मोहनी मुरतिया, मेरे नगरवा का, मेरे डगरवा का, मेरे अंगनवा का क्वारा कन्हैया, मैं बली बली जाऊं, भारत पे सैया मैं बली बली जाऊं। तो दोस्तों, इस तरह का अंदाज था लिखने का श्रीधर पाठक का। कुछ और भी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, श्रीधर पाठक के बारे में आपसे बहुत सारी बातें मैंने कर ली है और उनकी जो रचनाएं थीं, उनकी जो कविताएं थीं, उनके जो देश प्रेम में डूबे गीत थे, सभी के बारे में आपसे जिक्र किया है और अपने लेखन से लोगों को समझाने का प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। वाकई दोस्तों, श्रीधर पाठक ने दशकों तक हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ काव्य कृतियों का सृजन किया था, लेकिन 13 सितंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी उनकी लोकप्रिय रचनाओं के लिए उन्हें याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें उसमें और उसमें है वो ही, यार मेरा हर तरफ भरपूर है।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 पर शुरू हो चुकी है प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। और इस महफिल में शामिल सभी दोस्तों की खिदमत में फहीम का नमस्ते।

मृत्यु जीवन का अंत नहीं, प्रारंभ है। दोस्तों, सूफियों को किसी धर्म, जाति, संप्रदाय में बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। यहां तक कि सूफी लिंग भेद की पहचान से भी बहुत ऊपर होते हैं। भले ही उनका शरीर किसी भी लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, लेकिन खुद उनकी कोई जात नहीं होती। संत बुल्ले शाह बड़ी ही प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं कि जाना मैं कोई रे बाबा, कि जाना मैं कोई, जो कोई अंदर बोले चाले, जात असाड़ी साई, जिस दे नाल में नेहू लगाया, ओहो जिहा मैं होई। मुझे क्या पता कि मैं कौन हूं, मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं जो मेरे अंदर बैठा है, मेरा भगवान, बस मैं उसी से बातचीत करता हूं, उसी के साथ मस्त रहता हूं, वही मेरा यार है, वही मेरी जात है, उसी के साथ मेरा नेह जुड़ा हुआ है और मैं बस उसी का ही हूं।

0: अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संगठन अति आवश्यक है।
1: दोस्तों सच तो ये है, आत्मा की अपनी कोई जाति नहीं होती। सूफी का प्यार खुदा से रूह का प्यार होता है। वो खुद को भी शरीर नहीं आत्मा समझता है। साधना में संत अपनी साधना के जरिए एक ऐसी हालत पर पहुंच जाता है जहां उसे खुद अपनी खबर नहीं होती। उनका अपना आपा ही अपनी पहचान से परे हो जाता है। प्रेम के पथ में ऐसी ही हालत को उपलब्ध हो जाने का नाम है सूफी। इसलिए वो खुद के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लेता है, इसलिए वो खुद के बारे में कुछ नहीं कह पाता। बस अपने आप में मस्त रहता है।

ऐसी किताब रोजाना पढ़ना जरूरी है जो आपकी आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति में सहायक हो। दोस्तों, सूफी संत सुल्तान बाहू का कहना है, मैं ना शेर हूँ, ना पाव हूँ, ना छटांक हूँ, ना सरसाही हूँ, तोला या माशा भी नहीं हूँ, मैं तो पूरी एक रत्ती भी नहीं हूँ। अगर रत्ती होती तो रत्तियों के साथ तुली जरूर जाती, मगर अफसोस वो भी पूरी ना निकली, यानी मैं उतना भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि जो मालिक के आशिक होते हैं वो ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी रीति रिवाज के पाबंद होते हैं। वो तो बस अपने खुदा के दीवाने होते हैं, आशिक होते हैं। प्रीत

अधकचरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण होता है। दोस्तों, सूफी संत कहते हैं, जो इश्क में अपनी खुदी यानी अहम और हस्ती को गवा देता है वही सच्चा फकीर है, और अपने अहम को मोहब्बत के जरिए ही मिटाया जा सकता है। सूफी संत सुल्तान बाहू कहते हैं, नफ्स यानी अहम और मन ही आत्मा को परमात्मा से अलग रखने वाली ताकत है, जिसकी वजह से माया, खुदी, द्वैत, संचय जैसे कई विकार पैदा होते हैं। केवल प्रेम ही मन को काबू में करके इन दुखों से छुटकारा दिला सकता है। प्रेम खुदी को मारने का अचूक उपाय है, और इसी के जरिए रूहानी राह पर तरक्की होती है।

इस दुनिया में ज्ञान दान करने वाले के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। दोस्तों, खुसरो कहते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पी को दोनों एक ही रंग। कहने का मतलब है, सुहाग की रात में अपने पिया के संग थी, और जब मैं सोकर उठी तो मैंने पाया कि मेरा तन जरूर मेरे पास था, पर मेरा मन मेरे पिया के रंग में रंग चुका था। खुसरो खुदा को अपना पिया या शौहर कह रहे हैं और खुद को उनकी सुहागन बीवी कह रहे हैं। आगे कुछ और भी कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे गरहारी पी के संग। प्रेम एक खेल है जिसको मैं अपने पति यानी मुर्शिद के साथ खेल रही हूं। अगर मैं जीत गई तो पिया मेरे हो जाएंगे, और हार गई तो मैं पिया के संग हो जाऊंगी। इन शब्दों में खुसरो अपने मुर्शिद को यार कहते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर।

हमारे पूर्वजों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आज की पीढ़ी को कर्तव्य के लिए संघर्ष करना है। दोस्तों, सूफी जो होता है, सूफी मिटने के लिए जीता है। सूफी क्यों जीता है, क्या चाहता है? सूफी समा जाना चाहता है, मिल जाना चाहता है उस खुदा की दुनिया में। सूफी खाक हो जाना चाहता है, फना होना चाहता है, ताकि उसका द्वैतवाद छूट सके और वो अद्वैत में खो सके, उस नूरानी शक्ति के साथ एक हो सके। यही फर्क है आम मोहब्बत और सूफी मोहब्बत में, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में। खुदा रूपी सागर में जो जितना गहरा जाता है उतना ही ऊपर उठता है। यही सच्चे प्रेम की निशानी है और यही सच्चे प्रेम की ऊंचाई है।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। लेकिन अब आपकी रात का हम सफर फहीम चाहता है आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
1: रंग रेजा, रंग रेजा।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आरजे सागर आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड, फील लाइफ। ये शो बहुत खास है, उसकी वजह भी है कि यहाँ पर आपको एजुकेट करते हैं, हम साथ साथ आपको बताते हैं कि इंडिया में जो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए हैं या फिर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनीज या लोगों या प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स, किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का हाथ है। तो आज का शो अगेन बहुत खास होने वाला है। हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो डील करती है एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में। विल टॉक अबाउट इट एंड विल स्टार्ट द शो बाय टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी, टू द फाउंडर्स, देयर बैकग्राउंड, द यूएसपी, एवरीथिंग। बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहां पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री वी आर एड्रेसिंग इट। द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज

मार्केट वैल्यू था, 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सब ने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टल मिंट। ठीक है, ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए। यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जाकर के इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

la hum, jinga la la hum, jinga la la hum. वेलकम बैक. उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई. बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे. मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए. एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो सारी इंश्योरेंस कंपनी जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है. इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए. ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है. मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है. डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है. तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं. लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है. सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया. प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में. बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है. बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर सभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं. आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की. लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है. देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC. मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं. इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था. अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड. आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं. प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है एंड वी आर डन. तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है. सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज. ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड. मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है. जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए. होता है ना ऐसे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं. तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया. तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास. So that's how things are working. वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे. लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइव.

मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्मस्टर 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस। जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीजें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात यह है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है। आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे फेजेस आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकेंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत इजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो इजीली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहां पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड।

पुरस्रार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। इन शॉर्ट एक हमारी आज की इंडस्ट्री है। आइए बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी का नाम है बीमा प्लान। अभी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दो शब्दों का मिलाकर के एक शब्द बना है, बीमा यानी कि इंश्योरेंस। प्लान मतलब प्लान, हम सबके कुछ ना कुछ प्लान होते हैं। सो बीमा प्लान इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। ये इंश्योरटेक में डील करती है और ये एक स्टार्टअप है जिसका फोकस है इंडिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एंड द फोकस इज ऑन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम विच इज लैक ऑफ इंश्योरेंस एक्सेस फॉर लो एंड मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स। अब देखिए, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास अपना इंश्योरेंस नहीं है। उसके बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती, कि जागरूकता नहीं होती, और कई बार बजट नहीं होता। तो उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केटर करते हुए लो और मिडिल इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का काम कर रही है कंपनी जिसका नाम है बीमा प्लान। जहां पर मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में फोकस करती थी ट्रेडिशनली, अगर हम स्पेशली बात करें तो अर्बन अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स या अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जो कंपनी है टारगेट करती है एक ऐसे सेगमेंट को जो बहुत लार्जली इग्नोर हुआ है लंबे टाइम तक, जैसे डेली वेज अर्नर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, स्मॉल शॉप अर्नर्स हो गए, रूरल फैमिलीज हो गई, या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंश्योरेंस को, तो ये यहाँ पर उनको केटर करते हैं। इनका बहुत सिंपल सा कहना है कि भैया हमारा प्लान है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मासिव, वो है कि इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना एंड एक्सेसिबल बनाना फॉर द नेक्स्ट बिलियन इंडियंस, अगले 100 करोड़ जो इंडियंस हैं उनके लिए। तो यहां पर ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजिटली थ्रू पार्टनरशिप्स, जहां पर कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं, विच इज की यहां पर ये लोग एजेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर एक कमीशन वाला पार्ट जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो उसको एलिमिनेट करते हुए ये कंपनी डील करती है। दिस इज बीमा प्लान। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

बैक, मैं आरजे सागर। ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी का नाम है बीमा प्लान और हमने वही आपको बताया कि कंपनी क्या करती है। लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। तो सिंपल से आइडिया के साथ ही कंपनी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी जो है जो बहुत ब्रूटल है वो इंडिया में इन्होंने ऑब्जर्व करी, एंड दैट रियलिटी इज कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ऐसी चीजें हो जाती है हमारे परिवारों में जिसकी वजह से कई बार लोगों के घर बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिशनल जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मार्केट को केटर तो करते थे, बट एक तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ऐसा था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मॉल टिकट्स जो हैं वहां पर नहीं एंटरटेन होती थी, मतलब छोटे इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं थे उनके पास, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट जो है वो बहुत लो था, एंड रूरल एंड सेमी अर्बन जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया था। तो बीमा प्लान की जो कंपनी है, इस कंपनी को ये बात समझ में आई और इन्होंने इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें बहुत हद तक योगदान और बहुत सारे एलिमेंट्स का है, स्मार्टफोन्स का है, यूपीआई पेमेंट्स का है, इंटरनेट का है, डिजिटल अडॉप्शन का है। छोटे शहरों में ये तमाम चीजें

0: बाय कर सकते हैं।
1: तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं ग्रुप को इन्होंने केटर किया और एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो वहां पर एग्जिस्ट करती है उसको वहां पर आवाज देते हुए इस कंपनी ने जो है नींव रखी और लोगों की हेल्प करी। दैट इज द थिंग। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं फाउंडर की। कौन है फाउंडर? विल टॉक अबाउट इट, बट इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील

बिना वक्त गंवाए शो को आगे लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ आपको गाने पसंद आए, आपको शो पसंद आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 नंबर है हमारा, इस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं फाउंडर की। कंपनी के फाउंडर हैं विकुल गोयल। विकुल गोयल कोई फर्स्ट टाइम फाउंडर नहीं है और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली पीपल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बट कोई भी इंसान जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम को स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडर हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें समझ आ चुकी होती हैं, उनके बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। एग्जीक्यूशन, बर्न रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, स्केलिंग पेन, ये सब कुछ इस कंपनी के जो फाउंडर हैं विकुल वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिकॉज बीमा प्लान के पहले इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था कार क्रू, ठीक है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था ऑटोमोबाइल सर्विसेज के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए। बाद में इसको टीवीएस ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां पर इन्हें बहुत सारी चीजों के लिए आप कह सकते हैं कि फीडबैक भी मिले, बहुत सारी इनकी लर्निंग रही, ठीक है, जहां पर ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी इन्हें मिली, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, इन्हें स्केलिंग समझ में आया, इन्हें फेलियर समझ में आए। इसके अलावा इन्होंने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के साथ काम किया है, जीएसएफ एक्सेलरेटर के साथ काम किया है। तो इन तमाम जगहों पर काम करने के बाद, अपना खुद का एक स्टार्टअप करने के बाद जिसका एक्विजिशन भी हो चुका है, उसके बाद इन्हें एक्सपोजर मिला स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का, फिनटेक ट्रेंड्स का, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालिसिस का, ग्रोथ का, कि किसी कंपनी को ग्रोथ वाली स्टेज तक कैसे लेकर के जाना होता है। एंड ही गॉट जस्ट वन पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग। अब इनके थोड़े से हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं जहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने एमबीए किया है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि आईआईटी ने टेक्निकल और एनालिटिकल ग्राउंड्स पे इन्हें स्किल्स दिए, हार्वर्ड ने उन्हें जो है बिजनेस थिंकिंग दी, वेंचर इकोसिस्टम से इन्हें इंट्रोड्यूस किया, कुछ ऐसे कॉलीग्स दिए जो सेम डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं, देन इसके अलावा खुद ने कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के अपना स्टार्टअप करके या जॉब करके या सम हाउ कंपनी के साथ काम करके एक तरीके से खुद को ट्रेन किया, उसके बाद जाकर के कॉन्फिडेंस आया, इतने बड़े गैप को फिल करने का काम किया और ये कंपनी स्टार्ट करी, विच इज बीमा प्लान, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे कंपनी की यूएसपी की। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक, मेरा नाम है सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी हमारी आज की बीमा प्लान, और अब यहाँ पर बात करेंगे यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। फर्स्ट यूएसपी आती है माइक्रो इंश्योरेंस फॉर अनडिजर्व्ड इंडिया। बीमा प्लान जो है यहाँ पर डायरेक्टली किसी प्रीमियम इंश्योरेंस ब्रांड के साथ कम्पीट करने का काम नहीं कर रही। इनका बहुत सिंपल सा फोकस है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी। कोई ग्लैमरस बिजनेस पोजीशनिंग नहीं करी इन्होंने। इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन लेवल पर जो है गेम अपना एक्सेल किया, जहां पर लोगों को जरूरत है इंश्योरेंस की, पैसे नहीं है, तो उनकी उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। एम्बेडेड इंश्योरेंस मॉडल इन्होंने दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कस्टमर्स कम बाय इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ चीजों में इन्होंने जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे थे वहां पर अपना इंश्योरेंस जो है एम्बेड किया, ठीक है, जिससे फ्रिक्शन कम हुआ, डिस्ट्रस्ट कम हुआ, अवेयरनेस बैरियर्स भी इन्होंने कम जो है यहाँ पर कम किए। एंड दैट्स हाउ ये कंपनी यहाँ पर निकल के आई। मतलब भाई सीधे तौर पर अगर आप किसी को बोलोगे इंश्योरेंस खरीद लो तो इंसान कतराएगा, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ खरीदने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को स्कूटी खरीदनी है, उसको बोला जाए यार इसमें 100-200 रुपये या 500 रुपये कुछ और दे दो और तुम्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो कस्टमर थोड़ा जल्दी उसको लेकर जो है रिस्पॉन्ड करता है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और ये बात हमें अब समझ में आ रही है डिजिटल इंडिया, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम है, कस्टमर साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है वर्नैकुलर प्लस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया का जो नेक्स्ट इंटरनेट वेव है दैट इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग मेट्रो यूजर्स। यहाँ पर टीयर टू टीयर थ्री ग्रोथ मैटर करती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये बहुत सीरियस स्ट्रेटजी है। अभी आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर जिस कंपनी का कंटेंट अगर अच्छा चल रहा है तो वो कंपनी अच्छा कर रही है। अगर किसी ब्रांड का कंटेंट अच्छा नहीं चल रहा है, कंटेंट अगर वो नहीं बना पा रही है, तो उस कंपनी के सामने कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। उसकी वजह भी है कंटेंट इज स्टोरी, स्टोरी ब्रिंग्स ट्रस्ट, ट्रस्ट ब्रिंग्स अवेयरनेस, अवेयरनेस ब्रिंग्स मोर पीपल इन। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल स्टैक इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने खुद से तैयार किया है। सो बीमा प्लान प्रोवाइड करता है एंड टू एंड इंटीग्रेशन, पॉलिसी इंश्योरेंस क्लेम, कस्टमर एंगेजमेंट, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, इंश्योरेंस APIs। सो दे आर नॉट जस्ट सेलिंग पॉलिसीज, दे आर बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर द USPs ऑफ दिस कंपनी। आई होप यहां तक आप समझ पाए हैं हमारे आज की कंपनी को। अब एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव, मेरा नाम सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव 107.8 एफएम के साथ। आइए बात करते हैं की ड्राइवर्स की। इस कंपनी के बहुत सारे की ड्राइवर्स हैं, हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि राइज ऑफ UPI एंड स्मार्टफोन जब से आया है, लोगों की चॉइसेस काफी चेंज हुई हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए और लोगों की हेल्प हुई है। बेसिकली उनके पोटेंशियल कस्टमर्स उन्हें समझ में आ गए, ठीक है। UPI, ई आधार, चीप इंटरनेट, इन चीजों को कैसे इनकैश किया जा सकता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैश ऐसे नहीं कि किसी को कुछ गलत बेचा जाए, बट उसी में कुछ ऐसी चीजें जो उनकी नीड भी है और इसी इकोसिस्टम में कहीं पर इंटीग्रेट किया जाए तो कितना अमेजिंग, कितना स्मूथ हो जाता है ना। सो स्टार्टअप्स में टाइमिंग मैटर करती है। बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज द आइडिया इज बैड, बिकॉज मार्केट या तो बहुत अर्ली है या बहुत लेट आ रहे हैं। इसलिए सही टाइम पर सही चीज जो है ट्रिगर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरल सिंप्लिसिटी। इंश्योरेंस को लेकर के एक साइकोलॉजी है कि भैया बहुत मुश्किल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है बेचना, फ्रॉड होते हैं, ठीक है, इसलिए लोगों को वो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता है। प्लस इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी नहीं होते हैं, ट्रस्ट भी बहुत लो है, पेपर वर्क बहुत इरिटेटिंग है। तो यहां पर इस कंपनी ने क्या किया, प्राइसिंग अपनी अफोर्डेबल कर दी, सबको एक्सेस दे दिया, ऑनबोर्डिंग को स्मूथ बना दिया एंड बूम, कंपनी ग्रो करने लगी। सो दीज आर द थिंग्स। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना स्मूथ है, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं क्योंकि मार्जिन्स बहुत थिन हैं, कस्टमर ट्रस्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। क्लेम का एक्सपीरियंस डिटरमिन करता है कि रिटेंशन कैसा होगा, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, इंश्योरेंस अवेयरनेस अभी भी बहुत वीक है इंडिया में, बट स्टिल दिस कंपनी इज कोपिंग अप एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस केस स्टडी। मतलब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं और बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट बॉटम लाइन यही है कि ये कंपनी बीमा प्लान इज नॉट जस्ट सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे आर ट्राइंग टू रीडिजाइन हाउ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रीचेस ऑर्डिनरी इंडियंस। दिस इज द वन लाइनर ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट जहां पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, जहां पर ट्रस्ट लेवल लो थे, वहां पर भी एक गैप ढूंढा, उसको भी फिल किया और लोगों का ट्रस्ट गेन करके ये कंपनी मार्केट में कूद पड़ी एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो ये हमेशा होता है, आपको कुछ ना कुछ नया देखना होता है, गैप देखना होता है, दैट्स हाउ वी ग्रो। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। अगर शो अच्छा लगा तो 8010781078 पर कोई वाइन लाइनर मैसेज छोड़ दीजिए मेरे लिए। फिलहाल चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

जब तक वासना है, कामना है, क्या तभी तक साधना है? स्वभावतः रोग है तो औषधि है, स्वास्थ्य आया औषधि व्यर्थ हुई, स्वास्थ्य में भी कोई औषधि लिए चले जाए तो घातक है। जो रोग को मिटाती है वही रोग को फिर पैदा करेगी। मार्ग की जरूरत है, मंजिल दूर है, तब तक मंजिल आ जाए फिर भी तो जो चलता चला जाए, तो जो चलना मंजिल के पास लाता था वही फिर दूर ले जाएगा। और प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, बीमारी तो छूट जाती है, औषधि पकड़ जाती है, क्योंकि मन का तर्क कहता है जिसने यहां तक पहुंचाया उसे कैसे छोड़ दें, जो इतने दूर ले आया उसे कैसे छोड़ दें, जिसके सहारे इतना कुछ पाया कहीं उसके छोड़ने से वो खो न जाए। तो अनेक यात्री मंजिल के पास पहुंचकर भी भटक जाते हैं, और बहुत सी नावें किनारे के पास आकर टकराती हैं और डूब जाती हैं।

मझधार में बहुत कम लोग डूबते, किनारे पे बहुत लोग डूबते। यात्रा पूरी उतनी दुर्गम नहीं है जितनी पहुंच जाने के बाद चलने की जो लंबी आदत है उसको छोड़ना दुर्गम हो जाता है। चित्त में अशांति है तो तुम ध्यान करते हो, धीरे धीरे अशांति विदा होगी, शांति निर्मित हो जाएगी। फिर ध्यान को मत पकड़ के बैठ जाना, नहीं तो ध्यान ही अशांति पैदा करने का कारण बनेगा। फिर ध्यान भी जाना चाहिए। अंधेरे में भटकते हो, किसी कल्याण मित्र का हाथ पकड़ा, फिर रोशनी आ जाए, सुबह हो जाए, तो अब हाथ को पकड़े ही मत रह जाना। हाथ का पकड़ना भी आना चाहिए, छोड़ना भी आना चाहिए। साधन का उपयोग करना है, साधन की गुलामी नहीं अख्तियार कर लेनी। राह पे चलना जरूर है, पर राह सिर्फ राह है, इसे जानते रहना है। बहुत विधियां हैं, जो काम आ जाए उसका उपयोग कर लो, लेकिन काम पूरा होते ही छोड़ देना, क्षण भर की देरी भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जो खाली जगह छूट जाती है तुम्हारे भीतर, कहीं ऐसा न हो कि विधि व्यवस्था साधना उस खाली जगह में अड्डा जमा ले। तो ये तो ऐसे हुआ कि तुम्हारे सिंहासन पर दुश्मन ने कब्जा किया था, तुमने मित्रों का सांस लिया, उन्होंने दुश्मन को तो हटा दिया लेकिन खुद सिंहासन पर विराजमान हो गए। तुम जहां थे वहीं रहे, शायद पहले से भी बुरी हालत में हो गए। दुश्मन हो तो सिंहासन छीन लेना आसान भी, मित्रों से कैसे छीनोगे? अपने हैं, मित्र हैं, इनके द्वारा ही तो सिंहासन मिला है, इनसे कैसे छीनोगे? इसलिए सदगुरु की परिभाषा समझो। सदगुरु की परिभाषा यह है कि जो एक क्षण भी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे हाथ को न पकड़े रहे। तुम तो पकड़ना चाहोगे, तुम तो बड़े उलझाव में हो। जब पकड़ने की जरूरत होती तब तुम पकड़ने से डरते हो, जब जरूरत है कि तुम हाथ पकड़ लो तब तुम हजार उपाय करते हो न पकड़ने के। तुम्हारा अहंकार बाधा बनता है, तुम भागते हो, तुम बचते हो, तुम छिपाव करते हो। जब जरूरत थी पकड़ लेने की, झुक जाने की, समर्पित हो जाने की, तब तुम अकड़े खड़े रहते हो, बामुश्किल तुम झुकते हो, बड़ी कठिनाई से तुम हाथ पकड़ते हो। जब जरूरत थी तब पकड़ते में तुम बाधा डालते हो, फिर जब घड़ी आएगी छोड़ने की तब तुम छोड़ने में बाधा डालोगे। तब तुम छोड़ोगे नहीं, तब तुम जिद बांध के बैठ जाओगे, तब तुम कहोगे ये छोड़ने वाला हाथ नहीं है, इसी ने पहुंचाया, ये चरण अब हम कभी ना छोड़ेंगे। सदगुरु वही है जब तुम पकड़ना नहीं चाहते पकड़ा दे, और जब तुम छोड़ना नहीं चाहते जब छोड़ा दे। साधना का कोई अर्थ नहीं है फिर, कांटे की तरह है साधना, एक कांटे को निकाल लिया, दूसरे को भी साथ ही फेंक दिया। तुम कोई सदा सदा के लिए साधक मत बन जाना, मार्ग की बात है, उपाय है, साधन है, साधन नहीं है। साध जैसे ही करीब आने लगे वैसे ही साधन से अपने हाथ छोड़ाना शुरू कर देना। वाहन पर सवार होते हो, मंजिल करीब आ जाती है, उतर जाते हो। प्रकृति का नियम यही है एक, कि अति का होगा ही विध्वंस। एक अति है वासना कि खो गए, भटक गए संसार में, व्यर्थ में, बाजार में। फिर एक दूसरी अति है कि बचाने में लग गए अपने को संसार से, व्यर्थ से, बाजार से। ये दोनों अतियां हैं, इन दोनों में कहीं भी समत्व नहीं है। जरूरी है साधना, क्योंकि एक अति पर चले गए तो दूसरी अति पर जाना जरूरी हो गया है। लेकिन जैसे ही एक अति कट जाए दूसरी अति भी तत्क्षण छोड़ देना, अन्यथा घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमते रहोगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं।

जाते रहोगे, रुक जाना है कहीं बीच में। देखा, जब घड़ी का पेंडुलम बीच में रुक जाता है, घड़ी रुक जाती। घड़ी यानी समय, जहां तुम संतुलित हुए अति गई, वही समय के बाहर हुए। जब तक तुम डोलते रहते हो एक कोने से दूसरे कोने, तब तक घड़ी भी टिक टिक चलती रहती, तब तक समय चलता रहता, तब तक संसार चलता रहता। तुम्हारा मन का पेंडुलम ही सारे संसार को चलाया जाता है। तुमने कभी किसी नट को देखा रस्सी पर चलते? पूरे समय बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होता रहता है। जब बाएं झुकता है तो एक घड़ी आ जाती है कि अगर और थोड़ा झुका तो गिरेगा। तत्क्षण दाएं झुक जाता है, ताकि बाएं की अति से जो भूल हुई जा रही थी वो दाएं झुकने से पूरी हो जाए। लेकिन तब फिर दाएं में ऐसी घड़ी आ जाती कि अब जरा और झुका कि गिरा, फिर तत्क्षण बाएं झुक जाता है, ताकि जो अति हो रही थी उसका संतुलन हो जाए। ऐसे झुकता है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और इसी भांति किसी तरह अपने को रस्सी पर बनाए रखता है। लेकिन जब नीचे उतर आया, फिर थोड़ी दाएं बाएं झुकता रहेगा, फिर तो बैठ जाएगा, फिर तो झुकेगा ही क्यों, फिर तो खड़ा हो जाएगा। भूमि मिल गई, अब कोई रस्सी पर थोड़ी चल रहा है। संसार में चलना तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। प्रतिक्षण तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। अभी प्रेम, अभी घृणा, अभी सहानुभूति, अभी क्रोध, ये दाएं बाएं। मेरे पास प्रेमी आते हैं, वो पूछते हैं कैसे ये घटना घटे कि हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर क्रोध ना करें। मैं कहता हूं ये ना हो सकेगा, इसके लिए तो संसार की रस्सी से उतरना पड़ेगा। ये तो संसार की रस्सी पर तुम प्रेम करोगे तो क्रोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ज्यादा झुके गिरने का डर हो जाता। क्रोध की तरफ मुड़े संभल गए, क्रोध में भी ज्यादा झुकोगे तो डर हो जाएगा, तो फिर पत्नी के लिए फूल खरीद लाए, आइसक्रीम ले आए, फिर थोड़ा प्रेम किया, फिर खतरा पैदा हो जाता है। तो जिससे तुम प्रेम करोगे उससे ही घृणा भी करते रहोगे, और जिससे तुम्हारे मन का लगाव है उससे ही तुम लाग भी रखोगे, उससे ही दुश्मनी भी चलती रहेगी। पश्चिम में एक बहुत अनूठी किताब कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई, उस किताब का नाम है द इंटीमेट इनिमी। वो पति पत्नी के संबंधों के संबंध में किताब है, इंटीमेट इनिमी। लेकिन ये तो सूझ इसको अभी अभी आई। उर्दू में शब्द है, हिंदी में भी उपयोग होता है, खसम। खसम का मतलब होता है पति, और खसम का मतलब शत्रु भी होता है। मूल अरबी में तो शत्रु होता है, कैसे शत्रु से पति हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है, कोई जोड़ नहीं दिखाई पड़ता। मूल शत्रु है, फिर पति कैसे हो गया? जरूर लोग पकड़ गए होंगे बात, सूत्र समझ में आ गया होगा, ख्याल में आ गया होगा कि जिससे प्रेम है उससे दुश्मनी भी है। जहां प्रेम है वहां घृणा है, जहां लगाव है वहां विराग भी, जहां जहां राग है वहां वहां वैराग्य आता ही रहेगा। तुमने कभी ख्याल किया कितनी बार में घर से भागने का मन हो जाता, छोड़ो पत्नी बच्चे, मगर स्टेशन भी ना पहुंच पाओगे कि लौट आओगे। इसको कोई स्थायी बात मत समझ लेना, ये कोई स्थायी भाव नहीं है, ये तो कई बार आता है। कितनी बार आदमी मरना नहीं चाहता, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने जिंदगी में कम से कम 10 बार आत्मघात का विचार न किया हो। ये जरूरी है, जिंदगी अति हो जाती है, मरने का भाव करके संभाल लेते, जीवन बोझिल हो जाता, भारी हो जाता। मरने की कल्पना से ही राहत मिल जाती, मरता कौन? राहत मिल गई फिर जिंदगी में लग जाते, ये तो जिंदा रहने का ही ढंग है। तो कोई अगर मरने वगैरह की बातें करे तो बहुत चिंतित मत होना, कहना ठीक है मरो। मैं एक घर में रहता था कुछ दिनों तक, नया नया मेहमान था उस परिवार में, कुछ उस परिवार का रीति रिवाज मुझे पता ना था। एक दिन मैंने रात को कोई 11:30 बजे पति पत्नी ने झगड़ा,
सुना। मैं चुप ही रहा, मेरे बोलने का कोई कारण नहीं बीच में। लेकिन बात यहां तक बढ़ गई कि पति ने कहा कि मैं अभी जाके मर जाऊंगा, तो थोड़ा मैं चिंतित हुआ कि अब मेहमान भी हूं तो भी क्या हुआ। फिर भी मैंने कहा कि अभी जाने दो, तब देखूंगा। वो गए भी, जब उनको मैंने घर के बाहर भी निकलते देख लिया तो मैं भागा। मैंने उनकी पत्नी से कहा कुछ करना पड़ेगा, उसने कहा फिक्र न करो, अभी 5-7 मिनट में वापस आते। वो 5-7 मिनट में वापस भी आ गए। सुबह मैंने उनसे पूछा कि कहां तक गए थे, उन्होंने कहा पता नहीं क्या मामला, कई दफा ऐसा हो जाता है, गुस्से में चला जाता हूं, रेल की पटरी पास ही है, बस वहां तक पहुंचा कि सब ठीक हो जाता है, फिर वापस लौट आता हूं। जीने का हिस्सा है। ऐसे हम अपने को धोखा दे लेते कि चलो मरे जाते, अब तो बात खत्म हुई। मरने के ख्याल से ही जीवन का बोझ क्षण भर को नीचे उतर गया, फिर उठा के रख लेंगे सिर पर, कहीं कोई इतने जल्दी मरा जाता है। तुमसे मैं कहता हूं जो मर भी जाते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी कर लेते हैं मर जाते हैं, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो पछताते मिलेंगे, वो कहेंगे जरा जल्दी कर दी, क्षण भर और ठहर जाते। कुछ लोग तेजी में गुजर जाते, जल्दी कर लेते, क्षण भर में घट जाए तो घट जाए, जरा विलंब हो जाए तो तुम वापस लौट आओगे। ये मन का ढंग है कि जीवन आशा का उल्लास, कि जीवन आशा का उपहास, कि जीवन आशा में उद्गार, कि जीवन आशाहीन पुकार, दिशा दिवा निसी की सीमा पर बैठ, निकालूं भी तो क्या परिणाम, व्यस्तता आता है हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम। सुबह हंसती हुई मालूम होती है, सांझ रोती हुई मालूम होती है। द्वंद नहीं है, लेकिन सुबह हंसती हुई मालूम हुई इसलिए सांझ रोती हुई मालूम होती है। सुबह मुस्कुराती आती है, वही मुस्कुराहट सांझ आंसू बन जाती है। ये जीवन की सहज व्यवस्था है। आशा निराशा, उजाला अंधेरा, मित्रता शत्रुता, ऐसे हम नट की तरह रस्सी पर सधे रहते। वासना साधना, भोग योग, ऐसे हम रस्सी पर सधे रहते। जानना तो तुम उस दिन भूमि मिली जिस दिन न भोग रह जाए न योग रह जाए, न वासना रह जाए न साधना रह जाए, न प्रेम रह जाए न घृणा रह जाए, न क्रोध रह जाए न अक्रोध रह जाए, सारे द्वंद खो जाए तो तुम उतर आए। वही है मुक्ति की भूमि, वही है मुक्ति का आकाश। अब तुम रस्सी पर नहीं हो, अब संभालने की कोई जरूरत ही नहीं, अब गिरने का कोई खतरा ही नहीं है, संभालेगा कोई क्यों। संभालते तो हम तब हैं जब गिरने का खतरा होता है। स्वर्ग और नर्क जब तुम दोनों से नीचे उतर आए तब है मोक्ष की भूमि। स्वर्ग और नर्क के बीच खिंची है रस्सी, उसी रस्सी पे चल रहा संसार। साधना निश्चित ही समाप्त हो जाती है वासना के साथ। साधना और वासना जुड़वा बहने, सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, कोई साधु ये बात तुमसे ना कहेगा, इसलिए साधु मुझसे नाराज। साधना वासना जुड़वा बहने, उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, वे साथ ही साथ पैदा हुई हैं और साथ ही साथ मर जाती। साधना की जरूरत को कोई बड़ा सौभाग्य मत समझ लेना, कोई दवाई की बोतल को सिर पर लेके शोभा यात्रा मत निकाल देना, वो केवल रोग की खबर है। तुम्हारे घर में चिकित्सक रोज रोज आता है, इससे तुम ऐसा मत समझ लेना कि तुम बड़े महिमाशाली और सौभाग्यशाली हो। एक अत्यंत हिंदू बुद्धि के व्यक्ति मुझे मिलने आए थे, कहने लगे भारत भूमि बड़ी सौभाग्यशाली है। मैंने कहा कारण? कहने लगे देखो हिंदुओं के 24 अवतार, जैनों के 24 तीर्थंकर, बुद्धों के 24 बुद्ध सभी यहाँ हुए। मैंने कहा ये तो दुर्भाग्य मालूम होता है, इतने तीर्थंकर इतने अवतार इतने बुद्ध पैदा होते हैं, इतने चिकित्सक आते हैं, बीमार की हालत बड़ी बुरी, साफ है कि बड़ा दुर्भाग्य होगा। इतने बार चिकित्सक आते हैं
और चिकित्सकों की जरूरत बनी ही रहती। इसे तुम सौभाग्य का मुकुट मत समझो। वो थोड़े चौंके, उन्हें कभी इसका विचार भी ना आया होगा। वो कहने लगे कि बात में तो थोड़ा अर्थ मालूम होता है। अगर देश सच में ही धार्मिक हो तो अवतारों की क्या जरूरत है। मैंने उनसे कहा अपनी गीता ही उलट कर देखो। कृष्ण कहते हैं जब अंधेरा होगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और साधु पीड़ित किए जाएंगे तब मैं आऊंगा। साफ है कि कृष्ण वहीं आएंगे जहां अधर्म होगा, और अगर यहां आए तो अधर्म होना चाहिए। इसको तुम धार्मिक देश मत कहना। और मुल्कों में नहीं आए, जरूर हमसे बेहतर हालत में होंगे। चिकित्सक की जरूरत रोगी को है, अवतार की जरूरत अधार्मिक को है। दिए की जरूरत अंधेरे में, सुबह होते ही हम दिया बुझा देते हैं, क्या जरूरत। इसलिए तो दिवाली हम अमावस की रात में मनाते हैं, जब गहन अंधकार होता है तो दियों के अवतार पंक्तिबद्ध फैला देते। सबसे अंधेरी रात वर्ष की जो है, उस वक्त हम सबसे ज्यादा दिए जलाते। दिन में कोई दिवाली मनाएगा उसे हम पागल कहेंगे। अगर मैं ध्यान करूं तो मैं पागल हूं, अगर तुम ध्यान ना करो तो पागल हूं। मुझसे लोग आ जाते हैं पूछने का, आप ध्यान कब करते हैं। मैंने कहा मैं कोई पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। वो कहते थे फिर हमें क्यों समझाते हो। तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुम ना करोगे तो तुम पागल हो। बात सीधी है, उल्टी लगती है, जरा भी उल्टी नहीं। पहुंच गए, मंजिल समाप्त हुई, चलना क्या है। पा लिया, खोज बंद हुई, खोजना क्या है। साधना का उपयोग करना, यही उस शब्द का मतलब है। साधना का अर्थ साधन, साध्य नहीं। जब तुम सिद्ध हो जाओगे साध्य मिल जाएगा, साधना भी छूट जाएगी। इसे याद रखना, मोह मत बनाना साधना से। रामकृष्ण ने बहुत दिनों तक भक्ति की साधना की, भक्ति की साधना तो की, लेकिन मन में कहीं एक पीड़ा खलती रही। और वो पीड़ा ये थी कि अभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ। आंख बंद करते हैं महिमामयी मां की मूर्ति खड़ी हो जाती, लेकिन एकांत, परम एकांत जिसको महावीर ने कैवल्य कहा, उसका कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरा तो मौजूद रहता ही, परमात्मा सही, लेकिन दूसरा तो दूसरा ही। और जहां तक दो है वहां तक संसार है, जहां तक द्वंद है, मैं हूं तू है, वहां तक संसार है। तो रामकृष्ण बड़े पीड़ित थे। फिर उन्हें एक सन्यासी मिल गया, अद्वैत का साधक सिद्ध, तोतापुरी उस सन्यासी का नाम था। रामकृष्ण ने पूछा मैं क्या करूं, अब कैसे मैं इस द्वंद के पार जाऊं। तोतापुरी ने कहा बहुत कठिन नहीं, एक तलवार उठा के मां के दो टुकड़े कर दो। रामकृष्ण तो कब गए, रोने लगे, मां के और टुकड़े, और ये आदमी कैसी बात कर रहा है। धार्मिक होके परम धर्म इसी भाषा में बोलता है, परम धर्म तलवार की भाषा में बोलता है। जीसस ने कहा है मैं तलवार लाया हूं, मैं शांति लेकर नहीं आया हूं, तलवार लेकर आया हूं, तोड़ दूंगा सब, टूटने पर ही तो शांति होगी। तोतापुरी ने कहा इसमें आसन क्या है। रामकृष्ण ने कहा तलवार कहां से लाऊं वहां। तोतापुरी हंसने लगा, उसने कहा जब मां को ले आए कहां से लाए, कल्पना का ही जाल है। बड़ी मधुर है कल्पना, बड़ी प्रीतिकर, पर तुमने ही सोचा, माना, रिझाया, बुलाया, आह्वान किया, कल्पना को सजाया हजार हजार रंगों में, वही कल्पना साकार हो गई। तुमने ही उसमें प्राण डाले, तुमने ही अपनी ज्योति उसमें डाली, तुमने ही उसे ईंधन दिया। अब ऐसे ही एक तलवार भी बना लो, काट दो। रामकृष्ण आंख बंद करते कब जाते, जैसे ही मां सामने खड़ी होती हिम्मत ही न उठती तलवार, और मां परमात्मा को कोई काटता तलवार से, आंख खोल देते घबरा के कि नहीं ये ना हो सकेगा। तो तोतापुरी ने कहा ना हो सकेगा तो बात ही छोड़ दो, फिर कैवल लिखी मैं चला, मेरे पास समय खराब करने को नहीं, करना हो तो ये आखिरी मौका है, और ये बचकानी आदत छोड़ो। ये क्या मचा रखा है रोना

पीड़ा हो, खून की धार बहने लगे, तब तू भी एक हिम्मत करके भीतर भी माँ को उठा के तलवार काट देना, बस फिर मैं ना रुकूंगा, करना हो कर ले। अब ये जाने लगा तो बेचारे रामकृष्ण को करना पड़ा। इस आदमी ने उठा तो उनके माथे पर कांच के टुकड़े से लकीर काट दी, खून बहने लगा। जैसे उसने लकीर काटी, रामकृष्ण भी हिम्मत की और तलवार उठा के भीतर कल्पना को खंडित कर दिया। कल्पना के खंडित होते कैवल्य उपलब्ध हो गया, लेकिन बड़ी अड़चन हुई, बड़े दिन लगे। साधन से भी आदमी की आसक्ति बन जाती। तुम अगर प्रतिमा बना लेते हो मन में तो उससे छोड़ना मुश्किल हो जाए। तुमने अगर ध्यान किया, ध्यान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। प्रार्थना की, प्रार्थना छोड़नी मुश्किल हो जाएगी। और ध्यान रखना, छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये उपचार थे, इन्हें किसी कारण से पकड़ा था, इनके पकड़ने की शर्त ही खो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई नया मकान बनाता है तो एक ढांचा खड़ा करता है, ढांचे के सहारे मकान बना लेता है, फिर मकान बन जाता है तो ढांचे को गिरा देता है। अब तुम्हारा कहीं ढांचे से मोह हो जाए और तुम ढांचे को न गिराओ तो तुम्हारा भवन रहने योग्य न हो पाएगा, ढांचा रहने न देगा। जब भवन बन गया तो ढांचा गिरा देना, जब सीढ़ी चढ़ गए तो सीढ़ी छोड़ देनी। इसलिए पहले से ही अगर ध्यान रहे इस बात का कि साधना को उपयोग तो कर लेना है लेकिन साधना के हाथ में मालिकियत नहीं दे देनी, तो शुभ होता है। दूसरा प्रश्न, संसार को, बाजार को छोड़कर अपने को पालो, यह आपने कहा, कृपया बताएं कि प्रेम संसार के बाजार में है या अपने भीतर, और क्या प्रेम का क्षेत्र भीतर और बाहर दोनों तरफ नहीं, समझना पड़े। काम तो बिल्कुल बाहर है, कामना बाहर की तरफ भागती हुई ऊर्जा का नाम है, जिसे भीतर की याद भी नहीं रही, जिसे याद भी नहीं रही कि भीतर जैसा भी कुछ है। कामना बाहर जाती हुई बहिर्मुखी ऊर्जा है, साधना प्रार्थना भक्ति कोई नाम दो, भीतर जाती ऊर्जा है, जिसे याद भी न रहा कि बाहर है, जिसे ख्याल भी न रहा कि बाहर जैसी भी कोई चीज है। कामना बाहर, प्रार्थना भीतर, दोनों अतीय हैं, प्रेम दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में, जैसे कोई अपनी दहली पे खड़ा हो, न बाहर जा रहा है न भीतर जा रहा है, छिटक गया हो, जैसे कोई दोनों तरफ देख रहा हो, बीच में खड़ा हो। प्रेम मध्य बिंदु है प्रार्थना और कामना के बीच में, काम हार गया है, प्रार्थना अभी पैदा नहीं हुई, कामना व्यर्थ दिखाई पड़ने लगी है, सार्थक का अभी उदय नहीं हुआ, यात्रा जैसे थम गई। प्रेम एक ठिठकी अवस्था है, बाहर जाने जैसा नहीं लगता, हार गए वहां, राख ही राख पाई, मुंह का स्वाद सिर्फ बिगड़ा और कुछ भी ना हुआ, और भीतर का अभी कुछ पता नहीं। एक बात पक्की हो गई, बाहर व्यर्थ हो गया और भीतर के द्वार अभी खुले नहीं, बीच में ठिटक के खड़ा हो गई जो ऊर्जा है, वही प्रेम है। अगर तुमने जल्दी न की प्रेम को प्रार्थना बनाने की, तो फिर कामना बन जाएगा। प्रेम के क्षण जब भी आए तो दो ही संभावनाएं, ऊर्जा ज्यादा देर तक ठिटकी न रहेगी, क्योंकि ठिटका होना इस जगत की व्यवस्था नहीं, कोई ऊर्जा ठहरी नहीं रह सकती, या तो जाएगी बाहर या जाएगी भीतर, जाना पड़ेगा। ऊर्जा यानी गति, गत्यात्मकता, तो एक क्षण को ठहर सकती है, उस ठहरे क्षण का उपयोग कर लो तो प्रेम भक्ति बन जाती है, प्रार्थना बन जाता है। अगर उपयोग न करो तो फिर प्रेम फिर कामना बन जाता है, फिर वासना बन जाता है। इसलिए

प्रेमी की बड़ी पीड़ा है, और पीड़ा यही है कि बहुत बार ठिटक आ जाती है और फिर ऊर्जा बाहर चली जाती है। प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग करना बहुत थोड़े लोग जानते हैं। जो प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग कर लेते हैं उनके भीतर प्रार्थना का उदय हो जाता है। अब इसे ख्याल लेना, काम अर्थात बाहर, प्रार्थना अर्थात भीतर, प्रेम यानी दोनों के मध्य में, और चौथी अवस्था है दोनों के पार। चौथी अवस्था यानी परमात्मा। इसलिए जीसस ने कहा है कि प्रेम जैसा है परमात्मा। ऐसा नहीं कहा कि ठीक प्रेम ही बस परमात्मा है, नहीं तो परमात्मा की बात की भी उठाने की जरूरत न रहे। प्रेम जैसा है, एक स्वभाव, एक समानता प्रेम और परमात्मा में है। प्रेम दोनों के मध्य में है, परमात्मा दोनों के पार है। प्रेम बाहर और भीतर के बीच में है, परमात्मा बाहर और भीतर के ऊपर है। इस जीवन के हमारे जितने अनुभव हैं, उनमें प्रेम सर्वाधिक सूचक है परमात्मा दशा का। प्रेम ठिटकता है, परमात्मा ठहरा हुआ है। प्रेम क्षण भर को परमात्मा बनता है, परमात्मा सदा को प्रेम है। प्रेम दो दौड़ों के बीच में एक थोड़ा सा पड़ाव है, थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा विश्राम, विराम चिन्ह। परमात्मा पूर्ण विराम है दोनों के पार। परमात्मा की अवस्था में ना तो कुछ बाहर है फिर ना कुछ भीतर है, बाहर और भीतर दोनों परमात्मा में। परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए परमात्मा के भीतर कुछ है कहने का कोई अर्थ नहीं। परमात्मा ही है, बस परमात्मा है, बाहर भीतर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके बाहर कुछ नहीं है तो भीतर कैसे कुछ होगा, ये द्वंद गिर जाता है। प्रेम में भी ये द्वंद क्षण भर को ठहरता है, इसलिए प्रेम में थोड़ी सी झलक परमात्मा की है। बस इस जगत में परमात्मा की झलक देने वाली घड़ी प्रेम की घड़ी है। इसलिए तुम चकित होगे अगर मैं ये कहूं कि प्रार्थना भी परमात्मा के उतने निकट नहीं है जितना प्रेम, क्योंकि प्रार्थना फिर एक अति हो गई। बाहर से छूटे तो भीतर को पकड़ लिया, बाहर से भागे तो भीतर को पकड़ लिया। जरूरी है, भीतर को पकड़ना पड़ेगा बाहर से भागने के लिए। एक अति से बचने के लिए दूसरी अति पकड़नी पड़ेगी, और अभी दोनों के बीच में तुम ठहर ना सकोगे। दोनों के बीच में ठहरने का तो उपाय दोनों के पार हो जाना है, लेकिन जब तुम पार हो जाओगे तब तुम पाओगे, अरे प्रेम का जो क्षण भर के लिए विराम आया था, परमात्मा वैसा ही है, शाश्वत होकर, सनातन होकर। प्रेम में जिसकी बूंद मिली थी, परमात्मा उसी का सागर है। वासना में भी तुम हो, प्रार्थना में भी तुम हो। वासना में दृष्टि बाहर की तरफ जा रही है, प्रार्थना में दृष्टि भीतर की तरफ जा रही। प्रेम के क्षण में तुम नहीं होते, पर क्षण बड़ा छोटा है, शायद तुम पकड़ भी ना पाओ, इतना छोटा है, आणविक है, तुम्हारी पकड़ से भी चूक जा सकता है। तो या तो तुम वासना को प्रेम कहते रहते हो, कामना को प्रेम कहते रहते हो जो प्रेम नहीं, या फिर अगर बदले तो प्रार्थना को भक्ति को प्रेम कहने लगते हो। लेकिन प्रेम दोनों के बीच का बड़ा छोटा सा विराम है, ऐसा ही समझो। एक श्वास भीतर जाती फिर श्वास बाहर आती। तुमने ख्याल किया, भीतर जाने और बाहर आने के बीच में क्षण भर को श्वास कहीं भी नहीं जाती, पर क्षण बड़ा छोटा है, ख्याल करना उस पर। श्वास भीतर गई, छोटा सा विराम है, तब ना तो भीतर जा रही न बाहर जा रही, फिर बाहर गई, फिर छोटा सा विराम है, न तो अब बाहर जा रही न भीतर जा रही। इस छोटे से विराम को जिसने पकड़ लिया
वही प्रेम के विराम को भी पकड़ने में सफल हो पाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में इस विधि को बड़ा मूल्य दिया गया है। जब श्वास न बाहर जाती न भीतर, जब सब ठहर गया होता है, उसमें ही डूब जाओ, वहीं से तुम द्वार पालोगे परमात्मा का। प्रेम भी ऐसी ही घड़ी है, कामना बाहर जाती है, प्रार्थना भीतर जाती है। प्रेम ऐसी घड़ी है जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते, और मजा यही है कि जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम केवल जाने में हो सकते हो, ठहरने में नहीं हो सकते। जब तुम्हारी श्वास ठहर जाती है तब तुम नहीं होते, तुम मिट गए होते हो। अहंकार रह ही नहीं सकता वहां, अहंकार के लिए गति चाहिए, अहंकार के लिए सक्रियता चाहिए, अहंकार के लिए कर्म चाहिए। कुछ हो तो अहंकार बच सकता है, कुछ भी ना हो रहा हो तो अहंकार कैसे बचेगा। अहंकार उपद्रव है, इसलिए अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास अहंकारी आ जाते, वो कहते हैं ध्यान करना है, शांत बैठना है, लेकिन बैठ नहीं सकते शांत। अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि उससे लगता है ये तो समय व्यर्थ गया, इतनी देर में तो कुछ अहंकार की पूंजी कमा लेते, कोई पद पा लेते, कहीं आगे बढ़ जाते, किसी को धोखा दे लेते, कुछ कर लेते, कुछ होता, ये तो बेकार गया। अहंकार के लिए ध्यान से ज्यादा व्यर्थ कोई चीज मालूम नहीं होती। कुछ व्यर्थ भी कर लेते तो भी कुछ किया तो, जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, किसी से बकवास कराते, कुछ किया तो, थोड़ा साम्राज्य किसी तरह फैलाया तो, लेकिन ध्यान कुछ भी ना किया, खाली बैठ गए। अहंकार के लिए ध्यान एकदम व्यर्थ बात मालूम होती, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई बात नहीं। पश्चिम में उन्होंने मजाक बना रखा है कि पूरब के लोग आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते रहते हैं, पता नहीं पागल क्या कर रहे हैं, कुछ करो। ध्यान है होने की अवस्था, अहंकार है करने की अवस्था। दो श्वासों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तब तुम भी नहीं होते। काम और भक्ति के बीच में जब विराम पड़ता है तब भी तुम नहीं होते। ये काल संध्या काल है, रात जब तुम सोने जाते हो, जागरण जा चुका, नींद आई नहीं, क्षण भर को फिर विराम आता है। जब तक तुम न तो कह सकते कि जागे हो, न कह सकते हो सोए हो, आधे आधे मध्य में खड़े, दहरी पर खड़े, बाहर जाना बंद है, बाजार नहीं है, भीतर अभी गए नहीं, बीच में खड़े। फिर संध्या काल आया, उसी संध्या काल में अगर डूब जाओ तो जो पाने योग्य है वो पा लिया जाता, जो होने योग्य है वो आदमी हो जाता है। जीवन में इन संध्या कालों को ही वास्तविक द्वार कहा, इसलिए हमने प्रार्थना को भी संध्या नाम दिया है। लोग कहते हैं संध्या कर रहे हैं, संध्या करने का अर्थ भी नहीं समझते। संध्या करने का अर्थ है किन्हीं दो अतियों के बीच में मध्य को खोज रहे, किन्हीं दो गतियों के बीच में विराम को खोज रहे। सूरज ढल गया, रात नहीं हुई, प्रकाश जा चुका, अंधकार उतरने को है, बस जरा सी देर है, क्षण भर में चूक जाओगे। प्रेम का क्षण बहुत बारीक क्षण है, तुम श्वास से शुरू करो अगर प्रेम को पकड़ना हो। श्वास का अभ्यास करो, जहां श्वास ठहर जाती है वहीं अपनी आंखों को गड़ाओ और तुम बहुत चकित होगे। अगर तुम उस विराम को पकड़ने में सफल हो गए, श्वास ज्यादा देर तक ठहरी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कई क्षण निकल जाएंगे, श्वास ठहरी रहेगी, कई मिनट भी निकल सकते, कई घंटे भी निकल सकते और श्वास ठहरी रहे। अगर तुम्हारा ठीक ठीक हाथ पड़ जाए विराम पर, अगर तुम्हारा संयोग सध जाए विराम से, तो तुम एक ऐसे पारलौकिक दशा में लीन हो जाओगे कि खबर ही न रहेगी कि श्वास लेनी है।
सब ठहर जाएगा। उस ठहरी दशा को ही हम समाधि सतोरी का क्षण कहते। जब ऐसी दशा तुम्हें स्वाभाविक हो जाए कि जब तुम्हारी मर्जी हो आंख बंद की और उतर गए, सीढ़ियां साफ हो जाएं, द्वार खुला रह जाए, तुम सिद्ध हो गए। फिर तुम बाहर जाओ तो भी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम भीतर जाओ तो भी भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम खो गए। तुम ही ना बचे तो बाहर भीतर भी गया। अब तो जो बचा वही परमात्मा है। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, उस प्यारे का मार्ग ना मिलता था। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, बंद की आंखें तो रास्ता खुल गया। आंख का बंद हो जाना अर्थ क्या है? आंख तो तुम बहुत बार बंद करते हो, रास्ता कहां मिलता है? आंख तो तुम अभी बंद कर सकते हो, रास्ता कहां मिलता है? तो जरूर इस आंख से कुछ मतलब ना होगा। आंख तभी बंद होती है तुम्हारी जब कोई कामना नहीं रहती। प्रार्थना भी एक तरह की कामना है, वहां भी मांग जारी है। परमात्मा के मंदिरों में बैठे लोगों के प्रार्थना के बाद फैले हुए हाथ भी वासना के ही हाथ हैं। परमात्मा के सामने झुके हुए सिर भी वासना के ही झुके हुए सिर। कुछ मांग जारी है। अब बाहर का धन नहीं मांगते, भीतर का धन मांगते। मांग जारी है। जहां तक मांग जारी है वहां तक आंख खुली है। जहां तक तुम कुछ सोच रहे हो मिल जाए, वहां तक आंख खुली है। जहां तुमने सोचना छोड़ा कुछ मिलने को है, कुछ मिलने का सवाल ना रहा, तुम हो गए जैसे हो, बस उसमें डूब रहे। आंख बंद हो गई, फिर आंख खुली भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद हो गई। तुमने बुद्ध पुरुषों की मूर्तियां देखी, आंख न तो खुली है और न बंद है, अध खुली। अध खुली प्रतीकात्मक है, उसका अर्थ है न बाहर न भीतर, जरा सी खुली है, नीचे की सफेद पुतली दिखाई पड़ती। इसलिए योग में व्यवस्था है कि ध्यानी जब ध्यान करने बैठे तो इस तरह बैठे कि सिर्फ नाक का अग्रभाग दिखाई पड़ता रहे, बस। इसका मतलब वह आंख बस आधी खुली हो, आधी बंद हो, प्रतीकात्मक है। प्रयोजन केवल इतना है कि न तुम भीतर जाओ न तुम बाहर जाओ, बीच में संध्या काल में ठहर जाओ। प्रेम संध्या काल है। तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना, प्रेम बहुत कम लोग जान पाते, क्योंकि जिन्होंने प्रेम को जान लिया उन्हें फिर परमात्मा को जानने में बाधा क्या रही? जिन्होंने प्रेम को जान लिया फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा को जानने से क्यों वंचित रह गए। ये हो नहीं सकता। जिनके हाथ में कुछ हीरे आ गए उनके हाथ में पूरी खदान ही आ गई। हीरे ही ना आए होंगे, कंकड़ पत्थरों को समझ लिया होगा हीरे, इसलिए खदान नहीं मिली। रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है। रामानुज ने उसे गौर से देखा और कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा झंझटों में मैं कभी पड़ा ही नहीं, छोड़ें ये बातें, मुझे तो प्रेम से क्या लेना देना, परमात्मा की खोज। लेकिन रामानुज ने कहा तू थोड़ा सोच, कभी किसी से किया हो प्रेम, किसी से भी किया हो, कोई याददाश्त तुझे आती हो? उसने कहा आप भी कहां की बात कर रहे हैं, मैं परमात्मा की बात करता हूं, आप दूसरा ही विषय छेड़ रहे हैं। मैं साधक पुरुष हूं, विरागी हूं, प्रेम वगैरह की झंझट में मैं कभी नहीं पड़ा। मगर रामानुज भी अजीब, वो फिर पूछे कि फिर भी तू सोच, क्योंकि सारी बात इसी पे निर्भर है। अगर तूने प्रेम का क्षण जाना हो तो फिर परमात्मा की शाश्वतता को भी जान सकेगा। अगर प्रेम की बूंद ही नहीं चखी तूने तो सागर को तू कैसे चखेगा, सागर में तू कैसे उतरेगा? लहर को तो पहचान, फिर सागर को पहचान लेंगे। उस आदमी की समझ में ना आया,
वो शायद नाराज ही होकर चला गया। जिनको तुम विरागी कहते हो उनको समझ में कैसे आएगा, जिनको तुम महात्मा कहते हो वो तो प्रेम के दुश्मन बन के बैठे, उनका परमात्मा प्रेम के विपरीत है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं प्रेम उसका द्वार है। तुम्हारे महात्मा जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो परमात्मा है ही नहीं, वो सिर्फ प्रेम की शत्रुता है, वो केवल संसार के विपरीत दूसरी अति है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं वो अति नहीं है, वो बाहर और भीतर दोनों का अतिक्रमण है, वो परम संतुलन की अवस्था है, पूर्ण विराम है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि आप भी परमात्मा की बात करते हैं, हमारे गुरु हैं वो भी परमात्मा की बात करते हैं, सब एक ही है। मैं उनको कहता हूं इतना आसान नहीं, सब एक ही है कहना इतना आसान नहीं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। शब्द तो वही, मैं भी परमात्मा शब्द का उपयोग करता हूं, तुम्हारे गुरु भी करते होंगे, लेकिन तुम्हें देख के मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे गुरु का परमात्मा और ही होगा। प्रेम से भयभीत, प्रेम के विपरीत, प्रेम का दुश्मन। तो तुम्हारे महात्माओं का परमात्मा उनकी इजाद है, असली नहीं। असली परमात्मा तो प्रेम के खेल को खेले चला जाता है, असली परमात्मा तो प्रेम के नए नए रूप रचे जाता है, असली परमात्मा तो कितने रंग लेता है, कितने रूप लेता है, कितने रंगों कितने रूपों में प्रेम का रास रचता है। संसार के विपरीत नहीं हो सकता परमात्मा, संसार के पार हो सकता है, विपरीत नहीं। जो विपरीत है वो तो जब संसार खत्म हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, जो पार है वही अतियों के पार बचेगा। परमात्मा साधना नहीं है, सिद्धावस्था है। परमात्मा कोई विधि नहीं है, जैसा कि पतंजलि ने माना है कि परमात्मा विधि है, कि उसके आलंबन को लेकर उसके प्रति समर्पण करके आदमी परम अवस्था को पहुंच जाता है। पतंजलि का परमात्मा विधि है, साधना का हिस्सा है, उसका उपयोग केवल इतना है कि तुम उसके सहारे समर्पण कर दो, मगर ऐसा परमात्मा तो जब तुम सिद्ध हो जाओगे छूट जाएगा। जब तुम सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होगे तो ऐसे परमात्मा की क्या जरूरत रह जाएगी, ये तो मार्ग का ही हिस्सा था, ये खो जाएगा। परमात्मा मार्ग नहीं, मंजिल है। परमात्मा दाएं बाएं नहीं। परमात्मा की अगर थोड़ी बहुत झलक तुम्हें मिल सकती है तो मार्ग के ठीक मध्य में मिल सकती है, इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, मध्य में, ठीक बीच में। मगर बीच से भी सिर्फ झलक मिलती है, लेकिन बीच से अतिक्रमण जुड़ा है। उस बीच के बिंदु को तुम खोज लो तो पार जाने की सीढ़ी मिल सकती है। ध्यान रखना, प्रेम से लोग इसलिए वंचित रह जाते हैं कि प्रेम की शर्त ही पूरी करनी कठिन पड़ती। प्रेम की शर्त है क्षण भर को मिटना, क्षण भर को ही सही तिरोहित हो जाना। बेदार राहे इश्क किसी से न तय हुई, सहरा में कैस कोह में फरियाद रह गया। कोई प्रेमी कभी प्रेम का मार्ग पूरा नहीं कर पाया, मजनू जंगल में खो गया, फरियाद पहाड़ों में। प्रेमी कभी पहुंच नहीं पाता, खो जाता है, पहुंचने योग्य कोई बचता ही नहीं। प्रेमी मार्ग में ही गल जाता है और खो जाता है, लेकिन इसी खो जाने में पहुंचना है। जहां तुम खो जाते हो वहीं परमात्मा हो जाता है, जहां तुम मिटते हो वहीं वो घनीभूत होता है। तुम सिंहासन खाली करो तो ही उसकी संभावना है कि वो तुम्हारे सिंहासन पर विराज सके। तुम अगर बैठे रहे सिंहासन पर, अवकाश कहां, स्थान कहां? परमात्मा को बुलाते हो, तैयारी कहां है तुम्हारी? कहां बिठाओगे, कहां उसे विराजमान करोगे? अहंकार तो रोए रोए में भरा है,
मैं का भाव तो श्वास श्वास में समाया है। जगह कहां बची है तुम्हारे भीतर? जगह खाली करो। प्रेम का अनुभव उन्हीं को हो पाता है जो अपने को डुबाने मिटाने को राजी है। जो डूबते हैं, ये नदी कुछ ऐसी है कि वे ही केवल पहुंचते। जो डूबे वे बचे, जो बचे वे डूबे। अगर किनारे पर पहुंचना हो तो मझधार में डूब जाना ही उपाय है। ठीक है ये पंक्तियां, बेदार राह इस किसी से न तय हुई, ये प्रेम का रास्ता कौन कब पूरा कर पाया। इसका ये कारण नहीं कि रास्ता लंबा है, इसका ये कारण नहीं कि रास्ता बहुत बड़ा है इसलिए लोग पूरा नहीं कर पाए। इसका कारण कुल इतना ही है कि ये रास्ता ऐसा है कि इसे पूरा करने वाला बीच में खो ही जाए तो ही पूरा होता है। पूरा होने का एक ही अर्थ है कि बीच में ही खो जाए। अगर पहुंच जाए दूसरे किनारे तो रास्ता खो ही गया, पूरा हुआ ही नहीं। जो पूरा नहीं कर पाते, जो स्वयं इसको पूरा करने में पूरे हो जाते, वे ही केवल पहुंचते। सहरा में कैश, कोह में फरियाद रह गया। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए, कोई रेगिस्तान में, कोई पहाड़ों में, कोई प्रार्थनाओं में, कोई साधनाओं में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में। सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए। जहां खोए वहीं घड़ी उस परम सौभाग्य की, परम आशीष की, परम प्रसाद की। तीसरा प्रश्न एक उलझन है, यदि ठीक समझें तो उसे स्पष्ट करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध और आप दोनों कहते हैं ध्यान से उपलब्ध आनंद को बांटो, ध्यान को बांटो, और दूसरे ओर ध्यान के अर्जन को गुप्त रखने कर छिपाकर रखने की बात भी कही जाती है। निश्चित ही दोनों बातें कही जाती हैं, क्योंकि दोनों बातें सही है, उनमें विरोध नहीं। विरोध दिखता हो तो केवल आभास है। ध्यान मिले तो बांटो, लेकिन ध्यान जब तक न मिला हो तब तक संभालो और छिपाओ। होगा तब तो बांटोगे, जल्दी बांटने की मत करना। अक्सर नहीं होता तो भी बांटने की आकांक्षा पैदा हो जाती। उपदेश देने का बड़ा रस है, किसी को समझाने में ज्ञानी होने का मजा आ जाता है, किसी को बताने में, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। थोड़े क्षण को आभास होता है कि तुम्हें पता है, इसलिए तो दुनिया में सलाह इतनी दी जाती है, लेता कोई नहीं। कितने उपदेश दिए जाते हैं, कौन लेता है? उपदेशक पीछे घूमते हैं तुम्हारे, पकड़ पकड़ के समझाते। उपदेशकों से बच के निकलना मुश्किल है, उन्होंने सब राह रास्ते रोक रखे। जहां से जाओ वहीं वो मौजूद है। मुक्त हस्त ज्ञान बांटते, मुफ्त देने को तैयार है। मुफ्ती देने को तैयार नहीं, साथ में कुछ प्रसाद भी देने को तैयार है। लोभ हर्ष, फिर भी कोई लेने वाला दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान रखना, बांटना कहीं अहंकार से ना निकलता हो। करुणा से निकले तब बात और, पर करुणा तो तब होगी जब ध्यान सघनीभूत होगा, जब ध्यान एक मेघ बन जाएगा। बुद्ध ने इसलिए उसे मेघ समाधि कहा। जब एक घने मेघ की तरह, सघन मेघ की तरह वर्षा से भरे हुए तुम हो जाओगे, उसके पहले तो बूंद बूंद मेघ इकट्ठी करता है। इकट्ठा हो जाए तो ही बरस सकता है। मां गर्भवती हो, 9 महीने तक गर्भ को संभाले तो ही जन्मदात्री हो सकती। बिना गर्भवती हुए, बिना 9 महीने संभाले बच्चों को जन्म देने की कल्पना करने में मत उलझ जाना, इससे धोखा पैदा होगा। इससे कोई और धोखे में ना पड़ेगा, तुम ही धोखे में पड़ोगे। और खतरा है कि कहीं तुम दूसरों के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचा दो, क्योंकि बड़ी बारीक बड़ी नाजुक बात है। इसे तो जब तुम ठीक से जान ही लो तभी किसी को जनाना।
जब तुम्हारे पैर इस भूमि पर मजबूत जम जाएं, जब तुम्हारी जड़ें इस भूमि में पूरी फैल जाएं, तभी तुम किसी को समझाना। तो बुद्ध ठीक कहते हैं, बांटो, पर हो तब बांटोगे ना। सूफी फकीर भी ठीक कहते हैं कि संभालो, क्योंकि संभालोगे तभी तो होगा ना। संभालना पड़ेगा बहुत दिन, वर्ष वर्ष, जन्म जन्म। जब तुम्हारे भीतर घना हो जाएगा तो बरसेगा। जरूरत है पहले संभालने की। पहले तुम्हारे पास हो, तुम्हारा दिया जलता हो, तो तुम किसी और का दिया जलाने जाना। अपना दिया जलता ही नहीं, वहां बाती बुझी पड़ी है, और तुम दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते हो। इस भ्रांति में मत पड़ना, बड़े छिपा के रखना जो भीतर आ रहा है। जिस दिन होगा उस दिन तो खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। जब फूल खिलता है तो हवाओं में गंध उठ जाती। जब तुम्हारे पास होगा तो तुम छिपा के भी छिपा ना पाओगे। जिनको भी तलाश है, जिनको भी प्यास है, जिनको भी जुस्तजू है, खोज है, वे दूर से खींचे चले आएंगे। पहाड़ और समुन्दर भी उनके लिए बाधा ना बनेंगे। जिन्हें प्यास नहीं, जिन्हें खोज नहीं, वे पास बैठे भी वंचित रह जाएंगे। तुम चिंता मत करना, पहले तो तुम अपने को भर लो ऐसा लबालब कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। फिर जिनको प्यास है वो खोजते चले आएंगे, वे सदा ही खोज रहे हैं। और तब तुम मुक्त हस्त बांटना, बांटोगे ही, बांटना ही पड़ेगा।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। याद होगा कि ओम शांति का ये एस्पेक्ट क्या है। कहीं ना कहीं हर बार हम ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिश्तों को खंगाल रहे हैं। हमने पेरेंट चाइल्ड जो एस्पेक्ट है उसके कई आयाम देखे इस पूरी श्रृंखला में। हम पहुंचे थे इन लॉज तक। इन लॉज एक ऐसा नाम जो शिवानी जी ने कहा था कि बहुत ऑफिशियल लगता है, लेकिन उसे भी एक सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। आगे बात को बढ़ाते हैं और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो इन लॉज और डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ का जो एस्पेक्ट था उस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितने सारे रॉन्ग बिलीफ लेकर हम इस प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते को हमेशा एक नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं और अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने सफ़र ही करना है। एंड देन यू हैव गिवन अस द मंत्रा कि सफ़र नहीं को एक्सेप्ट नहीं करना, लोगों को एक्सेप्ट करना है। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि व्हेन वी आर इन द सिचुएशन, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, मैं हूँ, काम पे जाना है, सब कुछ है, दूसरी तरफ मुझसे उम्मीदें हैं इन लॉज की, तो वो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, कैसे मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ और कैसे मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँ, ना कि सिचुएशंस को और सफरिंग्स को।
1: एक्सेप्टेंस संकल्पों में है, यू नो, वी नीड टू जस्ट ट्राई दिस आउट वंस। हमें कई बार लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेट्स से इन लॉज से है या उन्हें डॉटर इन लॉ से है, कि कोई आदत नहीं पसंद है, या वो ऐसे ही बोलते हैं, या वो ऐसे ही ताने देते हैं, या वो हमारे से बात ही नहीं करती है। ईदर वेज 1, 2, 3 वी हैव अ लिस्ट कि मुझे ये बातें इनके बारे में पसंद नहीं है। अब हमारे पास दो चॉइस है, सोचते रहे, सोचते जाए ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये चेंज क्यों नहीं हो सकते, ये कब चेंज होंगे, नेगेटिव।
0: और सोचते भी नहीं है, हम बोल रहे होते हैं सारे लोगों से, फोन पे बात यही कर रहे होते हैं, जो लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, बहन से, सबसे यही बात है।
1: एंड इट्स वेरी आयरोनिकल कि हम एक तरफ से बोल रहे होते हैं लेकिन मैं तो उसको बहुत प्यार देती हूँ, लेकिन वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, यू नो, उसके सारे अवगुण की पूरी लिस्ट रेडी हो जाती है। तो हम जितना ये डिस्कशन मोड में भी आते हैं, जितने लोगों से हम बात करते हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं नेगेटिविटी को, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो सफरिंग दूसरा हमें नहीं दे रहा, हम खुद ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें मिलती है, दूसरा हमें नहीं देता है। जितना उसके बारे में हम इस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं, आई एम क्रिएटिंग ऑल दैट, एंड वो अक्यूमुलेट हो रही है मेरे अंदर। और जब दूसरा कोई छोटी सी भी गलती करता है, दैट्स अ ट्रिगर, यू नो, बस छोटी सी की,
0: हम ज्वालामुखी के दहाने पे बैठे होते हैं, वो पड़ता है,
1: क्योंकि वो ज्वालामुखी लेकिन हमने खुद क्रिएट किया था, और फिर शायद हमें ही बुरा लगेगा बाद में कि हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम इतना एफर्ट तो करते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, फिर मैंने आज कैसे टोक दिया, या मैंने क्यों ऐसे बोल दिया। उसका रूट ये है कि हमने इतना सारा क्यों सोचा उनके बारे में, ये सारा जो बिल्डअप कर दिया था वो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होकर बाहर निकल आता है। तो जैसे ही कोई उसको ट्रिगर मिलता है, या वो खुद बहू है या इन-लॉज है या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो वो सारा बर्स्ट होके बाहर आ जाता है। एक दिन के लिए सिर्फ, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ ट्राई करके देखें कि यस, इनके अंदर ये संस्कार है। लेट इट बी द टफेस्ट संस्कार, लेट इट बी द संस्कार यू डोंट लाइक एट ऑल, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर ये संस्कार है। दो चॉइस, सोचते रहे, बोलते रहे, वर्णन करते रहे, परेशान होते रहे। सेकेंड चॉइस, इनके अंदर ये संस्कार है, फुल स्टॉप, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट।
0: आई हैव टू,
1: दैट्स ओके, यू नो, इनिशियली बिकॉज मे बी इट्स टू चैलेंजिंग फॉर अस के आई लाइक द संस्कार, यू नो, दैट इज सेइंग के नहीं, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है शायद, बट इनिशियली मे बी इट विल हैव टू बी, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। वॉट डू आई चूज फॉर माई सेल्फ, पेन एंड टर्मोइल या कम्फर्ट? हम एक्सेप्ट करके ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं
0: और वो मुझ पे हावी हो जाएंगे, एक संस्कार नहीं, उसके बाद और कितनी सारी और बातें मुझ पे थोपने लग जाएंगे। अभी से मैं मना कर दूं, शुरू में ही नहीं लूं, नहीं तो देव
1: टेक ओवर। लेकिन एक्सेप्ट करना मतलब अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करना। जैसे हम ट्राई करके देखें, बिकॉज वी ऑल एक्सपेरिमेंट दिस, कई बार हम किसी की कोई बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रह सकते हैं, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार ताने देते हैं, एंड देन वन डे यू रियलाइज के सो मच ऑफ एनर्जी वेस्टेज, सो मच ऑफ टाइम वेस्टेज। ओके, दे आर लाइक दैट, बट उनके अंदर बहुत सारी और भी क्वालिटीज है, बट दिस पार्ट आई डोंट लाइक, बट देन इट्स देयर, फुल स्टॉप। द मिनट यू विल से फुल स्टॉप इंटरनली, जस्ट ट्राई इट आउट, इट रियली पुट्स अ फुल स्टॉप। यू नो, इसकी माइंड की जो पावर है ना, हम बहुत ज़्यादा उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप्स में अगर हम 20 साल से भी किसी के लिए बिटर सोच रहे हैं, आज एक थॉट लगेगी सिर्फ उसको ख़त्म करने में, हमें लगता है पता नहीं पूरी उम्र ना लग जाए उसको ठीक करने में। इट्स जस्ट वन थॉट, इट्स जस्ट वन थॉट।
0: एंड आई थिंक सिस्टर शिवानी, उससे पहले ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है कि दिस इज अ रिलेशनशिप विच विल बी विद मी लाइफ लॉन्ग, यू नो, इवन इफ आई एम विद देम और नॉट। हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उसको बोझ मान के हम ये सोचते हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तब तो हम दूर हो जाएंगे उनसे, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन वो नेगेटिविटी तो कंटिन्यूड रहती ही है। एंड आई हैवन सीन एनी डॉटर इन लॉ मूविंग अवे फ्रॉम द इन लॉज एंड नॉट थिंकिंग अबाउट,
1: राइट, बिकॉज वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, एंड वो सिर्फ इन लॉज से ही नहीं, फिर हमें हस्बैंड से भी मिलेगी, तो वो सारी एनर्जी हमारी तरफ ट्रैवल होगी, तो फिर माइंड कंफर्टेबल कैसे रहेगा? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे तरफ से उनके लिए कोई एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से कुछ आ भी रहा है, धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हो जो हम भेज रहे थे उसी का रिफ्लेक्शन वापस आ रहा था। इट विल स्टॉप। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन लाइक एवरी रिलेशनशिप। अब उसको एक डेट बनाना या उसको एक ब्यूटिफुल कनेक्शन बनाना, ये मेरी चॉइस है। तो अगर कोई बातें हैं भी घर में, हमें एक दूसरे की बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो एक्सेप्ट के यूनिक इंडिविजुअल है, यूनिक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, अलग फैमिली से आए हैं, अलग सेटअप से है। आज हमारी अपनी बेटी के साथ कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जबकि वो बचपन से हमारे फैमिली के सेटअप में है, फिर भी आज एक बेटी कहती है कि मुझे आपकी ये वे ऑफ थिंकिंग पसंद नहीं। वो तो एक नया अलग सेटअप से आए हैं, so why can't I understand कि you know she is going to come with her different set of thoughts, different set of beliefs, तो वो acceptance तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना हम internally accept कर लेंगे आप पाएंगे कि वो बहुत easily set हो जाएंगे, लेकिन जितना negative energy travel करेगी वो हमारे,
0: और ऊपर से चाहे जितने भी अच्छे बने रहे, चाहे जितना भी सर ढक के रहे या जितनी भी हम पैर छू ले, these are the aspects which actually all of us do, लेकिन अंदर से वो continuous, again I can understand कि अंदर का conflict जो है, अंदर की नेगेटिविटी,
1: बाहर आपको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा प्लीज करने के लिए, अंदर से अगर एक्सेप्टेंस हो कि जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, एंड फिर अगर आप वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर देंगे, और फिर अगर आप कुछ शेयर भी करेंगे ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपने उसको शेयर करने से पहले आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दी है, द अदर पर्सन इज़ विलिंग टू लिसन। अभी क्या होता है, अभी भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी थोड़ा सा विथड्रॉन है एंड डजंट वांट टू लिसन टू मी।
0: एंड इन फैक्ट उनके अपने संस्कार भी तो है, अपना पूरा रॉन्ग बिलीफ के साथ जो चल रहा है। दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, यू नो, एक दिन के लिए,
1: एक दिन के लिए करना है, एक दिन के लिए भी नहीं तो एक घंटे के लिए करके देखें। अगर किसी को एक दिन भी बहुत भारी लग रहा है, सिर्फ एक घंटा ट्राई करें कि मुझे उस बारे में नहीं सोच के, आई विल जस्ट से फुल स्टॉप, आई एक्सेप्ट।
0: आई थिंक इसमें सिचुएशन चेंज हो या ना हो, आई थिंक यू
1: सिचुएशन, बट देन दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सी, रिलेशनशिप इज नॉट विद द अदर पर्सन, रिलेशनशिप इज फर्स्ट विद योरसेल्फ। हर्ट दूसरे से नहीं मिल रहा है, सफरिंग दूसरे से नहीं मिल रही है, इसी तरह फीलिंग गुड भी दूसरे से नहीं मिलने वाला है। आई हैव टू क्रिएट इट, बट देन व्हेन आई एम फीलिंग गुड, it automatically travels and the whole environment of the house will change.
0: I can really feel it, you know, that it can happen.
1: And ye bhi nahi soche ki wo kare pehle,
0: see whoever is awakened
1: जो पहले एक थॉट सिर्फ क्रिएट कर ले कि हाँ ठीक है, पहले अगर हो सकता है पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हो, कोई ऊपर नीचे बात भी एक दूसरे से कही हो, द माइंड हैज द पावर टू फॉरगेट. हम कहते नहीं, हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया. माइंड हैज द पावर, जस्ट से इट.
0: हम भूलना नहीं चाहते,
1: हम भूलना बार, नहीं चाहते
0: बार याद दिलाते,
1: हर चीज तो वो एक थॉट की है. हम भूलना नहीं चाहते, हम फॉरगिव करना नहीं चाहते. जिस दिन हमारे अंदर वो डिजायर आ जाएगी कि आई वांट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, वन थॉट, वन थॉट. एनीवन कैन ट्राई दिस राइट नाउ कि वन थॉट कि अभी तक जो हुआ, फुल स्टॉप. एंड दिस यू आर नॉट डूइंग फॉर द अदर पर्सन, दैट्स द टॉप मोस्ट थिंग. क्योंकि हम सोचते हैं हम औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो मुझे होने वाला है और मेरी इमीडिएट फैमिली को होने वाला है. तो व्हाई नॉट डू इट फॉर एवरीबॉडी? व्हाई डू आई वांट टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ पेन व्हेन आई कैन क्रिएट अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस? चॉइस
0: एक्चुअली, यू नो, लेट्स ट्राई इट आउट. एक घंटा या एक दिन कोशिश ये करें कि अपने लिए एक एफर्ट करके देखें कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें. फॉरगिव करने से पहले फॉरगेट करना जरूरी है. माफ तो बाद में करेंगे, पहले भूलना बहुत जरूरी है. सिस्टर शिवानी, यहाँ से एक और मोड़ की तरफ बढ़ते हैं कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग बहू है, बच्चा अब आपके पास, इन लॉस के पास छोड़ रहे हैं, फेट है भी नहीं भी, थोड़ा सा कुछ हो जाए, इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम. आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना ही है. दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स है. मेरे पास छोड़ जाती है, मैं मुझसे संभलती नहीं है बच्चा, मेरी अब उम्र हो गई है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो. तो मैं नौकरी करूं या बच्चे संभालूं? तो नौकरी भी तो आपके लिए कर रही हूं, यू नो. लॉट ऑफ दीज थॉट्स, दीज कमेंट्स कीप ऑन कमिंग. व्हाट हैज टू बी डन, यू नो, जब बच्चा छोड़ा जा रहा है, अपने आप जो औलाद को उनके पास छोड़ के जा रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्या पूरा थॉट रखें?
1: आई थिंक जब आप छोड़ कर जाते हैं, वन क्रिएट द थॉट, एक्चुअली रियलिटी, यू शुड नॉट हैव टू क्रिएट इट, कि यू आर लीविंग योर चाइल्ड इन द सेफेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड. इससे ज़्यादा सुरक्षित वो बच्चा कहीं और नहीं हो सकता था. इससे ज़्यादा बेस्ट उसका ध्यान कहीं और नहीं रखा जाएगा. बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स, यू नो, देर इज नो डिफरेंस. हाँ, अगेन वो चीज़ है कि मेरा वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, इनका वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, बट देन अगेन एक्सेप्ट कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. कोई दो लोग का तरीका हमेशा डिफरेंट होगा. लेकिन हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ग्रम्बल भी करते हैं कि ये तो इस तरह से करते हैं, या ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, या ये खिलाते हैं जबकि बच्चों को ये खिलाना चाहिए, ये इस तरह के कपड़े पहन. मतलब हर छोटी छोटी बात में कितना ज़्यादा नोक छोक चलती रहती है. एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो द डॉटर इन लॉ शुड बी सो ग्रेटफुल, यू नो, यू शुड रियली बी सो ग्रेटफुल टू योर इन लॉज के दे आर लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन, बिकॉज इट्स एज गुड एज यू आर नॉट देयर बट यू आर देयर. क्योंकि एक माँ का जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो उसे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकता है और मिलता ही है. तो इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करें उनसे? और वो जो खिला रहे हैं या जो पहना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं.
0: हमेशा पेरेंट्स जो है, अगर हम
1: हमेशा राइट करेंगे. आज दिन तक हमें कई बातें वो भी तो नहीं अच्छी लगी जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे थे करने के लिए, लेकिन हमने ये समझा कि वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहे हैं. तो सबसे पहले उनके प्रति ये नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना चाहिए कि ये रॉन्ग कर रहे हैं या मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं. दे आर डूइंग देयर बेस्ट. एंड फिर अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए क्रिएट करते हैं, एंड देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस कि आप जो भी परिवर्तन लाना चाहें, दे विल बी मोर देन रेडी.
0: इट हैज टू बी विद अ पॉजिटिविटी.
1: यू नो, सारी मूल बात उस इंटेंशन पर आ जाती है कि अंदर की भाव और भावना कैसी है. जहाँ वहाँ नेगेटिविटी है, बाहर आप कितना भी एफर्ट कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा.
0: थॉट हैज टू बी एक्चुअली पॉजिटिव. उस व्यक्ति के पास आते हैं जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी में भी आता है पूरे रिश्ते में, और उसको ही बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, एंड दैट इज द हस्बैंड. एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मदर है. मतलब बेचारे फादर इन लॉ तो बाद में आते हैं, इसे मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, उनके बीच के दो पलड़ों में वो कई बार पिस जाता है कहा जाता है, कई बार उसको बैलेंस क्रिएट कर पाता है. व्हाट हैज टू बी हिज थॉट्स process, you know.
1: Again,
0: what happens with him also?
1: I think again belief है, लेकिन एक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा pressure उस आत्मा पर पड़ता है, जो ये दो तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और एनर्जी जो ट्रैवल कर रही है उन दोनों के बीच, वो कहीं ना कहीं शायद उसके थ्रू होते हुए गुजरती है, क्योंकि टारगेट वो है. यू नो, एक तो दोनों तरफ से खिंचाव है,
0: दोनों तरफ से रिलेशनशिप बिकॉज उसके कारण है,
1: क्योंकि एक रिलेशनशिप है जो हमारा फाउंडेशन था अब तक के जीवन का, और एक रिलेशनशिप है जो हमारे आगे का जो जीवन है उसका फाउंडेशन है. तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं हम पहले पुल्ड हो जाते हैं, हम में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते. इसमें भी प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस रिलेशनशिप में भी, कि यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है. बट इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट इंटरनली हाउ आई एम फीलिंग. इफ आई रियलाइज दैट, यू नो, आई डोंट नीड टू डिसाइड कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देर इज़ नेवर अ कॉम्पिटिशन. यू नो, हमेशा हम रिलेशनशिप्स में कंपटीशन क्यों क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए.
0: एक और लड़के के साथ प्रॉब्लम जो आती है कि दोनों ही अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर उसके पास पहुँचते हैं.
1: हाँ, दैट्स व्हाट. सो वो सारा प्रेशर अक्यूमुलेट होता है ना. तो वन इज, आई थिंक व्हाट द बॉय कैन डू इज लेट देम सॉर्ट इट आउट अमंग्स देमसेल्व्स, उन दोनों को करने दें. एंड दूसरा व्हाट ही कैन डू इज, क्योंकि वो एक कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, और वो शायद अपनी पत्नी को और माँ को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है और दोनों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है. तो वो हमेशा, अगर द मदर कम्स टू हिम विद कंप्लेंट, लिसन टू द कंप्लेंट बट शेयर ऑल द गुड क्वालिटीज अबाउट योर वाइफ, एंड टू द वाइफ शेयर ऑल योर गुड क्वालिटीज अबाउट द मदर, बिकॉज इट्स एक्चुअली जैसे कि आपने उन दोनों का संबंध जोड़ना है. You know, you are the bridge, तो दोनों को जानते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाइए बार बार. और हर रोज जब भी वो उनकी कोई कमी बताते हैं तो आप कमी को समझ लीजिए, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कीजिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद दैट पॉजिटिव एनर्जी, नॉट विद नहीं आप तो रॉन्ग हो, या आप हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो. द मोड विल नॉट बी ऑफ क्रिटिसाइजिंग, बट इट विल बी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग. एंड फिर Move out of the space, let them create the relationship together. हम कई बार ये the boy tries कि दोनों को थोड़ा सा
0: हाँ सामने ही आने दो, क्योंकि क्यों.
1: You know, I don't know whether that's a very healthy sign. कि दोनों को दूर रखते हैं, ठीक है, इनसे जाके अलग बात कर ली, इनसे जाके अलग बात कर ली. ये नहीं कोशिश करते कि वो दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अगर नज़दीक आते हैं तो फिर conflict है. No, it will not be a conflict. It could be a very beautiful relationship. So make that effort of them coming closer. And again, agar aap bahut zyada pressure feel kar rahe hain, then you meditate first. See, meditation is something that's going to help everyone.
0: In fact, it's not just a relationship which happens, you know. It has to be...
1: ये एक relationship है जो develop होता
0: है. Develop किया जाएगा.
1: ये एक develop होता है over a period of time. और इसको जितना right फाउंडेशन पर हम डेवलप करेंगे विद द थॉट के हाँ कि ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, इट विल डेवलप. और फॉर द बॉय, ओनली केयर दैट ही नीड्स टू टेक इज कि दोनों में से किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा नहीं स्वे हो जाना. यू नो, इट जनरली हैपन्स, वो वाला एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ऑफ क्रिएटिंग द बैलेंस. हम डेफिनेटली दोनों में से एक की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है या ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. तो मेडिटेशन हमारी ये परखने की शक्ति को बढ़ाता है,
0: इंटेलेक्ट को बढ़ाता है,
1: राइट और रॉन्ग डिसीशन लेना, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जब आप एक की बात सुनते हैं तो आप उसी की बात बिलीव करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है. फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, वहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और निर्णय लेने की शक्ति. एंड बैलेंस, यू नो, द सबसे बड़ा बेनिफिट राजयोगा मेडिटेशन से मिलता है ऑफ बीइंग एबल टू क्रिएट दिस बैलेंस इन लाइफ. तो वो बैलेंस एक बहुत नेचुरल होता जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगेगा.
0: एक और एस्पेक्ट, जो जब लड़की एक वो घर छोड़ कर आई है जैसे वो इतने साल अपना मान के ही चल रही थी, और यहाँ आते ही एक नया परिवार, एक नया रिश्ता, वो लोग नहीं छूटते जितना भी हम कहें,
1: जितने भी छोड़ना ही नहीं है।
0: अच्छा, वो नहीं भी छूटते लेकिन उनका भी उतना ही टेंशन मेंटेन्ड रहती है कि वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, द गर्ल्स पेरेंट्स, यू नो, ऑन द गर्ल, ऑन द बॉय एंड ऑन इवन द इन-लॉज, इज लाइक बिकॉज दे आर अफ्रेड। ये सारा जो है ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन और एक प्रेशर क्रिएट किए रखता है माँ बाप पे भी कि पता नहीं क्या किया है हमने, क्या होगा उसके साथ वहाँ पे। हम ज़्यादा इंटरफियर भी नहीं कर सकते और मुझे लगता है उसकी आड़ में बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस हो भी जाता है
1: एक्चुअली,
0: कहीं ना कहीं वो एक बहुत प्रेशर में रहे।
1: जैसे हमने देखा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी, वो एक आत्मा है जिसकी अपनी जर्नी है। हम गाइड कर सकते हैं लेकिन जर्नी उनको अपनी लेनी है, इवन व्हेन द चाइल्ड वाज विद यू। और अब तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही हो गया है। कई बार हम बेटे की बात सारी सुनकर उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ओके, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता कि वो राइट नहीं होती है एडवाइस, क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। हम उसके साथ सिंपथाइज इतना ज़्यादा कर देते कि कहीं उसको राइट रास्ते पर लेके जाने के बजाय और ही कहीं उनसे विड्रॉ कर देते हैं। तो समहाउ आई पर्सनली वुड फील कि वी शुड नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो हैं डेफिनेटली।
0: तो माँ के साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी? यू नो दिस इज अ क्वेश्चन, इट्स अ बिलीफ विद व्हिच द गर्ल लिव्स।
1: ये भी क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास है। Nobody else can give me the solution, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है। और हर एक का कार्मिक कनेक्शन अपना अपना है। तो यो मेरा कार्मिक कनेक्शन है और मुझे उसको जिस तरह से स्मूथ बनाना है वो पावर मेरे पास है। बहुत ज़्यादा कोई उसमें बहुत हमें गाइड नहीं कर सकते हैं। कोई हमें एडवाइस भी दे दे फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुद से उसको करें। जितना हम कम डिस्कस करते हैं उतना हम इजीली सॉर्ट आउट कर पाते हैं। कई बार जो भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है नए घर में आके, हम जब उसको डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और उसमें फिर हमें सबकी एडवाइस इतनी सारी मिलती है कि अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसको अब कैसे हैंडल करना है। एज फार एज पॉसिबल इफ़ यू कैन डू इट, ट्राई एंड हैंडल इट ऑन योर ओन। आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। कोई एक आधी बात पर आपको एडवाइस चाहिए वो लेना अलग है, लेकिन हर बात आज ऐसा हो गया, आज ये कर दिया, आज आपको पता है मुझे ये बोल दिया, आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं, वो इन लॉज भी कल अपने बच्चों के साथ आपको डिस्कस करेंगे एंड यू आर जस्ट मूविंग अवे। जो हमें लगता है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करके वी आर एक्चुअली मूविंग अवे, अगर हम क्रिटिसाइजिंग मोड में कर रहे हैं। देखो, एडवाइस लेना और किसी को क्रिटिसाइज करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ वी रियली लुक बैक एट आवर लाइफ एंड वी इवैल्यूएट एवरी रिलेशनशिप, हम देखेंगे कि जहाँ भी दूरी आई है उसको हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है। हम डेफिनेटली ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं लेकिन उस दूरी को हमने ही क्रिएट किया है बाई डूइंग ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, डिस्कसिंग, रिपीटिंग, बार बार उसके बारे में सोचना, औरों के साथ वर्णन करना। फिर बाह्य रीति से हम एफर्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना, एंड देन वी रियलाइज इट डजंट वर्क एंड अंदर इतनी बिटरनेस है, थोड़ा सा बाहर ट्राई करते हैं, वर्क नहीं होता तो बहुत जल्दी से गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो बात नहीं करो, अलग अलग रहो। एंड दिस इज वन रिलेशनशिप जहां हम बहुत जल्दी अपने आप को ये ऑप्शन दे देते हैं,
0: अलग हो जाओ फटाफट, यू नो दैट्स अगेन यस, बिकॉज वी डोंट वांट टू वर्क ऑन इट, वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि इट विल नॉट वर्क।
1: तो वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक ऑप्शन है हमारे पास, तो हम बहुत जल्दी उसको अलग कर देते हैं। अगर हमें ये ध्यान रहे कि इस रिलेशनशिप में अगर अच्छी बॉन्डिंग होगी उसका डायरेक्ट रिजल्ट उस गर्ल की अपने हस्बैंड के साथ के रिलेशनशिप पे होगी, दैट रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली बी स्ट्रॉन्गर, इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट।
0: इन फैक्ट यस, वी हैव एक्चुअली टच्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ विद इन लॉज एंड यू नो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। अ स्मॉल एस्पेक्ट स्टिल रिमेन्स इज जब बच्चा, जब जैसे अब एक मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है और उनका बच्चा, डॉटर इन लॉ का बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स बन गए। यहाँ अगर वो वर्किंग वुमेन है, बहुत बार देखा गया है इन लॉज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, दादा दादी की इतनी बात मानता है, मेरे पास नहीं आता। ये जो अगेन ओनरशिप की बात है, एक पहले लड़के तक ओनरशिप थी कि मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, अब ग्रैंड पेरेंट पे भी आ गए। अगेन दिस ओनरशिप प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज।
1: और कई बार ऐसा हो जाता है जो हम देखते हैं कि द मदर ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड वो अपने इन लॉज के बारे में अपने बच्चों को यू नो नेगेटिव बातें, विच इट्स ट्रू, शी फील्स इट्स ट्रू कि हाँ वो ये इस तरह से गलत है, लेकिन वो एक बच्चे के जीवन की एक बहुत रॉन्ग फाउंडेशन हम खड़े कर रहे हैं। हम बच्चे को अपनी तरफ खींचने के प्रोसेस में उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और उनसे दूर करने का तरीका है उनकी बुराई करना या उनकी यू नो क्रिटिसाइज करना उनको, लेकिन ये हम बच्चे के लिए एक रॉन्ग अनहेल्दी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। इन एंटिटी है, एक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, जिसका हम सब आत्माओं के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। वो एक प्रॉपर्टी नहीं है जो या तो मेरी हो सकती है या आपकी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थॉट व्हेन वी फील कि या तो आप मेरे ज्यादा क्लोज हो सकते हैं या आप उनके ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। नहीं, आई कैन शेयर एन इक्वली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरीबडी। आई डोंट हैव टू ऑलवेज बी, यू नो दिस ऑल्सो हैपन्स विद द हस्बैंड, कि या तो आप पेरेंट्स की साइड पे ज्यादा है या वाइफ की साइड पे ज्यादा है। नॉट नेसेसरी, व्हाई कांट इट बी इक्वली नाइस विद एवरीबडी। हमारे 10 फ्रेंड्स होते हैं, समटाइम्स आंट वी जस्ट इक्वली क्लोज टू ऑल ऑफ देम। दिस इज जस्ट लाइक दैट।
0: इन फैक्ट अगेन वी हैव टू रिमेंबर, मदर हैज टू रिमेंबर दैट ग्रैंड पेरेंट के साथ भी तो कार्मिक कनेक्शन है ही, उसको कैसे खराब कर सकते हैं।
1: खराब, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। इन फैक्ट वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती है बच्चे के रूट्स को, तो इट इज अ रिलेशनशिप जिसको इनकरेज करना चाहिए कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, क्योंकि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों पर पड़ता है।
0: सो सिस्टर शिवानी, आज हम इन दो कड़ियों में हमने उस रिश्ते को समेटा है जो, और एक नए रूप से देखने की कोशिश की है, जिसके लिए अभी तक एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक्सेप्ट करके बैठे थे कि ये रिश्ता ऐसा ही है, लेकिन अगर हम सचमुच जो बात हमने की है, जो आज एक और एस्पेक्ट आया है कि सफरिंग को एक्सेप्ट ना करके लोगों को एक्सेप्ट कर ले, और जिस तरह के एक्सपेरिमेंटल मोड में आप हमें लेके गई हैं कि एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट करा जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। कहते हैं कि शिव में विश्व है और विश्व में शिव है, और हट जाए तो शिव बनेगा, ढल जाए तो इंसान शिव बनेगा, और शिव में लग जाए तो शिव विश्व बनेगा। विश्व के कण कण में शिव का वास है, इसलिए शिव में हर जीव का वास है। तो जब दोस्तों हर जीव में ही शिव का वास है और शिव में ही हर जीव का वास है, तो हमें हर जीव में ही शिव के दर्शन करने चाहिए। इसका अर्थ है कि आप हरेक इंसान में सामने, आपके सामने जो भी है उसमें ईश्वर का दर्शन करें, उसमें आप अपने इष्ट का दर्शन, आप विश्वास रखें कि इसमें भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ। मेरे सामने जो कुत्ता खड़ा है उसमें भी वही ईश्वर है, वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। ऐसा सोचकर सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए। दुत्कार्य मत, कुछ नहीं दीजिए पर दुत्कार्य मत, ना किसी जीव को ना किसी गरीब इंसान को। अगर कुछ देना चाहते हैं, समर्थ हैं, तो दीजिए, मदद कीजिए, वरना आप ना उपहास उड़ाएं और ना ही उसका अपमान करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी होंगे, आपके खाते में पापों की श्रृंखला बढ़ जाएगी, तो आप अपने खाते को बिगाड़िए मत। तो दोस्तों, इस सब का ज्ञान कैसे होगा, ये सिखाता है हमको शिव पुराण। शिव पुराण के सुनने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का पौधा अंकुरित हो जाएगा। अब ये शिव पुराण सुनवाने के लिए, आपके इसी ज्ञान वर्धन के लिए, हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को हमेशा ही आमंत्रित करते हैं, और आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जब शिव ने विष्णु भगवान के पास देवताओं को भेज दिया कि वही निराकरण करेंगे, आप उनके पास जाओ, तो विष्णु भगवान ने गणों को, रुद्र गणों को, यज्ञों को, देवताओं को बुलाकर, उसमें से जो रुद्र थे वो योद्धा, उनको आदेश दिया कि जाकर त्रिपुर नगरों का विनाश कर दो। लेकिन उन्होंने साथ साथ देवताओं को ये भी समझाया कि हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो सारे के सारे जो असुर हैं वो शिव भक्त हैं, और जो शिव भक्त हैं, जो शिव का स्मरण कर रहे हैं, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि उनको शिव भक्ति से हटाना होगा, तभी उनका विनाश संभव है, वरना उनका विनाश नहीं हो पाएगा। अब लीना जी, आगे क्या होता है, क्या उनकी, उनको भक्ति के पथ से हटाया जाता है ताकि उनका विनाश हो सके, या उनको पाप के रास्ते पर अग्रसर किया जाता है, उनमें काम क्रोध मोह लोभ इस प्रकार और भी जो अन्य पाप हैं उनकी ओर अग्रसर किया जाता है, छल कपट साम दाम दंड भेद जो भी देवता अपनाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनका विनाश तो सम करना ही है, और विनाश संभव तब तक नहीं है जब तक वो शिव भक्त हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं देवता, क्या प्रयास करते हैं, वो हम सुनना चाहते हैं।
1: मंजू जी, ये रुद्र संहिता के युद्ध खंड का तीसरा अध्याय है, और इस तीसरे अध्याय में देवगणों को विष्णु भगवान समझाना चाहते हैं, वो कार्य करना चाहते हैं देवताओं का, लेकिन समस्या यही है कि त्रिपुरासुर जो है वो शिव भक्त हैं, त्रिपुर नगरी शिव भक्ति से परिपूर्ण है, वो तप्रोत है, तो कैसे वो वध करें त्रिपुरासुर का। तो जब देवगण बड़े दुखी हो जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवा, सकला यूयम गच्छत स्वगृहान ध्रुवम, देव कार्यम करिष्यामि यथामति न संशय। तान रुद्राद

0: मुखान् नूनं करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्तिरहितात् ज्ञात्वा तान् करिष्यामि भस्मसात्। वो कहते हैं कि हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाइए, मैं निसंदेह अपनी बुद्धि से देव कार्य करूंगा, मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूंगा, अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिव जी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया और जो सब पापों का नाश करने वाला है उसे आप सुनिए। तो चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का चतुर्थ अध्याय। सनत कुमार उवाच, असृजच्च महातेजा पुरुषम स्वात्म संभवम एकम माया मयम तेषाम धर्म विघ्नार्थ मच्युत मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुम्फि पात्र समन्वितम दधानम पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे वस्त्रयुक्तम तथा हस्तम शीयमानम मुखे सदा धर्मेति व्याहरंतम ही वाचा विकलव या मुनिम। कहते हैं कि उसके बाद महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्यों में विघ्न करने के लिए उत्पन्न किया। मुंडित सिर वाला, मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिना बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पद पर उसे हिलाता हुआ, हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया। मुंडित सिर वाला था और मैले वस्त्र वाला था और उसके हाथ में जो झोला था वो बिना हुआ झोला था और हाथ में झाड़ू भी था, तो हाथ जोड़कर हरि से वह कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे, हे प्रभु, मेरा स्थान कहाँ होगा, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसके शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। वो भी भगवान विष्णु के ही अंश थे, तो भगवान विष्णु ने तो माया रची थी कि उन लोगों को, त्रिपुरासुर को कैसे भक्ति रहित किया जाए, तो उस माया के कारण उन्हें उन्होंने मुंडित सन्यासी को प्रकट किया। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, यदर्थम निर्मितो असि त्वम निबोध कथयामि ते मदंगज महाप्राज्ञ मदरूपस्त्वम न संशय ममांगाश्च समुत्पन्नो मत कार्यम कर्तुम अर्हसि मदीयस्त्वम सदा पूज्यो भविष्यसि न संशय अरिहन्नाम ते स्यात्तु हियान्यानि च शुभानि च स्थानम वक्ष्यामि ते पश्चात् श्रुणु प्रस्तुतम आदरात्। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हो, मेरे अंग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, तुम निसंदेह मेरे रूप हो, जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उसे तुम समझो। मैं कह रहा हूँ, मेरे अंग से उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो, तुम मेरे भी पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान इस रूप में है, जैसे माता धूमावती के रूप में है, माता बगलामुखी के रूप में है, और धूमावती माता ने क्या किया है, भगवान शिव को का ही भक्षण कर लिया। कब किया, जब क्रोध में थी तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे भूख लगी है, और भगवान तब समाधि में लीन थे, दो बार तीन बार कहीं जब नहीं माने तो उन्होंने शिव को उठाया, शिव को ही खा लिया। तो माता के बहुत सारे रूप है, तो विष्णु भगवान के भी बहुत सारे रूप हैं। तो विष्णु भगवान ने मुंडित सन्यासी के रूप में उत्पन्न किया, पहले कुछ अले वस्त्र वाला भी था वो सन्यासी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम महाप्राज्ञ हो, बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञा है तुम्हारे अंदर, और तुम मेरे लिए भी पूज्य होगे अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे, तो तुम्हारा अरिहन तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, अरिहंत बुद्ध,
1: हाँ
0: अरे मतलब शत्रु
1: मतलब को मारने वाले।
0: तुम शत्रु को मारने वाले होगे तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, स्थान बाद में बतलाऊंगी, इस समय जो मैं कह रहा हूँ उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ जो श्रुति स्मृति और वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध हो, वह शास्त्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चलकर होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन से कहा, मुंडी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। उन्होंने कर्म परक शास्त्र लिखने की आज्ञा दी भगवान विष्णु ने, क्योंकि वेद क्या है, ज्ञान के स्रोत हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम शास्त्र विरुद्ध मत वाला शास्त्र लिखो, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भक्ति की प्रधानता नहीं हो, कर्म की प्रधानता हो, ऐसा शास्त्र तुम लिखो 16,000 श्लोकों से युक्त जो हो, और अपभ्रंश भाषा में हो, संस्कृत में नहीं हो। अपभ्रंश माने संस्कृत से थोड़ा सा हट करके हो, उससे गिरा हुआ। संस्कृत को तो सुसंस्कृत कहा गया, परिष्कृत भाषा कहा गया, विद्वानों की भाषा कहा गया है, तो वो विद्वानों की भाषा नहीं हो, अपभ्रंश भाषा हो, ऐसा तुम करो। अब देखिए, कहते हैं कि सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे।
2: अच्छा,
0: कहते हैं विष्णु भगवान तो माया भी तो है ही, परम माया भी है और देवताओं का कार्य भी करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, इत्युक्त्वा पाठयामास शास्त्रम मायामयम तथा इहैव स्वर्ग नरक प्रत्ययो नान्यथा पुनः। तमुवाच पुनर्विष्णु स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम मोहनीया इमे दैत्या सर्वे त्रिपुरवासिनः। कार्यास्ते दीक्षिता नूनं पाठनीया प्रयत्नतः मदाज्ञया न दोष ते भविष्यति महामते। वो कहते हैं कि मेरी आज्ञा से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गलत काम तो करोगे। गलत काम क्या, भक्ति से दूर करोगे सबको, तो
2: आज्ञा मेरी होगी क्यों,
0: लेकिन आज्ञा मेरी है। ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नरक सब यही है और कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उनसे कहा कि त्रिपुरवासी इन दैत्यों को तुम मोहित कर दो, प्रयत्न पूर्वक पढ़ाकर तुम इन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा ही। हे मुनि, तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुरवासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुस्थली में रहना जब तक कलयुग ना आ जाए। अब देखिए, कलयुग लाने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सारे उपाय किए, क्योंकि कलयुग तो आएगा ही तभी जब धर्म का नाश होगा।
2: हाँ।
0: तो वो कहते हैं कि प्रवृत्ते तो युगे तस्मिन वियो धर्म प्रकाश्यताम शिष्यश्च प्रतिशिष्यश्च वर्तनीय त्वया पुनः मदाज्ञया भवत धर्मो विस्तारम यास्यति ध्रुवम मद अनुज्ञा पुरो नित्यम गतिम प्राप्यसी प्राप्स्यसि माम किम एवम आज्ञा तदा दत्ता विष्णुना प्रभु विष्णुना शासना देव देवस्य हृदा त्वान्तर दधे हरे। कहते हैं कि तुम जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा, लेकिन तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुर वासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार करके तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, तुम उसके बाद मरुस्थली में रहना कलयुग ना आ जाए जब तब तक, कलयुग के आने पर फिर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। जब कलयुग आ जाएगा तो शिष्य प्रशिष्य आदि करके तुम अपने धर्मों का प्रचार करना, अपने धर्म का। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्व समस्त विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय से आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा अनुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस मायामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा यह था वैसे ही वे चार शिष्य भी थे। वे परमात्मा हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी हे मुनि, शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन चार शिष्यों से प्रेम से कहा, मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तुम धन्य हो, तुम्हें निसंदेह सदगति मिलेगी। वे चार मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय लेकर हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए मलिन वस्त्र को धारण करते हुए मौन व्रत धारी प्रसन्न होकर धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए वस्त्र निर्मित झाड़ू को हाथ में लिए जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए हे मुनि अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उन शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया और प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी निसंदेह मेरे ही हैं। तुम सब में प्रथम हो इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। अब भगवान विष्णु की लीला है ये सब कि क्या क्या वो कर रहे हैं देखते हैं। कहते हैं ऋषिर यति ही तथा कीर्य उपाध्याय इति स्वयं इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु वः ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्राह्यं शुभं पुनः अरिहन्निति तन्नाम ध्येयं पाप प्रणाशनम् भवद्भिश्चैव कर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहं लोकानुकूलं चरतां भविष्यति उत्तमा गति। तो कहते हैं कि आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकोगे। सब भगवान विष्णु के ही तो हैं। तो अरिहन मेरा यह नाम पाप नाशक है अरिहन। तो आप लोग भी संसार को दुख सुख देने वाला कार्य कीजिए लोक के अनुकूल चलने पर आप भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे ऐसा विष्णु भगवान ने उन लोगों को कहा। अब सनत कुमार जी ने कहा। अब सनत कुमार जी क्या कहते हैं कहते हैं ततः प्रणम्य तम माई शिष्य युक्त स्वयं तदा जगाम त्रिपुरम सद्य शिवेच्छा कारिणम मुदा प्रविश्य तत्पुरम तूर्णम विष्णुना नोदितो वशी महामाया विना तेन ऋषिर मायाम तदा करोत नगरोपवने कृत्वा शिष्यैर्युक्त स्थितिम तदा मायाम प्रवर्त्यामास माइनाम अपि मोहिनीम। अब कहते हैं कि तब वह माया भी शिष्यों को साथ लेकर प्रसन्न होकर शिव जी की इच्छानुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गया। विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई। शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर वहां टिक कर उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुनि शिवार्चन होने के कारण उस नगर में सहसा उनकी माया नहीं चली जिससे यति कुछ उदासीन से हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर वह उत्साहहीन होने लगा। उसके स्मरण करते ही विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद को याद किया। विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा आप तो सदा लोकोपकार तथा देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात शिव जी की आज्ञा से मैं कह रहा हूँ तुम शीघ्र त्रिपुर चले जाओ। वहां शिष्यों के साथ एक ऋषि वहां के निवासियों को मोहित करने के लिए गया है। अब नारद जी क्या है नारद जी की तो यहाँ की बात उधर उधर की बात इधर करना उनका स्वभाव है और चारों लोकों में भ्रमण सभी लोकों में ये भ्रमण करते हैं। तो नारद जी को भगवान विष्णु ने याद किया और नारद जी वहाँ पहुँच गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं अब सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदो मुनिसत्तम गतस्तत्र द्रुतम यत्र स ऋषिर माईनाम वरः नारदो अपि तथा माई नियोगान माईन प्रभो प्रविश्य तत्पुरम तेन माईन सह दीक्षितः। कहते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर मुनिवर नारद वहां गए जहां वह मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उस नगर में जाकर उस मायावी ऋषि से दीक्षित हुए। तब नारद जी त्रिपुर नगर के स्वामी के पास जाकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने राजा से सब कहा। क्या कहा नारद जी ने कहते हैं नारद जी कि कश्चित समागतः चात्र यतिर धर्म परायण सर्व विद्या प्रकृष्टो ही वेद विद्या परान्वितः दृष्ट्वा च बहवो धर्मा नैतेन सदृशा पुनः वयम सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्म सनातनम् तवेक्षा यदि वर्ते तद्धर्मे दैत्य सत्तम तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा त्वया। पुनः कहते हैं नारद जी कि आपके नगर में कोई धर्म परायण सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा परावेद विद्या में निपुण आया है। हमने बहुत से धर्म देखे परंतु ऐसे नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हम भी दीक्षित हो गए हैं। हे दैत्यराज उस धर्म में तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी दीक्षा ले लो। ये नारद जी किससे कह रहे हैं? त्रिपुरासुर से। सनत कुमार जी ने कहा, महत्वपूर्ण उसकी बात को सुनकर हृदय में आश्चर्य चकित होकर वह दैत्यराज वहां मोहित होकर गया। जब नारद ने दीक्षा ले ली है हम भी दीक्षा ले लें, ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उस ऋषि के रूप को देखकर उसकी माया से वह मोहित हो गया। उस महात्मा को नमस्कार करके उसने कहा, क्या कहा त्रिपुराधीश ने? अब देखिए यहां से उसका पतन शुरू हो गया। त्रिपुराधीप उवाच, दीक्षां देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भो ऋषे अहम शिष्यो भविष्यामि सत्यम सत्यम न संशय। इत्येव तु वचः श्रुत्वा दैत्यराजस्य निर्मलं प्रत्युवाच सुयत्नेन ऋषिः स च सनातनः। मदीया करणीया स्याद् अद्य आज्ञा दैत्य सत्तम तदा देया मया दीक्षा नान्यथा कोटि यत्न था। वो कहते हैं कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, त्रिपुराधीश ने कहा कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि आप हमको दीक्षा दीजिए, मैं सचमुच आपका शिष्य होना चाहता हूँ। इस प्रकार दैत्यराज के निर्मल वचनों को सुनकर सनातन ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज यदि मेरी आज्ञा का पालन करना है तभी मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा करोड़ प्रयत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा माया से घिर गया और उसने शीघ्र हाथ जोड़कर यति से कहा। अब दैत्य ने कहा क्या कहा? यथाज्ञां दास्यसि त्वं हि तथैव च न चान्यथा त्वद् आज्ञां नो लंघिये से सत्यम सत्यम न संशय। कि जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं सचमुच आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। अब सनत कुमार जी ने कहा, त्रिपुराधीश के इन वचनों को सुनकर मुख पर से वस्त्र हटाकर ऋषिवर ने कहा, हे दैत्यराज सभी धर्मों में उत्तम दीक्षा को ग्रहण करो, दीक्षा की विधि से इसे ग्रहण कर कृतार्थ हो जाओ। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर उस मायावी ने शीघ्र ही उस दैत्यराज को अपने धर्म से युक्त दीक्षा विधि विधान के साथ दी। उस दैत्यराज के दीक्षित होने पर हे मुनि स्वाभाविक रूप से सभी त्रिपुरवासी दीक्षित हो गए। हे मुनि उसके बाद महामायावी मुनि के शिष्य उपशिष्यों से वह संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। तो यहाँ त्रिपुर दीक्षा विधान नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है।
2: तो सबको दीक्षा दे दी वहाँ पर।
0: हाँ जब राजा ही दीक्षित हो गया तो प्रजा तो दीक्षित होगी।
2: हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रसंग रहा और बहुत ही ये प्रभु की माया थी।
0: हाँ
2: भगवान नारायण की माया जब काम करती है तो तब ऐसे ही फिर बुद्धि भ्रष्ट तो वो कर ही देते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। तो लीना जी एपिसोड समाप्त करने का तो समय हो चला है, तो इसके साथ साथ श्रोतागण भी बैठे होंगे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आप जो ये कविता एक छोटी सी सुनाकर सबको भक्ति में कर दीजिए।
0: कहते हैं सूरज की ज्योति में, चंद्रमा की शीतलता में, सागर की गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में, कौन है समाये हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव। हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव।
2: आप हर पंक्तियों में जब भी आप कविता करती हैं उसमें सार कह देती हैं, सार गर्भित जो है कविता होती है वो, और हमारे श्रोता सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत बड़ा है व्यापक है, उसके बारे में उसको सोचना पड़ता है। तो और बहुत ही आनंद आता है जब चिंतन करते हैं उन पंक्तियों का उन अर्थों का, तो चिंतन करने में भी बहुत आनंद आता है। और जैसे आप ज्ञानवर्धन करनी है हमारे श्रोताओं का, तो हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोतागणों दोस्तों, क्योंकि आप इतने ज्ञानवर्धक प्रसंग लीना जी से सुन रहे हैं, शिव पुराण में से सुन रहे हैं, आप खुद भी लाभ उठाइए और अपने मित्रों को, परिवारजनों को, आप जहाँ भी बैठते हैं, आपके संपर्क में जो भी आते हैं, सबको इस ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा और जितना कि स्वयं तो ले ही रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सबके हिस्से का भी जो पुण्य है वो आपको ही मिलेगा और सबको लाभ तो मिलेगा ही, सबको सब आनंद में होंगे। इस सबके दुख दूर करने का जो पुण्य मिलता है वो भी आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि यह एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, अब मैं आगे इसको नहीं बढ़ा सकूंगी। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
4: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
5: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
3: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
5: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हयन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
6: बिल्कुल,
5: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
6: हैं
5: बिन बुलाए मेहमान जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण है, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
6: खुद के मन में क्या है
5: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
6: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
5: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
6: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
5: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
6: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है, ये किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
7: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
6: जी।
7: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है। और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
6: जी।
7: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
6: बिल्कुल।
7: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
6: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
5: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनकी बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो वो बैठे थे अपने सभी कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है मन की स्थिरता रखता है तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
8: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
5: जी
8: आपको बदलना पड़ेगा
5: जी,
8: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
5: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हों, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन

0: अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव कृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की। बहुत सारा ज्ञान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागिनी खदासी जी, चरणाशी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागिनी खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में रागिनी खदासी जी हमें बता रही हैं, महाभारत में जो समाहित है। महाभारत, ये बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में हम आजकल इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने कर्ण की जन्म कथा को जाना था रागिनी खदासी जी से, तो आज के कार्यक्रम में रागिनी खदासी जी, आप कौन सी कथा हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: जी, ब्राह्मण की अरनी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना और भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर में निर्जीव होकर गिरना।
0: जी,
1: तो द्रौपदी के हरे जाने पर अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर कामक वन को छोड़कर भाइयों से ही द्वैत वन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ट से एक हिरण सिंह खुजलाने लगा। देवयोग से वे काष्ट उसके सिंह में फंस गया। मृग कुछ बड़े बील डॉल का था, वह उसे लिए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आके कहा, राजन, मेरे अरणी के सहित अपना मंथन काष्ट पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग, मतलब जो यज्ञ के लिए जो लकड़ी चाहिए होता है, वही उन्होंने टांग दिया था पेड़ पे। उसमें एक मृग अपने सिंह खुजलाने लगा और वह उसके सिंह में फंस गया। उस विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ लेकर भाग गया। तो आप उसके खुरों पे चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ट ले आइए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप ना हो। महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बीधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए। उसे ना देखकर वे हतोत्साह हो गए और बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वटवृक्ष के पास पहुंचे। भूख प्यास से शीतल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखो। नकुल ने जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

0: और सारसों का शब्द भी सुनाई देता है कि वहां अवश्य ही पानी होगा। तो स्वामी तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल ने बहुत अच्छा कहा। वहां सारसों से घिरा हुआ एक बड़ा निर्मल जल देखकर वे जो ही पानी पीने के लिए झुके, उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल साहस न करो, पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बहुत प्यास लगी हुई थी, उन्होंने उसकी वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु जो ही वे शीतल जल पिया उसके पीते हुए भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई को बहुत देर हो गई, अब तुम जाकर उन्हें लेवा लाओ और जल भी लेते आओ। उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा, उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी, वे पानी की ओर चले। आकाशवाणी ने फिर कहा, मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो ना, फिर जल पीना और ले जाना। किंतु जैसे ही उन्होंने शीतल जल पिया उसके पीते हुए भी भूमि पर गिर गए। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जाके देखा कि वहां उन्होंने देखा कि दोनों भाई मरे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होके रोको। फिर से वापस वही आकाशवाणी आई कि तुम नहीं जल ले जा सकते। तो अर्जुन ने कहा, प्रकट होके रोको, मेरे बाणों से भेद होकर ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकोगे। कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, वह एक यक्ष था जिसकी आकाशवाणी हो रही थी, अर्जुन इस तथा उद्योग से क्या होना है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो, यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया और पीते हुए भूमि पर गिर गए। महाराज युधिष्ठिर जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पे पहुंचकर उन्होंने देखा उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। इन वीरों को किसने मारा है, उनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का तो चिन्ह नहीं है, यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी नहीं दिखाई देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता और इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। अब ये सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें भी इन्हीं के साथ तुम सोओगे। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र वसु या मरुत आदि प्रधान देवताओं से कौन है। यक्ष ने कहा, मैं थोड़ा जलचल पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ, तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की अमंगलमय कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना चाहा, इसीलिए मैंने इन्हें मार डाला, अब आप प्रश्न कीजिए, युधिष्ठिर जी ने कहा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर जी ने कहा, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उससे अस्त करता है और वे सत्य में प्रतिष्ठित है। ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, प्रश्न यक्ष ने पूछा। उनमें सत पुरुषों का सब धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तो वेद सारे चारों वेदों का स्वाध्याय करते रहते हैं वही ब्राह्मण है। सब सत पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत पुरुषों का सा धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और उनके असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। विश्व जी बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है, अधीनों की रक्षा न करना सत पुरुषों का आचरण है। पृथ्वी से भी भारी क्या है, यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है। युधिष्ठिर जी बोले, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। मछली सोने पर भी पलक नहीं मिलती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है। विश्व जी बोले, सात के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र हैं, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होके पुनः कौन उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है। सूर्य अकेला ही विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेके पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और सभी प्रश्नों का बहुत ही उचित जो है उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर यक्ष को। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर दे रहे हैं। तो जी रागलेखा दासी जी, आगे आप अपनी कथा सुनाएं।
0: यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है, उसका देवकृत सखा कौन है जी? और जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है। पुत्र मनुष्य का आत्मा है और स्त्री उसकी देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसके त्यागने पर शोक नहीं करता, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है। मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने कहा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं, सेवकों का दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है। ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, नाम देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है, राजा को भय के कारण दान देते हैं, भय भी तो राजा को कर दे देते हैं। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो सकता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा के राज्य मरा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है और जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। मानसिक मलों को छोड़ना ही स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है। जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे दही देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद धर्म शास्त्र ब्राह्मण धर्मों की मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। जो लोभवश दान और भोग से सहित जो लोभवश दान और भोग से रहित है और पीछे से कह देता है मेरे पास है ही नहीं वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, वार्ता क्या है, मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर दो। ऋषि जी ने कहा, जो पुरुष इस पुरुष पे ऋण नहीं है और जो प्रदेश में नहीं है वह दिन के पांचवे या छठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पत्ता ही खा ले वह सुखी है। जो प्राणी अंगराज के घर जा रहे हैं किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। मैंने पूछा था ना, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तर्क की कोई स्थिति नहीं है। यक्ष ने कहा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, तुम पुरुष की व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। जिससे जी बोले जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख भूत भविष्य ये जोड़े के समान है वही सबसे बड़ा धनी पुरुष है। कृष्ण का राजन जो सबसे धनी पुरुष है उसके तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से किसी एक को तुम चाहो उसे जीवित कर सकते हो।
1: अच्छा।
0: जिससे बोले चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। कृष्ण का जिसने 10,000 हाथियों का समान बल है उस भीम को छोड़ के तुम नकुल को क्यों दिलाना चाहते हो, अर्जुन को भी छोड़कर तुम नकुल को दिला देने की इच्छा क्यों है।
1: अच्छा।
0: यह राजा युधिष्ठिर ने कहा मेरे पिता की कुंती और माधवी दो भार्याएं थी पत्नियां थी, वे दोनों पुत्रवती बनी रहे ऐसा मेरा विचार है, मेरे लिए जैसी कुंती है वैसे ही माधवी माता है, उन दोनों में से कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों माताओं को समान भाव से रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जीवित हूँ। तुमने अर्थ और काम की क्षमता का विशेष आदर किया है इसलिए तुम्हारे सब भाई जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा प्रसन्न हो गए यक्ष सारे भाई जीवित। तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए और एक क्षण में उनकी सब भूख प्यास जाती रही। यक्ष ने कहा भरत शेष मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझे सदा ही प्रिय हो, तुमने भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन छह दोषों को जीत लिया है, तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से आया था, तो काम्य वन में एक स्थान है धर्म कुंड वार्तालाप किया था, तुम्हारी संतुष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अविष्ट वर मांग लो, जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा भगवान पहला वर तो मैं ये मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ट को मृग लेकर भागा उसका अग्निहोत्र का लोप न हो। कृष्ण का राजन उस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ट को तुम्हारे परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप में लेकर भागा था, ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले हम 12 वर्ष के वन में रहे अब 13 वर्ष आ लगा है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई पहचान ना सके। ये सुनकर धर्म ने कहा मैंने तुम्हें ये वर दिया यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा और तुमसे जो जो जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा, इसके सिवाय तुम एक तीसरा वर मांग लो। अजन तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान है। विष्णु जी ने कहा मेरे लिए क्या दुर्लभ है, तो भी आप मुझे जो वर देंगे उसे मैं फिर आंखों पर लूंगी, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूं और सत्य में सर्वदा मेरे मन में प्रवृत्ति रहे। धर्मराज ने कहा पांडुपुत्र इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथन अनुसार तुमसे ये सब धर्म बने रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर ध्यान हो गए और सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए, वहाँ आकर उन्होंने उस पतस्वी ब्राह्मण को उसकी अरनी दे दी।
1: जी बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने जाना आज रागलेखा दासी जी से। और युधिष्ठिर के सभी भाई जो हैं वो मर गए थे और उसके बाद युधिष्ठिर जब अंत में वहाँ पहुँचे तो यक्ष ने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और ये आज बहुत ही प्यारा प्रसंग हमने जाना महाभारत के अंतर्गत। तो इसी तरह और भी प्रसंग हैं जो हम रागलेखा दासी जी से जानते रहेंगे। नहीं रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण।
1: तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।
2: गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और इन 7 दिन होती है हमारी बहुत सारी बातें। अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। हमारा आज का पहला सेगमेंट है दिल धड़कने दो, जिसमें आपसे बहुत सारी करती हूँ बातें। जी हाँ, देखिए प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में आपकी हेल्थ के बारे में बातें होती हैं। तो चलिए इसी के साथ पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है दिल धड़कने दो, तो उसमें बहुत सारी हेल्थ और फिटनेस की बातें करने वाली हूँ और उसके बाद अपना सेगमेंट दूसरा लेकर के आ जाती हूँ जिसका नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। तो आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, ये सारी की सारी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन लेकिन लेकिन अभी फिलहाल ले दी हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ आपके पास। सेगमेंट का नाम है दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी फिटनेस की। और यहाँ पर एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और अब एक खास देखिए हम बात कर रहे हैं टॉपिक पर, और वो है डिमेंशिया। जी हाँ, देखिए उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कमज़ोर होने लगती है, जिसमें याददाश्त का कमज़ोर होना भी शामिल होता है। बढ़ती उम्र में लोगों में डिमेंशिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिमेंशिया को भूलने की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन उनके लक्षण और कुछ ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए, इसकी वजह से व्यक्ति जो है, जिसे ये डिमेंशिया की शुरुआती दौरे में वो आए हैं, तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है उन पर पड़ सकता है, प्रभावित हो सकती है उनकी ज़िंदगी। इसीलिए डिमेंशिया के लक्षणों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान देना उस पर ज़रूरी है। और सबसे पहले तो बात आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए डिमेंशिया की हम बात करें, डिमेंशिया के कारण व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है। अगर बात करें सिंपल प्लस माइनस की, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की बात करें, छोटा छोटा भी, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रोज़ के जो लॉजिकल फैसले होते हैं वो भी नहीं ले पाते, उसमें परेशानी आने लगती है। व्यक्ति को बिल भरने में गड़बड़ी होने लगती है, नए डिवाइस चलाने में दिक्कत उनको होने लगती है, और कुछ ऐसी परेशानियाँ सामना उनको करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये भी एक लक्षण हो सकता है। साथ ही डिमेंशिया की वजह से व्यक्ति को प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में भी परेशानी हो सकती है, और इनफैक्ट उनको अपनी रोज़मर्रा के कामों में प्लान करने में, अगर कुछ ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे कोई अगर साधारण रेसिपी है, अगर उसे फॉलो की जा रही है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या जब वो बना रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल जो है, अगर कड़छी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, वो नहीं उनको याद रहेगा, या फिर अगला स्टेप क्या, क्योंकि फोकस नहीं है। और साथ ही ट्रैवलिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ जो कि फोकस उनका ले रही है, तो ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान अगर पैकिंग की जाती है तो वो भी करने में दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर व्यक्ति के रोज़मर्रा के रूटीन जो है अस्त व्यस्त हो जाना, ये कुछ इस तरह से होता है कि कुछ भी समझ नहीं आती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी डिमेंशिया का लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर सामाजिक गतिविधियां से कटने लगते हैं। कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सोशली उन्हें कनेक्ट कर रही है, उससे वो हटने लगते हैं, और इनमें बातचीत करना, दोस्तों और परिवारों से कम्युनिकेट करना, बात करना, उनके साथ टाइम बताना, उसमें रुचि जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा मन करता था पहले, अब वो ख़त्म हो जाता है, और वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामाजिक जो मेल जोल है वो उससे बचने लगते हैं। तो ये सारे जो लक्षण है कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर भी ले जाते हैं, और इससे मानसिक समस्याओं का भी संकेत आने लगता है डिमेंशिया में। चलिए डिमेंशिया से जुड़ी और भी कुछ बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। बातें हमारी चल रही है हमारे सेगमेंट दिल धड़कने दो में, एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके पास आ चुकी हूँ। टॉपिक है डिमेंशिया का। जी हाँ, इसके लक्षणों को पहचानने की कुछ आपको बातें जो है वो बता रही हूँ। देखिए, अगर डिमेंशिया को पहचानना है तो कहीं ना कहीं आपको हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा। अगर आपके किसी क्लोज वन को जो है अगर डिमेंशिया की शिकायत है, या फिर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है, तो कुछ आपको लक्षण बता रही हूँ जिससे आपको पता लग सकता है। भाषा से जुड़ी समस्या डिमेंशिया का एक अहम लक्षण है, यानी कि व्यक्ति को शब्दों को याद रखने में दिक्कत होती है, और जैसे वाक्य अगर कोई बना रहे, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसको बनाने में भी परेशानी हो सकती है, या बातचीत के दौरान गैर जरूरी शब्द बोलने वो लग जाते हैं। कई बार कोई ऐसे होता है कि सही शब्द नहीं वो ढूंढ पाते हैं और बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं, तो ये भी डिमेंशिया का ही एक लक्षण है। इसी के साथ साथ डिमेंशिया से प्रभावित व्यक्ति अपने सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाता है। वो गैस चूल्हे को छोड़ देता है, खुला हुआ छोड़ देता है, या फिर अगर कहीं वो जा रहे हैं, किसी व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, तो वो सही से जो है नियमों को पालन नहीं करेंगे, उसे नज़रअंदाज करते रहेंगे, या फिर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो वो समझ नहीं पाते हैं या किसी को बता नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी और सारी खतरनाक स्थितियों में और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो गंभीर हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो है फाइनेंशियली डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां करने लगेंगे, और हो सकता है कि ज़्यादा पैसे खर्चने लग जाए, धोखाधड़ी के शिकार ज़्यादा जल्दी हो जाए, बिल भरना भूल जाना, या फिर अगर किसी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो बिना सब्जी लिए सिर्फ पैसे दे के आ जाना, या कहीं भी अगर जा रहे हैं कोई सामान खरीद रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे के आ जाना, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट को सिर्फ लेना और जानबूझ के, देखिए ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं कि पैसे दिए हैं, वो वहाँ पर कहने लगेंगे कि हमने पैसे दे दिए हैं, बल्कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ये सारी परेशानियां जो है वो होने लगेगी, क्योंकि भूलने की समस्या जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसे आम भाषा में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, लेकिन असल में इसके जो देखिए बहुत सारे लक्षण हैं, सिर्फ और सिर्फ भूलना ही नहीं बल्कि फोकस करना या फिर ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट में दिक्कत आना, ये सारे भी लक्षण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को या जो पेशेंट है उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ और भी होंगी बहुत सारी बातें, अपना सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम करते हैं योगा, मेडिटेशन की बहुत सारी बातें। आज क्या है कुछ खास बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसिबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

वेलकम बैक, रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बातें बहुत सारी होती हैं। फिलहाल हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योगा की, और आज एक बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योग के जरिए ना केवल हमारी बॉडी जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बल्कि मजबूती भी जो है वो आती है, और इसी के साथ साथ मन को भी शांति मिलती है, और हम जो है वो स्ट्रेस फ्री यानी कि जो तनाव मुक्त हैं ये भी हो सकते हैं। हालांकि योग का पूरा फायदा उठाने के लिए केवल आसन करना ही काफी बिल्कुल भी नहीं है। योग करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको योग करने से पहले ध्यान में रखनी है, यानी कि योगा की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और मंडे टू संडे ये हमारा टाइम है, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। फिलहाल सेगमेंट का टाइम हो गया है और सेगमेंट हमारा चल रहा है स्ट्रेच प्लीज। योगा के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, योग करने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, आपका पेट जो है वो खाली हो। खाना खाने के तुरंत बाद योग करने से बॉडी में भारीपन महसूस हो सकता है और पाचन में समस्या आ सकती है। योगासन करते टाइम आपकी बॉडी को जो है वो मोड़ना या घूमना या स्ट्रेच करना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और ऐसे में अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो कुछ असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए योग करने से कम 2 घंटे पहले अगर आप कुछ खा लें तो सही है, क्योंकि तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको भूख लग रही है तो योगा से पहले आप हल्के स्नैक्स ले सकते हैं, फल या जूस ले सकते हैं, लेकिन जो हैवी खाना है या कोई हैवी अगर लंच कर रहे हैं या सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वो ना करें आप। इसी के साथ साथ वार्म अप जरूरी है। योगा आसन शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। वार्म अप आप करने से आपकी बॉडी को का जो तापमान है ये बढ़ता है और मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और इसमें चोट लगने का खतरा भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। वार्म अप के लिए आप सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इससे होता यह है कि वार्म अप करने से आपकी जो बॉडी है योगासन के लिए तैयार हो जाती है और आप आसानी से कोई भी आसन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ योगा करते टाइम आरामदायक और ढीले कपड़े जरूर आप पहने। टाइट कपड़े पहनने से बॉडी को सही तरीके से मोड़ना और स्ट्रेच करना जरा मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आरामदायक कपड़े पहने। आप आराम से हिले डुल से सकते हैं और योगासन को आप सही तरीके से कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत बाद में ना आए, क्योंकि जब हम काफी भारी या टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। सूती कपड़े योगा के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये पसीना सोखते हैं और शरीर में हवा लगने में काफी मदद करते हैं, तो इसीलिए आपको जो है ये सूती कपड़े जरूर पहनने हैं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद और भी होंगी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। आज बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी, और आपको बता रही हूँ हमारे सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगा के बारे में। देखिए, योग जब भी आप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी को, आपके मन को बड़ी शांति मिलती है और फायदे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन योग करने से पहले कुछ बातें जो है उनका ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि आपको हल्के और सूती कपड़े पहनने हैं ताकि पसीना अगर आए तो वो सोख जाए, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे शुरुआत करनी जरूरी है। यानी कि योग करते टाइम धीरे धीरे शुरुआत करना जो है ये सही माना जाता है। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो देखिए, ये तो ज़रूरी है कि आप आराम से अपने जो स्पीड है उसका आराम से लेकर चलें। ये बहुत टाइम बाद अगर आप कर रहे हैं तब भी इस मामले में भी आपको आराम से ही शुरुआत करनी है, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करें कि आप ज़बरदस्ती, अगर कोई योगा आसन जो है आपसे नहीं हो रहा और काफ़ी ज़्यादा वो कठिन आसन है तो आप उसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे इंजरी आपको हो सकती है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आसान आसनों से आपको शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे जो है मतलब आप बेसिक टू एडवांस लेकर के जाइए कि आपको बेसिक पहले आसन करने हैं, धीरे धीरे जो बहुत ही हल्के आसन हैं या फिर आसानी से जो हो जाते हैं वो आसन करने हैं, और उसके बाद आपको जो है एडवांस होना है। यानी कि कुछ ऐसे आसन जो कि मुश्किल हो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। योग करते टाइम आपकी सीमाओं का आपको ख्याल रखना है, जबरदस्ती आपको अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है। योग करने का मकसद बॉडी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उसे स्वस्थ और मजबूत बनाना है। इसीलिए योग करने से पहले आपको खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि धीरे धीरे शुरुआत करनी है, आरामदायक और हल्के कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहनने हैं, वार्म अप जरूर करना है, और खाली पेट योगा जो है वो करना है आपको, भरे पेट से नहीं करना है। यानी कि आप खाना पीना खा के ब्रेकफास्ट करके आप योगा ना करें बल्कि खाली पेट कोशिश करें। अगर फिर भी

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल देखिए, बातें हमारी चल रही हैं, और अगर आप ये प्रोग्राम सुनना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे आप शहर में कहीं पर भी

रहा है वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, और अगर आपको लग रहा है कि अब आप मानव रचना से, देखिए रेडियो मानव रचना से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ हम हमेशा हैं। बस आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फोन लेना है, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS मोबाइल फोन, आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, और हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आप सुन सकते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी बातें जान सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल सकती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रह के भाई एंटरटेन हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ऐप को कीजिए डाउनलोड, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात साझा करना चाहते हैं, तो मैसेज द्वारा कह सकते हैं, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। इसी के साथ अपना अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ रही हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें एक बहुत ही खास कहानी आपको बताने वाली हूँ, कैसे एथलीट की जो कि मजदूरी से जो मेडल तक का सफर था जिन्होंने तय किया, और जिन्हें दुनिया ने, देखिए ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ये ऊपर आए लेकिन कहीं ना कहीं ये खो गए, यानी कि अनसंग हीरो ऐसे हैं ये जो कि आए तो बहुत जल्दी ऊपर लेकिन एकदम से पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज किसके बारे में बात हो रही है वो बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ एक से बढ़कर एक, आप कहीं मत जाइए, इन गानों को सुनिए, इंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। और अब बात कर रही हूँ अपने अगले सेगमेंट पॉप अप प्ले विद आरजे साक्षी में। खास आपके पास लेकर के आ गई हूँ एक ऐसी कहानी जो कि सुन के आप हैरान रह जाएंगे, मजदूरी से मेडल तक की कहानी। जी हाँ, लक्ष्मी रानी जो है मांझी की एक कहानी है। और जब जिंदगी एक तीर बन जाए तो निशाना चूक बिल्कुल नहीं सकता है, और ये कहानी लक्ष्मी रानी मांझी की है। जी हाँ, और देखिए झारखंड के ट्राइबल विलेज से ये आई एक लड़की, जिसे जंगल में जो लकड़ी काटने जाने से ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन स्कूल टीचर ने एक उन्हें बो दिया और तब जिंदगी का नया टारगेट उनके लिए सेट हो गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी से एक ही इनके पास ड्रेस जो है उनके पास थी, और रात को मिट्टी के घर में ये प्रैक्टिस किया करती थी। लेकिन लक्ष्मी रानी ने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2015 में सिल्वर मेडल जीता और सबको सरप्राइज कर दिया। जब भी वो ट्राइबल एरियाज में बच्चों को आर्चरी सिखा रही है, और अभी इस टाइम पर बिना पैसे लिए उनको सिखा रही हैं, तो ये सबके लिए, देखिए मैं आपको कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वो शुरू से स्ट्रांग नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम पैसे थे घर में, मिट्टी का घर था उसमें रहती थी। लेकिन आज भी जब वो बच्चों को सिखाती हैं, जो तीरंदाजी सिखाती हैं, तो उसमें बच्चों से पैसे नहीं लेती, क्योंकि वो चाहती है देश का नाम ऊंचा हो। वो चाहती हैं वो बच्चे बाहर निकल कर के आएं, जो कि कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर जो है सिर्फ घरों में बैठे हुए हैं, तो वो सपने उनके सच करना चाहती हैं जैसे उन्होंने अपने किए। गांव की बेटी ने निशाना लगाया और सीधा इंडिया के नाम पे मेडल लिख दिया। नाम छोटा था लेकिन निशाना काफी बड़ा। लक्ष्मी रानी मांझी की कहानी। जी हाँ, चलिए इसी के साथ और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में पावर प्ले विद आरजे साक्षी एक सेगमेंट लेकर के आ जाती है। उस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, और एक बहुत ही जरूरी बात है आपको बता रही, कुछ कहानियां आपको बता रही हूँ जो कि ऐसे हीरोज की कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं भाई गुमशुदा तो हो गए हैं लेकिन उन्होंने भारत का काफी नाम ऊंचा किया। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की शेरनी की, यानी कि जमुना बोरो। जी हाँ, माँ ने चाय बेची इनकी और बेटी ने मेडल जीत लिया। जमुना बोरो की माँ एक रोड साइड चाय स्टॉल चलाती थी। आसाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। फाइनेंशियली स्ट्रगल्स इतने थे कि जमुना ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने की जगह कभी चाय का जो थैला उठाया तो कभी उन्होंने भाई कपड़े हाथ में बांध लिए। लेकिन जब बॉक्सिंग कोच ने देखा कि इस लड़की के पंच में स्पार्क है, उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी, जिसके बाद जमुना ने 2019 में AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता। आज वो इंडियन बॉक्सिंग टीम का हिस्सा है और यूथ गर्ल्स के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। जिंदगी ने हर राउंड में उनको पंच मारा पर जमुना हर बार रिंग में जीती। माँ की चाय से ज्यादा उनका जोश गर्म था और उन्होंने कभी भी भारत को इस तरह से लेट डाउन नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे लेकर किए गई और साथ ही भारत का नाम एक बेटी ने एक बार फिर से रोशन किया। चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी हम कर रहे हैं बातें। इसी के साथ अगली कहानी की ओर आपको लिए चलती हूँ, और ये कहानी है छोटी सी लड़की लेकिन बड़ी सोच जिनकी है, मलावत पूर्णा की। जी हाँ, माउंटेनियरिंग की इनकी कहानी जो कि सभी के दिलों पर छा गई। जब सपना इतना बड़ा हो तो रास्ते की ऊंचाई छोटी लगने लगती है। ये कहानी है मलावत पूर्णा की, तेलंगाना के ट्राइबल विलेज की एक 13 साल की लड़की, जिन्होंने 2014 में माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करके उसका रिकॉर्ड एक बना दिया अपना, और दुनिया की सबसे यंग ट्राइबल गर्ल बनी जो कि एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई करी। उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक फाइनेंशियली कम था पहले से ही, जो है शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही एक छोटे से परिवार से आती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ही कम पैसे हैं, ना प्रॉपर शूज़ हैं, ना कपड़े हैं, सिर्फ डिटर्मिनेशन। जो बहुत ज़्यादा उन्होंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली और 0 डिग्री से भी ठंडे टेम्परेचर में एवरेस्ट जो है वो कॉन्करर किया। आज पूर्णा उन बच्चों के लिए आइकन बन चुकी हैं जिनके सपने उनके घरों से बड़े होते हैं। पूर्णा ने एवरेस्ट से ज़्यादा उनकी थिंकिंग बैरियर्स को छोटा किया, जहां लोग कहते हैं कि ट्राइबल्स कुछ नहीं कर सकते या उनका कुछ नहीं होगा, और उन्होंने ये साबित किया कि ट्राइबल का मतलब ट्रबल नहीं होता, बल्कि होता है टैलेंट। जी हाँ, चलिए इसी के साथ ये बात है मलावत पूना की। इसी के साथ एक और मैं आपको कहानी ज़रूर बताऊंगी, और ये है अतनु दास की। जी हाँ, देखिए अतनु दास के बारे में बताऊं तो अतनु दास ने इंडिया के लिए ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स, एशियन गेम्स और कई सारे ऐसे मेडल जीते, लेकिन स्पॉटलाइट में कभी नहीं आए। उनकी प्रैक्टिस एक स्मॉल ग्राउंड से स्टार्ट हुई, जहाँ पर वो भी सेकेंड हैंड था, और उन्होंने प्रेशर मोमेंट्स में भी कभी फोकस लूज नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने टॉप रैंक साउथ कोरियन आर्चर को भी जो है वो हराकर सबको सरप्राइज कर दिया। आज भी अतनु ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस क्वाइटली निशाना लगाने पर और मेडल लाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अतनु जैसे खिलाड़ी हमें ये सिखाते हैं कि जब तुम्हारे पास स्पॉटलाइट ना हो, तब अपना निशाना और ज़्यादा शार्प कर लेना चाहिए, ताकि अपने आप स्पॉटलाइट तुम्हारी ओर खींची चली आए। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। बातें हमारी चल रही हैं पावर प्ले विद आरजे साक्षी में। आपसे कुछ जानकारी आपको बता रही हूँ, यानी कि कुछ ऐसे आपको अनसंग हीरो के बारे में बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इनकी कहानी कितनी ज्यादा मोटिवेशनल है। अब बात करते हैं भक्ति शर्मा की, जिन्होंने आर्कटिक ओशन स्विम कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसी लड़की जिसे राजस्थान जैसी ड्राई जगह में पानी मिलना मुश्किल था, उन्होंने देखिए क्या किया कि दुनिया के सबसे ठंडे ओशियन में 1.4 माइल स्विम किया और इन जस्ट 52 मिनट्स वो पहली एशियन वुमन बनी जिन्होंने आर्कटिक, अंटार्कटिक और ऑल फाइव जो ओशियंस हैं उसमें स्विम किया। और उनकी माँ उनकी कोच थी और माँ बेटी की जोड़ी ने इंडिया के लिए हिस्ट्री लिख दी। भक्ति ने सिर्फ समुंदर नहीं सोच के किनारे भी तोड़ दिए। अगर जज्बा हो तो राजस्थानी मिट्टी से भी लहरें उठ जाती हैं, जहां से भक्ति शर्मा उठ करके आई और उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि लड़कियां बिल्कुल भी कम नहीं है और अब आगे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलिए, जहां पानी नहीं मिलता था वहां से निकल के भक्ति ने समुद्र में फतेह हासिल करी। तो देखिए, आज देखिए हर जगह उनका नाम है, हर जगह उनके उल्लेख है। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ और भी जानकारी आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ मैं, और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगले सेगमेंट का टाइम होता चला जा रहा है और अगला सेगमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा खास है। अगले सेगमेंट का नाम जो है वो है कौन बनेगा सेहतमंद। बात करेंगे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूं आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिनों बहुत सारी करती हूं बातें। हमारे अगले सेगमेंट का टाइम हो चला है और अगला सेगमेंट यानी कि आज का हमारा जो सेगमेंट है ये है बहुत ही ज्यादा खास, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूं। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। पहेलियां आपसे पूछती हूँ, तो सबसे पहली पहेली जो है ये आपसे पूछूंगी। लेकिन इसके बाद पहले इससे आपको बता तो दूं आपको जो है क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए ये कि अगर आप पूरे महीने सही सटीक जवाब देते हैं और सबसे पहला जवाब देते हैं तो आपको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, हमारे रेडियो स्टेशन आने का और बहुत सारी बातें करने का लाइव और सभी आरजेस से भी मिलने का। लेकिन इसी के साथ साथ पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ही। और आपको बता दूं मैं कि अब एक खास पहेली के साथ आपके पास आ गई हूँ। पहली जो है वो मैं बहुत ही ज्यादा आसान पूछती हूँ, तो इतना घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बस आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है, फटाफट से पहेली का जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। तो चलिए इसी के साथ पहेली का आप दीजिए जवाब जो मैं पूछने वाली हूँ कुछ ही देर में, एक गाने के बाद, खूबसूरत से गाने जो कि लेकर के आ जाती हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, और बहुत सारी होती है बातें हफ्ते के 7 दिन, क्योंकि अब आपके साथ रहती हूँ। तो अब एक खास सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। जी हाँ, कौन बनेगा सेहतमंद में हम बात करते हैं, एक पहेली आपसे पूछती हूँ, और पहेली जो कि बड़ी आसान सी होती है, बस आपको ध्यान से सुननी है और उसका जवाब जो है वो देना है। पहेली तो बहुत ही आसान सी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके, मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो, तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। तो इसका हिंट जो है वो है कि दादा नानी का ये नुस्खा काफी ज्यादा पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो आपको बताना है क्या है इसका जवाब। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ और आपसे कुछ पहेलियां पूछ रही हूँ आज ना। आज की हमारी पहली पहेली, क्योंकि अभी सेगमेंट जो है वो चल रहा है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आज की पहेली बड़ी आसान सी जिसका जवाब आपको देना है। तो पहेली है, मुझे लगाओ तो बाल चमके मेरी खुशबू से सब महके, सिर की मालिश मुझसे हो तनाव भी मुझसे दूर हो, बताओ कौन हूँ मैं। इसका हिंट है कि दादी नानी के नुस्खा है जो है ये काफी पुराना है बालों को मजबूती देने का। तो इसका जवाब जो दिया है हमारे पास, हमारे लिस्नर बहुत ही तेजी से जवाब जो है देते हैं, जिनका नाम है अल्तमश। और अल्तमश ने जवाब जो है वो दिया है। अल्तमश जी बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, और भी बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं। और यहाँ पर मतलब जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे लगता है कि इतनी फटाफट जवाब आता है कि भाई क्या कहने। तो अल्तमश जी ने जवाब दिया है और इसका जवाब है बालों का तेल, यानी कि हेयर ऑयल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि हेयर ऑयल जो है ये आपके बालों को पोषण देने में और आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए रोज रात को आपको अपने चम्पी जो है ये जरूर करके सोनी है, इससे आपके तनाव को काफी ज्यादा देगी आप हट जाएगा और साथ ही निजात तो आपको मिलेगा तनाव से, आपके बालों में पोषण की कमी जो है हो रही है तो वो दूर हो जाएगी। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी. आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं हमारी अगली पहेली जो कि काफी ज्यादा आसान है. बस आपको जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है और बस यूं आपने पहेली हुए जवाब दे के और हमारे लकी विनर बन जाना है. आपको मिलेगा मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मानव 107.8 FM आने का और लाइव बातचीत करने का, साथ ही सभी आरजेस से मिलने का. तो चलिए अब आपको बताती हूँ हमारी आज की आसान सी पहेली जिसको आपको ध्यान से सुनना है. और पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ. कभी रेशमी कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले. बताओ कौन हूँ मैं? तो इस पहेली का आपको जवाब देना है और जवाब देने के लिए आपको क्या करना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ. मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान न दो तो गिरता हूँ. कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले. बताओ कौन हूँ मैं? तो ये आपको बताना है कि ये भाई किस बारे में मैं बात कर रही हूँ और क्या जरूरी है, मतलब आपको ध्यान से सुनना आपको पड़ेगा ही अगर आपको पहली का जवाब जो है वो देना है. दो बार मैं पहली बता चुकी हूँ, नंबर आपको बता चुकी हूँ, तो जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए, मुझे आपके जवाबों का इंतजार है. तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, feel life.

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती है हमारी बहुत सारी बातें। फिलहाल मैंने अपने सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में आपसे पूछा एक सवाल, एक पहेली आपसे पूछिए, जिसका जवाब हमें दिया है सबसे सही, सबसे सटीक, इतनी जल्दी कि बस यहाँ मैं अपने बात करना खत्म करती हूँ आप लोगों से और यहाँ जवाब आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जवाब दिया हमें हमारे लिस्नर बबलू जी ने, और बहुत ही तेजी से इन्होंने जवाब दिया है मस्त से। और पहेली एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर बताऊंगी इसका जवाब क्या है। तो पहेली है, मैं सिर पर सजता हूँ पर ध्यान ना दो तो गिरता हूँ, कभी रेशमी तो कभी घुंघराले, तेल और कंघी से बनू निराले, बताओ कौन हूं मैं। तो इसका जवाब जो है वो हमारा है बाल, यानी कि हेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे बाल हमारे खूबसूरती का हिस्सा होते हैं, जिन्हें सही देखभाल की जरूरत होती है, अगर नहीं रखी जाए तो गिरने शुरू हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। बबलू जी आपको बहुत सारी बधाई, आपने दिया है सही जवाब। तो बात करते हैं और भी, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। चलिए इसी के साथ जो वक्त है अब हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अब आ गई है आज दीक्षा जो करेंगी आपसे बातें, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जो बातें करता है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा फिट एंड फाइन रहे। इसीलिए हर हफ्ते एक्सपर्ट आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं आपकी सेहत के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आज के समय का सबसे ज्यादा जानकारी जुटाने वाला टॉपिक है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके की गर्मी भारत में पड़ रही है, या फिर हम कहें पूरे ही भारत में पड़ रही है, पहले होता था उत्तर भारत में होती थी, आज पूरे भारत को एक भट्टी की तरह गिना जा रहा है, जहां कभी कभी बारिश बीच में आ जाती है 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से टेम्परेचर 42 और 45 के बीच पहुंच जाता है। वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है हीट स्ट्रोक होने का। हीट स्ट्रोक सुना तो आपने भी होगा, लेकिन इसको पहचानना कैसे है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, ये सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू।
0: सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हम हीट स्ट्रोक की बात करें और ये टर्म बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन हीट स्ट्रोक क्या होता है? क्योंकि हमने जनरली लोगों से सुना है कि आप डिहाइड्रेट मत रहिए, पानी पीजिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे या लिक्विड इनटेक होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा गर्मियों में, पर हीट स्ट्रोक जो होता है वो इतना खतरनाक क्यों होता है और है क्या एक्चुअली?
1: जी, जैसा कि आपने कहा हीट स्ट्रोक जो है, हमने सबने सुना है कि हीट स्ट्रोक, तो इसको मैं अगर दूसरा नाम दूं तो इसको सन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, तब थोड़ा समझ ज़्यादा आता है। सन स्ट्रोक मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर नॉर्मली 40 तक रहता है वो 50 तक भी जा चुका है। जो खासतौर पर अभी आपने बताया कि हमारे इंडिया में जो अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें सबसे हॉटेस्ट सिटी में 10 से ज़्यादा सिटीज हमारे देश की एक्चुअली आई थी, तो आपने कहा भी ठीक कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करूँ व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक, तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें एक हिंड्रेंस फैक्टर है, या कहेंगे कि ये छुप जाता है कि किस, ये हीट स्ट्रोक एक तरह से हाई टेम्परेचर है जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर पाए। नॉर्मली हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाती है, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, जब आपका ब्रेन का सेंटर टेम्परेचर को कंट्रोल करना बंद कर दे या टेम्परेचर फेल हो जाए, तो वही हीट स्ट्रोक है। और इसमें टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा और 107 या 108 तक भी चला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब किसी को फीवर होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को जो मैकेनिज्म होती है थर्मोरेगुलेशन की, जो टेम्परेचर को मैनेज करती है बॉडी नॉर्मली, लेकिन अगर आप बात करें हीट स्ट्रोक में तो हमारी बॉडी फेलियर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाए, आपकी बॉडी को ये पता ना चले कि इस टेम्परेचर को रोकना कैसे है,
0: यानी वो 107 तक पहुंच जाता है, जो कि अपने आप में बहुत जानलेवा है।
1: जी जी, 107 अगर आपने देखा होगा कि डेंगू में मरीज बोलता है उसको 102 103 आता है तभी कितनी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसा टेम्परेचर जो 107 भी चला जाए और आपके ब्रेन को ये पता ही ना हो कि इसको नीचे कैसे लाना है, जिसमें आपकी स्वेटिंग भी बंद हो जाए, इसीलिए ये बहुत खतरनाक होता है और इसको पहचानना काफी इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो सके।
0: जी, यानी बुखार होना तो कॉमन है, पर गर्मी वाला ये बुखार जो आपकी बॉडी में पसीना ही नहीं आने दे रहा है, तो बुखार बाहर निकलेगा कैसे? दिमाग ये जज नहीं कर पाता है और आपकी बॉडी जो है वो गलत रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने बचपन में भी सुना होगा ना, हमारे दिमाग से हमारे सारे ऑर्गन्स कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं और जब भी हम टच करते हैं किसी चीज को तो हमारा दिमाग हमको सिग्नल देता है कि आपको यहाँ से हाथ हटाना है, जैसे गर्म चीज को छुआ। ऐसे ही बॉडी के टेम्परेचर में भी दिमाग के ही सिग्नल होते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ, जिससे हमें पता चलता है कि हमें बुखार भी चढ़ रहा है और अब ये बुखार जो है वो उतर भी सकता है। दवाइयों के जो इलाज हैं वो किस तरीके से हीट स्ट्रोक में किए जा सकते हैं और कैसे पेशेंट को समय रहते बचाया जा सकता है और क्या है सिम्टम्स जो एक आम इंसान को पता होने चाहिए, ऐसी कुछ बातें और भी हैं जो हीट स्ट्रोक से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078, और साथ ही ये बातचीत आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ दुनिया के किसी भी कोने में हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना द्वारा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं iOS या प्ले स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आप ऑल इज वेल प्रोग्राम की ये सारी बातचीत डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के साथ कभी भी किसी के साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की हेल्थ को बेहतर बना देगा।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्ट किया है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक शब्द बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन शायद इसको विस्तार में नहीं जानते। आपने ये भी सुना होगा कि गर्मी की चपेट में आने से बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, और शायद यही हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें लोगों की जान को बचाना बेहद जरूरी है। पर जान बचाएं इससे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर होता किन लोगों को है और किन परिस्थितियों में हो जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगी मैं, हीट स्ट्रोक किन लोगों को ज्यादा हो सकता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो हीट स्ट्रोक को बढ़ावा देती है?
1: जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं मैम कि हीट स्ट्रोक किन लोगों को हो सकता है, तो हम बात ही कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हीट रिलेटेड इलनेसेस बढ़ रही हैं, जिसको हम HRI बोलते हैं। तो जितने भी हीट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो क्लाइमेट चेंज के बाद, खासतौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसी का इम्पैक्ट इस पर भी आ रहा है। अगर हम बात करें खासतौर पर मई जून जुलाई, जो ये वाला सीजन होता है जिस समय टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होने लगेगी थोड़े दिन के बाद, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क इसी समय सबसे ज्यादा होता है। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं किन लोगों को रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने रिसेंटली जिनका जो किसी ऐसी जगह से आए जहां का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या जहां पे ठंड होती है, और वो अचानक से ऐसी जगह आ गए जहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ एक्लिमेटाइजेशन, मतलब वो अपनी बॉडी को एडेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा खासतौर पर छोटे बच्चे और जो एडल्ट होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन होती है, और जो हार्ट की या किडनी की या तनाव की दवाइयां खाते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर ये दवाई लेते हो तो हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। या फिर किसी को स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, या किसी को डिहाइड्रेशन पहले से है, लैक ऑफ वाटर है, और या किसी की सीवियर ओबेसिटी, जो हम लोगों को लगता है कि यार मैं मोटा हूं तो इसका क्या मतलब हीट स्ट्रोक से। तो आप ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपको हाइड्रेशन की भी ज्यादा जरूरत है, आपकी कॉप अप मैकेनिज्म्स भी कम होंगी, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, और हमने कहा ओबेसिटी, ये सारे कारण हैं। और कुछ बीमारी जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैं कहूँगा ये इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब वो बॉडी के अंदर हैं। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, और या आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कि क्लोज्ड स्पेस है, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन अगर आपके घर में नहीं है तो भी रिस्क फैक्टर है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक घर में बैठे बैठे भी हो सकता है।
0: अच्छा, घर में बैठे बैठे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये मुझे नहीं पता।
1: इंडोर, अगर कोई इंडोर है तो उसको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, बिकॉज आप जब अंदर रहते हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो आपकी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो है अच्छे से टेम्परेचर रेगुलेशन कर नहीं पाती, और दीज पीपल कैन ऑल्सो गो इन हीट स्ट्रोक। और अगर खासतौर पर वो बच्चे हैं या एल्डरली हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो उनको हीट स्ट्रोक की संभावना और बढ़ जाती है। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। और खासतौर पर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई बंदा जो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, हम जिसको बोलते हैं रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पे जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो काफी रिग्रेसिव या एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और कई बार वो अपने पानी पे ध्यान नहीं देते, लैक ऑफ हाइड्रेशन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड, यू आर वेरी मच रिस्क फॉर हीट स्ट्रोक, तो हाइड्रेशन इज द क्रूशियल थिंग, उसका उनको ध्यान रखना।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह सैर के लिए निकल जाते हैं, और मौसम जब गर्म होता है तब भी ये कहा जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग तो सैर कर लें, लेकिन 8-9 बजे के आसपास आप बाहर ना निकलें गर्मियों में, अवॉइड करें, या दिन में आप जैसे पार्क में जा रहे हैं तो वो ना जाएं। क्या उससे भी हीट स्ट्रोक का खतरा होता है अगर लू चल रही है?
1: जी मैम, जैसा आपने कहा, तो इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट, तो अगर मैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की बात करूं, तो आपने बोला कि खासतौर पे 11 बजे से और 4 बजे का जो पीक टाइम होता है, जिसमें आपका हीट काफ़ी ज़्यादा होती है बाहर, तो आप उस समय आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें, उस समय आप बाहर कम निकलें, और अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो प्रॉपर लाइट कॉटन क्लोथ पहन के जाएं, हैवी क्लोथिंग ना हो, आप प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी लेके जाएं। तो डेफिनेटली आपने जो बोला, एक्चुअली हीट स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा रिस्क आफ्टरनून में होता है, जो आपने बोला, मैं कहूँ 12 से और 3 बजे तक का जो जब सन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सन का होता है, तो उस समय डेफिनेटली आपको आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। और मैंने कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ट्रीटमेंट से भी इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे हीट स्ट्रोक में, तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर।
0: बिल्कुल, और यही वजह होती है कि शायद स्कूल की जो छुट्टी है वो लोग कहते हैं कि 12 बजे से पहले कर दी जाए या 12:30 तक कर दी जाए, क्योंकि जब 2 से 3 के बीच में बच्चे घर पहुंचते हैं तो उस समय पीक गर्मी होती है, और उस गर्मी में बच्चों की जान को बहुत खतरा हो सकता है। सो इस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। हीट स्ट्रोक यानी बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप रहते हैं, खासतौर पर से मैं कहना चाहूंगी लेबर वर्क जो होता है हमारे देश का, वो जब मजदूरी करता है गर्मी में बहुत ज्यादा, और कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पर, किसी जगह पर कुछ और काम चल रहा है, या फिर कोई रिक्शा ढोकर लेकर जा रहा है, सो ऐसी परिस्थिति में हीट स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है। तो इनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, इस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और आज हीट स्ट्रोक पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि गर्मी का मौसम है. बीच बीच में आ रही बारिश थोड़ी राहत देती है, लेकिन फिर मौसम वैसा ही हो जाता है. और ये जो गर्मी है, ये अप्रैल, मई, जून और कुछ हद तक जुलाई, इन महीनों में इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है कि पूरे देश भर को आप अगर गूगल मैप पर देखें और टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो पूरा भारत देश आज की तारीख में एकदम लाल नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैं दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म शहरों की लिस्ट भी. और हमारे देश में जिस तरीके से गर्मी का असर इस बार हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा असर हम सभी की बॉडी और हम सभी के घरों में आप देख सकते हैं. ऐसे में इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक से बचकर रहना बेहद जरूरी है, जिसको सन स्ट्रोक भी कहा जाता है. बढ़ती गर्मी, झुलसती गर्मी, लू चलना और इस बढ़ती हुई धूप में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, ये हम जान रहे हैं. तो कैसे सिम्टम्स को पहचाने हीट स्ट्रोक के, ताकि किसी भी व्यक्ति जो इससे पीड़ित है उसको तुरंत सहायता दी जाए. और क्या होगा उसका इलाज, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं. आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर मीणा, बात करते हैं अब सिम्टम्स की. अब एक व्यक्ति है हमारे घर में अगर कोई रह रहा है और उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो कितने देर का हमारे पास समय होता है और क्या वो सिम्टम्स है जिनको पहचान कर हमें तुरंत डॉक्टरी सहायता चाहिए?
1: जी, जैसा मैम आपने कहा कि इसमें कितना हमें विंडो पीरियड मिलता है, खासतौर पे कि जब आप कोई हीट स्ट्रोक में जाए, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हीट स्ट्रोक से पहले बहुत कुछ होता है, तो इसमें आपके पास समय भी होता है और डॉक्टर के पास भी समय होता है. अगर कोई पेशेंट रिमोट एरियाज़ में है या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक होगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक है. कोई भी हीट स्ट्रोक एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है, एक नॉर्मल जो GI डायरिया वगैरह लूज मोशन AGE की तरह एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में अगर बोलूँ, तो नॉर्मली कोई भी हीट स्ट्रोक एक फीवर, हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेन, लूज मोशन उसको होगा, उसको हेडेक होगा, वीकनेस लगेगा, मसल क्रैम्स आएंगे, इरिटेबिलिटी होगा, ये कॉमन सिम्टम्स हैं. लेकिन इसके साथ जो एक अलार्मिंग चीज होगी या बहुत वार्निंग साइन होगा, जो कि एक डॉक्टर को, खासतौर पे हेल्थ केयर वर्कर को पता होना चाहिए, कि वो होगा उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा. उसका टेम्परेचर 104 से लेके 107 तक जा सकता है. खासतौर पर अगर टेम्परेचर अगर 104 से नीचे होगा तब तो आप ऐसा सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पेशेंट जो है बहुत ज्यादा आप अगर टच भी करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ही वार्म होगी, क्योंकि ब्लड
0: गर्म
1: जी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन का बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक में. आपकी नॉर्मल हमारी स्किन का सर्कुलेशन जो है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्मली हमारी जो स्किन सर्कुलेशन होता है वो उससे 10 गुना बढ़ेगा, तो आपका जो और जगह ब्लड की जरूरत है, जैसे ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, वो कम हो जाती है. तो जो सिम्टम्स भी होते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि अगर किसी को उसको एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन मैंने बताया, साथ में इसके हीट स्ट्रोक में ब्रेन के सिम्टम जुड़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जुड़ जाते हैं, उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाएगा, उसका होश गड़बड़ हो जाएगा, पेशेंट जो है अलर्ट नहीं रहेगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी लगेगी, पेशेंट सीवियर हेडेक की कंप्लेंट करेगा, पेशेंट इवन यहां तक कि फिट्स, जिसको हम सीजर बोलते हैं या मिर्गी बोलते हैं, वो भी आ सकता है, और पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं. तो ये सिम्टम्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट भी करें. और मैं तो कहूंगा इससे पहले, जिसको हम बोलते हैं हीट एग्जेशन, जिसमें आपका टेम्परेचर 104 तक रहता है, तो यहां तक जैसे ही जाए तो आपको सोचना चाहिए कि ये पेशेंट हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. और इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डायग्नोसिस आप क्लिनिकली बना सकते हैं, आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है. अगर आपने ये ध्यान दिया कि पेशेंट की स्वेटिंग नहीं आ रहा है, पेशेंट को पसीना नहीं आ रहा है, जो कि नॉर्मली किसी भी फीवर में आता है, स्वेट आउट, हीट निकलने की जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाती है. और हम बात करें कि किसको रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर्स में मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग पानी की, जिनको कमी होती है, खासतौर पर जो हमारे ऐसे लोग जो कि मोस्टली लेबर क्लास होता है, जो हमारे लोग
0: ओपन में काम कर रहे
1: हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वर्कर होते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा भी होता है. और एक्चुअली सबसे ज्यादा मैं बात करूँ, जो नुकसान होता है वो उनका ही होता है, क्योंकि उनको लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है कि हमको ऐसा कुछ हो सकता है. वो डायरेक्ट सन के एक्सपोज में होते हैं और वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी नहीं करते, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि मुझे समय समय पे पानी पीने की जरूरत भी है, या बीच बीच में आपको छाया में जाने की जरूरत भी है. तो आपको इन बिटवीन अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी करके रखें, और समय समय पर आप जो बोलते हैं हम ज्यादा, अगर सन बहुत ज्यादा तेज धूप है तो आप छाया में बीच बीच में जाएं. मैं बात कर रहा हूँ लेबर वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है.
0: और ये पीते रहें,
1: ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप डॉक्टर देखते हैं कि टेम्परेचर मोर देन 104 है, मैं इसको बता रहा हूँ टेम्परेचर को, और पेशेंट जो है, अगर पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड है, मतलब पेशेंट का होश गड़बड़ हो गया, पेशेंट अलर्ट नहीं है, तो आपको 100% सोचना है कि ये हीट स्ट्रोक हो सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि बुखार जो है वो दिमाग पर चढ़ गया है, यही कहलाया जाता है जनरली, क्योंकि आपको होश नहीं रहता, आपको समझ नहीं रहती, सूझबूझ से जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं वैसे आप कर नहीं पाते। तो देसी भाषा में मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है।
1: जी आपने सही कहा मैम, जिसको हम, अगर मैं बोलूँ पेशेंट के रिलेटेड एक कॉमन लैंग्वेज में, तो कहते हैं लू लग गई है। तो किसी को अगर लू लग गई है, मतलब कि उसका बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो जाता है, तो डेफिनेटली उनको होश नहीं रहता है, सोडियम पोटेशियम भी गड़बड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं, और अगर सोडियम ज्यादा कम हो जाता है तो बेहोशी में सोडियम का भी रोल है, वो और ज्यादा आपके अलर्टनेस को डाउन करता है, और डेफिनेटली हीट स्ट्रोक में इवन कई बार ब्रेन को इन्फार्क्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको हम खालिश बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्रेन को नुकसान हो सकता है।
0: जी
1: और हीट स्ट्रोक तो अपने आप में ही एक न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट, जो मैंने बताया अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम, इशारा कर देता है, बिकॉज ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो डेफिनेटली ये है।
0: जी तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, आगे जानेंगे कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो घर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और हॉस्पिटल में क्या इलाज मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और हम कर रहे हैं बात हीट स्ट्रोक के बारे में. बढ़ती गर्मी प्रॉब्लम बहुत सारी लाती है और उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है वो है हीट स्ट्रोक, यानी लू लग जाना, जिसको हम हिंदी भाषा में आम भाषा में बोलते हैं. लेकिन ये लू लगना सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए बीमार कर देगा, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर सही समय पर इसको पहचान कर इलाज ना किया जाए. अगर आपके घर कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसको एक्चुअली में हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हुआ है, सो आपको क्या करना चाहिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको घर पे देना है या फिर फर्स्ट एड घर पे देना है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाना, और हॉस्पिटल कैसे इलाज करेगा, ये जान रहे हैं हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जी से, जो कि इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं व साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर मीणा, अब मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई हमारे घर का सदस्य है और वो घर में आ रहा है और हमें दिख गया है कि उसको हीट स्ट्रोक है, भरी दोपहर में आए कोई और उसे बुखार हो जाए और बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जी, जैसा आपने कहा कि पहले तो बेसिकली जो हम बोलते हैं प्रोडोमल सिम्टम्स या अर्ली वार्निंग साइंस, तो बंदे को घर पे या जहाँ वो होते हैं वहीं पे आते हैं. तो आपने कहा कि कैसे पता चले, तो आपने कहा कि अगर किसी का कोई बाहर से आ रहा है जो आउटडोर एक्टिविटी करके या सन के एक्सपोजर से आया और उसका आपने देखा कि उसको हाई ग्रेड फीवर है और आपने देखा कि उनको डिहाइड्रेशन हो रखा है, उनको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रखा है और वो कह रहे हैं कि मेरे को आप देखेंगे कि इरिटेबिलिटी भी लग रही है, सीवियर हेडेक भी हो रहा है या मसल क्रैम्प बहुत कॉमन सिम्टम है कि वो कहेंगे मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मसल वीकनेस आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है. तो ये चीज़ें अगर घर पर हो रही हैं तो डेफिनेटली अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे आप हीट

0: तो 104 के ऊपर है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 100% आपको आपको लगे कि थोड़ा उनका सेंसोरियम गड़बड़ हो रहा है या उनकी अलर्टनेस गिर रही है, ऐसे लक्षण जैसे ही लगे या लूज मोशन का जो नॉर्मली बोलते हैं कि भाई लू लग गई और लू में आराम नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली आप उसको एक अच्छे सेंटर पे ले जाएं। अगर मैं बात करूं, अगर किसी को हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है और किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या रिमोट एरिया में डॉक्टर ने देखा है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये हीट स्ट्रोक सस्पेक्टेड है, तो उसको इमीडिएटली आप वहां ले जाएं जहां पे कि हीट स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, खासतौर पर ऑब्वियसली टर्शरी केयर में या बड़े किसी गवर्नमेंट सेटअप्स में जहां पे ये फैसिलिटीज होती है, वहां पे उनको इमीडिएटली ले जाएं। और अगर आप छोटी जगह पे भी तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पे उनको आईवी फ्लूड्स दिए जाते हैं जो बहुत ही वाइटल होता है, लाइफ सेविंग होता है, जिसको आप नॉर्मली हम एनएस और आरएल कहते हैं, बोलते हैं कि पानी लगा दिया, नॉर्मली समझते हैं लोग, वो ये ध्यान रखें कि वो पानी भी गर्म ना दे दें। आपने देखा होगा कई बार वो भी हीट में उतना ही गर्म होता है तो डबल अटैक हो जाता है एक तरह से।
1: ओके,
0: तो ये ध्यान रखें कि उसका टेम्परेचर ठीक हो, जो बाहर से आप फ्लूड को रिप्लेसमेंट कर रहे हो ट्रीटमेंट के,
1: वो
0: एटलीस्ट ठंडा होना चाहिए। ये चीज डॉक्टरों को या हेल्थ सेंटर पे जो टीम है हमारी उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो भी ऐसा कर देते हैं कि वो भी उतना ही टेम्परेचर का है, तो बेसिकली पेशेंट को और भी तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ साथ और जो सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसा हमने कहा कि टर्शरी केयर पे ये भी पता चलता है कि बंदे का ब्रेन को भी इशू है क्या उनका, तो वहाँ पे उनका सीटी भी हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी पता चलता है, और हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, वो सारे टेस्ट आप बड़े सेंटर पे ही करा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर हमने जैसा कहा वैसे सिम्टम्स मिले और किसी का टेम्परेचर और उनकी अलर्टनेस कम हो जाए, मैं दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, तो डेफिनेटली उनको हेयर सेंटर पर जाना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि घर पे बहुत समय वेट नहीं करना चाहिए अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग घर पे जैसे ठंडे पानी की पट्टियां सिर पे रखते हैं, बर्फ़ की पट्टियां, क्या वो भी रखी जा सकती हैं या वो ठीक नहीं रहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100% घर पे आप लोग उसको ठंडी पट्टियाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी अगर मैं बात करूँ तो कई मेडिकल कॉलेज जो अगर हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उसमें अलग से वार्ड बना दिया जाता है इस समय पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सीरियसली लेती है। तो डेफिनेटली आप उनको ठंडी पट्टी भी रखें, उनके कपड़ों उनको आइस से उनको आप अपने उनको क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी कोल्ड आइस इमर्जन थेरेपी है, मैं ये कहना चाहता था कि आइस डाल के और पेशेंट के टेम्परेचर को कम किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी सही बताऊं तो कोल्ड आइस थेरेपी है। तो आपने कहा कि आइस से वो कर सकते हैं कि पट्टी 100% कर सकते हैं, बहुत ही रिलीविंग होगा। दूसरा जो हीट स्ट्रोक की सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अस्पताल में उनको मैनेज किया जाता है, और साथ में उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए कोल्ड आइस इमर्सन थेरेपी दी जाती है जो कि काफी इफेक्टिव होती है
1: जी।
0: लेकिन आपके जो अंगों को नुकसान हो जाता है उससे बचना काफी मुश्किल होता है, तो बेटर यह है कि आप इसको पहले से ही ध्यान दे दें जिससे आप उस कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं।
1: यानी आप 2-3 दिन तक वेट ना करें, अगर पहले दिन ही ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है।
0: क्योंकि आपने देखा कि जैसे आप रेडियो मानव रचना या ऐसे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करके और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया उनको वो कई बार टेम्परेचर को भी नहीं देखते हैं सोशल मीडिया या फोन पे कि आज बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो उनकी उनको ये अवेयरनेस मिलेगी तो वो शायद समझ पाएंगे कि टेम्परेचर का और अपनी बॉडी का पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, यानी पानी जो है वो वैसे ही अमृत नहीं कहलाया जाता, वो वाकई अमृत होता है, और इस गर्मी में अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी अच्छे तरीके से पीजिए, 3 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर ज़रूरी है पीना, अगर इससे ज़्यादा भी आपको प्यास लग रही है तो ज़रूर पीजिए। अल्कोहल का सेवन कम करिए, चाय कॉफ़ी थोड़ी सी कम करिए, और उसकी जगह जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल नींबू पानी बना के पी लीजिए, बॉडी को बहुत राहत मिलेगी। और ठंडी चीज़ें जो आप खा रहे हैं इतना ठंडा भी मत खाइएगा कि आपका गला बैठ जाए, कोशिश करिए कि अच्छे टेम्परेचर की चीज़ें खाइए, और बहुत ज़्यादा बाहर की तली हुई चीज़ें अवॉइड करिए क्योंकि फूड पॉइजनिंग का खतरा भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। सो डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।